एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 29वीं तिथि, तदनुसार 20 जुलाई सन 2026। अभी प्रातः के 5:56 हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब प्रारंभ होती है।

ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 MHz पर। प्रातः के 6 बजने वाले हैं हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। संसद का मानसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। 25 दिन के अधिवेशन में सदन की 19 बैठक होंगी। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। इससे पहले सरकार ने कल संसद भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। 40 राजनीतिक दलों के 50 से अधिक नेता बैठक में शामिल हुए। बैठक के पश्चात संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के

0: साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सदस्यों ने जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने सभी दलों से अपील की कि वे कार्यवाही को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने में पूरा सहयोग दें। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद अधिवेशन के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसीलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस सत्र में समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पेश किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने कल इस विधेयक के मसौदे को सर्वसम्मति से मंजूरी दी। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में ये फैसला किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता से राज्य में सभी को समान दर्जा मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जनसंपर्क क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इन 3 देशों की यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉक्टर मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति की यात्रा को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में इन देशों के साथ द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में 4 स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये प्रतिष्ठित वैश्विक प्रतियोगिता में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। श्री मोदी ने लिथुआनिया में 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में स्वर्ण सहित सभी 4 पदक जीतने पर भारतीय टीम के सभी सदस्यों को भी बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये उपलब्धि अनगिनत युवाओं को विज्ञान का अध्ययन करने और उसमें उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगी। स्पेन ने अतिरिक्त में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में फाइनल में स्पेन के सब्स्टिट्यूट फेरान टोरेस ने 106वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को जीत दिलाई। 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया था। ये स्पेन का दूसरा पुरुष फीफा विश्व कप का खिताब है। इससे पहले उसने 2010 में खिताब जीता था। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। और पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी दिल्ली से हम अनुप्रसारित कर रहे थे हिंदी में समाचार। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। लीजिए पेश है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। शुरुआत इस देशवंदना से करेंगे।

कार्यक्रम आराधना के आखिर में हम सुनवा रहे हैं आपको जगजीत सिंह की सुमधुर आवाज में भजन।

0: जगजीत सिंह के गाए इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं खेती की बात। आज का विषय है हल्दी की खेती। वाचन स्वर रुपेश कंवर का है।
1: संगवारी हो, राम राम, जय जोहार। मैं हूं अपन के रेडियो संगवारी पंचू भाई रुपेश कुमार।

0: खरीफ सीजन के हमर बूता काम हा चलत हवे, रुपाई धान बोवाई कतो किसान भाई मन लईहरा के अपन जो बूता काम हवे ओहुला करत हवे। अपन जानते हवा कि खेती किसानी के माध्यम से अगर हमन घर परिवार चलाबो की बो तो बिल्कुल नहीं चल पाए। आए दिन अपन ला यही कथन हमर रेडियो के माध्यम से कि जितके ज्यादा होए हमन अक्तहा बूता काम करी ताकि हमर गठरी में 2-4 रुपया माढ़े चढ़े। हमर छत्तीसगढ़ धान के कटोरा कहे जाते। आज हमन जो खेती किसानी में धान के फसल ज्यादा से ज्यादा हमन अपनावत हन, तो आज हमन खेती के बात में अपन कर गोड़ बात करत हन हल्दी के खेती के। आज हमन परिवर्तन खेती के माध्यम से अगर हमन हल्दी के खेती करत हन तो कहीं न कहीं आज हमन मसाला वर्ग में एक अच्छा आमदनी कमा सकत हन। अपन जानते हवा कि हल्दी के आवश्यकता आज हमन ला हर बेरा आवश्यकता होते। साग सब्जी बनाथन ओमा ला आवश्यकता होते, संगे संग कोनो प्रकार के पकवान बनाथन ओमा भी हमन ला हल्दी अब्बे ज्यादा आवश्यकता होते। आज हमार कतक दीदी बहनी मन हल्दी के खेती करके दोहरा से दोहरा आमदनी कमाथे। पाउडर बना के कतेक जन आनी बनी के उद्योग स्थापित करे हवा हल्दी के क्षेत्र में और दोहरा से दोहरा आमदनी कमाते। तो आवा संगवारी हो आज हमन बात करत हन हल्दी के खेती के। छत्तीसगढ़ में हल्दी के फसल ला नगदी फसल के रूप में हमन जाने जाते हैं। और बात करी संगवारी हो तो हमारे यहाँ की जो जलवायु है हल्दी के खेती पर सबसे उपयुक्त है। एक संगे संग माटी के बात करी तो डुमर माटी है, बलुई माटी है सबसे उपयुक्त हवे। हमें ऐसे भूया की चुनाव करना चाहिए जहाँ पानी की निकासी और सिंचाई आसानी रूप से हो सके। ज्यादा जल भरा हुई संगवारी हो तो उमा का है कि हमारे जो फसल हवे हल्दी के ओकर कांदा सड़े के डर रहते। तो ऐसे की चुनाव होना चाहिए जमा हम पानी की निकासी आसानी रूप से कर सकी। पीएच के बात करी संगवारी 5.5 ले 7.5 तक सबसे उपयुक्त रहते। किस्म के बात करी संगवारी हो तो कई बार ऐसे होते कि हमन कोनो भी फसल अपनाथन लेकिन ओकर किस्म के चिन्हारी नहीं कर पान और ओला सीधा हमन बोई कर देतन। कभू कभू हमला उमा नुकसान होके संभावना घलो रहते। तेमा किस्म के बात करी संगवारी हो राजेंद्र सोनिया ज्यादा पैदावार देह वाला किस्म है। एमा हमन 25 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ में सूखा प्राप्त कर सकत। बढ़िया रहते बाजार में एकर ज्यादा ज्यादा मांग हवा वैशाली। एमा रोग कम लगते और संगे संग एमा पैदावार भी ज्यादा होते। मेघा एक जल्दी तैयार होते, यह कहीं तो संगवारी हो 7 से 8 महीना में सबसे अच्छा तैयारी हो के संभावना घलो रहते। बुआई के बेरा के बात करी संगवारी हो तो अभी के जो बेरा हवा जुलाई से अगस्त के पहली सप्ताह ये बेरा में हमन एकर अच्छे से बुआई कर सकत हन। और संगे संग इला हमन मेड़ बेट अगर बनावत संगवारी हो तो पानी निकासी सबसे उपयुक्त रहते। संगे संग खेत की तैयारी के बात करी बुआई के बात करी संगवारी हो खेत तैयारी पर हमला 2 से 3 बार अच्छे से गहरी जोताई करना चाहिए। बुआई के पहली हमला 20 से 25 टन जिस समय जोताई करा था वो बेर हमला गोबर खाद है बरोबर छिड़काव करना चाहिए। बीज ला स्वस्थ कंद टुकड़ा ला ही हमला उपयोग करना चाहिए ताकि पर कोनो प्रकार के रोग व्याधि जन हुए। प्रति एकड़ की बात करी संगवारी हो 800 से 1000 किलो बीज की हमला आवश्यकता पड़ सकत है। बीजा उपचार हमला बहुते आवश्यकता हवा कोनो भी फसल अपनावत संगवारी तो सबसे पहले हमें बीजा उपचार करना बहुते आवश्यकता है। कार्बोडिजिम 2 ग्राम टाइकोडर्मा 4 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला के 30 मिनट तक डुबा देवा और ज्यादा देर तक हमला नहीं डुबाना चाहिए ताकि वह सड़ा जन। पौधा की धुरिया की बात करें संगवारी हो तो कतार के दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधा की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर हमला रखना चाहिए। खाद की बात करें संगवारी हो तो जे समय हम जोताई करा थन वो बेरा हमला अच्छे से गोबर खाद ला 20 से 25 टन एकड़ पाछू हमला छिड़काव करना चाहिए। इसने संगे संग रासायनिक खातु माटी की बात करी 50 किलोग्राम नाइट्रोजन 50 किलोग्राम फास्फोरस 50 किलोग्राम पोटास प्रति एकड़ के पाछू हमला 3 बार हमला देना चाहिए। सिंचाई की बात करी संगवारी तो बरसात के बेरा में हल्दी की खेती में ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़े, फिर भी अगर पानी बरसात नहीं करते है तो 15 से 20 दिन के बाद में हमला एला सिंचाई कर सकत हन। संगवारी हो अभी के बेरा हवा उपयुक्त तो आप यही कहो कि जितके ज्यादा हो हमन उद्यान विभाग कति जोड़ के अगर हमन हल्दी की खेती करत हन तो अवैया बेरा में हमन ज्यादा से ज्यादा हमन पैदावार पा सकत हन। राम राम जय जोहार।
1: हल्दी की खेती विषय पर आप सुन रहे थे खेती की बात FM बैंड 103.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 6:35 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है रामचरित मानस गान। मुख्य गायक हैं भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह। संगीत संयोजन सतीश भाटिया का है।

रानी कैकई के कोप भवन में काल रात्रि बीत चुकी है। प्रातः काल कैकई का आदेश पाकर सुमंत्र श्री राम को वहां ले आते हैं। राजा दशरथ मूर्छित अवस्था में धरती पर पड़े हैं। वो श्री राम से कुछ नहीं कह पाते। श्री राम ने माता कैकई से पिता की इस दशा का कारण जानकर कहा, हे माता, वो पुत्र बड़भागी है जो माता पिता के वचनों का अनुरागी होता है। रानी कैकई श्री राम के मनोभाव जानकर हर्षित हुईं और माता पिता तथा भाइयों के प्रति उनके आदर तथा स्नेह भाव की प्रशंसा की। बोली, मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, तुम अपने पिता को समझाकर वही करने को कहो जिससे इन्हें चौथेपन में अपयश का भागी न बनना पड़े। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई और राम राम कहते हुए उन्होंने करवट ली। जब सुमंत्र ने उन्हें बताया कि राम आए हैं तो धीरज धारण कर उन्होंने आंखें खोली। स्नेह से विकल होकर उन्होंने पुत्र को हृदय से लगा लिया। उनके नेत्रों से आंसू की धार बह चली। हृदय में लगे गहरे आघात की पीड़ा के कारण उनके मुंह से वचन नहीं निकल रहे। मन में बस बार बार सृष्टिकर्ता से यही मनाते हैं कि राम वन न जाएं। अवधरदानी शिव से उनकी विनती है कि दीन जानकर आशुतोष उनका दुख दूर करें।

अभी हम प्रसारित कर रहे थे रामचरित मानस गान। मुख्य गायक थे भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:45 हुए हैं। नव विहान में आज हम चर्चा कर रहे हैं स्वच्छ

स्वच्छ भारत मिशन की। श्रोताओं, कहते हैं स्वच्छता केवल एक आदत नहीं बल्कि एक संस्कार है। जिस घर, गली, गांव और शहर में स्वच्छता होती है वहां बीमारियां कम होती है, वातावरण सुखद रहता है और लोगों का जीवन अधिक स्वस्थ और खुशहाल बनता है। इसलिए आज हम बात करेंगे भारत सरकार की एक ऐसी महत्वपूर्ण पहल की जिसने स्वच्छता को एक जन आंदोलन का रूप दिया है, स्वच्छ भारत मिशन। श्रोताओं, भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 2014 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी। महात्मा गांधी का सपना था कि देश केवल आज़ाद ही ना हो बल्कि स्वच्छ भी हो। इसी सोच को साकार करने के उद्देश्य से इस अभियान की शुरुआत की गई। इस मिशन का सबसे बड़ा उद्देश्य

आज हम बात करेंगे भारत सरकार की एक ऐसी महत्वपूर्ण पहल की जिसने स्वच्छता को एक जन आंदोलन का रूप दिया है, स्वच्छ भारत मिशन। श्रोताओं, भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 2014 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी। महात्मा गांधी का सपना था कि देश केवल आज़ाद ही ना हो बल्कि स्वच्छ भी हो। इसी सोच को साकार करने के उद्देश्य से इस अभियान की शुरुआत की गई। इस मिशन का सबसे बड़ा उद्देश्य था कि देश में खुले में शौच की प्रथा समाप्त हो, हर परिवार एक शौचालय की सुविधा पहुंचे, ठोस और तरल कचरे का बेहतर प्रबंधन हो, गांवों और शहरों में साफ सफाई की व्यवस्था मजबूत बने और लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़े। श्रोताओं, स्वच्छ भारत मिशन दो प्रमुख भागों में संचालित किया गया है। पहला है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जिसका संचालन ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के माध्यम से किया जाता है। दूसरा है स्वच्छ भारत मिशन शहरी, जिसे शहरी विकास मंत्रालय के माध्यम से लागू किया गया है। दोनों का उद्देश्य एक ही है, देश के हर नागरिक को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराना। इस मिशन के तहत देश भर में करोड़ों घरेलू शौचालयों का निर्माण कराया गया है, जिससे विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को बहुत राहत मिली है। पहले जहां कई ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को अंधेरा होने का इंतजार करना पड़ता था, वहीं अब घर में शौचालय होने से उनकी सुरक्षा, गरिमा और स्वास्थ्य तीनों में सुधार आया है। इतना ही नहीं, खुले में शौच की समस्या कम होने से जल स्रोतों के दूषित होने का खतरा भी घटा है। इससे दस्त, हैजा, टाइफाइड जैसी कई संक्रामक बीमारियों को रोकने में मदद मिली है। साफ सफाई का सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य से है। यदि आसपास कचरा फैला रहेगा, नालियां गंदी रहेंगी और पानी जमा होगा तो मच्छर और अन्य कीट पनपेंगे, जिससे डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाएगा। श्रोताओं, स्वच्छ भारत मिशन का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है कचरा प्रबंधन। आज सिर्फ कचरा उठाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका सही तरीके से निपटान और पुनर्चक्रण यानी रीसाइक्लिंग भी उतना ही आवश्यक है। इसलिए नागरिकों को गीले और सूखे कचरे को अलग अलग रखने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। गीले कचरे से खाद बनाई जा सकती है, जबकि सूखे कचरे का पुनर्चक्रण करके नए उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं। इससे पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है और संसाधनों की बचत भी होती है। इस अभियान का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाना है। सरकार चाहे जितनी सुविधाएं उपलब्ध करा दे, लेकिन अगर नागरिक स्वयं स्वच्छता के प्रति जिम्मेदार नहीं होंगे तो कोई भी अभियान पूरी तरह सफल नहीं हो सकता। इसलिए इस मिशन का संदेश है कि स्वच्छता सरकार की नहीं बल्कि हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। नवविहान में आज हम चर्चा कर रहे थे स्वच्छ भारत मिशन विषय पर। हमारा प्रसारण आप आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से सुन रहे हैं, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6:50 हुए हैं। आज के शेष और मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी हम देंगे कार्यक्रम विवरण के माध्यम से।

7:05 पर हम पेश करेंगे कार्यक्रम आज सुबह। सुबह 7:30 पर आनंद लीजिएगा यादों के झरोखे से कार्यक्रम का। सुबह 8:30 पर हम लेकर आएंगे कार्यक्रम अमराई। कलाकार होंगे आत्मा कोसा और साथी भीम यादव, नीलिमा जॉन और साथी। सुबह 10:00 समय होगा कार्यक्रम तुहर गोठ हमर गीत का। प्रस्तुतकर्ता होंगी श्वेता पांडे। कार्यक्रम आपकी पसंद हम प्रस्तुत करेंगे सुबह 10:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT सुनिएगा सुबह 11:00।

रात्रि 8 बजे संसद समीक्षा, रात्रि 10 बजे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही के संपादित अंश हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। प्रतिदिन की तरह

श्रोताओं, हर रोज की तरह संध्या 5 बजे सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। चित्रपट संगीत का आनंद लीजिएगा संध्या 5:05 पर। युवा साथियों का मनपसंद कार्यक्रम युवा जगत हम लेकर आएंगे संध्या 5:35 पर। आज की बात में चर्चा का विषय होगा नशा से बचने के उपाय सोच के रखें। क्रम होगा मेरी बारी का। हर दिन की तरह शाम 6:20 पर और शाम 7 बजे समय होगा कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने का। ग्राम सभा की ओर हम बढ़ेंगे शाम 7:20 पर। बेरा के गोठ में चर्चा का विषय होगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। उसके बाद नैनो यूरिया नैनो डीएपी का वर्तमान समय में महत्व एवं जैव उर्वरकों का महत्व विषय पर श्री हेमकांती बंजारे विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर से ली गई भेंट वार्ता हम आप तक पहुंचाएंगे। और रजनीगंधा की महक हम बिखेरेंगे रात्रि 8:15 पर। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण समाप्त।

बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने वाले हैं। संस्कृत और हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। 25 दिन के अधिवेशन में सदन की 19 बैठकें होंगी। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। इससे पहले सरकार ने कल संसद भवन में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। 40 राजनीतिक दलों के 50 से ज्यादा नेता बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई।

0: इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सदस्यों ने जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर भी बल दिया। उन्होंने सभी दलों से अपील की कि वे कार्रवाई को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने में पूरा सहयोग दें। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद अधिवेशन के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस सत्र में समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पेश किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने कल इस विधेयक के मसौदे को सर्वसम्मति से मंजूरी दी। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में यह फैसला किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता से राज्य में सभी को समान दर्जा मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों मॉल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जनसंपर्क के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना है। इन तीनों देशों की यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मॉल्दोवा में भारत के राजदूत डॉक्टर मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति की यात्रा को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में इन देशों के साथ द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में 4 स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह प्रतिष्ठित वैश्विक प्रतियोगिता में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। श्री मोदी ने लिथुआनिया में 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में स्वर्ण सहित सभी 4 पदक जीतने पर भारतीय टीम के सभी सदस्यों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह उपलब्धि अनगिनत युवाओं को विज्ञान का अध्ययन करने और उसमें उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। स्पेन ने अतिरिक्त समय में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में फाइनल में स्पेन के सब्स्टिट्यूट फेरान टोरेस ने 106वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को जीत दिलाई। 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया था। ये स्पेन का दूसरा पुरुष फीफा विश्व कप खिताब है। इससे पहले उसने 2010 में यह खिताब जीता था और इस जीत के साथ ही स्पेन एक समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: समाचारों को हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित कर रहे थे। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 7:05 हुए हैं। आइए बढ़ते हैं प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह की ओर।

आज सुबह इस खुशनुमा और ताजगी से भरी सुबह में स्वागत और अभिनंदन है आप सभी श्रोताओं का। कीजिए स्वीकार

श्रोताओं, बचपन में आपने भी चांद को निहारते हुए सोचा होगा कि काश एक दिन हम भी वहां पहुंच पाते। कभी चांद में खरगोश दिखाई दिया होगा, कभी चंदा मामा की कहानियां सुनी होंगी, तो कभी पूर्णिमा की रात उसकी चांदनी में मन खो गया होगा। मगर यही चांद कल्पनाओं से बिल्कुल अलग और विपरीत है। चांद की सतह वैसी नहीं है जैसी हम पृथ्वी पर देखते हैं। वहाँ ना हरियाली है, ना नदियाँ हैं, ना समुद्र है, ना ही पेड़ पौधे हैं। चारों ओर महीन धूल, चट्टाने और हजारों लाखों गहरे गड्ढे दिखाई देते हैं। ये गड्ढे करोड़ों वर्षों से उल्कापिंडों के टकराने से बने हैं। चांद की धूल बहुत महीन होती है और वैज्ञानिकों के अनुसार ये काफी खुरदुरी भी होती है। श्रोताओं, चांद पर ना तो पृथ्वी जैसा वातावरण है और ना ही हवा। वातावरण ना होने के कारण वहां सूर्य की गर्मी को रोकने या फैलाने वाला कोई माध्यम नहीं है, और इसीलिए चांद पर दिन और रात के तापमान में बहुत बड़ा अंतर होता है। वहां पर दिन का तापमान लगभग 120 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तो वहीं रात के समय तापमान गिरकर लगभग -150 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यानी दिन में इतना गर्म कि धातु भी गर्म हो जाए और रात इतनी ठंडी कि पल भर में सब कुछ जम जाए। अब जरा सोचिए कि जिस चांद को देखकर हम कल्पनाओं में पता नहीं क्या क्या सोच लेते थे, उस चांद पर जब पहली बार किसी इंसान ने कदम रखा होगा तो उसका अनुभव कैसा रहा होगा। चारों ओर गहरा सन्नाटा, ना हवा की सरसराहट, ना पक्षियों की चहचहाहट। दूर दूर तक फैली धरती और उसके ऊपर काला अनंत आकाश, सामने नीला चमकता हमारा अपना ग्रह पृथ्वी। ये सिर्फ चांद तक पहुंचने की यात्रा नहीं थी, बल्कि मानव साहस, विज्ञान और अटूट विश्वास की जीत थी। और इसी ऐतिहासिक उपलब्धि की स्मृति में संयुक्त राष्ट्र ने 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। 20 जुलाई 1969, वो ऐतिहासिक दिन था जब पूरी दुनिया की निगाहें आसमान पर टिकी हुई थी। अंतरिक्षयान अपोलो 11 धीरे धीरे चंद्रमा की सतह पर उतर रहा था, और कुछ ही देर बाद अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने पहला कदम चंद्रमा की धूल पर रखा था। आज दुनिया फिर से चांद की ओर कदम बढ़ा रही है। वैज्ञानिक वहां जीवन की संभावनाओं, पानी की मौजूदगी और भविष्य में मानव बस्तियां बसाने की संभावनाओं पर शोध कर रहे हैं। भारत ने भी अपने चंद्रयान अभियानों के माध्यम से विश्व में अपनी वैज्ञानिक क्षमता का शानदार परिचय दिया है। श्रोताओं, चंद्रमा पर सांस लेने लायक हवा नहीं है, इसलिए वहां बिना स्पेस सूट के कोई भी इंसान जीवित नहीं रह सकता। चांद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का लगभग छठा हिस्सा है, इसलिए वहां अगर कोई व्यक्ति 60 किलोग्राम का है तो उसे अपना वजन लगभग 10 किलोग्राम जैसा महसूस होगा। इसी कारण अंतरिक्ष यात्री चांद पर चलते नहीं, बल्कि हल्के हल्के उछलते हुए दिखाई देते हैं। शायद यही वजह है कि चांद आज भी हमारे लिए सिर्फ रात की खूबसूरती का प्रतीक नहीं, बल्कि विज्ञान, जिज्ञासा और अनगिनत संभावनाओं का संसार भी है।

0: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
1: अच्छे उपचार के लिए अब नहीं रहेगा कोई लाचार। देश भर में 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी हैं। अब 5 लाख के मुफ्त इलाज के हकदार। अब तक 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मुफ्त उपचार के लाभ दिए जा चुके हैं और स्वाभिमान और सेहत की सौगात का ये सिलसिला जारी है।
2: आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी घर बैठे अपना आयुष्मान कार्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
3: भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ के धमतरी, जशपुर, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, कोरबा, महासमुंद, कोंडागांव, रायगढ़, राजनांदगांव, नारायणपुर एवं सूरजपुर जिलों में फसल बीमा योजना खरीफ 2026 मौसम हेतु संचालित की जा रही है। इस योजना में धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, मकई, सोयाबीन, मूंगफली, तुअर, अरहर, मूंग, उड़द, कोदो, कुटकी एवं रागी मड़वा अधिसूचित फसल का बीमा किया जा रहा है। किसी भी प्रकार की फसल बीमा से संबंधित जानकारी, मार्गदर्शन, सहायता या शिकायत के लिए तुरंत कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन 1-4-4-4-7 पर कॉल करें। प्रशिक्षित प्रतिनिधि आपकी सहायता के लिए सदैव उपलब्ध है। 7-0-6-5-5-1-4-4-4-7 पर हमारे फसल बीमा चैटबॉट को केवल नमस्ते या हाय लिखकर संदेश भेजें। चैटबॉट आपको योजना की जानकारी, बीमित फसलों क्लेम की जानकारी तुरंत उपलब्ध कराएगा। बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। फसल हो या कृषि संपदा, बीमा सुरक्षा हमारा वादा। फसल सुरक्षा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
4: लीजिए पेश है आज का ट्रैफिक अपडेट।
5: नमस्कार, ट्रैफिक अपडेट साहब बिलासपुर की श्रृंखला में एक नई सुबह के साथ मैं हूं उमाशंकर पांडे, आपका स्वागत है। बिलासपुर शहर के साथ ही जिले की चारों तरफ की सभी सड़कों में भी सभी प्रकार के वाहनों का सुगम यातायात संपर्क बना हुआ है, अर्थात संपूर्ण बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। आप सभी से अनुरोध है कि यातायात नियमों के प्रति निष्ठावान रहकर जिले की सुगम यातायात व्यवस्था में आप सभी भागीदार बने। मित्रों, जिस प्रकार यातायात के नियमों के पालन में सुरक्षित वाहन चालन आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार उतना ही जरूरी अपने वाहन के सभी दस्तावेज भी पूरे और जीवित रखना जरूरी है। किसी भी प्रकार के नए वाहन के लेते ही उसका संबंधित आरटीओ कार्यालय से रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है और ये रजिस्ट्रेशन नंबर मानक आकार के नंबर प्लेट पर मानक अक्षरों एवं अंकों में लिखे होने चाहिए। अस्पष्ट एवं घुमावदार नंबर लिखाना अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर छिपाने के समान है, जो मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 50/177 में वर्जित है। ठीक इसी प्रकार प्रत्येक वाहन का बीमा भी अनिवार्य होता है, अतः किसी भी अधिकृत कंपनी से अपने वाहन का बीमा अवश्य करावें। बिना बीमा के एक दिन भी वाहन न चलाएं, अन्यथा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 146/196 के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है।

0: साथियों, वाहन का बीमा जीवित होने की स्थिति में दुर्भाग्य से कभी कहीं कोई दुर्घटना हो भी गई तो पीड़ित पक्ष को होने वाली क्षति का निर्धारण माननीय न्यायालय के द्वारा किया जाता है और यह क्षतिपूर्ति राशि की भरपाई पीड़ित पक्ष को संबंधित बीमा कंपनी के द्वारा किया जाता है। और यदि उस वाहन का बीमा जीवित नहीं है तो माननीय न्यायालय द्वारा पीड़ित पक्ष के लिए जो भी क्षतिपूर्ति का आदेश होगा संबंधित वाहन मालिक को भरना पड़ेगा। यह क्षतिपूर्ति राशि लाखों में होती है, इसलिए अपने वाहन का बीमा हर हालत में करावें। इसके साथ ही हर 6 माह में प्रदूषण की जांच कराना ना भूलें और यदि भारी वाहन है तो फिटनेस परमिट हमेशा जीवित रखें। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा शुभ हो।
1: श्रोताओं, दुनिया में खेलों की कमी नहीं है। कोई क्रिकेट खेलता है, कोई फुटबॉल, कोई कबड्डी और कोई बैडमिंटन। ये सभी खेल शरीर को चुस्त दुरुस्त रखते हैं, लेकिन एक ऐसा खेल भी है जिसमें पसीना भले ही कम बहे पर दिमाग पूरी रफ्तार से दौड़ता है। ये खेल है शतरंज, जिसे हम चेस भी कहते हैं। शतरंज का इतिहास भी बहुत रोचक है। ऐसा मानते हैं कि इसकी शुरुआत भारत में चतुरंग नाम के खेल से हुई थी। समय के साथ ये खेल फारस, अरब देशों और फिर यूरोप पहुंचा। आज यही खेल पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों का पसंदीदा मानसिक खेल बन चुका है। अब जरा सोचिए, एक छोटा सा बोर्ड, सिर्फ 64 खाने और 32 मोहरें, लेकिन इन्हीं के बीच धैर्य, दूरदर्शिता, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की कला विकसित होती है। चेस खेलने वाला खिलाड़ी सिर्फ अगली चाल नहीं सोचता, बल्कि कई चालें पहले की योजना बनाता है और यही आदत जीवन में भी काम आती है। श्रोताओं, विशेषज्ञ मानते हैं कि नियमित रूप से शतरंज खेलने से एकाग्रता बढ़ती है, याददाश्त मजबूत होती है, समस्या सुलझाने की क्षमता विकसित होती है, धैर्य और अनुशासन आता है, निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है और बच्चों में रचनात्मक सोच विकसित होती है। यही कारण है कि आज दुनिया के कई स्कूलों में शतरंज को सह पाठ्यक्रम गतिविधि के रूप में शामिल किया जा रहा है और इसके महत्व को देखते हुए हर साल 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चेस दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम लोगों को रचनात्मक तरीके से शतरंज को समाज तक पहुंचाने और इसे सभी के लिए सुलभ बनाने पर केंद्रित है। श्रोताओं, अगर हमारे देश की बात करें तो आज हमारा देश विश्व शतरंज की सबसे बड़ी ताकतों में गिना जाता है। इस यात्रा की नींव रखी भारत के पहले शतरंज चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने। उन्होंने करोड़ों बच्चों को शतरंज खेलने की प्रेरणा दी। आज भारत के कई युवा खिलाड़ी दुनिया में अपना परचम लहरा रहे हैं। इनमें डी गुकेश, आर प्रज्ञानानंद, अर्जुन एरिगेसी विदित गुजराती, कोनेरू हम्पी, आर वैशाली, हरिका द्रोणावल्ली और दिव्या देशमुख जैसे कई खिलाड़ी लगातार अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल के वर्षों में भारत ने विश्व स्तर पर कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की है और युवा खिलाड़ियों ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। सबसे अच्छी बात यह है श्रोताओं कि अब चेस सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि छोटे छोटे शहरों और कस्बों के बच्चे भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, स्कूल प्रतियोगिताओं और स्थानीय अकेडमी के माध्यम से तेजी से शतरंज सीख रहे हैं। भारत में चेस के प्रति बच्चों का उत्साह पहले की तुलना में कहीं ज्यादा बढ़ गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इंटरनेट, ऑनलाइन प्रतियोगिताएं और भारतीय खिलाड़ियों की अंतर्राष्ट्रीय सफलता ने इस खेल को नई पीढ़ी के बीच बेहद लोकप्रिय बना दिया है।

श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। ढेर सारी जानकारियों के साथ हम फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति, कीजिए स्वीकार अपनी रेडियो साथी अपेक्षा शर्मा का स्नेहिल नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज सुबह। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.2 MHz पर। सुबह के 7:30 हुए हैं। आनंद लीजिए यादों के झरोखे से कार्यक्रम का। श्रोताओं, आज के फिल्म संगीत में हम याद कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के उस चमकते सितारे को जिन्हें दुनिया ने प्यार से जुबली कुमार कहा। ये नाम उन्हें यूं ही नहीं मिला था। उनकी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि लगातार कई फिल्में सिल्वर जुबली मनाती चली गईं। उस समय कहते थे कि जिस फिल्म में राजेंद्र कुमार हो उसकी कामयाबी तय है। जी हाँ श्रोताओं, आज जन्मदिन है बॉलीवुड के सुपरहिट सितारे राजेंद्र कुमार का।

आज के कार्यक्रम में संगीत की महफिल जमेगी राजेंद्र कुमार के फिल्मी गीतों से। तो लीजिए, पेश है ये गीत उनकी याद में।

कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना आरजू फिल्म से मोहम्मद रफ़ी की मखमली आवाज़ में। हसरत जयपुरी के लिखे बोल थे, शंकर जयकिशन का संगीत था। आइए सुनते हैं हसरत जयपुरी की रचना को शंकर जयकिशन की धुन पर। गायकी मोहम्मद रफ़ी की है, फिल्म का नाम है

0: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
1: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स।
2: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
1: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
2: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
1: आप कौन?
3: आरबीआई कहता है,
0: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: श्रोताओं, पेश है मोहम्मद रफी की आवाज में ये तराना, जिसे संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने। रचनाकार हसरत जयपुरी है। फिल्म का नाम है सूरज।

भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ के धमतरी, जशपुर, खैरागढ़

0: भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ के धमतरी, जशपुर, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, कोरबा, महासमुंद, कोंडागांव, रायगढ़, राजनांदगांव, नारायणपुर एवं सूरजपुर जिलों में फसल बीमा योजना खरीफ 2026 मौसम हेतु संचालित की जा रही है। इस योजना में धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, मकई, सोयाबीन, मूंगफली, तुअर, अरहर, मूंग, उड़द, कोदो, कुटकी एवं रागी, मड़वा अधिसूचित फसल का बीमा किया जा रहा है। किसी भी प्रकार की फसल बीमा से संबंधित जानकारी, मार्गदर्शन, सहायता या शिकायत के लिए तुरंत कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन 14447 पर कॉल करें। प्रशिक्षित प्रतिनिधि आपकी सहायता के लिए सदैव उपलब्ध है। 7065514447 पर हमारे फसल बीमा चैटबॉट को केवल नमस्ते या हाय लिखकर संदेश भेजें। चैटबॉट आपको योजना की जानकारी, बीमित फसलों क्लेम की जानकारी तुरंत उपलब्ध कराएगा। बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। फसल हो या कृषि संपदा, बीमा सुरक्षा हमारा वादा। फसल सुरक्षा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
1: श्रोताओं, बरसात के इस सुहावने मौसम में हम लेकर आए हैं राजेंद्र कुमार के इस फिल्म के गीत को। स्वर दिया है मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर ने। आनंद बख्शी के बोलों को सुरों में बांधा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म का नाम है अनजाना।

श्रोताओं, समय आगे बढ़ गया, सिनेमा बदल गया, अभिनय के अंदाज बदल गए, लेकिन कुछ चेहरे कभी भी पुराने नहीं हुए। राजेंद्र कुमार उन्हीं चेहरों में से एक हैं। वो जब भी याद आते हैं तो अपने साथ एक पूरा दौर, अनगिनत यादें और मधुर गीतों की महक भी लाते हैं। तो आइए इसी महक को बिखेरते हैं कार्यक्रम के इस आखिरी गीत के साथ, जो है संगम फिल्म से। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं, गीतकार हसरत जयपुरी हैं, संगीतकार शंकर जयकिशन हैं।

0: कार्यक्रम का आखिरी गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में संगम फिल्म से। इसी के साथ यादों के झरोखे से कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ।
1: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
2: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
1: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
3: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
0: FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज़ हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

0: आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। सरकार ने सदन के सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाव में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माइया संधू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दी। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में अचानक बाढ़ और भूस्खलन से 11 लोगों की मृत्यु, 8 लोग लापता। अमरीका ने 9वीं रात भी ईरान पर हमले किए। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव गहराया और स्पेन ने फीफा विश्व कप जीता। खिताब का बचाव करने उत्तरी अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 दिन के अधिवेशन में सदन की 19 बैठकें होंगी।
2: संसद के मानसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा किया जाएगा। आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा निर्धारित है, जबकि राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा सूचीबद्ध है। इसके अलावा मानसून सत्र के दौरान जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक

0: आयकर संशोधन विधेयक और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पर भी चर्चा किए जाने की संभावना है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इससे पहले सरकार ने कल संसद भवन में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। 40 राजनीतिक दलों के 50 से अधिक नेता इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के पश्चात संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सदस्यों ने जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने सभी दलों से यह अपील की कि वे कार्यवाही को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने में पूरा सहयोग करें। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद अधिवेशन के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और न ही दी गई है। पुलिस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अधिवेशन में समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पेश किया जाएगा।
3: मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कल भोपाल जिले के जगदीशपुर में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में यूसीसी विधेयक 2026 के प्रारूप को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग में कहा,
4: विवाह एक ही लागू होगा, दूसरा विवाह निषेध माना जाएगा। जब तक कि कानून सम्मत रूप से विवाह विच्छेद नहीं हो तब तक दूसरे विवाह परमिशन उसको नहीं रहेगी। उत्तराधिकारी का चयन भी उसी प्रकार से रहेगा। इस कानून के बाद सबको समान रूप से उत्तराधिकारी एक कानून से चलने के लिए बाध्यता रहेगी और एक उत्तराधिकारी में महिला पुरुष का भी अधिकार कम ज्यादा नहीं होगा, दोनों को समान होगा।
3: यूसीसी विधेयक के मुताबिक लिव इन में रहने वालों को एक महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा, साथ ही गाँव स्तर तक शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे बाहर रखा गया है। गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनाओ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माइया संडू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मिलेंगी और मोल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। इसके बाद वे एक व्यापार फोरम को संबोधित करेंगी। मोल्दोवा यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू भारतवंशियों से भी मिलेंगी। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये मोल्दोवा की पहली यात्रा है। श्रीमती मुर्मू इन 3 देशों मोल्दोवा, नॉर्थ मैसिडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति कल नॉर्थ मैसिडोनिया पहुंचेंगी। अमरीका ने लगातार नवी रात भी ईरान पर हमले किए।

0: अमरीकी सेंट्रल कमांड ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये हमले ईरान की उन सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने के लिए जारी रहेंगे जिनका इस्तेमाल होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले के लिए किया जाता है।
1: अमरीकी हमलों से पश्चिमी एशिया में तनाव और गहरा गया है। इससे पहले लगातार आठवीं रात हमलों के दौरान अमरीकी सेना ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था, जिनमें तटीय निगरानी और एयर डिफेंस सुविधाएं, समुद्री क्षमताओं और मिसाइल व ड्रोन स्टोरेज स्थल शामिल थे। अमरीकी सेना ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के उन ठिकानों को भी निशाना बनाया जहां से 17 जुलाई को जॉर्डन में अमरीकी सैनिकों पर हमले किए गए थे। पश्चिमी एशिया में 50,000 से अधिक अमरीकी सैनिक तैनात हैं। पिछले हफ्ते अमरीका ने ईरान के दक्षिणी प्रांतों में सैन्य ठिकानों और बुनियादी ढांचे पर कई हमले किए हैं। अमरीका का कहना है कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस क्षमता को कमजोर करना था जिससे वे हॉर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जलपोतों के लिए खतरा पैदा करता है। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिले में कल बाढ़ और चट्टाने खिसकने से 11 लोगों की मौत हो गई। 8 लोग लापता हैं। कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने स्थिति की समीक्षा की है और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। हिमाचल प्रदेश में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में चेतावनी जारी की गई है।
2: हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की बारिश का दौर लगातार जारी है। बीते 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 82.2 मिलीमीटर वर्षा जिला कांगड़ा के धर्मशाला में दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं ऊना, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला और सोलन जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट तथा बिलासपुर, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि इस दौरान भूस्खलन, अचानक बाढ़ आने और बादल फटने जैसी घटनाएं हो सकती हैं। आज सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: उत्तराखंड में रविवार सुबह से लगातार बारिश हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बारिश से मैदानी और पहाड़ी दोनों इलाकों में जनजीवन पर असर पड़ा है।
3: भारतीय मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और उधम सिंह नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट और रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के अलर्ट के मद्देनजर आज ज्यादातर जिलों में सभी सरकारी और निजी विद्यालय तथा आंगनवाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। भारतीय मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी न्यूज, देहरादून।
0: उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य भर में जनजीवन अस्त व्यस्त है।
4: मुजफ्फरनगर जिले में भारी बारिश के कारण एक पुरानी इमारत गिरने से 4 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई, 5 अन्य लोग घायल हो गए। भारी बारिश ने राज्य की राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में आम जनजीवन को प्रभावित किया है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और कहा है कि मौजूदा मौसम की स्थिति अगले 3 दिनों तक बनी रहने की संभावना है। अगले 24 घंटों में तराई के इलाके और बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क, न्यूजर्सी स्टेडियम में फाइनल में 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। स्पेन के फेरान टोरेस ने अतिरिक्त समय में गोल करके अपनी टीम को 1-0 से जीत दिला दी।
5: फीफा फुटबॉल विश्व कप का इतिहास लिखा जा चुका है। स्पेन ने दूसरी बार पुरुष फीफा विश्व कप अपने नाम कर लिया है। इससे पहले स्पेन ने 2010 में खिताब जीता था। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। इस हार ने अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी के शानदार दौर का भी अंत कर दिया है। मेसी ने अपनी टीम को 2022 फीफा वर्ल्ड कप और 2021 तथा 2024 में कोपा अमेरिका का खिताब जिताया था। टोरेस फीफा विश्व कप फाइनल में गोल करने वाले 5वें ऐसे खिलाड़ी बने जो मैच के अंतिम समय में किसी अन्य खिलाड़ी के स्थान पर टीम में खेले। 48 टीमों के साथ ये अब तक का सबसे बड़ा फीफा विश्व कप था। ये टूर्नामेंट अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में खेला गया। और अगर बात करें पुरुष क्रिकेट की तो इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट पर 387 रन बनाए। भारतीय टीम 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी। इससे पहले भारतीय टीम ने साउथहैम्पटन के रोज बाउल में पहला मैच जीता था। दूसरा मैच कार्डिफ में मेजबान टीम ने जीता।

0: ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर आज से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र और तेज बारिश के कारण जम्मू कश्मीर और लद्दाख में प्रभावित जनजीवन को पटरी पर लाने के लिए जारी बचाव और राहत अभियान की खबरें दिखाई देती हैं। जनसत्ता ने जम्मू कश्मीर के साथ उत्तराखंड और नागालैंड में भारी बारिश से मची तबाही का समाचार सचित्र प्रकाशित किया है। साथ ही आज से शुरू हो रहे मानसून सत्र से पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक को शीर्ष समाचार बनाते हुए लिखा है, सर्वदलीय बैठक में राम मंदिर चढ़ावा चोरी, पेपर लीक और एथेनॉल जैसे मुद्दों पर चर्चा। जापान ओपन जीतने वाली पीवी सिंधु की तस्वीर भी कई अखबारों ने पहले पन्ने पर छापी है। दैनिक ट्रिब्यून ने खबर को शीर्षक दिया है, पीवी सिंधु ने जापान ओपन जीतकर रचा इतिहास। राजस्थान पत्रिका ने इस खबर को शीर्षक दिया है, पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में खत्म किया खिताबी सूखा। लोकसत्ता ने भारत के पहले शब्द संग्रहालय का कोलकाता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय परिसर में उद्घाटन करते केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह का चित्र प्रमुखता से छापा है। पत्र ने दिल्ली हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को भी खबर बनाया है, सोनम वांगचुक को इलाज के लिए उठाना गलत नहीं। दैनिक भास्कर का शीर्ष समाचार है, वांगचुक को सरकारी अस्पताल ले जाना मनमानी नहीं हाईकोर्ट। हिंदुस्तान के ने निजी क्षेत्र के रॉकेट विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण को अपने संपादकीय लेख का विषय बनाया है, शीर्षक दिया है वैज्ञानिकों को बधाई।
0: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर, संसद का मानसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। सरकार ने सदन के सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाऊ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया संडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दे दी है, जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में अचानक बाढ़ और भूस्खलन से 11 लोगों की मृत्यु, 8 लोग लापता। अमेरिका ने नवी रात भी ईरान पर हमले किए और स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। खिताब का बचाव करने उतरी अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट बिगिंस टुडे। गवर्नमेंट सीक्स कोऑपरेशन ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट। President Draupadi Murmu to hold delegation-level talks with the Moldovan counterpart Maya Sandu in Chisinau today. Madhya Pradesh Cabinet approves Uniform Civil Code Bill, tribal communities to be kept outside its purview. Flash floods and landslides claim 11 lives in Rajouri and Poonch districts of Jammu and Kashmir, 8 people still missing. US strikes Iran for 9th night as Strait of Hormuz tensions deepen. And Spain beat defending champions Argentina 1-0 in extra time to win FIFA World Cup 2026. And now the news in detail. The monsoon session of Parliament will begin today. It will continue till 13th of August. The 25-day session will have 19 sittings. A report.
3: During the session, several important bills are expected to be taken up for discussion and passage. Today, the Lok Sabha is scheduled to take up the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026, and the Rajya Sabha is scheduled to discuss the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026. Apart from these bills, Registration of Births and Deaths Amendment Bill, Income Tax Amendment Bill, Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill 2026 are also expected to be discussed during the monsoon session. Anupam Mishra, Akashwani News, Delhi.
2: On the eve of the monsoon session, the government yesterday convened an all-party meeting at Parliament House. The meeting was chaired by Defence Minister Rajnath Singh. Over 50 leaders from 40 political parties attended the meeting. Speaking to media after the meeting, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju urged all political parties to ensure the smooth

कार्यक्रम का पहला छत्तीसगढ़ी लोकगीत आपने सुना भीम यादव की आवाज में। आइए अब सुनते हैं आत्मा कोसा और साथियों के गाए इस छत्तीसगढ़ी लोकगीत को।

कार्यक्रम अमराई आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। आइए पेश करते हैं भीम यादव की आवाज़ में छत्तीसगढ़ी लोकगीत।

0: भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ के धमतरी, जशपुर, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, कोरबा, महासमुंद, कोंडागांव, रायगढ़, राजनांदगांव, नारायणपुर एवं सूरजपुर जिलों में फसल बीमा योजना खरीफ 2026 मौसम हेतु संचालित की जा रही है। इस योजना में धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, मकई, सोयाबीन, मूंगफली, तुअर, अरहर, मूंग, उड़द, कोदो, कुटकी एवं रागी, मड़वा अधिसूचित फसल का बीमा किया जा रहा है। किसी भी प्रकार की फसल बीमा से संबंधित जानकारी, मार्गदर्शन, सहायता या शिकायत के लिए तुरंत कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन 14447 पर कॉल करें। प्रशिक्षित प्रतिनिधि आपकी सहायता के लिए सदैव उपलब्ध है। 7065514447 पर हमारे फसल बीमा चैटबॉट को केवल नमस्ते या हाय लिखकर संदेश भेजें। चैटबॉट आपको योजना की जानकारी, बीमित फसलों क्लेम की जानकारी तुरंत उपलब्ध कराएगा। बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। फसल हो या कृषि संपदा, बीमा सुरक्षा हमारा वादा। फसल सुरक्षा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। हमारी स्टूडियो की घड़ी में अभी समय हो रहा है 8:47 और 5 सेकेंड। आइए सुनते हैं आत्मा कोसा की आवाज़ में इस छत्तीसगढ़ी लोकगीत को।

0: भीम यादव नीलिमा जॉन के गाए इस छत्तीसगढ़ी लोकगीत के साथ ही कार्यक्रम अमराई यहीं संपन्न हुआ।
1: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
2: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
3: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
2: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
3: आकाशवाणी से।
4: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
0: ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 MHz पर। सुबह के 9 बजने वाले हैं। अब हम रिले करेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और आप हैं अपने दोस्त राजेश के साथ प्रोग्राम चित्रलोक में।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे माधुरी दीक्षित, स्नेहलता दीक्षित और अनुपमा राग की आवाजों में एक पारंपरिक रचना जो गुलाब गैंग फिल्म की थी। और दोस्तों, आज है अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस यानी इंटरनेशनल मून डे। प्रतिवर्ष 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस इंटरनेशनल मून डे मनाया जाता है। ये दिवस 20 जुलाई 1969 को मानव द्वारा पहली बार चंद्रमा पर सफलतापूर्वक कदम रखने की ऐतिहासिक उपलब्धि की स्मृति में मनाया जाता है। इसी दिन अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने अपोलो 11 मिशन के माध्यम से चंद्रमा की सतह पर उतरकर मानव इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। इस दिवस का उद्देश्य चंद्र अन्वेषण, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना है। चंद्रमा सदियों से मानव की जिज्ञासा, कल्पना और वैज्ञानिक अनुसंधान का केंद्र रहा है। प्राचीन काल में इसे केवल आस्था और साहित्य का विषय माना जाता था, है ना? किंतु आधुनिक विज्ञान ने इसे अनुसंधान का महत्वपूर्ण क्षेत्र बना दिया है। आज अनेक देश चंद्रमा पर जल, खनिज संसाधनों तथा भविष्य में मानव बस्तियां बसाने की संभावनाओं का अध्ययन कर रहे हैं। भारत ने भी चंद्र अन्वेषण में उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त की हैं। चंद्रयान 1 ने चंद्रमा पर जल अणुओं के परमाणु को खोजकर विश्व को नई दिशा दी, जबकि चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग ने भारत को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरने वाला विश्व का पहला तथा चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला चौथा देश बना दिया। इन उपलब्धियों ने भारतीय वैज्ञानिकों की प्रतिभा और देश की वैज्ञानिक क्षमता को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया। ये दिवस युवाओं में वैज्ञानिक सोच, नवाचार और अंतरिक्ष अनुसंधान के प्रति रुचि उत्पन्न करने का भी प्रेरक अवसर प्रदान करता है। इस वर्ष की थीम है वन मून वन विजन वन फ्यूचर। चित्रलोक कार्यक्रम अभी आप सुन रहे हैं। भारत विद भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से। और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए सुखिंदर सिंह और KMMC सूफी

0: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
1: वो तेरे प्यार का।
0: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
2: मुबारक हो सबको समाय सोहा।
0: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
3: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
0: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
4: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।
5: होठों

0: है
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
2: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
3: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
5: चित्रलोक, ये कार्यक्रम जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए सुनिए सुनिधि चौहान की आवाज में दिल धड़कने दो फिल्म का गाना, जावेद अख्तर के हैं बोल और तर्ज बनाई है शंकर एहसान लॉय ने।

दोस्तों, आज विश्व शतरंज दिवस है, यानी वर्ल्ड चेस डे। प्रतिवर्ष 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस वर्ल्ड चेस डे मनाया जाता है। ये दिवस वर्ष 1924 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना की स्मृति में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2019 में इस दिवस को आधिकारिक मान्यता प्रदान की। इस दिवस का उद्देश्य शतरंज के खेल को विश्व भर में लोकप्रिय बनाना, बौद्धिक विकास को प्रोत्साहित करना तथा विभिन्न देशों के बीच मैत्री और सहयोग की भावना को सुदृढ़ करना है। इस वर्ष की थीम है सेलिब्रेट क्रिएट एंड मेक अ डिफरेंस। चित्र लोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरील धड़कन से। लीजिए सुनिए मंच म्यूजिक हरवी सहारा और नेहा कक्कर की आवाजों में गुड न्यूज फिल्म का ये गाना।

स्वतंत्रता पूर्व भारत के बंगाल प्रांत का फरीदपुर, आज ये स्थान बांग्लादेश में है। यहीं समृद्ध जमींदारी थी देवेंद्रनाथ घोष राय चौधरी और उनकी पत्नी अमिया देवी की। 23 नवंबर 1930 को इनके घर जन्म लिया गीता घोष राय चौधरी ने। सन 1940 की शुरुआत में देवेंद्रनाथ का परिवार कोलकाता और आसाम स्थानांतरित हो गया। 1942 में गीता रॉय के माता पिता मुंबई के दादर स्थित एक अपार्टमेंट में रहने आ गए। युवा गीता रॉय ने गायन की बारीकियां सीखी के हनुमान प्रसाद जी से। उन्हीं के संगीत निर्देशन में सन 1946 में गीता रॉय ने 16 बरस की उम्र में फिल्म भक्त प्रहलाद के लिए पार्श्व गायन किया। सन 1947 में गीता रॉय को गायन का अवसर मिला फिल्म दो भाई में, और इस फिल्म के जिस गीत ने गीता रॉय को रातों रात मशहूर कर दिया वो गीत था ये।

1947 में ही गीता रॉय ने अपने संगीत गुरु हनुमान प्रसाद जी के संगीत निर्देशन में फिल्म रसीली के लिए पार्श्व गायन किया। गीता दत्त जी की गायकी, उनका अंदाज बहुत अनूठा था। स्वर में भावों की अभिव्यक्ति की अद्भुत क्षमता थी। मिठास और मादकता उनके स्वर की विशेषता है।

गीता जी के स्वर में उम्र जैसे ठहर जाती है। लहकता बहकता उनका स्वर जब कानों से भीतर उतरता है तो तन मन भी लहकने बहकने लगते हैं।

फिल्म बाजी के गीतों की रिकॉर्डिंग के दौरान गीता जी अभिनेता, निर्माता और निर्देशक गुरुदत्त के संपर्क में आई और 26 मई सन 1953 को दोनों ने विवाह कर लिया और गीता रॉय गीता दत्त हो गई।

हिंदी सिनेमा के अलावा गीता दत्त जी ने बांग्ला की कई सफल और लोकप्रिय फिल्मों में भी पार्श्व गायन किया। गीता दत्त संगीतकार ओपी नैयर की भी बहुत ही प्रिय गायिका थी। ओपी नैयर जी ने गीता दत्त से कई यादगार गीत गवाए।

अभी हम रिले कर रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 9:55 होने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू होगा। रामनामी समुदाय पर आधारित फिल्म को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का राष्ट्रीय सम्मान मिला। मुख्यमंत्री ने इसे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय बताया। और मौसम विभाग ने आज मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। अब समाचार विस्तार से। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू होगा। ये सत्र अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जाएगी। मानसून सत्र शुरू होने से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन भी उपस्थित थे। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत परिवहन क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 12 पायलट परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत 70 हाइड्रोजन चलित भारी वाहनों को तैनात किया जाएगा और 16 हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशनों द्वारा इन्हें सहायता प्रदान की जाएगी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये पायलट परियोजनाएं देश भर के कई रणनीतिक मार्गों को कवर करते हुए भारत के राजमार्गों और शहरी परिवहन गलियारों में शून्य उत्सर्जन गतिशीलता का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। रामनामी समुदाय के जीवन, आस्था और सांस्कृतिक विरासत पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म रामनामी को 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का सम्मान मिला है। इसका निर्देशन प्रसिद्ध फिल्मकार भरत बाला गणपति ने किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डॉक्यूमेंट्री फिल्म रामनामी को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का राष्ट्रीय सम्मान मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे पूरे प्रदेश के लिए गौरव का विषय बताया है। नारायणपुर जिले में एक दिवंगत आरक्षक के परिवार से 19 लाख रुपए की वसूली के आरोप में पुलिस ने तत्कालीन थाना प्रभारी सुरेश चंद्र यादव को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। इस मामले में एक अन्य आरोपी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। मिली जानकारी के अनुसार सड़क दुर्घटना में डीएसएफ आरक्षक की मृत्यु के बाद पत्नी को मिले 1 करोड़ रुपए के दुर्घटना बीमा दावे में कथित अनियमितता और अवैध वसूली की गई थी। मौसम विभाग ने आज मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। वहीं प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और उससे लगे दक्षिण छत्तीसगढ़ के ऊपर एक चक्रवाती घेरा बना हुआ है। इसके असर से प्रदेश में बारिश की गतिविधियां तेज हुई हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर बारिश हुई है। वहीं एक दो स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की गई।

है। जशपुर जिले के सन्ना थाना क्षेत्र के कोदोपारा में खेत की जुताई के लिए जा रहा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गया। हादसे में ट्रैक्टर चला रहे वाहन चालक सहित दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में चालू शैक्षणिक सत्र के लिए बीटेक कृषि अभियांत्रिकी और बीटेक खाद्य प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन यूजी काउंसलिंग के प्रथम चरण के पंजीयन की आज अंतिम तिथि है। विश्वविद्यालय के अनुसार पात्र अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची 23 जुलाई को जारी होगी, जबकि 24 से 30 जुलाई तक सीट आवंटन, दस्तावेज सत्यापन और प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जाएगी। प्रवेश से संबंधित विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू होगा। रामनामी समुदाय पर आधारित फिल्म को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का राष्ट्रीय सम्मान मिला। मुख्यमंत्री ने इसे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय बताया। और मौसम विभाग ने आज मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप 11:55 पर सुन सकते हैं। नमस्कार।

0: प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। सुबह के 10 बजे हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम तुहर गोठ हमर गीत। प्रस्तुत करता है श्वेता पांडे।
1: जय जोहार संगवारी हो। सावन के रिमझिम फुहार मन जिहां धरती ला हरियर बना देते, वही भारी बरसात ह कई जगह मुश्किल घलो खड़ा कर देते। बिलासपुर सहित छत्तीसगढ़ के अव इलाका में लगातार पानी गिरे हवय अव जल भराव की स्थिति घलो बने है। ऐसने समय मा आप मन सावधानी बरतो, अनावश्यक यात्रा ले बचो और अपन परिवार के संग में सुरक्षित रहो। आप मन के कुशलता और सुख शांति के कामना के संग चलो अब शुरू करथन आज के तुहर गोठ हमर गीत कार्यक्रम। मैं हूँ आप मन के रेडियो मितानिन श्वेता पांडे और एक कार्यक्रम निर्माण में तकनीकी सहयोग दिए हवे गौरी शंकर कौशिक जी मन। तो जतका भी हमर श्रोता संगवारी मन फोन करे है तिखर गोठ बातला आप मन ला सुनवावथन।
2: हेलो,
1: कार्यक्रम तुहर गोठ हमर गीत मा स्वागत है आप मन के।
2: मोरो भरे राम राम दीदी, जय जोहार।
1: जय जोहार भैया, राम राम। अपन सुघर नाम बता देवा और कहाँ ले बोलत हो तेनो ला बता देवा।
2: हाँ, मैं आप मन के मयारू संगवारी आवा और परमानेंट हमेशा मोर चिट्ठी पत्री आपके केंद्र में जावत रही थे। मैं बेमे तरह ले बोला था, सुरेश कुमार सारथी।
1: सुरेश भैया, का हाल चाल है आप मन के?
2: बहुत बढ़िया। हाँ दीदी, आप मन के सब मैं सब आशीर्वाद लगे है। बढ़िया बढ़िया आवन घर परिवार सहित। पानी कांजी के तो मौसम हवा है, पानी कांजी गिरत है, एक रिमझिम रिमझिम फुहार के मजा लेवा था दीदी।
1: तो वहाँ के पानी की स्थिति ज्यादा हवा है कि मतलब कम गिरत है पानी? अभी
2: कम गिरत है दीदी, और लिमिट में हवा है।
1: हाँ,
2: और ज्यादा परेशानी नहीं है। अमन तो देखे हम मोबाइल में के बिलासपुर में भारी वर्षा के कारण कई जगह पूरा पानी से भरे हुए लबालब।
1: हाँ,
2: वैसा स्थिति हमारे तिब्बे में तरम नहीं है। खेती बाड़ी के पूर्ता पानी गानी हो गए है, अब वही के काम रुके रही से तेरा। हाँ, फिर चालू हो गए है।
1: तब तो बढ़िया है, आप मन के क्षेत्र में सही सही पानी गिरत है, मतलब जत का जरूरत है उतका ही बरसात हो रहा है।
2: जरूरत के पूर्ता हवा पानी है दीदी।
1: और
2: अभी ये बढ़िया हमन सुगर पेड़ उड़ लगाए हवन, 3 खन पेड़ लगाए हैं बर पीपर और लीम के। एक देख रेख ला हमन करत हन परिवार सहित। मैं तो कार ड्राइवर आदमी हूँ।
1: अच्छा।
2: अब मैं निकल जाता हूँ बाहर गाड़ी लेके दीदी, तो लड़का मन सेवा जतन ला अपन करते।
1: बहुत बढ़िया है भैया, बहुत अच्छा काम करते हो आप। आप मन के लेका मन भी ये काम ला करत है, पौधारोपण करत है, तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। तो इसने आप मन सुख शांति से अपन जीवन ला बिताओ, यही कामना है हमर।
2: बहुत बहुत धन्यवाद है दीदी, और हम और सारथी परिवार को तिले आप मन बहुत बहुत गाढ़ा गाढ़ा।

0: बधाई घलो के आपके केंद्र के सबो जन बढ़िया सुग्घर रहा है, भगवान से ही कामना करत हन दीदी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद है भैया, और फोन लगाए भर भी बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के, इसने मया पीड़ित बना के हमन ला फोन करत रही है आप मन।
0: बिल्कुल बिल्कुल दीदी,
1: जय जोहार भैया।
2: हेलो,
1: जय जोहार, राम राम।
2: जय जोहार, राम राम। नर्मदा धाम ग्राम सुरसुली पोस्ट नंद जिला बालू में कैलाश यादव बोला था।
1: का हाल चाल है भैया?
2: बस बढ़िया है, दे पानी वानी गिरा थे, बोई वही हो गए है।
1: हाँ हाँ,
2: बस निंदाई कोड़ाई चला थे। अब
1: खेती किसानी करता हो?
2: नहीं, मोर गांव दुकान है किराना के, मैं किराना दुकान करता।
1: अच्छा, और कौन कौन है घर में भैया आप मन के?
2: दो लड़का है, एक लड़की की शादी हो गई, लड़का मन भी पोस्ट ग्रेजुएट है, ओकर मम्मी हवे, चाय परिवार हवा। अभी तो लड़का मन के तैयारी चला थे, शादी भर भी हवे, सब निपट हूँ, क्योंकि उम्र हो गए, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, सब जॉब के तैयारी करा था हूँ मन।
1: हाँ,
2: बी एड के परीक्षा दिवाए हो गए भिलाई।
1: अच्छा, पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है।
2: हाँ हाँ,
1: अपन खुद के व्यवसाय करो, लेकिन पढ़ाई लिखाई शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है।
2: हाँ, मैं 85 मैट्रिक वाला हूँ, पुराना मैट्रिक में हूँ, जॉब आप करत रहे बोले ग्रुप में, अपन खुद के रोजगार अपन करें, मैं 85-86 में।
1: हाँ हाँ हाँ,
2: और चला थे जीवन यापन बढ़िया।
1: कौन कौन सा कार्यक्रम हमारा अपन ला पसंद आते तेन ला बता देवा हमन ला?
2: ये माटिक स्वर वगैरह ज्यादा सुनत रहे हम।
1: अच्छा,
2: ऐसे सब कार्यक्रम फोन इन फरमाइश वगैरह सबो कार्यक्रम सुनते हैं, सबो कार्यक्रम पसंद है। आकाशवाणी कार्यक्रम हम मनोरंजन की नहीं है, शिक्षा प्रद है, प्रेरणादायक है, सबो प्रकार के ज्ञान देते हैं आकाशवाणी है।
1: बहुत बढ़िया लगे से आप मन से गोट बात करके भैया, है ना। अब देख लेते ना हमार और जिन आप मन के श्रोता मितान मन है तेन हाँ फोन कर ही अभी और बातचीत भलो कर वो हमन। हाँ, राम राम भैया।
2: राम राम जोहार।
1: हेलो
3: हेलो,
1: कार्यक्रम तुहर गोट हमर गीत में स्वागत है आप मन के।
3: स्वागत दीदी, मैं ग्राम लोटना पारा ले मेघनाथ पटेल बोला था।
1: का हाल चाल है मेघनाथ भैया?
3: बस दीदी, अब चला थे काम धाम नागर बखर।
1: हाँ हाँ,
3: बने दिन के बाद लगे दीदी।
1: आप ही मन के सब संगवारी मन है, श्रोता भाई बहनी मन जिन मन फोन लगात रही थे लगातार तो आप मन ला मौका नहीं मिल पावे।
3: डेली नागर के बारे से थोड़ा बता था दीदी।
1: हाँ हाँ हाँ,
3: ये मेला बैठ थे हमारे नीलागर नदी जो तुम्हारी बिलासपुर में मिले हवा एक हारून मेरा जाके।
1: हाँ हाँ,
3: तो वह बांधा खार से निकले है और हमारे लोटना पारा होते हुए ऐसे करके वह निकलते।
1: अच्छा,
3: तो चंगोरी होते हुए ना हारून नदी मिले है, तो सियान मन बताते हैं पहली लीलागर कैसे नाम पड़ी थी के ना।
1: अच्छा,
3: तो लीलावती और आगर नाम करी थे दोनों जन।
1: अच्छा,
3: तो मेरा बंधात निरीज का थे बांधा खार वाला है, तो फूट जिस ना तो हाँ हमारे गाँव में लोटना पारा उतरदा माँ उमन पोहात पोहात आई तो हाँ एक एक बार रही तो हाँ वही मनोदे एक सती के नाम से हवा है आगर लीलागर नदी इसे कथे वही हम मिले दीदी मेला बैठे हर साल।
1: तो ऐसे सियान मन के कहे के अनुसार ये वाले जिन बात हवा है।
3: और आजकल तो बढ़िया अब सब बात हम सुनल मिलते दीदी। मैं तो इमावेश मना दूसर दूसर को मिला यूट्यूब में माने डाउनलोड करके ना भेजता हूँ दीदी दूसर कर सुनाता हूँ।
1: अच्छा जानकारी मिली से आप मन के माध्यम ले।
3: हाँ, रेडियो सुरे से शांति एक मिल थे मस्त।
1: हाँ,
3: जो अकेला पर सास दे है दूर हो जाते है, एक दोस्त से ही लगते गुरु एक मानता में है रेडियो ला। कावर बहुत दिन से जुड़े हुए हैं सन 95-96 से ना टेलर हूँ कावर कपड़ा सिला तो अकेला फन है बोला सास नहीं हो रेडियो रहते तो
1: नहीं। बात तो सही है, रेडियो सुना सुना तो आप जिन बाकी के काम है तेनला भी कर सकते हो आसानी से।
3: हाँ, लेकिन रेडियो सुना सुना तो अब पता नहीं चला ना टाइम क्या।
1: सही बात बोले तो आप।
3: हाँ, जो पानी है बढ़िया गिरत है मस्त।
1: हाँ
3: हाँ, आसी शुरू करे हम।
1: ठीक है भैया, तो इसे पानी गिरत है, लेकिन ज्यादा अगर पानी गिरे तो अपन अपन जत का परिवार है आस पास है तेन मन ला सुरक्षित रखे पर भी प्रयास करी।
3: हाँ दीदी,
1: ठीक है। राम राम भैया, जय जोहार।
3: राम राम, जय जोहार।
4: हेलो,
1: कार्यक्रम तुहर गोठ हमर गीत कार्यक्रम में आप फोन लगाए हो तो अपन।
3: जय राम दीदी।
1: जय राम भैया, अपन सुग्घर नाम बता देवा।
3: रोशन देवगन बोला था, बिलाई गढ़ ले।
1: का हाल चाल है आप मन के रोशन भैया?
3: बस बढ़िया है, झक्कर पानी चलत है।
1: हाँ का स्थिति है तो बिलाई गढ़ में अभी?
3: नहीं ठीक है, स्थिति ठीक है, पानी गिरा था लेकिन थोड़ा थोड़ा गिरा था पानी, एकदम ज्यादा नहीं गिरा थे।
1: हाँ
3: स्थिति अभी ठीक है, जैसे आप मन के बिलासपुर मस्तूरी पामगढ़ को थी हावे ना।
1: हुँ।
5: देखा था टीवी में समाचार में इंस्टाग्राम में उतना स्थिति नहीं, हमारे यहाँ ठीक ठाक बढ़िया है
1: अभी तो। बिलासपुर में भी थोड़ा सा सामान्य स्थिति

0: होगे, 2 दिन तो लगातार बहुत ज्यादा परेशानी हुए है जतका भी
1: हाँ
0: लोग
1: हाँ
0: है
1: देखा था
0: वहाँ का।
1: समाचार में, देखा था बताते हैं। हाँ,
0: बिलाईगढ़ के बारे में बतावा कुछ हो, अपन बारे में बतावा कुछ हो, कोट बात का है आप मन के।
1: अब बस सब ठीक ठाक है। बिलाईगढ़ में रथ यात्रा मनाए हन 16 तारीख के, और हमारे यहाँ राजमहल से निकलते हाँ
0: हाँ बताए रहे हो आप। हाँ
1: रथ यात्रा है, वही लग शुरुआत होते पहली, ओकर पूरा नगर भ्रमण करके फिर अपन स्थान में चले जाते हैं। ऐसे पहले तो 2 बार होते, जैसे अभी एक हफ्ता में होते ना, वापसी होते तो
0: अच्छा।
1: अब एक ही बार होते, अब वहाँ वो दोबारा नहीं होते, लेकिन पहले 2 बार हो। अब बाकी तो बढ़िया ठीक ठाक है, काम बोलते रहते हमन के, और काम बूता करत था अपन के चैनल सुनत रहते। हाँ
0: फोन लगाए पर बहुत बहुत धन्यवाद आपके भैया।
1: जय
0: जय जोहार, राम
1: जय
0: राम।
1: जय राम जय राम। हेलो,
0: हेलो हेलो, कार्यक्रम तुहर गोठ हमर गीत मा स्वागत है।
1: हाँ दीदी, मोर माया भरे राम राम।
0: आपो मनला राम राम, जय जोहार भैया।
1: मैं नवागढ़ कटाई जिला बेमेतरा ले नारायण प्रसाद वर्मा बोला था वहाँ दीदी।
0: नारायण भैया,
1: हाँ दीदी, अब देख रहे थे कस के पानी गिरी सावा, 2 दिन हो गए झड़ी करे है, और खेत खार मन तो बने छलका भागेल धर ली दीदी, और धान जेना भी अभी बोए रहे हैं, रोपा लगा रहे हैं, वो मल्ला नुकसान हो गए दीदी। काबर बोता धान है तो सड़ गए दीदी, कुछ तो बह गए। हाँ
0: अरे
1: दीदी, हाँ बाकी अभी और रोपा लगाए बर बाकी है दीदी, तो समय च नहीं मिलते। ऐसे हमारे बरसा रानी हमल अभी बरसा मत है। हाँ दीदी, हाँ
0: बहुत परेशानी है भैया। कई जगह तो सही है, कई जगह बहुत ज्यादा परेशानी है।
1: हाँ ना दीदी, हाँ कई जगह पानी कमी है, वो मल्ला पानी मिला थे बढ़िया है दीदी। और हमारे यहाँ कहाँ है दीदी पानी है, और कुछ दिन पहले 3-4 दिन के फिर झड़ी करे रही से, ओकर बाद 2 दिन हो गए फिर पानी गिरा दीदी लगातार। कहाँ है दीदी, खेत खार में नुकसान है, घर कुरिया मन घलो सिपेज हो जावा थे दीदी, है ना।
0: अरे अपन अपन ख्याल रखा भैया, सुरक्षित
1: हाँ
0: जगह
1: दीदी,
0: में
1: हाँ
0: रहो आप मन सब जन,
1: हाँ हाँ
0: है
1: दीदी,
0: ना। जैसे
1: हाँ
0: ज्यादा पानी अगर गिरत है, और प्रशासन जिन है तेन है चेतावनी भी देवत है।
1: हाँ हाँ दीदी, हाँ सुरक्षित रहे के, खान पान ध्यान रखे के, ये जम्मो बात ला आपके रेडियो ले सुनत रही थन दीदी हमन, है ना, डॉक्टर के सलाह में सब कि कैसे हमला खान पान रहना है करना है, और अभी बरसात के मौसम में कैसे रहना है, कुछ कहा है सर पर बिच्छू के भी डर रहे थे दीदी, तो
0: बहुत
1: उन
0: ज्यादा।
1: देख
0: हाँ
1: ताक के चलना फिरना है,
0: काबर उमन
1: ऐसे
0: के
1: सब
0: बिल मा, उमन
1: जानकार।
0: के घर में तो पानी घुस जाते, तो उमन कहाँ जाही,
1: हाँ
0: उमन फिर हमर घर के अंदर आते।
1: हाँ दीदी, हाँ, तो यही जम्मो बात ला हमन रेडियो ले सुन के अपन जरूर ख्याल रखत रहते हैं दीदी, है ना, कि हमला कैसन रहना चाहिए। तो का है तरह तरह के दे बीमारी घलो चालू हो जाते दीदी, पानी
0: अभी हाँ
1: के
0: पानी के
1: प्रदूषित
0: कारण
1: पानी
0: सबसे ज्यादा
1: कारण।
0: डायरिया जिन है,
1: हाँ
0: पीलिया
1: हाँ
0: है,
1: दीदी,
0: डायरिया है, ये सब चीजें जिन है फैलत है अब धीरे धीरे।
1: हाँ हाँ दीदी, हाँ
0: ठीक है, अपन सेहत के ख्याल रखा भैया, है ना, खान
1: हाँ
0: पान में
1: दीदी,
0: नियंत्रण
1: हाँ
0: करके।
1: हाँ दीदी, हाँ
0: ठीक है, बहुत बढ़िया लगी से आपसे गोट बात करके भैया।
1: हाँ दीदी, हाँ
0: राम राम
1: आपको मन के
0: भैया,
1: मीठ मीठ भाषा में दे गोठान दीदी, आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद, जय जोहार।
0: जय जोहार भैया। आओ आगू जिन श्रोता संगवारी है तेन मन से गोट बात करे की पहली सुनवावत हन गंगाबाई के गाए ए सुघर असन गीतला।

0: हेलो।
1: हेलो भैया, आवाज आवत है। राम राम, जय
0: हाँ,
1: जोहार।
0: राम राम मैडम।
1: आराम से आवाज आवत है मोला।
0: अच्छा, जी मैडम।
1: हाँ, तो कार्यक्रम तुहर गोठ हमर गीत माँ स्वागत है आप मन के। अपन सुगर नाम आउ कहाँ ले बोला था तेन ला बता देवा हमन ला।
0: मैडम, मैं जितेंद्र दास मानिकपुरी बोला था मैडम। गणेश धाम पारचुली है मैडम, जिला बालोद है मैडम।
1: का हाल चाल है जितेंद्र भैया?
0: मैं कुशल मंगल हूँ मैडम, तुम्हारा कार्यक्रम सुनता हूँ और कुशल मंगल हो जाता हूँ।
1: छत्तीसगढ़ी कार्यक्रम है भैया, तुहर गोठ हमर गीत छत्तीसगढ़ी में गोठिया हा। और मैडम झन बोला, दीदी बोल देवा तो ज्यादा अच्छा लगी हमला।
0: हाँ दीदी, मैं
1: हाँ
0: जी मैडम, जी जी दीदी
1: तो जितेंद्र भैया का करता हो आप?
0: दीदी, मैं हाँ ऑफिस काम करता हूँ दीदी, लेस मशीन चलाता हूँ दीदी,
1: अच्छा।
0: लाल अक्षर सीखता हूँ यहाँ। आओ गेयर बंद है दीदी, हमारे
1: हाँ
0: कंपनी में आओ कमाथन की। हाँ, सब प्रकार के गाड़ी मोटर वाले, लोहा
1: ठीक है बढ़िया।
0: अक्षर वाले आइटम सब बनते हैं। गेयर है, एक्सल है, नट बोल्ट आइटम
1: ठीक है बढ़िया काम करता हो
0: बनाता
1: आप।
0: ना बना।
1: अच्छा काम करता हो भैया।
0: कार्यक्रम सुना तो था दीदी तुम्हारे।
1: हाँ कामा सुनतो कार्यक्रम ला, मोबाइल मा धन की रेडियो धरे हो अलग से।
0: अब रेडियो तुम्हार तुम्हार दूरिया पार जाते, मोबाइल ऐप न्यूज आज में चला था दीदी।
1: अच्छा,
0: आओ
1: बहुत
0: रायपुर
1: बढ़िया।
0: केंद्र चलते भले रेडियो में हमारे पूरी तीर पर थे। हाँ
1: अच्छा, तो बिलासपुर केंद्र ला आप मन मोबाइल के ऐप में सुनतो।
0: हाँ अभी पूरा चला थे दीदी, कैसे अभी मोबाइल ऐप में भी बाकी केंद्र मन नहीं चला थे, कहाँ हो
1: अच्छा,
0: गए थे।
1: कुछ समस्या आए हो ही?
0: बाकी तुम्हारे बराबर चला थे बिलासपुर। हाँ
1: ठीक है तो बढ़िया, बिलासपुर केंद्र ला भी सुनाओ।
0: हाँ बराबर सुना था, हित में अभी ज्यादा भीड़ है।
1: हाँ ठीक है जितेंद्र भैया, बहुत बढ़िया लगी से गोट बात करके आप मन से।
0: हाँ दीदी, हाँ दीदी,
1: आओ देखा था ना, बगला श्रोता जिन फोन लगाइया है तेन कौन हवे।
0: हाँ बहुत बहुत धन्यवाद दीदी।
1: राम
0: हाँ
1: राम
0: हाँ
1: भैया।
0: राम राम दीदी।
1: हेलो,
0: हेलो,
1: कार्यक्रम तुहर गोठ हमर गीत माँ आप मन फोन लगाए हो।
0: जय सिया राम बहन जी, जय सिया राम। पवन
1: जय सिया राम भैया, का
0: कुमार सेन बोला तो गंडई पंडरियाले। बहुत
1: हाल चाल है पवन भैया?
0: सुंदर, एक नंबर है। किसानी खेती बाड़ी काम है हमारे डहर एकदम भदरा है,
1: हाँ।
0: और मोन मिस्त्री काम है तभी फिर हाल बंद है, बनिहार नहीं मिलते घर से, चुपचाप घर में खुश रहे थो। और संग में आकाशवाणी बिलासपुर के कार्यक्रम रहे थे, ध्यान लगा सुनत रहे थो।
1: एक काम मिली से ना आप मन के।
0: आप मन हो श्वेता पांडे बोला तो ऐसे लगा
1: बिल्कुल श्वेता पांडे ही
0: थे।
1: बोला था भैया,
0: आप मन के गुरतरहा आवाज है, बिल्कुल पहचान में आ जाते। बताओ
1: अतका ध्यान से सुनता हूँ आप मन आकाशवाणी ला, कि जतका प्रस्तोता सबके आवाज ल चीन ले।
0: बिल्कुल।

0: था आप मन
1: अब काय आप मन के जम्मो झन के जन आवाज है मदन पांडे महावीर भैया के और मानस तिवारी श्वेता पांडे अंतरा ये जम्मो झन के जन सुंदर सुंदर आवाज है ना हमारे मन में मस्तिष्क में पूरा समाज है बहन जी
0: बहुत बढ़िया भैया बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के अतका ध्यान ले सुने पर हमला
1: अब यही तो कहा अंतस के माया है माया लगा जब सुनता ना तो माया की बोली है हमारे अंतस में तक समाज रही थे
0: हाँ तो इसने माया प्रीतला बना के रखिया हमर पर
1: बिल्कुल बिल्कुल और सदा बनाया हवन अब यदि आकाशवाणी बिलासपुर के आनी वानी के निक निक कार्यक्रम सुनत रिथन पर सुंदर लगते आप मन के कार्यक्रम हाँ।
0: पूरा कार्यक्रम जिन बनते थे नापे मन बर तो बनवा था ना
1: बिल्कुल बिल्कुल बहुत सुंदर लगते अब एकदम अमृतमय वाणी से प्रस्तुत करते तो एकदम दिल गदगद हो जाते सुने के बाद में
0: तो जैसे आप मन माया प्रीत बना के सुनता हो हमारा आवाज ला वैसे हमन भी अपन माया के संग में बोलते ना आप मन पर
1: बिल्कुल बिल्कुल अब एक आकाशवाणी बिलासपुर परिवार कहे दिल से धन्यवाद देवा तुम्हें
0: बहुत बहुत धन्यवाद है भैया आप मन के आप मन अतका ध्यान लगा के सुनथो गुनथो और कुछ गोट बात हवे भैया बताओ बोला
1: गोट बात तो सब ठीक है अब कहा गोट बात करो बड़ सुंदर लगते मैं जब का तारीफ करो आकाशवाणी बिलासपुर के उसका कम हवे और मोर तीर कुछ तक नहीं देख खातिर एक हम छोटे से शब्द हवे आप मन धन्यवाद दे सकत हूँ
0: बहुत बड़े शब्द है इसने फोन लगा के भी अपन माया प्रीत बना के रखिया हमर पर
1: बिल्कुल बिल्कुल सदा बने रही और हम जब तक जियत रिबो तब तक आकाशवाणी बिलासपुर खातिर माया लगा सुनत रिबो और हम कभी नहीं छोड़न
0: ठीक है भैया बहुत अच्छा लगी से गोट बात करके अब देखा था अगला जिन श्रोता है हमार तेन कौन है जिन अपन का गोट बात लेके आए है
1: चल बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता बहन जी धन्यवाद
0: धन्यवाद भैया राम राम जय जोहार
1: राम राम जय जोहार राम राम
0: हेलो
2: हेलो नमस्कार मैडम मैं छिदमिरी कुरासिया कॉलरी से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ
0: इंद्रभान भैया का हाल चाल है
2: ठीक है दीदी और यहाँ तो मौसम गजब का करी से बादल करी पानी गिरी से और उसके बाद लाइटिंग बादल है बादल तरीके चलत है कुछ जानकारी दे चाहता हूँ कि अभी बरसात के दिन है तो ग्रामीण भाई मन मतलब जैन पर न सोए और सोए भी तो कम से कम वहाँ पर लाइट जला लें और थोड़ा सा देख लें कहीं पर छेदा होता है तो बंद कर दें कहीं पर पे वो जो घर छानी अगल बगल पेड़ पौधा है तो के हटा दें हो सकते सांप भूत जाए करे सांप भूत जाए काट दे तो हो सकते मृत्यु हो जाए या फिर झाड़ फूक ना कराए और बिच्छू भी काट सकते है तो ये सब बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है और बिस्तर भी सोत है तो कम से कम दूरी बनाकर सोए और सांप अपना चढ़ पाए तो ये सब बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है
0: बिल्कुल बहुत जरूरी है आप ये बतावा जैसे चिरमिरी जिन कुरासिया कॉलोनी में आप रही था तो वहाँ पानी की क्या स्थिति है
2: वो कालदी क्षेत्र है
0: हाँ?
2: तो जैसे गाँव वाँव में जैसे तालाब वालाब रहते तो वहाँ जैसे वो में भरल थे और नदी वदी में जो पानी भरा हुआ रहते वहाँ
0: जनधन में कोई नुकसान तो नहीं है
2: जल तो वहाँ पर नहीं है वही नदी वदी में रहते और तालाब वालाब में रहते वहाँ ज्यादातर
0: हेलो
3: हेलो
0: कार्यक्रम तुहर गोट हमर गीत माँ लगे है आपके फोन
3: जय राम दीदी
0: जय राम भैया अपन सुखर नाम बतावा
3: ग्राम पंचायत रोहरा कला से संतरा मिठाई बोला था दीदी विकट दिन के बाद लगे हैं
0: कौन मेरे पढ़ते आप मन के गाँव
3: सरगाँव पथरिया के बीच में हवा दीदी
0: अच्छा सरगाँव पथरिया के बीच में रोहरा कला
3: बड़े बड़े बाजार भरा थे शनिवार के
0: का करते हो संतराम भैया
3: मैं ऐसे कई का जन मिठाई मिठाई काम करता हूँ खेती किसानी भी करता हूँ
0: अच्छा अच्छा
3: बहुत दिल लगा के सुनता तुम्हारे गोट हमारे गीत जतका छत्तीसगढ़ी है ना वो बहुत पसंद है
0: छत्तीसगढ़ी हाँ तो जतका जतका
3: दिन भर रेडियो मोड चला रही थी दीदी
0: हाँ
3: तो कौन बोला था दीदी
0: मैं हाँ भैया श्वेता पांडे बोला था
3: पहली बार मुलाकात हो रही दीदी तुम्हारे से हाँ का है भैया मन तिर बात होते रही थे
0: अच्छा अच्छा
3: पहली बार आप मन से बात हुआ दीदी
0: हाँ तो जब हमारे जिन ड्यूटी लगत हो ही कार्यक्रम में तीन दिन आप फोन नहीं करत हो
3: नहीं खैर हफ्ता करता हूँ मतलब महीना के बाद लेकिन लग पाए नहीं
0: एक कारण
3: बिजी थे बिजी तो मौका भी देल पड़ते ना सोता मल्ला
0: और कौन कौन सा कार्यक्रम अच्छा लगते हैं आप मल्ला
3: सब कार्यक्रम इसे बढ़िया लगते है छत्तीसगढ़ ही ज्यादा बढ़िया लगते मोला माटी के स्वर है गुंजे स्वर गाँव के है ये सब मन बढ़िया लगते काय पर छत्तीसगढ़ के रहिया तो छत्तीसगढ़िया बढ़िया लगते बोली भाखा तरह तरह गोठियाते
0: जतका भी राज्य है अलग अलग जहाँ जिन बोली चलते जिन भाषा चलते उमरला ओखरे ज्यादा

0: पसंद आते हैं,
1: माया पीर
0: माया
1: बनेरी
0: लगते
1: के दीदी।
0: हैं। ठीक है
1: अरे
0: संत राम भैया, कुछ गोट बात करना है
1: अब
0: आप मतलब।
1: मोर गुजारिश रही सेवा श्रोता भाई मान ला बहनी मान ला कि अब बरसात आ गए तो पेड़ उड़ लगाती थी तो एक एक पेड़ कम से कम मैं तो हर साल लगाता हूँ दीदी कम से कम बोला 12 से जुड़े अभी तक के मतलब लगाते रहते हैं पेड़ दो पेड़ हर साल के साल कम से कम 15-20 पेड़ लगा चुके हैं अभी तक।
0: हाँ बरसात के जिन जतका भी अपन ये मौसम चलते झड़ी चलते पानी गिरते तेन मा पेड़ पौधा के ज्यादा ख्याल रखे के जरूरत नहीं पड़ा वे।
1: हाँ गर्मी में
0: हाँ
1: थोड़ा बहुत लगते है दीदी।
0: बहुत जल्दी जड़ पकड़ के बहुत जल्दी बढ़ते हो।
1: हाँ अभी फिर 3-4 पेड़ तैयार करके रखे हूँ अभी अब लगाऊ अब और 2 पेड़ लगा डरे अभी और लगा
0: पर्यावरण
1: अरबी
0: पर बहुत
1: पर
0: अच्छा काम
1: गस्ती
0: कर रखे हो।
1: नीम ये सब बड़े बड़े पेड़ लगा था दीदी काके बहुत दिन ले छाया देवे और अगर सोता मतलब भी बोलता कि पेड़ लगाओ भाई पेड़ लगाओ गर्मी भगावा पानी लावा
0: ठीक तो है
1: रागिन।
0: भैया, बढ़िया काम करत हो आप। इसने
1: हाँ
0: पेड़ पौधा लगात रही है और जतका भी आप मन के आसपास वाले मन हवे तेन मन ला प्रेरित करत रही है।
1: अरे हमेशा बोलते रहे तो पेड़ लगाओ गर्मी भगाओ पानी लाओ
0: अच्छा
1: मोर ही
0: संदेश है आप मन
1: सिद्धांत
0: के।
1: है और मैं जब तक अभी लगा काबिर रही जांगर चली तब तक लगाऊ चली कोशिश कर रही थी।
0: बहुत बढ़िया लगी से गुड बात करके आप।
1: माहौल बने गोट लगी दीदी बहुत दिन में बात हुई से पहली बार हुई से आप मन से। जय
0: ठीक है भैया, राम राम, जय जोहार। फोन करे बर बहुत
1: जोहार
0: बहुत
1: दीदी जय
0: धन्यवाद।
1: जोहार।
0: तब जतका भी श्रोता संगवारी मन हमन ला फोन करीन है इखर गोट बात के बाद अब सुनवावत हन लोक कलाकार भगत भाई के गाए ए छत्तीसगढ़ी लोकगीत ला।
2: पिंजरा ले

0: संगवारी हो, यही गीत के संगे संग अब तुहर गोठ हमर गीत कार्यक्रम इहे समाप्त होवत हे। ता स्वीकार करो जय जोहार राम राम अपन रेडियो मितानिन श्वेता के। औ ए कार्यक्रम निर्माण मा तकनीकी सहयोग दिए रहिन हे गौरी शंकर कौशिक जी मन। जय जोहार राम राम।
1: कार्यक्रम तुहर गोठ हमर गीत अभी आप सुन रहे थे, प्रस्तुतकर्ता थी श्वेता पांडे।
2: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10:30 हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम आपकी पसंद। पहला गीत हम लेकर आए हैं मोहरा फिल्म से, उदित नारायण और अलका याग्निक के युगल स्वर में। बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, धुन बनाई है वीजू शाह ने और इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है दत्रिंगी भाटापारा से नोखेलाल वर्मा, हीरामणि पारसमणि पुष्पेंद्रमणि वर्मा ने। पोड़ी लाफा से हमारे साथी हैं विद्यानंद साहू, त्रिवेणी साहू, रानी बबली, सुमन मंटू मिष्टी, सृष्टि दृष्टि गन्नू गणेश, कान्हा कृष्णा, अंशु साहू ने। ग्राम दरचूरा से हमें फरमाइश भेजी है ददुआ साहू, भूरी साहू, संतोषी दुलौरीन, रेखा मोतीलाल साहू, कामेश्वरी कुमारी, प्रीतम कुमार साहू ने। चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू, रविंद्र खुशी रौनक सेन। ग्राम बसीबार से शिव नारायण नामदेव, सविता देवी, राम प्रसाद, आंचल चंचल चांदनी, विनय कुमार, वर्षा, मनोज कुमार कंवर। शांतिनगर पाली से विष्णु सिंह कोरम, संतोषी कोरम, आरती पूर्वा, प्रतिभा, योगेश, नीलेश, चंद्रशेखर और समस्त कोरम परिवार। पोड़ी लाफा से राम सनेही साहू, मीना साहू, ब्रह्मानंद परमानंद, संध्या प्रियंका, हर्षु प्रज्ञा तन्मय, महिमा सुमांश, आनंद साहू। ग्राम बुड़गहन से राम दुलारी प्रजापति, रामशरण चंद्रेश कुमार, चंद्रकला शशिकांता प्रजापति। हटौत बाजार लाहौत से कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार, समीर राजकुमारी पटेल। इंदिरा नगर रायगढ़ से शेख अब्दुल सलीम, बेगम परवीन बानो, अब्दुल जमीर, मोहम्मद अली, आसिफ नईम राजा। आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का पहला गीत।

कार्यक्रम का पहला फरमाइशी गीत आपने सुना मोहरा फिल्म से उदित नारायण और अलका याग्निक के युगल स्वर में। अगला गीत सुनना चाहा है हमारे इन श्रोताओं ने रिंगनी से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, शहीद टेकराम चौक हदबन करेली से संजय कुमार ध्रुव, संजू कुमार ध्रुव। औरंगाबाद से हमारे साथी हैं राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश, राशि राजेश। नैला बोरसरा जांजगीर से हेमदेव तिवारी, दुर्गा प्रसाद तिवारी, अमन कुमार तिवारी, मीनाक्षी तिवारी, उमाबाई तिवारी, अंजुलता तिवारी, ठगिया देवी तिवारी, विष्णु प्रसाद तिवारी, मोंगरा देवी मिश्रा और प्यारेलाल मिश्रा। डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, अनिष्का और तन्मय गजभिये। बिलाईगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन, डिंपल देवांगन। नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले। भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जावेंद्र कुमार वर्मा। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति और रेयांश ठाकुर ने। शिवाजी चौक राजिम से हमें फरमाइश भेजी है अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव ने। अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा, दिव्यांश, आरोही और लवीश श्रीवास्तव। जांजगीर महेंदा से राम नारायण कश्यप, कविता देवी कश्यप, कुसुमलता कश्यप, खुशबू कुमारी कश्यप। नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा। ग्राम बठेना से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, रेखा धनेश्वरी वर्मा। चटौदा सारागांव से सुजान वर्मा, सोहद्रा वर्मा, आयुषी और कृत वर्मा। हथनीपारा भाटापारा से इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है दुर्गा दुर्गेश्वरी गीतू, मुकेश हरीश, किरण दुलारी वर्मा ने। महमदपुर भक्तिन बाजार अकलतरा से रमेश कैवर्त, राजकुमारी आरती कैवर्त। रोहासी से डगेसा राम साहू, घनश्याम, नूतन साहू, अलका गौरव, जानवी साहू। और पहारा अहिवारा से पोषण बंछोर, चंद्र किरण, प्रीति छाया बंछोर। इस गीत की रचना की है इंदिवर ने, संगीत जतिन ललित का है, आवाज़ें कुमार सानू, अलका याग्निक की है। फिल्म का नाम है मिस्टर आशिक।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: श्रोताओं, लीजिए अब पेश है आज का ट्रैफिक अपडेट।
2: नमस्कार, ट्रैफिक अपडेट्स आप बिलासपुर की श्रृंखला में एक नई सुबह के

साथ मैं हूं उमाशंकर पांडे, आपका स्वागत है। बिलासपुर शहर के साथ ही जिले की चारों तरफ की सभी सड़कों में भी सभी प्रकार के वाहनों का सुगम यातायात संपर्क बना हुआ है, अर्थात संपूर्ण बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। आप सभी से अनुरोध है कि यातायात नियमों के प्रति निष्ठावान रहकर जिले की सुगम यातायात व्यवस्था में आप सभी भागीदार बने। मित्रों, जिस प्रकार यातायात के नियमों के पालन में सुरक्षित वाहन चालन आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार उतना ही जरूरी अपने वाहन के सभी दस्तावेज भी पूरे और जीवित रखना जरूरी है। किसी भी प्रकार के नए वाहन के लेते ही उसका संबंधित आरटीओ कार्यालय से रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है और ये रजिस्ट्रेशन नंबर मानक आकार के नंबर

0: अपनी मुख्य प्रति निष्ठावान रहकर जिले की सुगम यातायात व्यवस्था में आप सभी भागीदार बने। मित्रों, जिस प्रकार यातायात के नियमों के पालन में सुरक्षित वाहन चालन आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार उतना ही जरूरी अपने वाहन के सभी दस्तावेज भी पूरे और जीवित रखना जरूरी है। किसी भी प्रकार के नए वाहन के लेते ही उसका संबंधित आरटीओ कार्यालय से रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है और ये रजिस्ट्रेशन नंबर मानक आकार के नंबर प्लेट पर मानक अक्षरों एवं अंकों में लिखे होने चाहिए। अस्पष्ट एवं घुमावदार नंबर लिखाना अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर छिपाने के समान है, जो मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 50/177 में वर्जित है। ठीक इसी प्रकार प्रत्येक वाहन का बीमा भी अनिवार्य होता है, अतः किसी भी अधिकृत कंपनी से अपने वाहन का बीमा अवश्य करावें। बिना बीमा के एक दिन भी वाहन न चलाएं, अन्यथा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 146/196 के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। साथियों, वाहन का बीमा जीवित होने की स्थिति में दुर्भाग्य से कभी कहीं कोई दुर्घटना हो भी गई तो पीड़ित पक्ष को होने वाली क्षति का निर्धारण माननीय न्यायालय के द्वारा किया जाता है और यह क्षतिपूर्ति राशि की भरपाई पीड़ित पक्ष को संबंधित बीमा कंपनी के द्वारा किया जाता है। और यदि उस वाहन का बीमा जीवित नहीं है तो माननीय न्यायालय द्वारा पीड़ित पक्ष के लिए जो भी क्षतिपूर्ति का आदेश होगा संबंधित वाहन मालिक को भरना पड़ेगा। यह क्षतिपूर्ति राशि लाखों में होती है, इसलिए अपने वाहन का बीमा हर हालत में करावें। इसके साथ ही हर 6 माह में प्रदूषण की जांच कराना ना भूलें और यदि भारी वाहन है तो फिटनेस परमिट हमेशा जीवित रखें। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा शुभ हो।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम आपकी पसंद का आनंद आप ले रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। आइए अब बढ़ते हैं कार्यक्रम की आखिरी फरमाइश की ओर। फिल्म का नाम है मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। आवाजें कुमार सानू अलका याग्निक की है, गीतकार रानी मलिक है, संगीतकार अनु मलिक है और पसंद आप सभी की। कतियापारा जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश देवांगन, लोकेश, आशीष, रवि, मोनू, सोनू, कान्हा, आदित्य देवांगन की। बम्हर चाटीडीह से गंगा देवी देवांगन, पूनम देवांगन, धनेश्वरी, महेश्वरी, मिल्की, मीनाक्षी, निधि देवांगन। लुतरा खमारिया से नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीज। तेलीपारा बिलासपुर से रज्जन साहू, ईशानी साहू, छन्नूलाल श्रीवास, अनीता श्रीवास। ग्राम रसेड़ा अकलतरा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी साहू, योगेश कुमार साहू, कीर्ति कुमार साहू, संध्या साहू, डिकेश कुमार साहू, वासु, डॉली, पूर्वेश साहू की। भाटापारा से दान सिंह रावत दानू, पद्मनी रावत, शुभम, सौरभ रावत। भाटापारा से बचकामल, मोतीलाल यादव, बसंत भृगु, विनय ठाकुर, चुआराम वर्मा, सूरज बारिकर, नारायण यदु, लेखराम यदु, राधेश्याम, जितेंद्र साहू। मारवाड़ी कुआं भाटापारा से हमें फरमाइश भेजी है सियाराम अश्वनी पांडे ने। सोनाडीह से सुब्रत चौधरी, अनीशा, रायपुर से नीलू मेघ नीलम। बंगला मटिया बालौद से हमारे साथी हैं शिव कुमार अंगारे, अंजनी त्र्यंबिका, लीना अंशुमाला, आशुतोष अंगारे। भर्री टोला डोंडी बालौद से नमित कुमार गौतम, पीहू नीतू, प्रियंका मुरली गौतम। हथकेरा भाटापारा से पंचू यादव, दादू यादव। बावली से कमलेश साहू, हारेंद्र साहू, सुशील बेलसपुरीहा। देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्वनी वर्मा, गणेश, मयाराम रजक, पुनेश्वर रजक, फानेश्वर रजक, मुकेश कुमार रजक, हाव्या रजक और टानिया रजक। आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये आखिरी गीत।

मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में। इसी के साथ कार्यक्रम आपकी पसंद यहीं संपन्न हुआ। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 11 बजे हैं, आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। श्रोताओं, जलगांव जंक्शन महाराष्ट्र से डॉक्टर दिनेश कार्य जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: शब्द तभी अमर होते हैं जब वे केवल लिखे नहीं जाते बल्कि जिए भी जाते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दिनेश काले इस सुंदर विचार के लिए। और आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरेलकर और रतनमाला जी का।
2: छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल।
0: और बड़ोदरा पंचमहल गुजरात से रवि जोशी जी का।
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
0: और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू जी का संदेश आया है। लिखते हैं,
2: नमस्कार, ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत चार प्रसिद्ध झीलों के बारे में गहन और दिलचस्प जानकारी प्रदान की, सुनकर हम अभिभूत हो गए। आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप विश्व के प्रमुख बांधों और प्रमुख पुलों पर भी ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत जानकारी मुहैया करवाने की कृपा जरूर करें। आपको इस हेतु अग्रिम धन्यवाद और आभार।
0: जी, और सुहाना चौक ग्राम जसवाड़ी से सूरज कुमार ढाकसे जी लिखते हैं, प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप सकुशल होंगे। मैं सूरज कुमार ढाकसे दोनों आंखों से नेत्रहीन हूँ। मैं प्रतिदिन आपका कार्यक्रम रेडियो पर सुनता हूँ। आपके इस कार्यक्रम में एक से एक बढ़कर कहानियाँ, कविताएं और जानकारियाँ सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है।
2: धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की।
0: तो श्रोताओं, हमारा पहला प्रश्न था कि कंगारू के कितने पैर होते हैं?
2: इसका उत्तर है साथियों, कंगारू के चार पांव ही होते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कंगारू की पूंछ भी एक मजबूत अंग होती है जो उसके चलते समय उसके संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है। वो कई बार चलते हुए अपनी पूंछ का भी सहारा लेता है, इसलिए ऐसा लगता है कि वो पांच पैरों से चल रहा हो। इसलिए बोलचाल में कहा जाने लगा है कि कंगारू के पांच पैर होते हैं, लेकिन वैज्ञानिक रूप से पूंछ को पांव नहीं माना जा सकता।
0: जी, तो श्रोताओ अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, कीलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है?
2: प्राचीन मेसोपोटामिया की सभ्यता में लोग मिट्टी की पट्टियों पर पेंसिल नुमा नुकीली कील से लिखते थे जिसे कीलाक्षर कहा जाता था। कीलाक्षर यानी कीलों से लिखे हुए अक्षर।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे

0: पूछा था? हमने पूछा था श्रोताओं कि पेपर शब्द किस वनस्पति के नाम से बना है और ये वनस्पति कहाँ पैदा होती थी।
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। पेपर शब्द मिस्र में नील नदी के तट पर पाई जाने वाली पेपरिस वनस्पति या घास के नाम से आया है।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था कि कोडेक्स किसे कहते हैं।
1: कोडेक्स आधुनिक पुस्तक के प्राचीन रूप को कहते हैं, जिसमें पन्नों को किनारे से सिलकर या बांधकर पुस्तकें बनाई जाती थीं।
0: जी, और हमारा अंतिम प्रश्न था, जोहन्नेस गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार कब किया।
1: इसका उत्तर है साथियों, जोहन्नेस गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार सन 1440 में किया था।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम उमंग से। और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है श्रोताओं, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था।
0: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है, और आप हमें संदेश व प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना न भूलें।
0: तो श्रोताओं, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम। शीर्षक है न्याय।
1: ये कार्यक्रम हिंदी की कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें युवराज सिद्धार्थ के जीवन में घटित एक प्रेरक प्रसंग के बारे में बताया गया है और संदेश दिया गया है कि पशु पक्षी भी हमारे प्रेम और करुणा के अधिकारी हैं।
2: चलो मित्र सिद्धार्थ, उद्यान की ओर चलते हैं, सरोवर के पास। कैसी शांति है, पक्षी नीड़ों की ओर लौट रहे हैं। वहां देखो उस पेड़ पर, कैसे वो चिड़िया अपने बच्चे को दाना खिला रही है, अति सुंदर। और तनिक उधर देखो उद्यान के बाहर, कैसे एक बछड़ा अपनी माँ की ओर दौड़ा चला जा रहा है और गाय अपने बछड़े को लाड़ कर रही है।
3: साथियों, ये वार्तालाप हो रहा था युवराज सिद्धार्थ और उनके मित्र वसु के बीच। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था, जो कपिलवस्तु नगर का एक ग्राम उद्यान था। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे, जो शाक्य गणराज के राजा थे, जिसकी राजधानी थी कपिलवस्तु। युवराज सिद्धार्थ ही आगे चलकर गौतम बुद्ध बने और विश्व को अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाया। प्रारंभ में उनका जीवन राजसी सुख सुविधाओं से भरपूर था। आइए एक बार फिर से चलते हैं उस उद्यान की ओर, जहां दोनों मित्र वार्तालाप कर रहे हैं।
2: युवराज, तनिक ऊपर देखो, कितने सुंदर पक्षी हैं।
4: ये राजहंस हैं। ऐसा लगता है मानो हवा में तैर रहे हैं, और इतनी ही सुंदरता से वे पानी में भी तैर सकते हैं। ओह, देखो एक राजहंस नीचे की ओर गिर रहा है।
2: हाँ, लगता है उसे तीर लगा है।
4: प्यारे पक्षी, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ नहीं। मैं हूं ना, न जाने किस निर्दयी ने इसे घायल कर दिया, भला इसका क्या दोष है।
5: दोष ये है कि ये सुंदर है, प्यारा है, सबको पसंद आता है।
4: क्या सुंदर होना और सबका प्यारा होना कोई दोष है। प्यारे हंस, मैं तुम्हारा ये तीर निकाल देता हूं, फिक्र मत करो। ये निकाल दिया, अब तुम मेरी गोद में थोड़ी देर विश्राम कर लो। मित्र, कोई भी व्यक्ति जिसके पास हृदय है, इन निर्दोष पक्षियों को मार ही नहीं सकता। तुम जरा दौड़कर राजवैद्य से इसके लिए कोई औषधि तो ले आओ।
2: हाँ मित्र, अभी जाता हूं।
3: युवराज सिद्धार्थ ने हंस को विश्राम करने के लिए पास के ही एक कुंज में लिटा दिया और वसु के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में

0: उनके चचेरे भाई देवदत्त आ पहुंचे। वे इधर उधर देख रहे थे, मानो कुछ खोज रहे हों।
1: कुमार सिद्धार्थ, कुमार सिद्धार्थ, कुमार सिद्धार्थ, अभी मैंने एक उड़ते हुए हंस को तीर मारकर नीचे गिराया था। मैंने अपनी आंखों से उसे गिरते हुए देखा था। वो इधर ही कहीं आया है। तीर धनुष पर मेरा लक्ष्य अब भली भांति सद गया है। ये बात मैं कल गुरुजी को बताऊंगा तो वो कितने प्रसन्न होंगे। तुम गुरुजी के सामने मेरी गवाही दोगे ना?
2: अवश्य दूंगा देवदत्त, और वो भी प्रमाण के साथ, क्योंकि इसका प्रमाण वो हंस है जिसे तुमने मारा है।
1: तो हंस तुम्हारे पास है, लाओ उसे मुझे दे दो।
2: क्यों दे दूं?
1: क्यों दे दो? ये तो बड़ा ही विचित्र प्रश्न है भाई। इसलिए दे दो क्योंकि मैंने उसे मारा है।
2: लेकिन मैंने इसे बचाया है।
1: तुम राजकुमार हो इसलिए मुझे धमकी देना चाहते हो? मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं दोगे। इसका निर्णय तो अब राज दरबार में ही होगा।
0: तो साथियों, दूसरे दिन दरबार लगा हुआ था।
3: महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।
0: प्रतिहारी ने सभी प्रकरणों की जानकारी दी और बताया कि आज कुमार देवदत्त भी एक प्रकरण न्याय के लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ भी उपस्थित थे।
4: कुमार देवदत्त को प्रस्तुत किया जाए।
1: महाराज को प्रणाम करता हूँ। महाराज, मेरा कहना है कि राजकुमार सिद्धार्थ ने मेरा हंस ले लिया है जिसे मैंने मारा था। वो मुझे मेरा हंस नहीं दे रहे, मुझे न्याय चाहिए।
4: राजकुमार सिद्धार्थ, क्या ये वही हंस है जो आपकी गोद में है?
2: महाराज को प्रणाम करता हूँ। जी महाराज, ये वही हंस है। मेरा कहना है कि कुमार देवदत्त ने इस हंस को मारा है, लेकिन मैंने इसे बचाया है। अतएव मैं ये हंस इन्हें नहीं दे सकता।
4: लेकिन सिद्धार्थ, देवदत्त ने इस हंस का आखेट किया है। नियम के अनुसार आखेट वीर का अधिकार है। वीर आखेट को छोड़ नहीं सकता।
2: जी महाराज, लेकिन नियम तो ये भी कहता है कि वीर शरणागत को भी नहीं छोड़ सकता। हमारी शाक्य राजवंश की परंपरा और शास्त्रों का नियम तो ये भी कहता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है।
1: पर महाराज, मैंने पहले इस हंस को मारा है, इसलिए ये मेरा है।
2: जी, पहले मारा था, तभी तो वो मेरी शरण में आया है। बिना मारे वो मेरी शरण में कैसे आता?
4: महामंत्री, समस्या जटिल हो गई है। क्या आप कोई मार्ग सुझा सकते हैं?
5: जी महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता हूँ। अब तो निर्णय ये हंस ही करेगा।
4: निर्णय ये हंस ही करेगा? भला वो कैसे आज्ञा है?
5: महाराज, मेरा आग्रह है कि हंस को यहाँ इस आसन पर बैठाया जाए।
0: हंस को आसन पर बैठा दिया गया। हंस भयभीत था, लेकिन सिद्धार्थ उसे सांत्वना दे रहे थे। सभा स्तंभित थी, सभी फुसफुसा रहे थे।
6: पता नहीं ये हंस कैसे बताएगा गद्दी पे बैठ कर सिद्धार्थ को मिलना चाहिए। इसके पास जा रहा है
5: कुमार देवदत्त। आप कहते हैं कि इस पर आपका अधिकार है। आसन के पास आइए और हंस को अपने पास बुलाइए।
1: ओ प्रिय हंस, मेरे पास आओ, आ जाओ, आओ मेरे पास, आ जाओ।
0: देवदत्त जितनी बार हंस को बुलाते, वो उतनी ही बार भय के मारे

0: आसन से चिपक जाता। देवदत्त ने बहुत प्रयास किया लेकिन बात नहीं बनी।
1: अब मैं राजकुमार सिद्धार्थ को सामने बुलाना चाहूंगा और कहूंगा कि वे भी हंस को अपने पास बुलाएं।
2: प्यारे राजहंस, मेरे प्रिय मित्र, डरो मत, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे पास आ जाओ, अपने मित्र के पास आ जाओ, आ जाओ, घबराओ मत।
0: फिर क्या था, पलक भी नहीं झपकी थी, हंस ने अपने पंख फैलाए और उड़ता हुआ सिद्धार्थ की गोद में ऐसे आ चिपका जैसे एक बालक अपनी माँ की गोद में चिपक जाता है।
3: स्वयं इस पक्षी ने अपना निर्णय बता दिया है। हमने सुना था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, आज साक्षात देख भी लिया। मैं हर्ष के साथ घोषित करता हूँ कि ये हंस युवराज सिद्धार्थ का ही है।
4: महाराज की जय हो,
5: महाराज की जय हो,
6: महाराज की जय हो।
7: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम न्याय। साथियों, इस कार्यक्रम में आपने दो शब्द सुने। पहला शब्द था नीड और दूसरा शब्द था आखेट। तो इसका अर्थ आपको बता देते हैं। नीड शब्द का अर्थ है घोंसला और आखेट शब्द का अर्थ होता है शिकार। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को, पशु पक्षियों का ख्याल रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए और इसकी सूची बनाइए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर भारती कौशिक, ध्वन्यांकन एकांत वशिष्ठ, कलाकार सुनील लोहिया, शशांक शर्मा, बबीता, रंजीत और फरहान नकवी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण चेतना शर्मा। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय। आशा है श्रोताओं, आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वो ब्रह्म तुम ही हो।
1: ये कार्यक्रम विभिन्न जीवन दर्शनों की चर्चा करता है और संदेश देता है कि हम सभी उसी अनंत सत्ता के अभिन्न अंग हैं।

0: देहवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
1: पौराणिक उपनिषद छांदोग्य से एक कहानी है तत् त्वम् असि। उपनिषद महावाक्य स्वरूप में लघु है परंतु बहुत गहन विचार समाये हुए हैं। चार प्रमुख महावाक्य हैं। ऋग्वेद के ऐतरेय उपनिषद से प्रज्ञानम ब्रह्म अर्थात वो प्रज्ञानम ही ब्रह्म है। सामवेद के छांदोग्य उपनिषद से तत् त्वम् असि अर्थात वो ब्रह्म तुम ही हो। यजुर्वेद के बृहद अरण्यक उपनिषद के ऐतरेय उपनिषद से अयम आत्मा ब्रह्म अर्थात ये आत्मा ब्रह्म है। अथर्ववेद के मांडर के उपनिषद के ऐतरेय उपनिषद से अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ब्रह्म हूँ। और सामवेद के छांदोग्य उपनिषद से महावाक्य तत् त्वम् असि एक आध्यात्मिक संवाद है गुरुपिता और शिष्य पुत्र के बीच।

पिता उद्दालक ऋषि हैं, महापंडित वेदों के ज्ञाता, धुरंधर दार्शनिक और तर्क वितर्क में निपुण, और उनके 24 वर्षीय जिज्ञासु पुत्र श्वेतकेतु 12 वर्षों की शिक्षा के बाद लौटे हैं।

0: वत्स श्वेत केतु।
1: अज्ञात?
0: क्या तुम उस ज्ञान से अवगत हो जिसके द्वारा हम सब कुछ जानते हैं और जो हमें जानना आवश्यक है?
1: तात, मैं उस ज्ञान के बारे में जानना चाहूंगा।
0: मैं समझाता हूं
1: जी।
2: उद्दालक श्वेत केतु को फूलों के एक उद्यान में ले जाते हैं।

0: श्वेतकेतु। जी पिताजी। क्या तुम शहद इकट्ठा कर रही इन मधुमक्खियों को देख पा रहे हो?
1: हाँ हाँ बात।
0: भिन्न भिन्न फूलों से निकला हुआ रस जब एक हो जाता है तो वो शहद बन जाता है। तब शहद बनने के बाद वो कह सकता है कि मैं इस फूल का रस हूं या उस फूल का रस हूं।
1: नहीं दाद।
0: इसी तरह जब कोई उस चेतना से एक हो जाता है तब उसकी अपनी पहचान समाप्त हो जाती है।
1: जी दाद, फिर जगत में इतनी विविधता कैसे आई?
0: शुरुआत में केवल एक था,

0: और फिर एक को कई में प्रतिलक्षित किया गया। सृष्टि के जन्म से पूर्व द्वैत के अस्तित्व से रहित, नाम और रूप से रहित एकमात्र सत्य स्वरूप अद्वितीय ब्रह्म ही है। वही ब्रह्म आज भी विद्यमान है
1: जीतात।
0: उसी ब्रह्म को तत्वमसी कहा गया। वो शरीर और इंद्रियों में रहते हुए भी उनसे परे है, आत्मा में उसका अंश मात्र है
1: जी।
0: उसी से उसका अनुभव होता है, किंतु वो अंश परमात्मा नहीं है
1: जी। पिताजी,
0: वो उससे दूर है। वो संपूर्ण जगत में प्रतिभासित होते हुए भी उससे

0: वत्स श्वेत केतु।
1: जी तात,
0: क्या तुम जानते हो हम जिस अस्तित्व को देख नहीं सकते हैं तो हम कैसे जानते हैं कि वो विद्यमान है?
1: नहीं तात, मैं नहीं जानता हूं, कृपया मुझे समझाएं।
0: तो वत्स जाओ उस वट वृक्ष के पास और एक फल तोड़ कर ले आओ।
1: जो आज्ञा तात।

0: ये रहा फलतात।
1: वत्स, अब इसे तोड़कर इसके दो टुकड़े कर दो।
0: जी पिताजी, इसमें तो सैकड़ों बहुत ही छोटे छोटे बीज हैं।
1: उनमें से एक बीज निकालो और उसे तोड़ो मेरे वत्स।
0: जी
1: और अब मुझे बताओ कि इसमें क्या देख रहे हो?
0: अब नहीं तो यहां तो कुछ भी नहीं है तात।
1: वत्स, तो फिर एक छोटे से बीज से एक विशाल बरगद का वृक्ष भला कैसे बन जाता है?
0: तो फिर तात, जिस अस्तित्व को हम देख नहीं सकते हैं, तो कैसे सब प्राणियों को जन्म दे सकता है तात?
1: मुझ पर विश्वास करो मेरे वत्स, वो सूक्ष्म बीज कुछ भी नहीं, स्रोत था विशाल बरगद वृक्ष का। एक अदृश्य और सूक्ष्म सार पूरे ब्रह्मांड की आत्मा है। सर्वं तत्स्वयं स आत्मा, यही सर्वोच्च वास्तविकता है और यही सब में स्वयं विद्यमान है, यही आत्मा है, तत् त्वम् असि।
0: मैं आभारी हूं पिताजी, आपने मुझे ज्ञान हासिल करने में मदद की है, जिससे अनदेखा देखा हुआ हो जाता है, अज्ञात ज्ञात हो जाता है और यही सब में स्वयं मौजूद है। तत् त्वम् असि।
1: ईश्वर तुम पर अपनी अनन्य कृपा बनाए रखे।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वह ब्रह्म तुम ही हो। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार बाबला कोचर, प्रवीण शर्मा और प्रीति मिश्रा, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, आलेख डॉक्टर जितेंद्र सिंह,

0: आर दर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम वो ब्रह्म तुम ही हो। और श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अजीत
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
0: कुसुमलता,
1: जगबंधु,
0: चेतना
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT FM बैंड 103.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 11:30 होने वाले हैं। आइए पुनः जुड़ते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से।

हम सुन रहे थे ये गीत ट्रैफिक सिग्नल से, चित्रा और उस्ताद सुल्तान खान की आवाज में। कैलाश शर्मा ने इसे लिखा है और संदेश शांडिल्य ने इसे संगीतबद्ध किया है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग।

0: सिर्फ आंसू है उम्मीद सिर्फ दर्द की रंज की बातें हैं और फरियादें हैं मेरा अब कोई नहीं मैं हूँ और खोए हुए प्यार की यादें हैं मैं हूँ और खोए हुए प्यार की यादें हैं मैं हूँ और खोए हुए प्यार की यादें हैं।
1: हम सुन रहे थे ब्रीफलेस सॉन्ग।

जान मेरा सब कुछ तो अपना कर ले, बस मेरी चाहत से रिश्ता कर ले। तेरे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मगर मेरे लिए तो वो है जिसके

हम सुन रहे थे जान एल्बम का यह गीत सोनू निगम की आवाज में, जिसे बोल दिए फैज अनवर ने और संगीतबद्ध किया है निखिल विनय ने।

0: हम सुन रहे थे तुम आए एल्बम से अलका याग्निक हरिहरन की आवाज में। जावेद अख्तर के बोल और राजू सिंह ने इसे संगीतबद्ध किया इस खूबसूरत से नगमे को। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बद्दू।
2: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
3: और आ गया।
4: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के। 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: सुनिए
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग।

हम सुन रहे थे जाने मन फिल्म का यह गीत सोनू निगम की आवाज में, गुलजार के बोल और अनु मलिक ने इसे संगीतबद्ध किया। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं ये गीत लकी अली सुनिधि चौहान की आवाज में।

0: आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 11:55 होने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।
1: प्रादेशिक समाचार, ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। प्रदेश की ग्राम पंचायतों में आज विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जा रहा है। और सर्पदंश से मौत की फर्जी रिपोर्ट बनाने के मामले में बिलासपुर पुलिस ने सिम्स की डॉक्टर को किया गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। यह सत्र अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जाएगी। 25 दिनों के सत्र में 19 बैठकें होंगी। मानसून सत्र शुरू होने से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में आज विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जा रहा है। ग्राम सभा में विकसित भारत, रोजगार तथा आजीविका मिशन पर चर्चा होगी और पंचायतों की आवश्यकताओं के अनुसार विकास कार्यों को मंजूरी दी जाएगी। ये मिशन 1 जुलाई से पूरे प्रदेश में लागू है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सभा के लिए पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी और बैठक के बाद विस्तृत रिपोर्ट संबंधित जिला कार्यालय को भेजी जाएगी। दुर्ग जिले के जामगांव स्थित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में आज राज्य स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नव प्रवेशी बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत करेंगे। रामनामी समुदाय के जीवन, आस्था और सांस्कृतिक विरासत पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म रामनामी को 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का सम्मान मिला है। इसका निर्देशन प्रसिद्ध फिल्मकार भरत बाला गणपति ने किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डॉक्यूमेंट्री फिल्म रामनामी को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का राष्ट्रीय सम्मान मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे पूरे प्रदेश के लिए गौरव का विषय बताया है। बिलासपुर जिले के तोरवा थाना क्षेत्र में सर्पदंश से मौत की फर्जी रिपोर्ट बनाकर मुआवजा दिलाने के मामले में पुलिस ने डॉक्टर प्रियंका सोनी को गिरफ्तार किया है। उन पर दो अलग अलग मामलों में स्नेक बाइट से मौत की फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक तहसील कार्यालय के नायब नाजिर की शिकायत पर महमंद निवासी निसार खान और लता सूर्यवंशी की संदिग्ध मौत के मामलों में केस दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। जांच में सामने आया कि दोनों शवों का पोस्टमार्टम तत्कालीन सिम्स चिकित्सक डॉक्टर प्रियंका सोनी ने किया था और स्नेक बाइट से मौत होने की फर्जी रिपोर्ट तैयार की गई थी। इसके बाद फरार चल रही डॉक्टर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इस मामले में दोनों मृतकों के परिजन और एक वकील समेत 3 आरोपी पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं। मौसम विभाग ने आज मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। वहीं प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और उससे लगे दक्षिण छत्तीसगढ़ के ऊपर एक चक्रवाती घेरा बना हुआ है। इसके असर से प्रदेश में बारिश की गतिविधियां तेज हुई हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर बारिश हुई है। कोरबा और जशपुर जिले में हुए सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई। कोरबा में तेज रफ्तार ट्रेलर की चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जशपुर में खेत की जुताई के लिए जा रहे ट्रैक्टर के अनियंत्रित होकर पलटने से ट्रैक्टर चालक समेत 2 लोगों की जान चली गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। प्रदेश की ग्राम पंचायतों में आज विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जा रहा है। और सर्पदंश से मौत की फर्जी रिपोर्ट बनाने के मामले में बिलासपुर पुलिस ने सिम्स की डॉक्टर को किया गिरफ्तार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

देश की सुरीली धड़कन। दिन के 12 बजने वाले हैं, हम थोड़ी ही देर में समाचार प्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज दोनों सदनों की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक मामले में सत्ता पक्ष के खिलाफ नारेबाजी शुरू की। हंगामा जारी रहने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। इससे पहले सदस्यों ने दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति रहने के कारण सदन की बैठक 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि जब दोनों उत्पादक होते हैं तो इससे राष्ट्र का कल्याण और सभी जीवों की सुख शांति सुनिश्चित होती है।
1: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की वैश्विक छवि को सार्वभौमिक मान्यता और स्वीकृति मिल रही है। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और न ही दी गई है। पुलिस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि राजीव चौक और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर अब इंटरचेंज सुविधाएं चालू हैं और गेट खुल गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की गठित विशेष जांच दल एसआईटी ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की है। ये रिपोर्ट मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सील बंद लिफाफे में प्रस्तुत की गई। मामले की सुनवाई आज सर्वोच्च न्यायालय में होनी है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के कार्यकारी सचिव साइमन स्टिल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने बताया कि बैठक में अनुकूलन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, जलवायु वित्त, वैश्विक मूल्यांकन और न्याय संगत परिवर्तन जैसे विषयों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनो में मॉल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांदू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मॉल्दोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से मिलेंगी और मॉल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। इसके बाद वे एक व्यापार मंच को संबोधित करेंगी। मॉल्दोवा यात्रा के दौरान राष्ट्रपति प्रवासी भारतीयों से भी मुलाकात करेंगी। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये मॉल्दोवा की पहली यात्रा है। श्रीमती मुर्मू 3 देशों मॉल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के युवाओं के साहस और दृढ़ता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट पर एक संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा अपने साहस, आत्मविश्वास और अथक परिश्रम के बल पर ऐतिहासिक सफलता प्राप्त कर रहे हैं और यही विकासशील भारत की सबसे बड़ी ताकत है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में अगले 2 दिन अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में आज बहुत तेज वर्षा होने की संभावना है।

स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। फाइनल में 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। इसके बाद स्पेन के फेरन टोरेस ने गोल कर अपनी टीम को 1-0 की जीत दिलाई। और घरेलू शेयर बाजार सूचकांक लगभग 0.7% की गिरावट के साथ आज कारोबार कर रहे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में, बस थोड़ी ही देर के बाद।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में। यादों की महफिल कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं बहुत सुनहरी सी यादें, और आज याद करने का दिन है गीता दत्त, अभिनेत्री गीता दत्त का, गायिका गीता दत्त का। आज पुण्यतिथि है उनकी। आज ही के दिन हम याद करेंगे अभिनेता नसीरुद्दीन शाह को और अभिनेता राजेंद्र कुमार को भी। तो चलिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ जिसे गाया है गीता दत्त ने।

0: हम सुन रहे थे सीआईडी फिल्म का यह गीत, गीता दत्त की आवाज में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल और ओपी नैयर के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल। आइए सुनते हैं गीता दत्त की आवाज में ये गीत।

हम सुन रहे थे प्यासा फिल्म का यह गीत गीता दत्त की आवाज में साहिर लुधियानवी के बोल और सचिन देव बर्मन के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं आर पार फिल्म का यह गीत। गीता दत्त ने जिसे गाया है मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं और ओपी नैयर का संगीत।

0: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
1: वो तेरे प्यार का।
0: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
2: मुबारक हो सबको समाये सुहाना।
0: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
3: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
0: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
4: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास, एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे

0: चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद, जबरदस्त मार पड़ी।
1: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक, मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।
0: हो तो

0: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
1: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते हैं ना कि पूजा जाता है।
2: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
0: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
4: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
5: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है
6: जी।
5: जो कभी भी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाई से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
4: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
7: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल।

हम सुन रहे थे ये गीत मिस्टर एंड मिसेस 55 से गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजों में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और ओपी नैयर के संगीत के साथ सजा हुआ। आज याद करने का दिन है बहुत सारे लोगों का, और आज हम याद कर रहे हैं अभिनेता राजेंद्र कुमार को भी। आज उनका जन्मदिवस है, तो आइए सुनते हैं उन्हीं की फिल्मों के कुछ नगमे। कार्यक्रम यादों की महफिल में

0: हम सुन रहे थे ससुराल फिल्म का यह गीत जिसे गाया मोहम्मद रफी ने। हसरत जयपुरी के हैं बोल और शंकर जयकिशन का है संगीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल में यह संदेश।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ, क्यों नहीं।

0: सखियां ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
1: सखी सहेली
0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी
2: देखो जी बहार आई गांवों में खिली गली
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी
0: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत
4: याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम है यादों की महफिल
6: कौन है जो

हम सुन रहे थे झुक गया आसमान फिल्म से यह गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन का संगीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल में ये गीत।

हम सुन रहे थे सूरज फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, हसरत जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल। यादों की महफिल में हम आज याद कर रहे हैं उन्हें भी, आज जिनका जन्मदिवस है, अभिनेता नसीरुद्दीन शाह। आज उनके जन्मदिवस पर उनके लिए कुछ नगमे उन्हीं की फिल्मों से, आइए सुनते हैं।

मासूम फिल्म से हम सुन रहे थे भूपेंद्र और सुरेश वाडेकर की आवाज में गुलजार के बोल और राहुल देव बर्मन के संगीत के साथ ये गीत। आइए सुनते हैं यशुदास की आवाज में नसीरुद्दीन शाह पर फिल्माया गया ये गीत।

0: दे।
1: हम सुन रहे थे सुनैना मूवी फिल्म का यह गीत, जिसे गाया यशोदास ने रविंद्र जैन के बोल और रविंद्र जैन के ही संगीत के साथ। आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम यादों की महफिल का अंतिम गीत, इजाजत फिल्म से आशा भोसले की आवाज में, गुलजार के बोल हैं और राहुल देवर्मन का है संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरीला सफर में। मैं हूं आपके साथ विधि प्रवीण जैन। नमस्कार, स्वीकार करें। आप सभी जानते हैं सुरीला सफर में हम सब लेकर आते हैं कुछ बातें, कुछ गीत और कुछ प्यारे से किस्से और कुछ प्रश्न और कुछ उत्तर जो हम आपस में साझा करते हैं उस समय काल को। इबारत एक लिखी जाती है हमारे द्वारा जिसे हम भेजते हैं सोशल मीडिया पर, और यही जो इबारत है वह हमने भी आज भेजी है और उस इबारत को हम आपके सामने सुनाना चाहते हैं। इबारत है कि चंद सिक्कों की खातिर करोड़ों के रिश्ते छोड़ गया, देखो वो परदेश चला गया और वो परदेसी हो गया। बस इबारत इतनी ही है और इस इबारत को लिखने के बाद हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी बातें लिखी हैं, हम वो बातें आपके साथ साझा करना चाहते हैं। हमारे श्रोता ने एक बड़ी प्यारी सी कविता कहें या कुछ चंद पंक्तियां कहें उन्होंने लिखकर भेजी हैं कि नयन भरे नीर मन होता अधीर, जिया में टीस यह समाई है, एक तो दूरी चांद से दूजे दो घूंट अपमान के क्या यही परदेश की कमाई है। बहुत खूबसूरत सी बात लिखी है कि एक तो दूरी चांद से दूजे दो घूंट अपमान के क्या यही परदेश की कमाई है। कुछ सच्ची बातें हैं, कुछ अच्छी बातें हैं, सब बातें हैं। और इन्हीं बातों के बीच में हमारे और भी श्रोताओं ने लिखा, हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज की पहली बार इतनी छोटी मगर जीवन की सच्चाई को बयां करने वाली, दिल को चीर देने वाली बहुत ही गहन पंक्तियों को साझा किया गया है। रिश्तों की गर्माहट चंद सिक्कों की खनखनाहट के सामने कच्ची दीवार की तरह ढह जाती है। स्वार्थ परायणता और पैसे के पीछे की पागलपंती दौड़ मानवीय एहसासों और संबंधों को निर्लज्जता से मिटा देता है और हमेशा से पैसे ने एक रिश्ते से अधिक अपने को अधिक ताकतवर बनवाया है। जी, किसी हद तक आपकी बात भी सही है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत जीवन की सच्चाई से जुड़ी, सच्चाई से भरी है। जहां रिश्ते नाते सब धन दौलत तराजू में तौले जाते हैं, इसे प्राप्त करने के लिए इंसान कोई कसर नहीं छोड़ता, अपने ईमान को भी बेच सकता है। उदाहरण स्वरूप इन्होंने फिल्म सट्टा बाजार का जिक्र किया है यहाँ पर, कि उन्होंने लिखा है कि गुलशन बाबरा ने लिखा, हेमंत कुमार का गाया हुआ गीत कुछ कह जाता है कि चांदी के चंद टुकड़ों के लिए ईमान को बेचा जाता है। जी, आपकी बात भी सही है। और इसके साथ आपने एक और दूसरी फिल्म का भी यहाँ पर कहा है कि फिल्म पहचान में भी पैसों की पहचान या इंसान की कीमत कोई नहीं, बच के निकले जा इस बस्ती में करता मोहब्बत कोई नहीं, ऐसा कुछ उन्होंने लिखकर भेजा है। इसके साथ ही हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि कभी कभी इंसान परदेश तो सिर्फ

रोजी रोटी कमाने के लिए जाता है, लेकिन धीरे धीरे फासले सिर्फ शहरों के नहीं रिश्तों के भी हो जाते हैं। सच तो यही कि चंद सिक्कों सिक्के जिंदगी चला सकते हैं, मगर अपनों की आवाज, उनका साथ और उनका अपनापन किसी भी दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। आपकी बात भी सही है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, इंसान अक्सर थोड़ी सी कमाई लालच में अपने अमूल्य पारिवारिक संबंधों, प्रेम और अपनों के साथ खुद पीछे छोड़ देता है। बेहतर भविष्य और धन कमाने की होड़ में ये व्यक्ति अपने घर आंगन को छोड़ दूसरे देश चला जाता है। त्रासदी यह है कि वह व्यक्ति अपनों के दिल की धड़कन हुआ करता था और दूर जाते ही अपनों के लिए परदेसी हो जाता है। बहुत अच्छी बातें आपने लिखी हैं, लेकिन अब हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको एक अच्छा सा गीत भी सुनवा दें। और जब हम बात इस परदेसी या परदेशी विषय पर कर रहे हैं, तो ये जो परदेश में जाते हैं, ऐसी कई सारी फिल्में हमारे जेहन में आती हैं। पुरानी फिल्मों में तो कई बार ऐसा होता है कि घर से बेटा कमाने के लिए बाहर चला जाता है। ऐसी कौन सी फिल्म आपके दिमाग में अभी आ रही है, ये प्रश्न है आपके लिए, कि ऐसी कौन सी फिल्म आपके दिमाग में आ रही है जिसमें बेटा घर छोड़कर परदेश चला गया पैसे कमाने के लिए। जरा बताइएगा उस फिल्म का नाम। अगर आपके दिमाग में कोई भी फिल्म का नाम आता है तो जरूर से हमारे साथ साझा कीजिए कि ऐसी कौन सी फिल्म है जो आपके दिमाग में अभी आ रही है कि बेटा गया है या बेटी गई है परदेश पैसे कमाने के लिए, विवाह करके नहीं, केवल पैसे कमाने के लिए बेटा या बेटी बाहर गए हैं, जरूर से बताइएगा। तब तक सुनिए ये गीत और बताइए इस गीत को लिखा किसने है। इसके गीतकार का नाम भी आप बता देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आइए सुनते हैं ये गीत।

लता मंगेशकर की आवाज में शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। और आप सबसे हमने पूछा था कि इसके गीतकार कौन हैं, तो आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। इस फिल्म के गीतकार, इस गीत के गीतकार हैं हसरत जयपुरी। बिल्कुल सही उत्तर देने के साथ हमने आपसे एक और प्रश्न पूछा था कि ऐसी कोई फिल्म जो आपके दिमाग में, आपके जेहन में आ रही है, जो फिल्म चली गई है जिसमें बेटा या बेटी बाहर चले गए हैं पैसा कमाने के लिए, तो हमारे श्रोताओं ने उत्तर दिए हैं अर्पण फिल्म है। जी बिल्कुल, उसमें एक और फिल्म का नाम कई लोगों ने लिया है, जो फिल्म का नाम है नाम। एक और फिल्म है नाम, फिल्म के बारे में कई सारे लोगों ने कहा है, बरसात फिल्म का जिक्र किया है कि यह बरसात फिल्म का गीत है। बिल्कुल सही जी। हमारे एक और श्रोता ने बताया कि स्वदेश फिल्म है जिसमें शाहरुख खान अपने गांव को छोड़कर जाता है। बिल्कुल सही बात है, गांव को छोड़कर जाते हैं, अपनों को छोड़कर जाते हैं, फिर वापस भी आते हैं। इसके साथ हमारे श्रोताओं ने और भी कई सारी फिल्मों के नाम दिए हैं, जैसे पूरब और पश्चिम, नाम, देश परदेश, ऐसी कई सारी फिल्मों के नाम यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि छोटे छोटे गाँव में या छोटी जगहों पर जब उन्हें पेट की भूख पूर्ति नहीं कर पाती है, उसकी आपूर्ति नहीं हो पाती है, तो उस समय लोग यहाँ से चले जाते हैं कहीं और। स्वदेश के बारे में फिर से जिक्र हुआ है। और जी हमारे एक श्रोता ने लिखा, उन्हें फिल्म नाम याद आ रही है जिसमें संजय दत्त पैसा कमाने के लिए भारत से बाहर चले जाते हैं और गलत हाथों में भी पड़ जाते हैं। देश परदेश में प्राण इंग्लैंड के लंदन शहर में जाते हैं जी, उनकी खोज में देवानंद भी लंदन जाते हैं जी। ऐसी कई फिल्मों के नाम आप सबने बताए हैं, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर एक और हमारे श्रोता बड़े अच्छे से लिख रहे हैं कि यह कड़वी सच्चाई है कि कई बार लोग रिश्तों में पैसे और भौतिक सुखों के बदले भावनात्मक जुड़ाव और सम्मान और अपमान, अपनापन के लिए तरसते हैं। अक्सर ऐसा इसलिए होता है कि पैसा एक सीमा तक आराम और सुरक्षा दे सकता है, लेकिन यह प्यार, भरोसा, मानसिक शांति नहीं कर ही सकता। लोग आर्थिक रूप से संपन्न हो जाते हैं, लेकिन रिश्तों में संवाद, अपनापन गायब हो जाने के कारण वे भीतर से अकेले पड़ जाते हैं। जी बिल्कुल सही। हमारे एक और श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि इंसान अक्सर थोड़ी सी कमाई और लालच के लिए अमूल्य पारिवारिक संबंधों और अपनों का साथ पीछे छोड़ देता है, धन कमाने के लिए घर आंगन छोड़ देता है, वही बात है, परदेसी हो जाता है। परंतु हमारे एक श्रोता ने बड़ी अच्छी बात लिखी, उन्होंने एक पद्यांश का जिक्र किया है महाकवि सूरदास की रचना का, कि उन्हें भ्रमर गीत की याद आ रही है। जी ये बहुत खूबसूरत भ्रमर गीत है, जब जब उद्धव गोपियों के पास जाते हैं और गोपियों से इस बात के बारे में बातें होती हैं कि कृष्ण क्या है, कैसे हैं, कहाँ हैं, तब गोपियां जब उस भ्रमर गीत में अपनी व्यथा को कहती हैं, उस व्यथा को यहां पर इन्होंने लिखा है कि कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अरद अवधि वधि हमसों हरि आहार चली जात। और इस बात में वह बड़े अच्छे से बता रही हैं कि उद्धव यानी उद्धव दादा उस परदेसी कृष्ण की बातें क्यों कह रहे हो, जो एक बखवाड़े का वादा कर गया था और अब तक एक महीने से अधिक बीत गए हैं और वो अभी तक आया नहीं है। तो यहाँ पर जब परदेस कोई चला जाता है और परदेस से वापस नहीं आता है, तो वहां पर वो गया क्यों था, इसके पीछे के भी कई सारे प्रश्न बनते हैं। हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी बातें लिखी, उन्हीं बातों में से एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है, वह प्रश्न मैं आपको बस छोड़ देती हूँ कि क्या हर बार एक इंसान केवल पैसे कमाने के लिए जाता है? आपके अपनों में से कितने लोग शहर से बाहर गए हैं किसी उपलब्धि के लिए, या देश हित के लिए, या कभी किसी और काम के लिए, बताइएगा जरूर। और इसके साथ मैं आपको अगला गीत सौंप रही हूं, ये गीत बहुत अच्छा है, बता दीजिए कि इस गीत के गायक कलाकार कौन है, जल्दी से बताइएगा। और बताइए कि आपके में से अपना कोई गया होगा, हम दूसरे पक्ष से बात कर रहे हैं, देख कर देखिए कि आपके उस ओर से कोई बाहर गया होगा, उसके जाने का कारण क्या था।

हम सुन रहे थे ये सुंदर सा गीत जो कि फिल्म आवारा में आवारा से लिया गया, शैलेंद्र के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत है। और हमने आपसे पूछा था कि बता दीजिए इसके गाय इस गीत के गायक कलाकार कौन है, तो आप सभी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया, लता मंगेशकर। और हम उसमें जोड़ देते हैं उनके साथ गाया साथियों ने। चलिए हम आपसे पूछ रहे थे कि अगर कोई बाहर जाता है तो आप बताइए, अगर कोई आपकी पहचान का है जो कभी बाहर गया है तो बताइए कैसा क्या हुआ। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे अपने तो बहुत लोग विदेश गए पढ़ाई करने के लिए, लेकिन वहाँ रहते हुए नागरिकता मिलने के बाद घर वापस आने को तैयार नहीं है, क्या कर सकते हैं, पलायन भी जीवन का एक हिस्सा है। ठीक है, हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि बेटा कमाने के लिए बाहर गया था, बहुत दिनों तक विदेश में रहा, टिक नहीं सका, वापस आ गया और अब तो बहू भी जाने को तैयार नहीं है। जी अच्छी बात है। हमारे श्रोता ने लिखा कि फिल्म आप लौट चले में एक लड़का विदेश जाता है, लेकिन वहाँ सब कुछ मिलने के बाद अंत में वापस आने के लिए मजबूर हो जाता है। जी हमारे श्रोताओं ने बड़े अच्छे से उत्तर दिए कई सारी चीज प्रश्नों के, और इन प्रश्नों में से एक प्रश्न मेरी ओर से आपके लिए आता है कि विचार करते हैं हम सब मिलकर कि जो अपना घर छोड़कर, अपना वतन छोड़कर, सीधे देश छोड़ने की बात करते हैं, जो अपना घर छोड़कर, जो अपना देश छोड़कर बाहर जाते होंगे, उन्हें किन किन परेशानियों का सामना करना होगा, जल्दी से बताइएगा कि उन्हें क्या क्या परेशानियां होती होंगी। आप ये परेशानियां हमारे साथ साझा कीजिए। तब तक हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत, और बता दीजिए इस गीत में को हमने किस फिल्म से चुना है, यानी ये गीत किस फिल्म से है, उस फिल्म का नाम आपको बताना है। और तब तक ये भी बताइए कि जो लोग विदेश जाते हैं उन्हें किन किन चीजों का सामना करना पड़ता होगा, किन परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा।

हम सुन रहे थे गीत लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। हमने आपसे पूछा था ये किस फिल्म का गीत है, तो आप सभी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया, अर्पण फिल्म का यह गीत है। और हमने आपसे और भी एक बात पूछी थी कि परदेश जाकर कितनी समस्याएं होती होंगी, तो हमारे श्रोताओं ने बड़े अच्छे से उत्तर दिए हैं कि जब परदेश जाते हैं तो अपने आप में बड़ी चुनौती है, क्योंकि वहां जाकर सारे काम उन्हें स्वयं करने पड़ते हैं। जी, ये बात भी सही है। उसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने ये बात भी बताई कि वहां जाते हैं, वहां मिलता तो सब कुछ है लेकिन अपनापन नहीं मिलता। आपने बात तो बिल्कुल सही कही है कि अपनापन तो नहीं मिलता है। इसके साथ ही कई बार हमारे श्रोताओं ने बताया कि कई बार विदेश जाते हैं तो दूसरी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि वह उनके देश के नहीं है, तो एक व्यक्ति अपने देश के व्यक्ति का पहले साथ देगा ना कि आपका, तो ये समस्याएं भी, कुछ इस तरह की समस्याएं भी शायद उनके जीवन में आती होंगी। ये सारी समस्याओं के साथ एक और बहुत बड़ी समस्या हमें लगता है कि उनके जीवन में आती होगी, जिसके बारे में भी हमारे श्रोता ने लिखा है कि अपनत्व। उसने लिखा है कि उनके परिवार के लोग, बहुत से लोग परदेश में हैं लेकिन जब जब वो भारत आते हैं उनमें अपनत्व की कमी का एहसास लगता है। ऐसा नहीं होता, कई बार क्या होता है जब लोग दूर रहते हैं ना, तो हम और वो एक ही तार पर यानी एक ही बात पर नहीं चल रहे होते हैं, तो कभी कभी जब वो बातें समझ में नहीं आती तो अपनत्व शायद कम लगने लगता होगा। हमारे श्रोता लिखते हैं, हम बहुत पहले दिल्ली मुंबई नौकरी के लिए गए थे और असफल रहे। घर से 2 किलोमीटर दूर गोरखपुर में प्राइवेट नौकरी करके दिन गुजारे। हफ्ते में बार बार घर आना होता था, फिर हम परदेश के का अनुभव क्या बताएं। जी बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि जब बाहर गए थे तो उन्हें सबसे ज़्यादा पापा मम्मी और अपने दोस्तों के साथ पौधे पक्षियों की भी बड़ी याद आती थी, और उससे भी अधिक जिस बेटे को यहाँ छोड़कर गए थे। जी, और उन्होंने ये भी लिखा कि उन्हें 1 बजे की विविध भारती की गीत माला की भी बड़ी याद आती थी। जी, अब हम उसे सुरीला सफर के रूप में आपको सुनाते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हर बरस भारत से करीब 3 करोड़ 30 लाख लोग विदेश की यात्रा करते हैं। 2 करोड़ लोग घूमने जाते हैं, कुछ लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं, कुछ काम धंधे के सिलसिले में जाते हैं। जी, हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से बताया कि उनका कोई उनका भाई जो है वो बाहर पढ़ने गया था अमेरिका, और उसके बाद फिर वो वापस आ गया। कुछ कुछ कारण हुए और उन्होंने अपने जीवन में कई सारे काम किए। हमारे एक श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि इसी विषय को लेकर, कि जब जो परदेसी होता है उसकी जिंदगी जो दो दुनिया जो है वो दो में बटी रहती है। एक दुनिया वहां जहां वह अपने सपनों के लिए संघर्ष कर रहा होता है, और दूसरा जहां वह लौट कर आना चाहता है। हर त्योहार, हर खुशी, हर दुख में सबसे ज्यादा अपने घर की कमी महसूस होती है। उसे मालूम है कि मेहनत से किसी अपने की आंखों में खुशी आएगी, और परदेसी शरीर से भले दूर हो जाए लेकिन उसका मन हमेशा अपने गांव, अपने शहर, अपने लोगों के बीच में रह जाता है। बिल्कुल सही बात है। अब परदेश जाने वालों की तो बहुत सारी बातें हमने कर ली, और परदेश जाने वालों की समस्याओं के बारे में भी हमने चर्चा कर ली। अभी हमको ये बता दीजिए कि अगला जो गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, उस गाने को संगीतबद्ध किसने किया है, यानी संगीतकार कौन है। पर इसके साथ एक बात और बताइए कि अगर आपको कभी मौका मिलता, कभी एक चांस मिले, एक मौका मिले अपने देश से बाहर जाने का, वापस आने का भी चांस है, यानी आप बाहर जा रहे हैं तो आप वापस भी आएंगे कुछ ही दिनों में, कुछ दिनों के लिए परदेसी होने का मौका मिले, तो आप अपने देश से कहाँ जाना चाहेंगे, किस जगह पर घूमने जाना चाहेंगे या किस जगह पर जाकर परदेसी बनना चाहेंगे, जरूर से बताइएगा। तब तक सुनिए ये गीत और

यशकर किशोर कुमार और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल। और हमने आपसे पूछा कि इसके संगीतकार कौन है, तो आप सबने सही बताया, इस गीत के संगीतकार राजेश रोशन हैं। और हमने आपसे पूछा कि अगर आप कहीं जाना चाहेंगे, तो हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे उत्तर दिए कि हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि अब हमें विदेश नहीं जाना, बहुत दूर है, हाँ अमृतसर, कश्मीर और मुंबई आना है विविध भारती में। जी जरूर, स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे कोई परिवार के जन है जो फ्लोरिडा, अमेरिका में और कतर में रहते हैं, तो वो देश वो घूमकर आए हैं, तो ऐसी कोई उनकी ख्वाहिशें ज़्यादा दिख नहीं रही हैं। इसके साथ ही कई सारे लोग का ये कहता है इंग्लैंड जाना है, कोई कहता है स्विट्जरलैंड जाना है, किसी को ऑस्ट्रेलिया जाना है, किसी को कहीं जाना है, सभी को सभी जगह जाकर घूमकर आना है और घूमकर वापस आना है ना। ये बहुत अच्छी बात है कि हम एक विचार रखते हैं कि जब हम बाहर जाएं तो वापस आएं। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि मेरे पति जब छोटे उनके पति जब उनके बच्चे छोटे थे, तब वो एनजीसी में बहुत अच्छी जॉब करते थे, तो वो चले गए, तो बच्चों के साथ सास ससुर देवानंद के साथ रह गए, उनको भी बहुत तकलीफ हुई, और बच्चों के साथ सबके साथ रहने के बाद भी तकलीफ तो इनको भी हुई। तो उनका कहना है कि बाद में उनके पति वापस आ गए तो घर बड़ा खुशनुमा हो गया। हमारे एक श्रोता ने बहुत ही आवश्यक बात लिखी, वो लिखते हैं कि जब बाहर जाते हैं तो ट्रेन में रिजर्वेशन की समस्या आती है दीपावली आदि त्योहारों के समय अपने परिवार तक लौटने के लिए। जी हाँ, ये समस्या भी, जब भारत के लोग भारत में ही किसी और शहर में काम करते हैं तो ये समस्या तो आती है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं विदेश में खाने पीने की समस्या होती है, अमेरिका में 97% लोग मांसाहारी हैं और भारत में शाकाहारी लोग निवास करते हैं, और मांसाहार और शाकाहार की तो समस्या है, उसके साथ एक और समस्या है स्वाद की। हमारा स्वाद अलग है, उनका स्वाद अलग है, हम मसालों भरा भोजन करते हैं और वहाँ पर वैसा भोजन मिलता नहीं, तो शायद समस्या तो होती है। और हमारे एक श्रोता लिख रही है इस चीज़ के लिए बड़ी सकारात्मक बात लिखी है कि उनकी बेटी जब बाहर गई थी उसे घर की बड़ी याद आती थी, धीरे धीरे नए माहौल में ढल गई, अब छोटी बड़ी समस्या का सामना खुद करती है और आत्मविश्वास भी उसका बढ़ रहा है। बिल्कुल सही है, ये सारी बातें तो चल रही हैं, लेकिन एक बड़ा गंभीर सा प्रश्न मेरे दिमाग में आया है अभी आपसे बात करते करते, हमारे श्रोताओं की टिप्पणियों को पढ़ते पढ़ते, कि जब भारत के शिक्षित बच्चे विदेश जाते हैं तो विदेश जाने के बाद उनका क्या होता होगा, यानी हमारे भारत का क्या नुकसान होता होगा और भारत का क्या लाभ होता होगा, यानी हमारे देश का क्या लाभ या क्या नुकसान हो रहा है। इस प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिए इस गीत के साथ कि हमारे देश का जब पढ़ा लिखा बच्चा विदेश जाता है तो हमारे देश का क्या लाभ है और क्या हानि है, जरूर से बताइए। और ये गीत मैं आप सबको सौंप रही हूँ और मुझे विश्वास है कि ये गीत तो आप सबकी लिस्ट में पक्का होगा और सबकी पसंद का ये गीत है। सुरेश वाडकर और बेला की आवाज में ये गीत है, समीर के बोल है, नदीम श्रवण का संगीत है। बताइएगा फिल्म कौन सी है।

जी, आप सबने सही पहचाना। हम राजा हिंदुस्तानी फिल्म का यह गीत सुन रहे थे और हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि आप अगर भारत का जो शिक्षित बच्चा है वो अगर विदेश जाता है तो क्या होता है, इसका उत्तर हम आपसे सुनना चाहेंगे। ज़रूर से इसका उत्तर दीजिएगा। और बहुत खूबसूरत सा बात है कि हमारे श्रोता बता रहे हैं कि वो जब विदेश, वो शाकाहारी हैं विदेश, क्या उन्हें भारत में भी दिक्कत आती है कई बार। अच्छा, अब हम विदेश को छोड़कर जब हम अपने ही देश में आते हैं और अपने गाँव को छोड़कर बाहर जाते हैं, तो जाने के लिए या आप कभी उस जगह पर काम करने के लिए गए होंगे तो कई सारी चीजें भी तो नई नई मिलती है ना। कई सारे रिश्ते मिलते हैं, कई सारे लोग मिलते हैं, अलग अलग संस्कृतियां मिलती हैं, उन सब संस्कृतियों के साथ भी जुड़ जाते हैं। और जो विदेश जाकर रहते हैं वो लोग भी अपने जीवन में बड़ी अलग तरीके से अपनी एक दुनिया सजाते हैं। हाँ, रिश्ते जो अपने रक्त के हैं ये अपने हैं, वो छूट भी जाते हैं। तो जल्दी से बताइएगा कि कभी कोई ऐसा मजबूत रिश्ता आपका छूटा है जो आपको छोड़कर कभी चला गया हो?

हम सुन रहे थे माचिस फिल्म का ये गीत हरिहरन सुरेश वाडकर विनोद सहगल और केके की आवाज में गुलजार के बोल और विशाल के संगीत के साथ। हमने आपसे प्रश्न पूछा कि भारत के पढ़े लिखे बच्चे जब विदेश जाते हैं तो लाभ होता है हानि होता है, जो भी आपके मन में विचार है वो आप अवश्य रखें। तो हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से उत्तर दिए हैं कि कई बार विदेशों में गए बच्चे के माँ बाप इतने अकेले हो जाते हैं कि मृत्यु पर अगल बगल के पड़ोसियों को भी पता नहीं चलता, और जब तक 3-4 दिन बाद फोन करे तब पता पड़ता है, और कई बार वीजा आदि की समस्याओं के कारण भी कई सारी चीजें होती हैं। हमारे एक और श्रोता लिखता है, रिश्ता कैसा भी हो दर्द बड़ा सहनीय होता है, उसे भूलना बड़ा कठिन है। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां रहती हैं कि हमें दूर जाना भी होता है, दूर जाकर भी दिल तो उस इंसान से जुड़ा ही रहता है, क्योंकि रिश्ते कांच के नहीं होते जो टूट जाएं, दिल से जुड़े होते हैं। कितनी सकारात्मक बात आपने कही है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि शिक्षित बच्चे विदेश जाकर नौकरी करते हैं, वहां की उपलब्धियों से उनका हुनर दिखाई देता है, राष्ट्र और मजबूत होता है, पर अपने देश में केवल नाम की प्रसिद्धि मिलती है, लाभ कुछ नहीं मिलता। नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपने देश में जब काम करते हैं तब आपको लाभ बहुत मिलता है, यहाँ पर रहकर भी कई सारे बच्चों ने बहुत कुछ कमाया है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि वो जगदलपुर गए थे बस्तर, वहाँ का कल्चर, वहाँ का चित्रकूट जलप्रपात, हरे भरे जंगल, हरियाली उनको आज भी याद है, मन मचल जाता है। हाँ, बहुत सुंदर जगह है ये, बहुत खूबसूरत जगह है, बड़ा आनंद आता है जगह पर, वो बड़ा अपनापन भी है लोगों में। वैसे भारत के किसी भी क्षेत्र में चले जाते हैं हर जगह प्रेम ही मिलता है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि आजकल विदेश जाने वाले विद्यार्थी वापस आते तो अपने साथ अंग्रेजी मैम लेकर आते हैं। नहीं, ऐसा सभी नहीं करते हैं। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि जब हमारे देश के बुद्धिजीवी जब उसी ज्ञान को प्रदेश में जाकर सेवाएं देते हैं तो कभी कभी गर्व होता है, उससे अधिक दुख भी होता है कि इसी ज्ञान को भारत माँ को समर्पित करते तो करोड़ों लोग लाभान्वित होते। मैं कई बच्चों को जानती हूँ जो 5-6 साल बाद वापस आ गए, क्योंकि वहाँ उन्हें अपनापन और अपने देश की हर बात याद आती थी, इसलिए वो वापस आ गए। कितने अच्छे बच्चे हैं जो अपने देश के लिए वापस आ गए। इसके साथ उन्होंने, हमारे श्रोता लिखते हैं, अपने बच्चों को कहा कि कम कमा कर भी अपने देश में रहकर तरक्की करने की सलाह दी गई है। हमारे श्रोता ने लिखा, भारत का बच्चा विदेश क्यों जाए, इस देश में अपार संभावनाएं हैं। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं, जब हमारे देश के बच्चे विदेश जाते हैं तो देश को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कई महत्वपूर्ण लाभ होते हैं, इससे विदेशी मुद्रा रेमिटेंस की प्राप्ति होती है, तकनीकी एवं ज्ञान का हस्तांतरण और वैश्विक मंच से देश की शाख बढ़ती है, जिससे देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव मजबूत होता है। बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोताओं ने, एक ने और वही विवाह वाली बात को कहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सब, जो कुछ कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है। मैं जब विद्यालय में पढ़ा करती थी तब मेरे शिक्षक ने एक बात बहुत अच्छी सिखाई थी कि जब आप विदेश जाते हैं तो एक काम करिए, आप विदेश जाइए लेकिन विदेश जाकर वहाँ कुछ देर कुछ रोज रहकर वापस आ जाइए, क्योंकि वहाँ पर जो आप सीख कर आएंगे देख कर आएंगे वो अपने देश में अगर लगाएंगे तो बड़ा मजा आ जाएगा, और वो भारत में आकर उस चीज को लगाएगा तो भारत की साख और बढ़ जाएगी। मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी, आप भी अपने लोगों को बता सकते हैं। हमारे लोग लिखते हैं कि पहले लोग अपने

प्रदेश से दूसरे राज्य में कमाने जाते थे तो उन्हें परदेश कहा जाता था। और ऐसा उन्होंने बताया। इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं उनकी भाई की कई ट्रांसफर कई जगह होती है, कई सारी संस्कृति से वो शिक्षा भी लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। ये बहुत सारी बातें हैं कि अलग अलग वर्गों में अलग अलग लोग बाहर जाते हैं, और जब वो बाहर जाते हैं तो हम उनसे बस यही बात कह सकते हैं कि आप चले तो गए हैं लेकिन आपका देश आपसे बहुत प्यार करता है। इस गीत के गायक कलाकारों के नाम बताइए।

हम सुन रहे थे ये गीत आप लौट चलें, और हमने आपसे पूछा इसके गायक कलाकारों के बारे में, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया, उदित नारायण और अलका याग्निक इस गीत के गायक कलाकार हैं। हमारे श्रोता जो हैं उन्होंने एक बड़ी दिल को कचोटने वाली बात, या कहें हृदय से रोने वाली बात लिख दी है, जहां पर सच में हर किसी का हृदय द्रवित हो जाएगा। वो लिखते हैं कि जब पहली बार बेटा विदेश जाता है तो माँ का कलेजा मुंह में आ जाता है और माँ को बहुत घबराहट होती है, होती ही होगी ना, अपने हृदय के टुकड़े को अपने से दूर भेजने में। हमारे श्रोताओं ने कई चीजें बताई हैं विदेश जाने पर, कि विदेश चले जाते हैं, परिवार दूर हो जाता है, पर कई बार उस ओर से देखें तो उनकी भी मजबूरी होगी जो उन्हें जाना पड़ा। अपने घर को छोड़कर कोई नहीं जाना पड़ता, पर कई बार रोटी उन्हें दूर खींच ले जाती है और कई बार तो वापस आने का रास्ता भी नहीं मिलता। और ऐसे समय में हम और आपने जो चिट्ठियां लिखी होती हैं, उन्हें संदेश भेजे होते हैं, उन्हें प्यार भेजा होता है, वो उनका साथ देता है। हमारे श्रोता बताते हैं उन्होंने ये फिल्म करतारपुर सनम सिनेमा में देखी हुई थी। हमारे श्रोता बताते हैं कि वो नेपाल घूमने जाते थे और दोस्तों को कहते थे कि विदेश गए हैं। हाँ तो अच्छी बात है ना, घूमने तो गए हैं। तो चलिए एक काम कीजिए, जितने लोग आपसे दूर रहते हैं या जो लोग दूर रहते हैं, दोनों आपस में चिट्ठियां जरूर भेजिए, व्हाट्सएप मैसेज, वीडियो कॉल, ये सब तो होता रहेगा, लेकिन चिट्ठियां एक बार नहीं, कई सौ बार एक दूसरे की याद, एक दूसरे के प्यार में डुबो देती हैं। तो चलिए सुनते हैं ये गीत, और बताइएगा ये गीत गाया किसने है।

0: चिट्ठी आई।
1: और इसी के साथ हमारे एक श्रोता ने एक चिट्ठी लिखी है छोटी सी, और वो चिट्ठी ऐसी है कि देसी बायना सब जग मीठा, यह विद्यापति जी ने कहा है। बिल्कुल, अपना देश जहाँ है, जहाँ की मिट्टी, वहां से खान पान, वहां से गोली, और वहां अपनापन दुनिया की सारी सुख समृद्धियों से ऊपर है। पर दुनिया कहीं भी बहुत सुख समृद्धि हो, सोने चांदी के पलंग बिछावन है, पर हमें तो अपने भारत की खटिया ही बहुत प्यारा है। जी धन्यवाद। और हम सुन रहे थे नाम फिल्म का यह गीत, पंकज उदास और साथियों ने इसे गाया। आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ आज का सुरीला सफर यहीं पर समाप्त होता है। सदा सुखी रहिए। नमस्कार, प्रणाम।

है उसे हर बात पर खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो जानता है कि हर बहस जीतना सफलता नहीं है, बल्कि सही समय पर सही बात कहना ही असली समझदारी है। कुछ लोग हालात के आगे बहुत जल्दी हार मान लेते हैं और कुछ आखिरी दम तक मुकाबला करते रहते हैं। इंसान अगर अपने दिल और दिमाग पर नियंत्रण कर ले तो वो अपने जीवन में ऊंचे से ऊंचा मुकाम भी हासिल कर सकता है, लेकिन अगर वो जीवन में मिलने वाली असफलताओं को ही अपनी नियति मान ले तो वो निराशा की ऐसी खाई में गिर सकता है जहां से बाहर आना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसलिए वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, बहुत मजबूत होता है वो इंसान।

मजबूत इंसान बनने के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर काम करना बेहद जरूरी है। खुद को अनुशासित रखें, चुनौतियों से घबराने की बजाय

उन्हें सीखने का अवसर माने। कठिन समय में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना ही असल मजबूती है। भीतर से मजबूत और निडर बनने के लिए चुनौतियों से हमें डरना नहीं बल्कि चुनौतियों का डटकर सामना करना आना चाहिए और यही जीवन के लिए बेहद जरूरी भी है।

महान विचारकों और दार्शनिकों के अनुसार मानसिक मजबूती और दर्द सहने की क्षमता का विकास केवल परिस्थितियों से भागने में नहीं बल्कि उनका डटकर सामना करने में है। आंतरिक दृष्टि से मजबूत व्यक्ति अपनी कमजोरियों और ताकतों को स्पष्ट रूप से जानते हैं और खुद को अंधेरे में नहीं रखते। साथ ही ये भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय अपने मूल्यों और नैतिकता के अनुसार सही राह पर चलते हैं। भीतर से मजबूत और दृढ़ व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहता है और

अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता। चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों, ऐसे मजबूत लोग शिकायत करने के बजाय समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

0: दोपहर के 2:15 होने को हैं, बस थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू, विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र के सार्थक होने की उम्मीद जताई, कहा इससे देश का कल्याण होगा। सर्वोच्च न्यायालय में आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किशिनो में मोल्दोवा के राष्ट्रपति माया सांधू के

0: साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की और मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हो रही है। दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे चौथे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का नीट मुद्दे पर हंगामा जारी रहा। शोर शराबे के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज सवेरे सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही सदस्यों ने हाल ही में दिवंगत हुए 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सदन ने कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि श्री अस्सानी ने भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: मुझे अत्यंत दुख के साथ सभा को कतर के फादर अमीर महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन के बारे में भी सूचित करना है। महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल थानी ने जून 1995 से जून 2013 तक 18 वर्षों तक कतर के अमीर के रूप में कार्य किया। उन्होंने आधुनिक कतर की नींव रखी। उन्होंने भारत कतर संबंधों के संवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
0: लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हुई। सवेरे प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दा उठाया। अध्यक्ष ने विपक्ष से सदन की कार्यवाही चलने देने और सदन की मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया।
1: मेरा आग्रह है कि सदन का प्रथम दिन है और इस परंपरा को तोड़ना चाहिए कि प्रथम दिन सदन नहीं चलेगा। मैं हमेशा आपसे आग्रह कहता हूं कि आपको पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय मिलेगा। नियमों के तहत नोटिस दीजिए। सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है।
0: पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने शून्यकाल चलाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके बाद सदन की कार्यवाही 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 1 बजे कार्यवाही शुरू होने पर भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके कारण कार्यवाही दोपहर 2 बजे और इसके बाद 2:30 बजे तक स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही नवनियुक्त और पुनर्नियुक्त सदस्यों को शपथ दिलाई गई। बाद में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामला उठाने की कोशिश की।
2: टू पुट फोर्थ माई व्यूज अबाउट दिस पेपर लीक एंड नीट एग्जामिनेशन घोटाला, जो लाखों बच्चों की भविष्य है, उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे आए हैं।
0: सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदस्यों से सदन की मर्यादा बनाए रखने की अपील की।
3: आई अपील टू मेंबर्स अक्रॉस ऑल साइड्स ऑफ द हाउस टू अपहोल्ड द डिग्निटी, डिसिप्लिन एंड डेकोरम ऑफ दिस ऑगस्ट इंस्टीट्यूशन। व्हाइल डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आर इंटीग्रल टू पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, दे मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन अ मैनर दैट प्रिजर्व्स द सैंक्टिटी ऑफ द हाउस।
0: शोर शराबा जारी रहने पर सदन की कार्रवाई कई बार बाधित हुई और अब सदन की कार्रवाई 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर वर्तमान में 33 से बढ़ाकर 37 करना है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत 8 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया गया है। लोकसभा में आज पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत देश भर में 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का सर्वेक्षण किया गया है। जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा ने आज कहा कि विपक्ष को संसद में रचनात्मक मुद्दे उठाने चाहिए। मॉनसून सत्र के पहले दिन संसद के बाहर आकाशवाणी से बातचीत में श्री झा ने कहा कि सरकार ने एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए कीमतों को नियंत्रण में रखकर सराहनीय काम किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार में

0: स्टार्टअप्स की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं।
1: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय आज अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची तथा वी मोहन की पीठ इस मामले से संबंधित चार अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल SIT ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में न्यायालय के समक्ष अपनी स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आज ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस गुट को पार्टी के 3 बैंक खातों को संचालित करने की अंतरिम अनुमति देने से इनकार कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने इन 3 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया था। इनमें 440,42,00,000 रुपए जमा थे। ये कार्रवाई राज्य पुलिस द्वारा दर्ज FIR के आधार पर की गई जांच के सिलसिले में की गई थी। संसद के मॉनसून सत्र के मद्देनजर नई दिल्ली में यातायात प्रतिबंध लागू किए गए हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों को रफी मार्ग, मोतीलाल नेहरू मार्ग, मौलाना आजाद रोड, संसद मार्ग, अशोका रोड, तालकटोरा रोड, राजेंद्र प्रसाद रोड, जनपथ तथा आसपास के मार्गों से बचने की सलाह दी है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने कुछ मीडिया चैनलों पर प्रसारित उन दावों का खंडन किया है जिनमें नई दिल्ली के जंतर मंतर पर कथित तौर पर बल प्रयोग और गिरफ्तारियों की बात कही गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि विरोध प्रदर्शन पर पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से चलाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि सेवा तीर्थ, राजीव चौक और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों पर अब इंटरचेंज सुविधाएं और गेट खुल गए हैं। त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक अनुराग धनखड़ आज अगरतला पुलिस मुख्यालय में मृत पाए गए। उनके निधन का कारण अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने 3 देशों के दौरे के पहले चरण के अंतर्गत मोल्दोवा गणराज्य में अपने कार्यक्रमों की शुरुआत की। उनको किशिनाव स्थित राष्ट्रपति भवन में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने मोल्दोवा की राष्ट्रपति माई सांदू के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करना था। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत हुए हैं।
2: मोल्दोवा की पहली राज्य की यात्रा है, ये हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और हमारे दोनों देशों के बीच बढ़ती मित्रता और आपसी विश्वास को दर्शाती है। भारत और मोल्दोवा 3 दशकों से मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करते आ रहे हैं। भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद शांति, विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति हमारे साझा प्रतिबद्धता के अनुरूप हमारी साझेदारी निरंतर बढ़ती रही है।
0: अमरीका ने लगातार 9वें दिन भी ईरान पर हमले जारी रखे, जिसके कारण होर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर तनाव और बढ़ गया है। अमरीका ने दक्षिण पश्चिम ईरान के होर्मुज शहर को निशाना बनाया, वहीं जॉर्डन, कुवैत और बहरीन ने ईरान के नए हमलों की सूचना दी है। अमरीका ईरान के बीच का टकराव पड़ोसी देशों तक फैल गया है। इस बीच

0: जॉर्डन के सरकारी प्रसारक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि देश के वायु रक्षा प्रणालियों ने ईरान से जॉर्डन की ओर दागी गई 3 मिसाइलों को बीच में ही रोक दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तराखंड में सुरक्षा कारणों को देखते हुए एहतियात के तौर पर आज चार धाम यात्रा कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बारिश से मैदानी और पहाड़ी दोनों इलाकों में जनजीवन पर असर पड़ा है।
1: उत्तराखंड के कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी और चार धाम यात्रा मार्ग पर कई स्थानों पर भूस्खलन की खबरों के मद्देनजर तीर्थ यात्रा को अस्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया गया है। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया है कि जहां भी सड़कें अवरुद्ध हो वहां तीर्थ यात्रियों के लिए सुरक्षित व्यवस्था की जाए और यात्रा तभी दोबारा शुरू की जाए जब मार्ग पूरी तरह से सुरक्षित घोषित कर दिए जाएं। मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और उधम सिंह नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट और रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया है। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: उधर असम में लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है। ऊपरी असम के कई जिलों में हजारों लोग प्रभावित हैं। शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। सेना, राष्ट्रीय और राज्य आपदा मोचन बल को राहत और बचाव कार्यों के लिए तैनात किया गया है। उधर पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में भी तेज बारिश हो रही है। आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख तथा उत्तराखंड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, सिक्किम और उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरल, माहे, कुंकड़, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में अगले 3 दिन तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि पश्चिम मध्य अरब सागर के अधिकांश हिस्सों और दक्षिण पश्चिम तथा पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों, उत्तरी तमिलनाडु तट के आसपास और उससे दूर अगले 2 दिन के दौरान तूफानी मौसम रहने की संभावना है। और अब खेल खबरों के साथ है मुकेश।
2: फीफा फुटबॉल विश्व कप का इतिहास लिखा जा चुका है। स्पेन ने दूसरी बार पुरुष फीफा विश्व कप अपने नाम कर लिया है। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। इस हार ने अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी के शानदार दौर का भी अंत कर दिया है। 48 टीमों के साथ ये अब तक का सबसे बड़ा फीफा विश्व कप था। ये टूर्नामेंट अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में खेला गया। और अगर बात करें पुरुष क्रिकेट की तो इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट पर 387 रन बनाए। भारतीय टीम 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र के सार्थक होने की उम्मीद जताई। सर्वोच्च न्यायालय में आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किशनौ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया संधू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। और मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

हम सुन रहे थे ये गीत आज और कल फिल्म से आशा भोसले की आवाज में साहिल लुधियानवी के बोल और रवि के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में एक और गीत जिसे गाया है सुमन कल्याणपुर ने। नूर देवासी ने इसे लिखा है, विपिन ने इसे संगीतबद्ध किया है। बागी शहजादा फिल्म से ये गीत है।

0: ये गीत हमने सुना गुमराह फिल्म से, महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाज में, साहिर लुधियानवी के बोल और रवि के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
2: वो तेरे प्यार का।
1: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
3: मुबारक हो सबको समाय सोहा।
1: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
4: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
1: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
5: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
1: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।
6: हो तो

0: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
1: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
2: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
0: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अगला गीत, जो कि है फिल्म दिल ही तो है से। आशा भोसले और साथियों की आवाजें हैं, साहिर लुधियानवी के बोल हैं और रोशन का है संगीत।

0: सी भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग।

0: मेरी तन्हाई, सुनहरी गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।

0: हम सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में शकील बदायूनी के बोल और नौशाद के संगीत से सजा हुआ यह गीत, जिसे जो कि है फिल्म मेरे महबूब से।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बद्दूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
3: एक और आ गया। जल्दी बुलबुल, कोई और बकरदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप।

0: काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सुनिए,
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अंतिम गीत, ब्लफ मास्टर फिल्म से मुकेश की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण के बोल और कल्याण जी आनंद जी के संगीत के साथ। और इसी के साथ आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों को और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और हमारे साथ आज हैं चंचल वर्मा। तो चंचल जी, बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है, तो आपका स्वागत करते हैं और बहुत बहुत नमस्कार।
2: नमस्कार मंजरी, आपको भी और हमारे सभी सुनने वालों को नमस्कार। और जब भी हमारी ये जोड़ी साथ में आती है ना, तो बहुत सारे श्रोता इस बात का कमेंट करते हैं कि दो वर्मा बहने या दो वर्मा सखियां साथ में हैं।
1: क्या बात है, देखो
2: तो यूं तो हमारी मुलाकात होती है, लेकिन इस मंच पर आज हम वाकई बहुत दिन के बाद साथ में आए हैं।
1: बिल्कुल, और बड़ा अच्छा भी लग रहा है। और इससे पहले भी हम लोग कुछ कुछ गप्पे मार रहे थे, तो उसमें भी बड़ा आनंद ले रहे थे कि व्यंजन की बात करेंगे तो व्यंजन की ही बातें चल रही थी, है ना। और आज देखो हम लोग व्यंजन की बात करने वाले हैं।
2: बारिश के मौसम में कुछ खास व्यंजन बनते हैं
1: जी,
2: इसे चाट पकौड़ी और तली हुई चीजों का एक खास मजा होता है खाने का। लेकिन आज जिन व्यंजन की हम बात करेंगे, ना तो वो चाट पकौड़ी है ना कोई तली हुई चीजें हैं।
1: बिल्कुल,
2: लेकिन है वो पंजाब के बहुत ऑथेंटिक व्यंजन, पारंपरिक व्यंजन है जिन्हें बड़े चाव से बनाया जाता है, खाया जाता है। और जो हमारे सुनने वाले श्रोता पंजाब के आसपास रहते हैं या वहां से ताल्लुक रखते हैं, वो जरूर इनके बारे में जानते होंगे और रेसिपीज हमें लिखकर भेज रहे होंगे।
1: बिल्कुल, और वो भाई व्यंजन भी तो बता देते हैं कि दाल मखनी और पिन्नी के बारे में हम बात करेंगे।
2: एक है ऐसी सब्जी जो खास मौकों पर बनाई जाती है, या पंजाबी घरों में तो आमतौर पर दाल मखनी बनती ही रहती है। और मीठे व्यंजन की बात करें तो हम पिन्नी बनाएंगे।
1: बिल्कुल, और बारिश के पानी की बचत कैसे की जाए इस पर भी हम चर्चा करेंगे।
2: हाँ, क्योंकि बारिश का पानी हमें, यानी कि बारिश का मौसम तो होता है सिर्फ 3 महीने के का, कभी कभी 4 महीने भी चलता है या कहीं कहीं 2 महीने भी रहता है, लेकिन पानी की जरूरत तो पूरे 12 महीने होती है।
1: बिल्कुल,
2: ताउम्र होती है। और यही पानी होता है जो 3 महीने बरसेगा, लेकिन बाकी के जो और 9 महीने हैं इसी पानी से हमें काम चलाना है, इसीलिए इसकी बचत बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, तो इसके बारे में हमारे साथियों ने भी बहुत सारे कमेंट्स भेजे हैं। और कथा सुधा के अंतर्गत दो बहने का भाग 3 अंतिम भाग हम सुनाएंगे। मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी है ये। तो उससे पहले चंचल एक गीत सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।

0: क्या किया? पास से शुरू करना था ना, और तुमने कहाँ से किया? नी से?
1: अच्छा बाबा, लो पास से शुरू करती हूँ।

0: तो चंचल कितना प्यारा सा ये गीत अभी हम लोगों ने सुना।
1: गृह प्रवेश फिल्म का बहुत सुंदर गीत था और इसके बाद हम सुनने वाले हैं कहानी। तो कथा सुधा के अंतर्गत आज मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बहने का तीसरा और अंतिम भाग हमारी सखियां और सखा सुनेंगे।
2: कथा सुधा भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। कथा सुधा में हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बहने। पिछली कड़ी में आपने सुना,
3: दो बहने दो साल बाद एक तीसरे अजीज के घर मिली और खूब रो धोकर खामोश हुई। तो बड़ी बहन रूप कुमारी ने देखा कि छोटी बहन राम दुलारी सर से पांव तक गहनों से लदी हुई है।
4: इस दो साल में कैसे हुन बरस गया, कौन जाने जेवर किसी से मांग कर लाई हो, कपड़े भी दो चार दिन के लिए मांग लिए हो। उसे ये स्वांग मुबारक रहे, मैं जैसी हूं वैसी ही अच्छी हूं।
3: आखिर रामदुलारी उसे गले मिलकर अंदर चली गई। गुरुसेवक ने कार बढ़ाई। रूप कुमारी ने उड़ती हुई निगाह से रामदुलारी का मकान देखा और ठोस हकीकत सलाख की तरह उसके जिगर में चुभ गई।
4: 75 रुपलियां लाकर मेरे हाथ में रख देते हो और सारी दुनिया का खर्च, मेरा दिल ही जानता है कि मुझे कितनी कतर ब्योत करनी पड़ती है। क्या पहनूं क्या ओढूं, तुम्हारे साथ जिंदगी खराब हो गई। गुरु सेवक को ही देखो, तुमसे कम पढ़ा है, उम्र में भी तुमसे कहीं छोटा है, मगर 500 रुपया महीना लाता है। और राम दुलारी रानी बनी बैठी।
3: ये सिलसिला कई मिनट तक जारी रहा और बेचारे उमानाथ खामोश सुनते रहे।
2: रूप कुमारी क्या राम दुलारी की असलियत जान सकेगी? आइए सुनते हैं आज इस कहानी की तीसरी और अंतिम कड़ी।
3: एक हफ्ता तक रूप कुमारी हैजान की हालत में रही, बात बात पर झुंझलाती, लड़कों को डांटती, शोहर को कोसती,

0: मेरे अख्तियार में है, सब कुछ। मैं जो कुछ कहता हूं वो आंख बंद करके मंजूर कर लेती है, मुझे अपना बेटा समझती है। क्या बेटा? बेटा समझती है मुझे। मैं उनकी सारी जायदाद का मालिक हूं। आपको बताता हूं, मिस्टर लोहिया ने मुझे 20 रुपए का नौकर रखा था। कितना? 20 रुपए का। बड़ा मालदार आदमी था, मगर ये किसी को मालूम न था कि उसकी दौलत कहां से आती थी। मेरे सिवा किसी को मालूम नहीं था, किसी को नहीं, कोई नहीं जानता था। वो खुफिया फरोश है, किसी से कहना नहीं दीदी, किसी से कहना नहीं। वो खुफिया फरोश था, कोकेन बेचता था, लाखों की आमदनी थी उसकी। मैं भी अब वही काम करता हूं। हर शहर में हमारे एजेंट हैं। मिस्टर लोहिया ने मुझे इस फन में यकता कर दिया। जी हां, मजाल है कि कोई मुझे गिरफ्तार कर ले। बड़े बड़े अफसरों से मेरा याराना है, उनके मुंह में नोटों के पुलिंदे ठूस ठूस कर उनकी आवाज बंद कर देता हूं। कोई चू नहीं कर सकता। हिसाब में लिखता हूं 1,000, देता हूं 500, बाकी बाकी यारों का है। बेदरेग रुपये आते हैं, बेदरेग खर्च करता हूं। और वो बुढ़िया, बुढ़िया को तो राम नाम से मतलब है, साधु संतों की सेवा में लगी रहती है, और बंदा चैन करता है, जितना चाहूं खर्च करूं, कोई पकड़ने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। दीदी एक मिनट, ये
1: क्या
0: ये
1: है?
0: थोड़े से रुपए।
1: ये थोड़े से रुपए नहीं है, ये तो पूरा नोटों का बंडल है। कि इतने रुपए?
0: दीदी क्या? ये आपके कदमों का सदका है। मुझे दुआ दीजिए, जो ईमान और उसूल के उपासक हैं उन्हें दौलत लात मारती है। दौलत तो उन्हें पकड़ती है जो उसके लिए अपना दीन ईमान सब कुछ निसार करने को तैयार है। मुझे बुरा न कहिए, जितने दौलतमंद हैं सब लुटेरे हैं, मैं भी उन्हीं में से एक हूं। कल मेरे पास रुपए हो जाए और मैं एक धर्मशाला बनवा दूं, फिर देखिए मेरी कितनी वाह वाह होती है। कौन पूछता है कि ये दौलत मुझे कहां से मिली? किसी को भी देख ली, जो है सो अपने फन में माहिर है, काम इतना सा करते हैं, पैसा इतना सारा बना लेते हैं, हैं? अगर उनकी आमदनी जायज है तो मेरी आमदनी भी जायज है ना दीदी? जायज है ना? जी हां, जरूरतमंदों को लूटकर मालदार हो जाना हमारी सोसाइटी का पुराना दस्तूर है। और दीदी, मैं भी वही करता हूं जो दूसरे करते हैं, और मेरी जिंदगी का मकसद है ऐश करना। मैं भी ऐश करूंगा दीदी, मैं भी लूटूंगा, समझे ना? ऐश करूंगा और खैरात करूंगा। कहिए तो गिनवा दूं, यहां कितने लोग जुआ खेलकर करोड़पति हो गए, न जाने कैसे कैसे गलत काम करके करोड़पति हो गए लोग दीदी। अब मैं भी तो वही कर रहा हूं, क्या गलत कर रहा हूं? मैं भी ऐश करूंगा, लूटूंगा, मैं भी ऐश करूंगा, खैरात भी करूंगा।
2: उमानाथ ने आगे कहा,
3: अरे मिस्टर गुरुसेवक, क्या कर रहे हो? चलो

0: चाय पी लो, ठंडी हो रही है।
1: गुरुसेवक उठा, पैर लड़खड़ाए और जमीन पर गिर पड़ा, फिर संभल कर उठा, झूमता झामता ठोकरे खाता बाहर चला गया। रूप कुमारी ने आजादी की सांस ली। यहां बैठे बैठे उसका दम घुट रहा था। कमरे की हवा जैसे कुछ भारी हो गई थी, जो तरगीबें कई दिन से अच्छे अच्छे दिलावेज रूप भर कर उसके सामने आ रही थी, आज उसे उनकी असली मकरूह घिनावनी सूरत नजर आई। जिस सादगी, खुलूस और इसार की फिजा में अब तक जिंदगी गुजर रही थी, उसमें हरामकारी और आबला फरेबी का गुजरना था। इन दामों में वो दुनिया की सारी दौलत और सारे ऐश भी खरीदने को आमादा न हो सकती थी। अब वो रामदुलारी की तकदीर से अपनी तकदीर का बदला न करेगी। वो अपने हाल में खुश है। रामदुलारी पर उसे रहम आया, जो नमूद और नुमाइश के लिए अपने जमीर का खून कर रही है। मगर एक ही लम्हा में गुरु सेवक की तरफ से उसका दिल नर्म पड़ गया।
2: जिस सोसाइटी में दौलत पुछती है, जहां इंसान की कीमत उसके बैंक अकाउंट और शान शौकत से आंकी जाती है, जहां कदम कदम पर तरगीबों का जाल बिछा हुआ है और सोसाइटी का निजाम इतना बेढंगा है कि इंसान की हद, गजब और फिरोमायगी के जज्बात को उकसाता रहता है, वहां गुरु सेवक अगर रौ में बह जाए तो ताज्जुब का मुकाम नहीं।
1: उस वक्त उमानाथ ने आकर कहा,
3: सुनो, यहां बैठा बैठा क्या बक रहा था भाई? मैंने तो उसे रुखसत कर दिया। जी डरता था कहीं उसके पीछे पुलिस ना लगी हो, कहीं मैं नाकर्दा गुनाह में पकड़ा ना जाऊं।
1: रूप कुमारी ने उसके तरफ माजरत ख्वाहाना नजर से देख कर जवाब दिया,
2: वही अपनी खुफिया फरोशी का जिक्र कर रहा था।
3: मुझे भी मिसेज लोहिया से मिलने की दावत दे गया है, शायद कोई अच्छी जगह मिल जाए।
2: जी नहीं, आप क्लर्की किए जाइए, इसी में आपकी खैरियत है।
3: मगर क्लर्की में ऐश कहां, क्यों ना साल भर की रुखसत लेकर जरा उधर का भी लुफ्त तो उठाऊं।
2: लेकिन मुझे अब वो हवस नहीं रही।
3: मगर एक बात तो है।
2: क्या?
3: मैं तुमसे आकर ये किस्सा कहता तो तुम्हें यकीन ना आता।
2: हाँ, यकीन तो ना आता, और मैं तो कयास भी नहीं कर सकती कि अपने फायदे के लिए कोई आदमी दुनिया को जहर खिला सकता है।
3: मुझे सारा किस्सा मालूम हो गया था। मैंने उसे खूब पिला दी, नशे में बहकने लगा और सब कुछ खुद ब खुद कबूल कर लिया।
2: वैसे ललचाई तो तुम्हारी तबीयत भी थी।
3: हाँ, ललचाई तो है, मगर ऐप करने के लिए जिस हुनर की जरूरत है ना, वो कहां से लाऊंगा।
2: ईश्वर ना करे कि वो हुनर तुम में आए। मुझे तो उस बेचारे पर तरस आता है, मालूम नहीं रास्ते में उस पर क्या गुजर है।
3: नहीं, वो तो अपनी कार पर थे।
1: रूप कुमारी एक मिनट तक जमीन की तरफ देखती रही, फिर बोली,
2: सुनो, तुम मुझे दुलारी के घर पहुंचा दो अभी। हाँ, ले चलो, शायद मैं उसकी मदद कर सकूं। जिस बाग की वो सैर कर रही है, उसके चारों तरफ दरिंदे घात लगाकर बैठे, शायद मैं उसे बचा सकूं। मुझे दुलारी के घर पहुंचा दो, शायद मैं उसकी मदद कर सकूं।
4: कथा सुधा में आपने सुना मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बहनें की तीसरी और अंतिम कड़ी। पात्र परिचय इस प्रकार है, रूप कुमारी रेणु चतुर्वेदी, राम दुलारी ममता सिंह, उमानाथ अजेंद्र जोशी, गुरु सेवक जयंत पात्रिकर, सूत्रधार जी श्याम, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। अगले हफ्ते कथा सुधा में एक नई कहानी के साथ हाजिर हो जाएंगे।

0: विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली, और अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं। और अब हम बात करेंगे मौसम से जुड़ी, यानी बारिश की कुछ बातें। बारिश के पानी की बचत क्यों जरूरी है,
1: बिल्कुल
0: क्यों करनी चाहिए, और अगर हम बात करें कि संदेश हमारे श्रोताओं के आ रहे हैं, तो आज एक बड़ा अच्छा संदेश मैंने पढ़ा। किसी श्रोता ने लिखा है कि आज विषय बहुत कम है, शायद विषयों की कुछ कमी पड़ गई है, इस तरह से हमारे श्रोता ने लिखा है।
1: अच्छा
0: तो उनकी बात का जवाब सिर्फ मैं इतना देना चाहूंगी कि विषयों की कोई कमी नहीं है, लेकिन सोमवार का दिन है और आज के दिन होता है कथा सुधा, जो कि एक बड़ा विषय है जो समय बहुत ज्यादा लेता है। किसी भी कहानी को सुनने के लिए 15, 17, 18 इतने मिनट का समय लग जाता है, और इस दौरान अगर हम बहुत सारे विषय ले लेंगे तो उस विषय के साथ न्याय नहीं हो पाता, उस पर पूरी चर्चा नहीं हो पाती। फिर हमारे श्रोता जो संदेश भेजते हैं हमें बड़े प्यार से, उन संदेशों को भी हम सबको शामिल नहीं कर पाते, जबकि हमारी कोशिश ये रहती है कि हमारे श्रोता जो हमें संदेश लिखकर भेज रहे हैं उनमें से ज्यादा संदेश उनके हम पढ़कर आप सब तक पहुंचा सकें।
1: बिल्कुल
0: तो इसीलिए कथा सुधा का दिन था तो हमने विषय थोड़े कम चुने।
1: बिल्कुल तुमने सही बात कही है, सबको समझ में भी आ गया होगा कि क्या वजह है ना, तुमने रिप्लाई दे दिया। तो चंचल, बारिश का पानी प्रकृति का सबसे शुद्ध और मुफ्त उपहार है। बारिश का पानी जो है, इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पेड़ पौधों के लिए बड़े फायदेमंद होते हैं। तभी तो इस दौरान सब तरफ हरियाली छा जाती है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है, और बारिश के दौरान नदियां, नहर, बांध, कुएं, तालाब, बावड़ियां, झील और सागर, ये सब ऐसे जलाशय हैं जिनमें पानी खूब भर जाता है। वर्ष भर इनमें से पानी उपलब्ध रहता है। वर्षा का जल हमारी प्यास ही नहीं बुझाता, बल्कि संपूर्ण जीवन और पर्यावरण के लिए अमूल्य है।
0: और जैसा आपने शुरुआत में कहा ना कि इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो हमने देखा है बहुत सारे लोग सिर्फ झरनों का जो पानी है वो बोतलों में भर कर लेकर आते हैं, और इस तरह का पानी आजकल तो बाजारों में बिकने भी लगा है, जो कि नेचुरल पानी होता है, उसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं होती है, क्योंकि वर्षा के पानी की और हमें पूरे साल भर इस जल को चलाना है, तो इसीलिए इसकी एक एक बूंद को बचाना बहुत जरूरी है। और इसे इकट्ठा करने के या बचाने के बहुत सारे तरीके हैं, और पीने के पानी के लिए बात करें फिल्टर करने की और शुद्धिकरण की, तो वर्षा के पानी को भी पीने लायक बनाया जा सकता है।
1: बिल्कुल, और घरेलू कार्यों के लिए उपयोग में भी लाते हैं, जैसे कपड़े धोने हुए, बर्तन साफ करना, फर्श की सफाई, और शौचालय में भी उपयोग किया जा सकता है। सिंचाई के लिए जैसे खेतों, बगीचों और किचन गार्डन की सिंचाई में बारिश का जल बहुत उपयोगी होता है।
0: और मंजरी, मुझे याद है बहुत सारे जो बड़े बड़े कपड़े होते थे, दरियां होती थी, जिन्हें हम आमतौर पर धो नहीं पाते हैं, तो छतों पर बारिश के दिनों में उनको रख दिया जाता था, और फिर महिलाएं उन्हीं पर थोड़ा सा ब्रश चला के उन्हें साफ करके, तो इस तरह से भी वर्षा के जल का उपयोग करते
1: बिल्कुल
0: थे।
1: और साथ में वो लोग खुद भी नहा के आनंद भी ले लेती थी,
0: बारिश में भीगने का आनंद भी मिल जाता, और ऐसे कपड़े जिन्हें हाथ से धोना जल्दी से संभव नहीं हो पाता।
1: आज भी चंचल हम लोग यही करते हैं कि जब कभी बारिश होने लगती है ना, तो डोर मैट सारे बाहर डाल देते हैं कि जल्दी से पानी से धार से पड़ पड़ के उनकी धूल निकल जाए, तो इसका एक फायदा मिल जाता है। और चंचल, पशु पक्षियों के लिए वर्षा जल उनके पीने के पानी की जो है वो उसकी मात्रा मिल जाती है उन्हें, और साफ सफाई के काम भी आता है। उद्योगों में शुद्ध किए गए वर्षा जल का उपयोग विभिन्न प्रक्रियाओं में करते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए वर्षा जल हरियाली बढ़ाता है, मिट्टी की नमी बनाए रखता है, और जैव विविधता को सहारा देता है।
0: बहुत सारी जगह ऐसी होती है ना, खासतौर पर हम जंगलों की बात करें, जहाँ पानी डालने पौधों में कोई भी नहीं जाता, तो ये जो बारिश का पानी है ये साल भर तक मिट्टी में जो नमी बन जाती है उससे, उसी से वो जो पेड़ पौधे हैं वो साल भर तक हरे हरे रहते हैं।
1: बिल्कुल, हमने अपने सामने भी देखा है कि मुरझाया सूखा पौधा भी हरा हरा हो गया, पत्तियां निकल आई, तो देखकर बहुत अच्छा लगता है कि लगता है बारिश इन लोग के लिए एक मुफ्त उपहार है। और आग बुझाने और आपातकालीन उपयोग, संग्रहित वर्षा का जल जो है उपयोग आता है, इन आपात स्थितियों में किया जा सकता है। घर के आंगन या बगीचे में अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं जिससे पानी जमीन में समा सके। सीमेंट की जगह जहां संभव हो मिट्टी या इंटरलॉकिंग पक्की सतह रखें ताकि वर्षा का पानी जमीन में जा सके।
0: और बहुत सारे तरीके हैं मंजरी कि हम बारिश के पानी को बचा सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में, और बहुत सारे जो बड़े सोसाइटी हैं महानगरों में, जो बड़ी बिल्डिंग है वहां पर रेन हार्वेस्टिंग प्लांट लगाए जाते हैं। स्कूल, कार्यालय, किसी भी बिल्डिंग की छत पर गिरने वाला जो पानी है उसको इकट्ठा करके जमीन के अंदर तक पहुंचा दिया, तो बहुत बड़े बड़े टैंक बनाए जाते हैं, और ये पानी इतनी ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाता है कि उस सोसाइटी में, उस बिल्डिंग में साल भर भी आपूर्ति दे देता है।

0: और इसमें छत पर गिरते पानी को पाइप के माध्यम से नीचे लाया जाता है और फर्स्ट फ्लश सिस्टम से गंदे पानी को अलग निकाल दिया जाता है, जिससे धूल मिट्टी और पत्तियां टैंक में ना जाएं। फिल्टर यूनिट के द्वारा बजरी और चारकोल डालकर पानी साफ किया जाता है और भंडारण टैंक में साफ पानी जमा कर लिया जाता है।
1: और इसका दूसरा तरीका एक ये भी है कि रिचार्ज पिट, इसमें पानी को जमीन में उतारना होता है और इसमें घर या किसी भी भवन जो है, इमारत जो है, उसके पास 3 से 6 फीट का गड्ढा बनाया जाता है। उसमें ईंट, गिट्टी और फिर रेत भरी जाती है। पानी को पाइप से इसमें गिराया जाता है और इस तरह से भूजल स्तर जो है वो बढ़ जाता है।
0: और इसके साथ साथ एक सोक पिट यानी सोखता गड्ढा भी तैयार करना एक साधन है कि रिचार्ज कुओं, हैंडपंपों या बोरवेल के माध्यम से भूजल स्तर बढ़ाना, खेतों में तालाब बनाकर पानी संचित करना भी एक जरिया है, और गांव में चेक डैम और छोटे बांध बनाना तालाब, झील और पोखरों का संरक्षण एवं गहरीकरण करना होता है।
1: तो इस बारे में और बात करेंगे, लेकिन मुझे लगता है हम गीत भी सुनते हुए चले आगे बढ़े।

0: गीत बड़ा सुंदर सुनवाया, लेकिन हम बात कर रहे थे ना बारिश की, बारिश आ चुकी है और कमेंट्स भी आ चुके हैं। हमारे श्रोता ने लिखा है कि जब हम कॉलेज में थे तब हमारी केमिस्ट्री टीचर वर्षा होने पर लैब में रखी हुई कांच की बड़ी बोतलें और बड़े प्लास्टिक के ड्रम हमसे रखवाती थी ताकि गिरते हुए पानी को इकट्ठा किया जा सके। बाद में हम इस एकत्रित पानी का उपयोग प्रयोगशाला में किया करते थे, क्योंकि ये जल प्राकृतिक रूप से वाष्पीकरण और संघनन द्वारा डिसिल्ट होकर बरसता है, इसीलिए जमीन पर गिरने से पहले की पूरी तरह स्वच्छ और मृदु यानी कि सॉफ्ट होता है।
1: और हमारे एक साथी लिखते हैं, चंचल, बारिश के पानी को बचाने का महत्व, ये गर्मी में पानी की कमी से राहत देता है और इससे जो भूमिगत जल है उसका स्तर सुधरता है, कण में जो जल और उसका स्थल सुधरता है, इसको आप निम्नलिखित तरीकों से बचा सकते हैं। जो आपकी छत में पानी गिर रहा है बारिश का, वहां पर पाइप लगा दे, वो पानी पाइप में जमा हो जाएगा और इसको आप संचय कर सकते हैं और अपने रोजमर्रा के कामों के लिए उसे इस्तेमाल में ले सकते हैं। आंगनों में भी आपके जो बरसात का पानी गिरता है उसको भी आप आंगन से संरक्षण कर सकते हैं, यानी बाल्टी ड्रम वगैरह रख के आप कर सकते हैं। और इसी
0: एक अन्य संदेश है कि कल बचाना है तो जल बचाना है, बारिश एक वरदान की तरह है, बस हमें इसके पानी का प्रबंधन कैसे करना है इस बात को सीखना होगा। प्रकृति किसी से कुछ लेती नहीं, बस देती है, उसी ने हमें जीवन दिया और जिंदा रहने के साधन भी दिए, जैसे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और जिंदा रहने के लिए जरूरी मीठा पानी, यानी ये वो पानी है जो हमें जिंदा रखता है। बाकी खारा पानी तो अथाह भरा पड़ा, यानी कि समंदर की बात करें कि भू जल स्तर पर, यानी कि पृथ्वी पर कितना पानी है, लेकिन इसे पीने लायक बनाना बहुत ही सीमित है। शायद इसीलिए बारिश आती है और पानी के भंडारण के लिए सूरज की गर्मी खींच ले जाती है, वहीं पानी प्रकृति पानी के रूप में प्रकृति से वापस लौटा देती है।
1: क्या बात है।
0: और कटे हुए टीडीएस की तरह उस पानी को हमें सहेज कर उसका उपाय करना चाहिए।
1: जी, बहुत अच्छी बात, लिखी है। और एक इसी तरह चंचल हमारे साथी और लिखते हैं कि बारिश के पानी की बचत ही असल में अपने कल की सुरक्षा है, क्योंकि धरती पर जितना पानी है वो सीमित है और हर बूंद अनमोल है। प्रकृति हमें मुफ्त में बारिश का उपहार देती है, अगर हम इसे छतों पर और सड़कों से बहाकर नालियों में बहा देंगे तो सूखे को खुद बुलावा देके रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोखता गड्ढे और पेड़ लगाकर हम उस पानी को धरती में उतार सकते हैं, जिससे भूजल बढ़ेगा, बाढ़ रुकेगी और आने वाली पीढ़ियों की प्यास भी मिटेगी। याद रखो, बूंद बूंद से ही सागर बनता है और बूंद बूंद बचाने से ही जीवन बचता है। मैंने अपने घर के बगीचे में एक गड्ढा बना रखा है जिसमें बारिश से छत के पानी का अधिकांश भाग उसी में समा जाता है। बहुत अच्छी सी जानकारी हमारे सभी श्रोताओं ने दी है।
0: यानी कि ये तो हुई पानी की बचत की बात, लेकिन वो जो पानी गड्ढों में भरा रह जाता है, जो मच्छर पैदा करता है, वो पानी आपको भरने नहीं देना है। ये जो पानी हम संचय की बात कर रहे हैं, ये वो पानी का भराव है जो हमें आगे तक काम देगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक अलग चीज है और गड्ढों में पानी जमा हो जाना, उस पानी का ना सूखना, जो बीमारियां जिससे बनपती है, वो एक अलग चीज है। तो दोनों ही बातों को ध्यान रखना है।
1: बिल्कुल। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि कथा सुधा और पंजाब के व्यंजन सुनने की उत्सुकता है। बारिश का पानी बचाने के लिए हमारे सोसाइटी में छत पर जमा हुआ पानी पाइप डालकर आसपास के जमीन में छोड़ दिया है। भूजल वृद्धि से सोसाइटी के बोरवेल अच्छे से भरी रहती है, सोसाइटी की बगिया खिली रहती है। बारिश के पानी की बचत कैसे करें, इस विषय पर हम सोसाइटी के बच्चों का वर्कशॉप लेते हैं, कथा कविता और प्रतियोगिता के माध्यम से उन्हें भी अच्छा से सतर्क करवाते हैं, यानी उनको भी जानकारी दिलवाते हैं। बहुत अच्छी सी बात आपने लिखी है।
0: और सही बात है कि हमारी आने वाली पीढ़ी को भी हमें ये बात सिखानी है, क्योंकि हम तो आज हैं नहीं रहेंगे, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए पानी का स्तर कम ना हो और एक एक बूंद, मतलब जो बोतल है वो खरीद कर हमें लेनी पड़ेगी और तब हमें कीमत समझ में आएगी, तो उस नौबत तक हम पहुंचे ही ना अगर हम ही हमें आज ही से ही इस पानी का अगर संचय करना शुरू करेंगे।
1: बिल्कुल। और एक साथी लिखते हैं, बारिश के पानी की बचत करना चाहिए। पहले देखती थी कि बारिश का हुआ तो घर के आंगन में एक दो खाली बर्तन, बाल्टियां और बड़े बड़े बर्तन रख दिया करते थे और उसमें बारिश का पानी जो इकट्ठा करते थे वो कपड़े धोने के काम आता था। दादी उसे साफ बोतल में भर के रख देती थी और उससे अपनी आंखें धोती थी। तो भाई ये जानकारी तो आपने उनके अनुभव से लिखी है, तो इसको हम कह सकते कि भाई आप इस पर आप अपना है, मेरा सुन के ना अपना है, जो उन्होंने लिखा है वो अपनी यादें लिखी हैं।
0: और जल संचय अभियान लिखते हुए हमारे एक साथी

ने लिखा है कि 1986 और 87 की ये बात कर रहे हैं, गुजरात के सौराष्ट्र विस्तार में बारिश बहुत ही कम बरसी थी, तब अकाल जैसी परिस्थिति हो गई थी वहां पर, और ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को खेतों में पानी संचय करने का अभियान चलाया गया, जिसे ढलान वाली जगह पर खेतों में के गोल किनारे या चौरस खुदाई करके कुंडी बनाकर बरसात के पानी का भरना, बाद में जब पानी जब मिट्टी नीचे बैठ जाती है तो ऊपर सीमेंट के पाइप द्वारा उनमें पाइप डाले जाते हैं कुएं की तरह, और इस तरह से उस पानी को काम में लिया जाता है। उसके बारे में उन्होंने पूरी जानकारी लिखकर भेजी है। चलिए अब गीत सुन लें।

0: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
1: वो तेरे प्यार का।
0: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
2: मुबारक हो सबको समाये सोहा।
0: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
3: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
0: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
4: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।

0: है।
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
2: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
3: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
4: तो चंचल अब हम लोग बातें करेंगे खाने पीने की, व्यंजन की बात
5: व्यंजन
4: करेंगे
5: की। तो पिन्नी जो है ना, पंजाब का जो व्यंजन है, ये पारंपरिक रूप से उड़द दाल की बनाई जाती है। वैसे लोग इसे आटा, मैदा, किसी अन्य आटे से भी बनाते हैं, लेकिन उड़द दाल की पिन्नी किस तरह बनाई जाती है, इसकी बड़ी एक अच्छी सी रेसिपी हमें मिली है, हमारे श्रोता की तरफ से ही मिली है। तो हम बता दें, इसके लिए हमें सामग्री चाहिए: धुली उड़द की दाल 500 ग्राम, देसी घी 250 ग्राम, बूरा या फिर पिसी हुई चीनी आप ले सकते हैं 300 ग्राम, और इलायची पाउडर एक छोटा चम्मच, और अगर आपको स्वाद ज़्यादा चाहिए तो आप 2 चम्मच भी ले लीजिए। काजू, बादाम करीब करीब 50-50 ग्राम लेने हैं बारीक कटे हुए। और इसे बनाने का जो तरीका है, कमेंट्स में जिस तरह से बताया गया है कि उड़द की दाल को 4 से 5 घंटे के लिए पानी में भिगो दें। इसके बाद पानी को छानकर दाल को मिक्सर में थोड़ा सा दरदरा सा पीस लीजिए। फिर एक भारी तले की कढ़ाई में घी गर्म करके इस पिसी हुई दाल को डालें और धीमी आंच पर तब तक इसे भूनना है जब तक कि इसका रंग सुनहरा ना हो जाए, अच्छी खुशबू ना आने लगे। अब इसमें कटे हुए सूखे मेवे, इलायची का पाउडर डालकर फिर से 2 मिनट भूनना है और इसकी आंच को बंद कर देना है। मिश्रण जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब इसमें गुड़ या फिर पिसा हुआ चीनी, बूरा, जो भी है वो अच्छी तरह से मिला दें, और जब तक ये हल्का गुनगुना है तभी तक हाथों में थोड़ा घी लगाकर गोल गोल या अंडाकार किसी भी तरह की शेप में इस पिन्नी को आकार दे दीजिए और बस एयर टाइट डब्बे में पैक करके रख दीजिए और आनंद लीजिए।
4: बिल्कुल। और देखो, एक उड़द दाल और राजमा की जो रेसिपी बताई गई दाल मखनी की, तो उड़द और राजमा को अच्छे से धोकर पानी में भिगोइए। रात भर भिगे हुए दाल में राजमा को छान लीजिए और 2 कप पानी और नमक डालकर प्रेशर कुकर में 7 सीटी बजने तक इसको पकाइए। खोलने से पहले भाप को पूरी तरह निकाल दीजिए। दाल को मखनी से अच्छी तरह से फेंट कर रख दीजिए। तड़के के लिए एक गहरे पैन में मक्खन को गर्म करके उसमें जीरा डालिए। जीरा उसके साथ साथ उसमें हरी मिर्च, दालचीनी, लौंग, इलायची, प्याज डालिए और भूनिए, और उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, टमाटर पल्प डालिए और मध्यम आंच पर तेल छोड़ने तक पकाइए। और इसमें दाल, नमक और जरूरत के अनुसार 2-3 टेबल स्पून पानी डालिए और 10-15 मिनट तक उबालने दीजिए। इसमें फ्रेश क्रीम डालकर अच्छी से मिलाइए और धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट तक पकाइए और धनिया और फ्रेश क्रीम से सजाकर गरम गरम आप सर्व कीजिए।
5: और इन रेसिपी के बाद अब आनंद लेते हैं गीत का।

0: तो देखो चंचल, देखते ही देखते समय कितनी तेजी से चला गया और अब हमको भी चलने की तैयारी करनी चाहिए। तो
1: बिल्कुल,
0: सभी से लेते हैं विदा, सभी को मंजरी वर्मा
1: और चंचल वर्मा का
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है वो डॉक्टर हैं डॉक्टर उमेश ओझा जो यूरोलॉजिस्ट हैं बॉम्बे हॉस्पिटल और हिंदुजा हॉस्पिटल मुंबई में। और डॉक्टर साहब को हमने आमंत्रित किया है आज प्रोस्टेट विषय पर बात करने के लिए और यूरिन से जुड़ी हुई और जो अन्य बीमारियां होती हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर उमेश ओझा विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार।
1: थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।
0: तो ये सर्जिकल प्रोसीजर से जो होता है तो कितने समय तक वो चलता है, क्या फिर वापस वही परेशानी तो नहीं होती?
1: ज्यादा करके इसके रिजल्ट्स 10 साल 5 साल अगले लंबे समय तक भी अच्छा मिल सकता है, लेकिन
0: जी।
1: साथ में ये चीजें हमें ख्याल में करनी कि वेट कम करना
0: जी
1: रेगुलर एक्सरसाइजेस करना
0: जी जी
1: ऑपरेशन ट्रीटमेंट का एक भाग है, साथ में ये सब लाइफस्टाइल चेंजेस इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाती है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि अगर मसल्स ही वीक होने लगे वापस तो ऑपरेशन के बावजूद भी वापस तकलीफ हो सकती है।
0: जी
1: सो लाइफस्टाइल चेंजेस प्लस ऑपरेशन, ये दोनों के साथ में रिजल्ट्स अच्छे मिल सकते हैं।
0: जी, तो पहले से क्या सजगता बरतनी चाहिए, किस तरह से सावधानी रखें कि ये स्थिति ना आए लीकेज वाली?
1: सो पहले तो मैंने बताया ऐसे हमें ब्लैडर स्ट्रांग रखना जरूरी है, इसलिए समय समय से यूरिन कर लेना महत्व की बात है। सेकेंडली इसे हम पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस कहते हैं, वो रेगुलर करना जरूरी है ताकि पेल्विक फ्लोर स्ट्रांग रहने से

0: अगेन ये लीकेज का प्रॉब्लम कम हो सकता है। तीसरा है प्रेगनेंसी के समय आजकल तो काफी एंटीनेटल और पोस्टनेटल एक्सरसाइजेस बताई जा रही है, वो रेगुलर करना जरूरी है।
1: जी
0: अगर इस प्रकार से हम ख्याल रखेंगे तो शायद ये इनकॉन्टिनेंस का प्रॉब्लम काफी कम हो सकता है।
1: जी तो किन आयु वर्ग के लोगों को ये समस्या ज्यादा होती है? आजकल सुना है कि कम उम्र के युवाओं में भी
0: यंग
1: ये।
0: लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है,
1: जी
0: जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण,
1: ओ
0: कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाएं से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। एल्डरली पेशेंट्स में या प्रेगनेंसी के बाद में अगर वो पेल्विक फ्लोर मसल्स का ख्याल नहीं किया, तो उनको जिसे हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, वो तकलीफ होती है। कुछ न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस के कारण अगर वहां के नर्व्स काम नहीं कर रही है, तो उन्हें परमानेंट या तो कंटिन्यूस इनकॉन्टिनेंस होता है, जो हर समय उठ के खड़े होते यूरिन लीक हो जाती है। सो कभी कभी जिसे नर्व्स के कारण जो ये पूरी सिस्टम कंट्रोल करता है, वो कंट्रोल चले जाने से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है।
1: जी
0: बट वहां ज्यादा करके कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम रहते हैं, जिसको एड्रेस करना भी इक्वली महत्व का है।
1: जी और जिनको ये समस्या होती है तो लोग कहते हैं कि या तो पैड का इस्तेमाल करें, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, या फिर कुछ थैली का इस्तेमाल, उसके बारे में बताइए वो क्या है तरीका।
0: सो यस, डायपर्स या पैड यूज करना कभी कभी जरूरी हो जाता है, लेकिन एक मैं बताता हूं, कभी कभी जो दिन में लोगों को स्ट्रेस रहता है और फिर उनको एक डर रहता है कि मुझे यूरिन हो जाएगी, सो वो जहां भी बाहर जाते हैं पहले बाथरूम ढूंढते हैं।
1: जी
0: ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये अभी स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है। ऐसे लोगों को कभी कभी पैड यूज करने में या टेम्परेरी डायपर यूज करने में काफी फायदा होता है, क्योंकि वो टेंशन चला जाता है और उसके कारण अगर वो देखेंगे तो कभी वो पैड गिला भी नहीं होता है, लेकिन वो एक अश्योरेंस हो जाता है। मैंने काफी लेडीज देखी है जो काम कम कर देते हैं, काम बंद कर देते हैं, घर पे बैठे रहते हैं। ये जरूरी नहीं है आज के जमाने में, काफी ट्रीटमेंट मिलती है, और ये ट्रीटमेंट लेके सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा के अपनी डे टू डे लाइफ कंटिन्यूस रखना बहुत जरूरी है। ये सब चीजों से क्वालिटी ऑफ लाइफ सफर नहीं होनी चाहिए।
1: जी
0: सो ये मन में से डर निकालना बहुत जरूरी है, और उसके लिए प्रॉपर मेडिकल एडवाइस लेने से आजकल काफी लोगों को फायदा होता है।
1: जी
0: लेकिन इस डर से ये प्रॉब्लम दूसरों को न बताने से प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला नहीं है।
1: जी जी
0: सो ये महत्व का है कि आप मेडिकल एडवाइस लीजिए, उनका सॉल्यूशन मिल जाता है, और उससे काफी लाइफस्टाइल चेंज हो सकती है। क्योंकि मैंने काफी लोगों को ये उनसे सुना है कि हम तो बस अब घर में ही बैठे रहते हैं, ये डर बना रहता है। ये जरूरी नहीं है,
1: बिल्कुल
0: ट्रीटमेंट लेके अपना काम, अपनी डे टू डे एक्टिविटी, बाहर जाना जरूर चालू रखना चाहिए,
1: जी
0: क्योंकि नहीं तो एक प्रॉब्लम से दूसरी प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम
1: जी
0: शुरू होने का डर रहता है।
1: जी
0: तो ये इसके बारे में ये बहुत महत्व का समझना जरूरी है कि टॉक टू पीपल, टॉक टू डॉक्टर्स, और
1: बिल्कुल
0: सही समय में ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए।
1: जी बुजुर्गों को हमने सुना है, कई बुजुर्ग ऐसे हैं जो यूरिन की समस्या के कारण कहीं बाहर नहीं जाना चाहते, वो कहते हैं कि हम जाएंगे हमें वहां फिर बाथरूम की समस्या होगी। तो आपकी बातों से काफी इंस्पायर होंगे कि आप उसका एक तरीका है, उसकी व्यवस्था है, वो करके आ जाइए। तो
0: एब्सोल्युटली, कुछ लोग जैसे रहते हैं जिनको पेशाब की थैली काम नहीं करती है,
1: जी हाँ
0: उन लोगों को कभी कभी नली और बैग लगाना जरूरी पड़ता
1: जी
0: है,
1: जी जी
0: और जब तक वो प्रॉब्लम की ट्रीटमेंट न हो, वो नली लगानी पड़ती है। आजकल उसके लिए भी हम एडवाइस करते हैं जिसे हम इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन बोलते हैं,
1: अच्छा
0: ताकि पेशेंट खुद छोटी नली से दिन में 3 या 4 बार यूरिनरी ब्लैडर खाली कर सकता है,
1: जी
0: और उनको कंटिन्यूस बैग लगाने की आवश्यकता नहीं रहती है,
1: जी जी
0: और अपनी डेली लाइफ और काम पे वो जा सकते हैं।
1: जी
0: सो कभी कभी लोगों को एक माइंड ब्लॉक जैसा रहता है कि ये कैसे होगा, लेकिन काफी लोग कर रहे हैं।
1: जी
0: सो इन शॉर्ट, ये सब प्रॉब्लम की समस्या रही, एक्सपर्ट से बात कीजिए, अपना माइंड ओपन रखना बहुत जरूरी है।
1: जी
0: मान लेना कि नहीं, अब इसकी कोई सोल्यूशन ही नहीं है, मुझे
1: जी
0: सफर ही होना है, ये गलत बात है।
1: बिल्कुल
0: क्योंकि मेडिकल एडवाइस और आप अगर ट्रीटमेंट के लिए तैयार

0: रहे तो काफी ऑप्शंस है
1: जी
0: जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ जरूर इम्प्रूव हो सकती है।
1: बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, अभी बहुत सारी बातें चल रही थी, हमने कुछ ऐसे लोगों को देखा है कि जो तुरंत यूरिन पास करके आते हैं वॉशरूम से और तुरंत 5 मिनट के अंदर वापस जाते हैं, और वो जांच कराते हैं तो सब कुछ नॉर्मल आता है, तो ये क्या वजह हो सकती है और इसका किस तरह से इलाज हो सकता है?
0: सो ये दो चीज होती है, अगर पूरी यूरिन एक समय में निकलती नहीं है तो वो बार बार जाने की इच्छा रहती है, जो कभी कभी यूरिनरी पैसेज में ऑब्स्ट्रक्शन या यूरिनरी ब्लैडर वीक होने से हो सकता है। दूसरा है जिनकी ब्लैडर सेंसिटिव होती है,
1: जी
0: जिसके कारण थोड़े बूंद रहने से भी वो सेंसेशंस बने रहते हैं और इसके कारण बार बार जाने की इच्छा रहती है, जाके बाथरूम में काफी समय तक बैठते हैं लेकिन ज्यादा यूरिन होती नहीं है। सो ये कभी कभी सेंसिटिव ब्लैडर के कारण हो सकता है,
1: जी
0: जो पहले जांच करके हम देखते हैं कि अंदर कोई रोग नहीं है, अगर वैसे नहीं रहा तो दवाइयों से वो सेंसेशन कैसे कंट्रोल में करना वो हम कोशिश करते हैं।
1: जी
0: और तीसरी बात कि पेशेंट को भी कभी कभी अपने आप वो थोड़ा कॉन्फिडेंस लाने की आवश्यकता रहती है
1: जी
0: कि एक बार करके आए तो सेंसेशन बाईपास करना सीखना पड़ता है, कि थोड़े सेंसेशंस रहे हम उसको बाईपास कर देंगे, एक बार वो पेशेंट अगर बिजी हो गया तो सेंसेशन काफी समय तक वापस
1: नहीं
0: चला जाता
1: आता
0: और बार बार जाने की जरूरत नहीं पड़ती है।
1: जी, बिल्कुल।
0: लेकिन ये सब चीजें एक बार टेस्ट कराने के बाद करनी चाहिए ताकि ये क्लियर हो जाए कि अंदर कोई रोग नहीं है, और
1: जी
0: फिर ये काफी चीजों से लोग अपने आप अपने को सेल्फ ट्रेन कर सकते हैं कि छोटे छोटे ऐसे सेंसेशंस हुए उसको बायपास करके हम अपने काम में लग जाएं,
1: जी
0: क्योंकि नहीं तो वो सेंसेशन इतना इरिटेबल हो जाता है कि बार बार फिर उनको इच्छा रहती है कि मैं जाके यूरिन करके आऊं।
1: जी और सारा फोकस, सारा ध्यान उसी पर रहता है कि
0: एब्सोल्युटली।
1: कुछ भी शुरू करने से पहले पहले यूरिन के
0: और
1: लिए
0: फिर वो
1: चले
0: डर
1: जाए
0: सा रहता है कि अगर
1: जी
0: कपड़े में कुछ बूंदे हो
1: लग गई
0: गई
1: तो
0: और कुछ
1: जी
0: स्मेल आने लगी तो एक एम्बरेसमेंट जैसा होने लगता है,
1: जी
0: इसलिए दे बिकम वेरी कॉन्शियस।
1: जी
0: सो ये चीजें थोड़ी
1: जी
0: आई थिंक सेल्फ कॉन्शियस रहना जरूरी है कि हर सिम्टम के पीछे भागना नहीं है, थोड़ा थोड़ा
1: जी
0: मानसिक बायपास करना भी सीखना जरूरी है।
1: बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अभी आपने स्मेल की बात की तो यहाँ पर एक बात जहन में आई है कि अमूमन लोग ये कहते पाए जाते हैं कि हमारी यूरिन में दुर्गंध है, तो ये क्या लक्षण हो सकता है? स्मेल आ रही है अलग तरह से और कलर चेंज होता है कई
0: दैट्स राइट।
1: बार।
0: सो एक बात कि शायद यूरिन बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है,
1: जी
0: क्योंकि काफी लोग पानी कम कर देते हैं ये डर से कि मुझे बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ेगा। अल्टीमेटली यूरिन शरीर का कचरा है, उसमें सब केमिकल्स वगैरह रहते हैं जिसकी स्मेल आती है। सो ज्यादा पानी पीने से यूरिन काफी डाइल्यूट हो जाती है और स्मेल कम हो जाती है।
1: जी
0: दूसरी बात, कुछ दवाओं ऐसी रहती है जिसकी स्मेल यूरिन में आ सकती है। तीसरी बात, कुछ डाइट जिसके कारण भी यूरिन में स्मेल आ सकती है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ज्यादा पानी पीने से वो डाइल्यूट होने से स्मेल काफी कम हो जाती है।
1: जी
0: दूसरी बात है, जिनको कुछ ड्रॉप्स कपड़े में रह जाते हैं देन वो स्मेल कंटिन्यूअसली उनको ऐसे लगता है कि यूरिन की स्मेल आती है। सो वहां कभी कभी एब्जॉर्बेंट पैड वगैरह पहनने से ये प्रॉब्लम कम होती है कि कपड़े में यूरिन जमा न होने से वो भी स्मेल कम हो सकती है।
1: जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक गाना सुनवाए अपने श्रोताओं को, कौन सा गाना?
0: जरूर, आई थिंक श्रेया घोषाल इज अनदर एक्सलेंट सिंगर
1: जी
0: और
1: जी
0: उनका एक अच्छा गाना है मोहे रंग दो लाल,
1: क्या बात है
0: बाजीराव मस्तानी से।
1: जी, बाजीराव मस्तानी फिल्म का बड़ा ही बेहतरीन गाना चुना है।

0: बाजीराव मस्तानी फिल्म का ये गाना हम सुन रहे थे। और अब ये बताइए डॉक्टर साहब कि किडनी स्टोन और यूरिन की समस्याओं का आपस में क्या तालमेल है और किस तरह की बीमारी ये मिलके रचते हैं?
1: सो यूरिनरी स्टोन्स वो भी एक काफी बड़ी समस्या बन रही है,
0: जी
1: और कुछ कुछ इलाके में जहां ज्यादा गर्मी है वहां स्टोन डिजीज काफी लोगों को तकलीफ दे रहा है। स्टोन के दो प्रॉब्लम हो सकते हैं, कभी कभी कोई सिम्टम्स नहीं रहते हैं, स्टोन बढ़ते जाता है
0: जी जी
1: और किडनी पूरी डैमेज हो जाती है तब तक पता नहीं चलता है, और कुछ स्टोन्स छोटे स्टोन्स रहते हैं, जब वो स्टोन नीचे निकलने की कोशिश करती है इतना दर्द देता है कि पता चलता है कि स्टोन है। अब स्टोन बनने के अलग अलग कारण है, सबसे बड़ा कारण है पानी कम पीना,
0: जी
1: क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन से जो क्षार जो बनते हैं वो किडनी में एक बार जमा होने लगे तो वो फोकस बन के स्टोन्स बढ़ने लगते हैं।
0: जी जी
1: सो सबसे बड़ी दवाइयां पानी है। दूसरी बात, कुछ लोगों को कैल्शियम और यूरिक एसिड, उनकी मेटाबॉलिज्म
0: जी
1: एबनॉर्मल शरीर में होने से भी ये स्टोन्स बन सकते हैं। तीसरी बात, अगर यूरिन कॉन्स्टेंटली जमा होती है किडनी में या यूरिनरी ब्लैडर में, उसके कारण भी स्टोन बन सकते हैं। सो ये अलग अलग कारणों से स्टोन बनते हैं। सो हमारे देश में रेगुलर हेल्थ चेकअप जैसा कोई लोग मानते नहीं है कि रेगुलर हेल्थ चेकअप जरूरी है।
0: जी
1: कुछ लोग मानते हैं कि हम हेल्थ चेकअप कराएंगे, उसमें कुछ निकलेगा हमको डॉक्टर के पास
0: अरे
1: भागना पड़ेगा
0: इसलिए मत
1: और
0: चेकअप
1: इसलिए चेकअप मत
0: कराओ।
1: करवाओ,
0: जी जी
1: लेकिन चेकअप करना जरूरी है ताकि कभी कभी कुछ प्रॉब्लम अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हुए तो उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। दूसरी बात, आजकल स्टोन के लिए काफी टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हुए हैं और ट्रीटमेंट आसान हुई है।
0: जी
1: कभी कभी छोटे स्टोन्स के लिए कुछ दवाइयां देते हैं।

0: उससे निकल सकता है। लेकिन महत्व क्या है, हमें कॉन्स्टेंटली चेकअप रखना कि स्टोन के कारण किडनी पे प्रेशर आके किडनी डैमेज नहीं हो रही है, क्योंकि कभी कभी पेन नहीं होता है लेकिन किडनी पे प्रेशर आने से धीरे धीरे किडनी डैमेज हो जाती है और फिर हम कुछ कर नहीं सकते हैं।
1: जी
0: सो ये भी गलत बात है कि अगर दर्द नहीं है तो स्टोन के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तपास करने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि स्टोन की पोजीशन क्या है, उसके कारण किडनी में कुछ डैमेज हो रहा है कि नहीं, और पेशेंट को कितनी तकलीफ हो रही है, उस हिसाब से निर्णय लेते हैं कि कुछ करने की आवश्यकता है या आवश्यकता नहीं है।
1: जी
0: आजकल एंडोस्कोपिक या दूरबीन से और लेजर एनर्जी के सोर्स अवेलेबिलिटी के कारण ट्रीटमेंट काफी इजी हो गई है
1: जी
0: और बड़ा कट वगैरह करके स्टोन निकालने की आवश्यकता नहीं रही है।
1: जी
0: सो अर्ली स्टेज में अगर हम ट्रीट करेंगे तो रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं।
1: जी
0: लेकिन एक बात हमें ये भी जानना जरूरी है कि कोई भी दवाई या कोई भी ऑपरेशन की आड़ असर नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अच्छी तरह ऑपरेशन करने के बाद में भी अगर पेशेंट के टिश्यू ठीक नहीं रहे तो फिर वहां दिक्कत हो सकती है।
1: जी
0: दूसरी बात, स्टोन के साथ डर लगता है इन्फेक्शन का, क्योंकि जब किडनी ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है और उसके साथ में इन्फेक्शन बन गया तो वो कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग बन जाती है, जिसे हम यूरोसेप्सिस कहते हैं।
1: ओ
0: क्योंकि एक बार इन्फेक्शन हुआ, किडनी ब्लॉक है, इन्फेक्शन निकलने के लिए रास्ता नहीं है, फिर इन्फेक्शन पूरे बदन में फैल जाता है, वो काफी सीरियस कंडीशन में पेशेंट हमारे पास आते हैं। सो स्टोन के साथ इन्फेक्शन को दूसरी चैलेंज है। तीसरी बात, स्टोन और डायबिटीज, क्योंकि अगेन डायबिटीज के कारण इन्फेक्शन होने की शक्यता बढ़ जाती है। सो ये सब चीजों से सिंपल स्टोन कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है और कभी कभी काफी सीरियस बीमारी के साथ हमारे पास आते हैं।
1: जी
0: सो अगेन इन शॉर्ट, अगर रेगुलर चेकअप रखेंगे तो वो समय से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं।
1: जी
0: दूसरी बात है, वंस अ स्टोन फॉर्मर इज ऑलवेज अ स्टोन फॉर्मर, और हमारे पास ऐसी कोई दवाइयां नहीं है जिससे हम आपको अश्योर कर सकें कि आप ये लीजिए, आपको भविष्य में स्टोन नहीं होगा।
1: जी जी
0: ये गलत बात है, इसलिए रेगुलर चेकअप रखना जरूरी है। तीसरी बात है, लोग आके पूछते हैं कि
1: जी
0: हम इस कुएं का पानी पिए या इस प्रकार की ट्रीटमेंट करें, आप जो ठीक लगे वो ट्रीटमेंट कीजिए, लेकिन महत्व का है कि चेकअप रखना जरूरी है। क्योंकि
1: बिल्कुल
0: कुछ लोग मानते हैं कि हमने ये ट्रीटमेंट की, कुछ पान खाए, कुछ काढ़ा पिया, अच्छी बात है। अगर जो ट्रीटमेंट की साइड इफेक्ट नहीं है और आप उसे कोशिश करना चाहते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लोग फिर तपास नहीं करते हैं और मान लेते हैं कि स्टोन चला गया, लेकिन अगर स्टोन अंदर बड़ा होके किडनी को डैमेज करे तो आपको पता नहीं चलेगा।
1: बिल्कुल
0: सो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी ट्रीटमेंट लीजिए, लेकिन रेगुलर चेकअप और एक बार अच्छा मेडिकल ओपिनियन लेना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल
0: ये गलत बात है कि हर समय आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बताएंगे कि आप ऑपरेशन करवा लो। ये कुछ कुछ चीजें लोग मानते हैं
1: मान के
0: लेकिन वो
1: चलते हैं।
0: सही नहीं है। हर डॉक्टर ये करने में कोई अच्छी बात है वैसे नहीं मानता है, लेकिन उस डर से अगर हमने व्यवस्थित ट्रीटमेंट नहीं ली और फिर ऐसा समय आता है कि किडनी एक बार डैमेज हो गई, फिर हम कुछ कर नहीं सकते हैं।
1: जी
0: सो यस, स्टोन के लिए चेकअप महत्व का है। कुछ कुछ डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस जैसे पानी पीना बहुत महत्व की बात है। एक्स्ट्रा कैल्शियम, एक्स्ट्रा सॉल्ट अवॉइड करना जरूरी है।
1: ओके
0: ज्यादा एनिमल प्रोटीन लेना एडवाइजेबल नहीं है, और कुछ कुछ जिसे ऑक्सलेट के प्रॉब्लम है उनको कुछ डाइटरी रिस्ट्रिक्शन जरूरी है। लेकिन सब पेशेंट को डाइटरी रिस्ट्रिक्शन करके जैसे बीज जैसी चीजें, सब वो बीज जैसी टोमेटोज वगैरह खाना बंद कर देना, वो भी सही नहीं है। सो स्टोन ट्रीटमेंट में भी काफी मिथ्स है, वो जरूरी नहीं है।
1: जी। तो अभी बीज की बात की तो अभी ध्यान में आया कि आजकल तो सोशल मीडिया पर गूगल पर छाया हुआ है कि ये कद्दू का बीज और फ्लैक्स सीड और जाने कौन कौन से बीज खाएं तो स्टोन से निजात पाया जा सकता है, यूरिन की समस्या ठीक हो जाएगी, ये प्रोस्टेट ठीक हो जाएगा। तो इस
0: सो एक मेरी राय में काफी गलत बातें हैं। एज अ साइंटिस्ट, जब तक मुझे एडिक्वेट एविडेंस नहीं है, जब तक इतना एक्सपीरियंस जो रिपोर्ट के साथ बताया नहीं गया कि ये करने से डेफिनेट फायदा होता है, वो चीजें मान्य करना

0: वो पॉसिबल नहीं रहता है.
1: बिल्कुल.
0: एट द सेम टाइम एवरी पथी हैज सम ट्रीटमेंट फॉर एवरी प्रॉब्लम, बीट होम्योपैथी, बीट एलोपैथी, बीट आयुर्वेदिक. बट ये समझना जरूरी है कि ऐसी ट्रीटमेंट होनी चाहिए जिसकी आड़ असर ना हो. एट द सेम टाइम रेगुलर चेकअप करके उसका रिजल्ट देखना जरूरी है.
1: जी
0: बाकी ये काफी चीजें जो सोशल मीडिया पे या गूगल में आती है, साइंटिफिकली सब चीजें प्रूव नहीं हुई है.
1: जी
0: ये कुछ लोगों का अनुभव है, लेकिन वो अनुभव सब पेशेंट के लिए सही है कि नहीं, वो एक बड़ा प्रश्न है.
1: बिल्कुल.
0: सो इन्फॉर्मेशन इज इम्पॉर्टेंट, बट आई थिंक एनालिसिस इज इक्वली इम्पॉर्टेंट.
1: जी, इस तरह की बीमारियां जब होती है तो डॉक्टर के शरण में ही जाना चाहिए, वही ज्यादा अच्छा होता है. किडनी स्टोन जब होता है तो उसके क्या बेसिक लक्षण क्या होते हैं, और उस क्या स्थितियां हो कि मरीज डॉक्टर के पास जाए और किस डॉक्टर के पास जाए?
0: सो बेसिकली पेन, अगर सीवियर पेन रहा पीछे के भाग में या फ्लैंक जिसे हम कहते हैं, तो वो स्टोन के लिए कॉमन सिम्टम है. इन्फेक्शन दूसरा सिम्टम है. ब्लड इन द यूरिन, ये एक सिम्टम बहुत महत्व का है, क्योंकि स्टोन के कारण तो जरूर ब्लड आ सकता है, लेकिन हमें हमेशा फिक्र रहती है कैंसर की, क्योंकि वो एक सिम्टम है जो अगर किसी मरीज को हमने सुना कि उनके उनमें ब्लड जाती है, ये चेकअप करना बहुत जरूरी है कि कहां यूरिनरी ट्रैक्ट में कैंसर नहीं है. सो बेसिकली जहां तक स्टोन का प्रश्न है, मेनली पेन इज द कॉमनेस्ट सिम्टम, सेकेंड इज इन्फेक्शन, एंड थर्ड कभी कभी रूटीन इन्वेस्टिगेशन से भी पता चल जाता है. जो सोनोग्राफी इज अ सिंपल टेस्ट,
1: जी जी,
0: जो सोनोग्राफी रूटीनली करवाने में न तो कोई उसकी आड़ असर है, न तो इतनी एक्सपेंसिव है, लेकिन काफी यूरिनरी ट्रैक के प्रॉब्लम प्राइमरी डिटेक्ट करने के लिए सोनोग्राफी महत्वपूर्ण इन्वेस्टिगेशन है.
1: जी, तो उसे पता चल जाता
0: जी,
1: है. डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक गाना सुने.
0: जरूर, वापस हम पुराने गानों की तरफ चले तो रफी साहब का एक बहुत अच्छा गाना है, अकेले हैं चले आओ.
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया गाना चुना है आपने, सुनते हैं यही गाना.

0: डॉक्टर साहब, गाने के बाद हमें बताइए कि लोग सर्जरी के नाम ढूंढ लेते हैं और सर्जरी के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं, तो आप बताइए कि ये रोबोटिक सर्जरी और पारंपरिक सर्जरी एक होती है, तो मरीज इनका नाम सुन के बहुत ही चिंता में पड़ जाते हैं, क्या है ये, दोनों में किस तरह का अंतर
1: यहां
0: है?
1: मैं एक बात बताना जरूरी समझता हूं कि जब भी ऑपरेशन का प्रश्न आता है, अगर आपके मन में डाउट है तो जरूर सेकंड ओपिनियन लीजिए,
0: जी जी

0: कि ये महत्व की बात है कि कभी कभी हमें डाउट होता है कि ये जो सलाह दे रहे सही है कि नहीं. सो आई थिंक नथिंग इज रॉन्ग कि
1: बिल्कुल.
0: बड़ी अगर सर्जरी आपको करवानी है जो कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी या कोई भी सर्जरी फॉर दैट मैटर, अगर आपको रहा कि जरूरी है या नहीं, जरूर सेकंड ओपिनियन लीजिए, पहली बात है. दूसरी बात, जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है उसके कुछ एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है. रोबोटिक सर्जरी का एडवांटेज वैसा है कि उसके कारण एक तो हमें बड़ा कट लेना नहीं पड़ता है, दूसरी बात है कि रिकवरी पीरियड ज्यादा अच्छा रहता है, कम रहता है, तीसरी बात है कि टेक्निकली ये सब साधनों से जो मैग्निफिकेशन और प्रिसिशन हमें मिलता है उससे ऑपरेशन करना और आसान हो जाता है. लेकिन महत्व का है दैट इट्स नॉट ओनली द टूल, इज द पर्सन बिहाइंड द टूल दैट इज इंपॉर्टेंट.
1: जी.
0: सो हर टेक्नोलॉजी आई और वो कराने से फायदा ही होता है, ऐसी बात नहीं है. कुछ ऑपरेशंस ऐसे भी हैं कि जहां ओपन सर्जरी गिव्स बेटर रिजल्ट्स.
1: दोस्तों, विविध भारती से यह है कार्यक्रम सेहतनामा. आज आपको सुनवा रहे हैं यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा से रेडियो सखी ममता सिंह की बातचीत. ये बातचीत जारी रहेगी इस छोटे से अंतराल के बाद.

0: दोस्तों, विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेहतनामा।
1: जी।
2: सो ये बात नहीं कि हर चीज लेप्रोस्कोपी या रोबोटिक करने से ही अच्छी होती है, ऐसी बात नहीं है। ओपन सर्जरी से भी काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है और इसी के कारण एक्सपर्ट के पास जाके हर प्रोसीजर के क्या एडवांटेजेस क्या डिसएडवांटेज वो समझना जरूरी है। लेकिन टेक्नोलॉजी के कारण भी काफी आउटकम में इंप्रूवमेंट होता है, उसमें भी प्रश्न नहीं है। सो ये बैलेंसिंग एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स व्हाई टेकिंग प्रॉपर एक्सपर्ट ओपिनियन अपने आप या अपने फैमिली मेंबर्स या दोस्तों की राय लेने से ज्यादा महत्व का है। आप मेडिकल राय लीजिए और जरूर पड़ी तो सेकंड ओपिनियन लीजिए।
1: जी बिल्कुल, उससे निश्चिंतता हो जाती है कि सेम बात दो डॉक्टर्स ने बोली है। और ये बड़ी अच्छी बात आपने कही है और ये बड़ी ऑनेस्ट बात है कि एक डॉक्टर की ओर से ये सलाह दी जा रही है, बड़ी बात है। और वापस हम एक बार प्रोस्टेट की ओर जाते हैं। प्रोस्टेट की सर्जरी के बारे में, कितनी ये आसान होती है और कितनी कठिन होती है मरीज के लिए?
2: मरीज के लिए आजकल ये न्यू टेक्नोलॉजी के कारण इतनी तकलीफदायी नहीं है। वो एनेस्थीसिया में करते हैं, दूरबीन से करते हैं ताकि कोई कट वगैरह या उसका पेन नहीं रहता है।
1: जी हाँ।
2: और रिकवरी भी काफी फास्ट होती है। और आजकल ये सब नई टेक्नोलॉजी से काफी ऑप्शंस अवेलेबल है। और पहले जैसे बड़ा कट लेना, बहुत ब्लीडिंग हो रहा, बहुत दिनों तक नली रखना, वो सब दे आर थिंग्स ऑफ पास्ट। सो रिकवरी काफी जल्दी होती है और पेशेंट अपने काम पे बहुत जल्दी वापस जा सकता है। महत्व का है दैट डिसीशन मेकिंग कि जरूरी है या जरूरी नहीं है।
1: जी।

0: किस प्रकार की सर्जरी उस पर्टिकुलर केस के लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ये डिसीशन और डिस्कशन महत्व का होता है।
1: जी
0: अब
1: बिल्कुल
0: हर ऑपरेशन के, मैंने बताया, कुछ कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है, कभी कभी इन्फेक्शन हो सकता है, ऑपरेशन के बाद में वीर्य बाहर आना बंद हो सकता है,
1: जी
0: कभी कभी वापस पैसेज नैरो होके, जिसे हम स्ट्रिक्चर कहते हैं, वो भी हो सकता है। सो कोई भी सर्जरी 100% सक्सेसफुल नहीं रहती है और हर ऑपरेशन के कुछ आड़ असर रहती है।
1: जी
0: इसलिए ये समझना जरूरी है कि हम क्यों सर्जरी करवा रहे हैं, उसके कितने फायदे हैं, कितने गैर फायदे हैं, और फिर वो समझ के फाइनल निर्णय लेना है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है।
1: जी तो प्रोस्टेट ग्रंथि के बढ़ने से, उसकी सर्जरी से क्या उनकी मैरिज लाइफ पर भी असर पड़ता है?
0: सो मैंने बताया ऐसे कि वो जो वीर्य बाहर आना कभी कभी बंद हो सकता है, आजकल कुछ नई टेक्निक ऐसे भी आई है कि ये भी कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड हो सकता है। इसलिए यंग पेशेंट्स में हो सके इतने हम दवाइयों से कोशिश करते हैं कि अगर उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं तो हम ऑपरेशन की तरफ कम जाना पसंद करते हैं। फिर भी मैंने बताया ऐसे आजकल काफी प्रोसीजर लाइक यूरोलिफ्ट, रेज्यूम, आईटीन, ये अलग अलग नाम है, लेकिन उससे ये प्रॉब्लम कम होने की शक्यता ज्यादा है, लेकिन उसके रिजल्ट्स लंबे समय तक कितने अच्छे रहेंगे वो बताना मुश्किल है।
1: जी
0: सो उस पर्टिकुलर पेशेंट की जरूरत क्या है, उस हिसाब से हम निर्णय लेते हैं कि कौन सी प्रोसीजर वो पेशेंट के लिए अच्छी है।
1: जी बिल्कुल। और अब आखिर में हमें बताइए डॉक्टर साहब कि अपने देश में प्रोस्टेट संबंधी जागरूकता को लेकर किस तरह की सजगता है और क्या सजगता बरतनी चाहिए कि प्रोस्टेट, जो आजकल ये बीमारी बढ़ रही है, कम हो जाए?
0: काफी चीजें, लोग हेल्थ कॉन्शियस बन रहे हैं, हेल्थ अवेयरनेस डेफिनेटली बढ़ रही है, जैसे काफी रेगुलर हेल्थ चेकअप करने से भी पता चलता है कि प्रॉब्लम है कि नहीं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रेगुलर हेल्थ चेकअप। कुछ एब्नॉर्मल यूरिनरी सिम्टम्स रहे तो समय में जांच करना, ये सबसे बड़ी बात है। अदरवाइज कंपेयर टू जब हम पहले प्रोस्टेट के बारे में सोचते थे, लोग आते थे कॉम्प्लिकेशंस लेके आते थे, नली लगा के आते थे, वो काफी अवेयरनेस के कारण प्रॉब्लम्स अब सॉल्व हो रही है, प्लस अच्छी अच्छी ट्रीटमेंट मिलने लगी है। पहले दवाइयां नहीं थी, अभी
1: जी
0: दवाइयां से ऑलमोस्ट 60-70% पेशेंट्स को हम राहत दे सकते हैं। सो ये काफी चेंजेस हुए हैं, लेकिन अवेयरनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग,
1: जी बिल्कुल
0: और
1: सर।
0: आपके जैसे प्रोग्राम के माध्यम से
1: जी
0: ये लोगों को अश्योरेंस देना बहुत जरूरी है कि खाली रिपोर्ट देख के घबराने की आवश्यकता नहीं है।
1: जी जी
0: और जब हम भी निर्णय लेते हैं उस समय हम भी ये देखते हैं कि हमें रिपोर्ट को ट्रीट नहीं करना है, हमें पेशेंट को ट्रीट करना
1: क्या
0: है।
1: बात है।
0: सो ये बहुत महत्व की बात है। सो ये डर रखना कि हम चेकअप करेंगे कुछ निकल आएगा और ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, ये बात नहीं है,
1: जी
0: लेकिन अगर पता चला तो समय में प्रिकॉशंस ले सकते हैं और राइट समय पे राइट ट्रीटमेंट हम एडवाइस कर सकते हैं।
1: जी सही बात है। प्रोस्टेट कैंसर के बारे में तो जाहिर सी बात है, कैंसर के नाम से लोग डरते ही हैं, तो प्रोस्टेट कैंसर क्या पूर्णतः इलाज हो जाता है
0: आई
1: या
0: थिंक
1: लाइलाज?
0: बहुत महत्व की बात आपने कही है।
1: जी
0: पहली बात, एज वेरी राइटली यू सेड, कैंसर नाम सुन से लोग घबरा जाते
1: जी
0: हैं।
1: बिल्कुल
0: प्रोस्टेट का कैंसर आजकल जब अर्ली डिटेक्ट होता है तो इट इज नॉट लाइफ थ्रेटनिंग एट ऑल। कैंसर शब्द बड़ा है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट प्लान, कभी कभी कैंसर जानने के बाद भी हम बोलते कि कुछ करने की जरूरत नहीं है,
1: जी।
0: क्योंकि इतना लो ग्रेड और अर्ली स्टेज में रहता है कि कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती है। और दूसरा, ऐसे स्टेज में भी लोग आते हैं कि जहां पूरे बदन में वो स्प्रेड हो चुका रहता है,
1: अच्छा।
0: तो फिर उसकी ट्रीटमेंट काफी दिक्कत वाली बन जाती है। लेकिन आजकल प्रोस्टेट कैंसर की काफी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जहां हम अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हुआ, हम ये बात करते हैं कि हम क्योर करने की कोशिश करते हैं। ज्यादा करके पहले जब कैंसर की बात आती थी हम बताते थे हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो कैंसर प्रोस्टेट के लिए काफी ट्रीटमेंट अवेलेबल है।
1: जी
0: जब खाली लोकली प्रोस्टेट में डिजीज रहता है, तो जिसे हम रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी कहते हैं,
1: जी
0: जहां पूरी ग्रंथि निकाल देते हैं, या तो रेडिएशन करके रिजल्ट्स लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा रिजल्ट्स रहता है। अगर वो आगे थोड़ा स्प्रेड हुआ रहता है तो फिर उस हिसाब से रेडिएशन या हार्मोन इंजेक्शंस की हम मदद लेते हैं, और जिनको काफी स्प्रेड

0: हुआ रहता है उनको हार्मोनल ट्रीटमेंट से हम कंट्रोल कर सकते हैं.
1: जी
0: बट आई कैन टेल यू, ये कैंसर इतना डरने वाला कैंसर नहीं रहा है. और रेगुलर चेकअप, PSA चेकअप अगर हम अर्ली डिटेक्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स काफी अच्छे हो गए हैं.
1: डॉक्टर साहब, अब आगे बढ़ने से पहले आपकी पसंद का एक गाना और हो जाए, कौन सा गाना सुनवाए?
0: सरस्वती चंद्र का वो गाना, चंदन सावधन
1: चंचल चितवन,
0: चंचल चितवन,
1: बेहतरीन
0: बहुत
1: गाना
0: अच्छा
1: है
0: गाना है.
1: जी, मुकेश की आवाज में भी
0: मुकेश
1: है
0: की आवाज
1: और
0: में और लता
1: लता
0: जी
1: जी
0: की
1: की.
0: आवाज में भी है.
1: जी
0: मुझे लगता है कि मुकेश की आवाज
1: जी
0: में
1: जी
0: सुनेंगे.
1: मुकेश की
0: जरूर.
1: आवाज वाला गाना सुनते हैं.

0: डॉक्टर साहब, गाने के बाद हमारे श्रोताओं को बताइए कि किडनी से जुड़ी हुई बीमारियों की बात चल रही थी थोड़ी देर पहले, तो किडनी ट्रांसप्लांट की स्थिति कब आती है और किस तरह के जोखिम होते हैं उसमें, और क्या किडनी ट्रांसप्लांट से किडनी की समस्याएं दूर हो जाती हैं?
1: जिसे किडनी फेलियर होता है, जिसके अलग अलग कारण हैं, और जब दोनों किडनी फेल हो जाती है, तब परिस्थिति आती है कि वो किडनी रिप्लेसमेंट करना या किडनी फंक्शन रिप्लेस करना जरूरी हो जाता है। हमारे देश में अब सबसे कॉमन कारण डायबिटीज बन रहा है, दूसरा हाई ब्लड प्रेशर,
0: जी
1: और कुछ किडनी के इन्फेक्शन, या कभी कभी स्टोन्स वगैरह की किडनी ऑब्स्ट्रक्ट होके अगर सही समय में ट्रीटमेंट नहीं ली तो फिर ये किडनी डैमेज हो जाती है।
0: जी
1: जब दोनों किडनी डैमेज हो जाती है तब हमें काफी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि किडनी के बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इज अ फिल्ट्रेशन प्लांट इन

0: अवर बॉडी,
1: जी
0: और जब वो काम नहीं करता है तो हमारे इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो जाना शुरू हो जाता है, एसिड बेस बैलेंस में प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, खून बनाने में तकलीफ होने लगती है, किडनी हमारा बोन मेटाबॉलिज्म में भी ख्याल करती है, ये सब चीजें शुरू हो जाती है। और कभी कभी जब इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस या पोटाशियम बढ़ने से या एसिडोसिस बढ़ने से वो कभी लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है, और उस समय इसे हम एंड स्टेज रिनल डिजीज कहते हैं, ट्रीटमेंट की आवश्यकता हो जाती है, या तो डायलिसिस या तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन। डायलिसिस ये एक आर्टिफिशियल किडनी का काम करती है, जो
1: जी
0: हफ्ते में 2 या 3 बार मरीज को मशीन के ऊपर जाके ये ब्लड साफ करना या जो केमिकल्स जो बदन में तकलीफ देती है उनको क्लीन करना जरूरी हो जाता है, दैट इज डायलिसिस।
1: जी
0: लेकिन डायलिसिस के लिए हफ्ते में 2 या 3 बार जाना पड़ता है, और उससे पूरे किडनी के फंक्शन का रिप्लेसमेंट नहीं होता है।
1: जी जी
0: सो द बेटर ट्रीटमेंट इज किडनी ट्रांसप्लांटेशन।
1: जी
0: नाउ किडनी ट्रांसप्लांटेशन से नई किडनी मरीज को देके जो फिर वो किडनी का काम अपने आप ले लेती है, जिससे नियर नॉर्मल लाइफ पेशेंट की हो सकती है।
1: जी
0: लेकिन यहां कुछ चीजें समझना बहुत जरूरी है। पहली बात, शॉर्टेज ऑफ ऑर्गन्स। हर साल कुछ 2 लाख मरीज इंडिया में है जिनको ये रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की जरूरत पड़ती है, और अल्टीमेटली 10% मरीज हैं जिनको ये ट्रीटमेंट मिल सकती है,
1: जी
0: क्योंकि डायलिसिस अब काफी सेंटर्स में डायलिसिस की सुविधा मिल रही है, लेकिन वो एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए ऑर्गन मिलना डिफिकल्ट है।
1: जी
0: 2 प्रकार के किडनी ट्रांसप्लांटेशन होते हैं, जिसे हम रिलेटेड किडनी ट्रांसप्लांट कहते हैं या डिजीज डोनर या कैडेवर ट्रांसप्लांट कहते हैं। लिविंग डोनर में जहां पेशेंट और डोनर दोनों की किडनीज मैच होती है, जो अलग अलग ब्लड टेस्ट से हम चेक करते हैं, वो डोनेट कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो पर्सन डोनेट करता है उनकी हेल्थ को हमको ज्यादा चेकअप करना बहुत जरूरी है। ये नहीं होना चाहिए कि किसी ने डोनेट किया और खुद पेशेंट बन गए।
1: बिल्कुल
0: सो पहले वो सब हम चेकअप करते हैं कि जो डोनेट करना चाहते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है और प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। फॉर्चुनेटली एक किडनी से कोई भी पेशेंट अच्छी जिंदगी जी सकता है, और इसके कारण अगर बाकी सब रिपोर्ट्स ठीक रहे तो एक किडनी डोनेट कर सकता है। सो जिसे हम लाइव डोनर ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं, और इसमें भी कुछ गवर्नमेंट्स के कानून है, उस हिसाब से हम डोनर सिलेक्ट कर सकते हैं।
1: जी
0: लेकिन सबसे जरूरी बात है, जैसे हम डिजीज डोनर और कैडेवर ट्रांसप्लांट कहते हैं, अब ये समझना बहुत जरूरी है कि आफ्टर डेथ अगर हम किसी को मदद कर सके तो इससे बड़े चीज क्या है।
1: जी
0: और डेथ हम ऐसे मानते हैं कि अगर हमारा हार्ट बंद हो गया तो हमारी डेथ हो गई। एक्चुअली ये ब्रेन है जो हमारी लाइफ को कंट्रोल करता है,
1: जी
0: और जब ब्रेन काम करना बंद हो जाता है तो उसे हम ब्रेन डेड कहते हैं।
1: जी जी
0: नाउ कुछ मरीज जिनके कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हुए, जिनको एक्सीडेंट हुआ जिसके कारण ब्रेन डैमेज हो जाता है, जहां टेक्निकली व्यवस्थित जांच करके एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ये मरीज अभी ब्रेन डेड है, जिसको वापस जिंदा करना पॉसिबल नहीं है, अगर उनके ऑर्गन्स यूज कर सकें तो वो ऑर्गन से काफी लोगों को सेकेंड लाइफ मिल सकती है, जिसे हम कैडेवर ट्रांसप्लांट कहते हैं। ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है,
1: जी
0: क्योंकि अदरवाइज यही ऑर्गन्स या तो हम दफना देते हैं या हम जला देते हैं। अगर समय में ये ऑर्गन्स अगर मिल गए तो काफी लोगों की जिंदगी सुधर सकती है।
1: जी
0: ये बात मानना गलत है कि कहां भी एक्सीडेंट हो गया कहां से हम ऑर्गन ले लेंगे और ट्रांसप्लांट कर देंगे, ये सब अगेन मिथ्स है। ऑर्गन डोनेशन के लिए पहले तो मरीज ज्यादा करके इस बीमारी से जब आईसीयू में वगैरह रहते हैं, जब पूरी ट्रीटमेंट की कोशिश हो जाती है, उसके बावजूद जब चार

0: बताते हैं कि वापस जिंदा रहने की कोई चांस नहीं है, उस समय हम पेशेंट के जो ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर है वो रिलेटिव से पूछते हैं कि आप डोनेशन के लिए तैयार है कि नहीं। सो ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बहुत कम समय मिलता है, इसके बाद में हार्ट बंद हो जाता है। अगर एक बार हार्ट बंद हो गया तो ये जो ब्लड फ्लो ऑर्गन्स को मिल रहा था डेड बॉडी में, जिसके कारण ऑर्गन्स कुछ समय तक काम करते हैं, अगर उस समय के दरमियान हमको ऑर्गन मिले तो ही हम यूज कर सकते हैं।
1: जी
0: सो ये अगर लोगों को अवेयरनेस रही कि समथिंग कॉल्ड कैडेवर ट्रांसप्लांट जैसा है, जो इस प्रकार के ब्रेन डेड लोगों के ऑर्गन्स जो लीगल फ्रेमवर्क के अंडर जब
1: बिल्कुल
0: लिए जाते हैं और पेशेंट्स को देते हैं, काफी पेशेंट्स को सेकेंड लाइफ मिलती है। सो ये जानना बहुत जरूरी है।
1: जी
0: दूसरी बात, ट्रांसप्लांट के बाद भी 100% सक्सेस नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली और किसी का ऑर्गन जब मिलता है वो बॉडी कैसे एक्सेप्ट करती है उसके ऊपर भी निर्भर रहता है।
1: जी
0: उसके लिए जांच जरूर करते हैं, उसके लिए काफी दवाइयां हैं जिससे ये रिजेक्शन ना हो वो कोशिश होती है, लेकिन हर बॉडी वो एक्सेप्ट कर सकेगी कि नहीं वो भी प्रश्न रहता है।
1: जी
0: सो ये सब चीजें समझनी बहुत जरूरी है। लेकिन जो मरीज ऑर्गन फेलियर से तकलीफ में है, उनके लिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक बहुत बड़ी चीज बन जाती है, उनको एक नई लाइफ मिल जाती है।
1: जी
0: सो
1: जी
0: लोगों को इसके बारे में भी जानकारी बहुत महत्व की है,
1: जी
0: और इसके पीछे भी काफी मिथ्स जो वगैरह रहती है उसको दूर करना बहुत जरूरी है।
1: जी जी
0: काफी लोग खाली पड़ते हैं कि ये ऑर्गन चोरी हुई या अनरिलेटेड पैसे दे के ट्रांसप्लांट, वो कॉमन नहीं है।
1: जी जी जी
0: इसीलिए राइट सेंटर में राइट लोगों से सलाह लेके राइट लीगल फ्रेमवर्क में अगर हम ये करेंगे तो काफी लोगों को हम नई जिंदगी दे सकते हैं। इसलिए ये समझना जरूरी है कि ब्रेन डेथ इज डेथ, और उनके समय में ऑर्गन अगर हम निकाल के किसी को डोनेट कर सके तो काफी लोगों को फायदा हो सकता
1: जी
0: है।
1: बिल्कुल, बड़ी तथ्यपरक बात कही है आपने। और ये अमूमन लोग जुमला इस्तेमाल करते हैं, सांस रुकी तो इंसान चला गया, लेकिन आपने एक कितनी जानकारी वाली बात बताई कि मस्तिष्क ब्रेन का काम करना जरूरी है, ब्रेन रुका तो फिर इंसान गया। अब डॉक्टर साहब, एक बड़ी ही जरूरी बात है, वो है यूरिनल ट्रैक में कैंसर की समस्या। हम जो यूरिन के विषय पर बात करें तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए।
0: सबसे बड़ा लक्षण ब्लड इन द यूरिन, जब भी रिपोर्ट में या मरीज देखता है कि यूरिन में ब्लड आ रहा है, उस समय जांच करना बहुत जरूरी
1: जी
0: है।
1: जी
0: किडनी कैंसर, जब ये हम जांच करते हैं तो कुछ कुछ किडनी में भी हमें कैंसर दिखाई देता है।
1: जी
0: सबसे बड़ी समस्या ब्लैडर कैंसर की है,
1: जी जी
0: और द कॉमनेस्ट कॉज इज स्मोकिंग और टोबैको,
1: ओ
0: जो लोगों को पता नहीं है लेकिन
1: बिल्कुल
0: टोबैको से ये ब्लैडर कैंसर बहुत कॉमन हो रहा है, और वो अगर समय से ट्रीट किए तो काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है, लेकिन अगर वो ज्यादा स्प्रेड हो गया तो काफी कॉम्प्लिकेशन कर सकता है। सो अगेन, यहाँ दो तीन चीजें हैं। ऑफ कोर्स लाइफस्टाइल चेंजेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आई थिंक टोबैको इज अनदर थिंग जिसके कारण शरीर में काफी जगह में कैंसर होने की शक्यता रहती है, और तीसरा है रेगुलर हेल्थ चेकअप, जो अगेन समय में कैंसर की बीमारी पता चलने से उसकी समय में अगर ट्रीटमेंट कर दी तो रिजल्ट्स काफी अच्छे मिलते हैं।
1: जी, मतलब ये पूर्णतः इलाज हो सकता है अगर समय पर।
0: एब्सोल्युटली
1: जी,
0: एब्सोल्युटली।
1: तो अब डॉक्टर साहब चलते चलते एक गाना आपकी पसंद का सुनवाएं, कौन सा गाना?
0: जरूर, आई थिंक ये आइकॉनिक गाना है, लग जा गले फिर कभी मुलाकात हो ना हो।
1: जी, अमूमन अंताक्षरी हो या कहीं कोई स्टेज प्रोग्राम हो या रेडियो का कोई प्रोग्राम हो, इस गाने के बगैर अधूरा सा रहता है। तो आज का
0: एब्सोल्युटली
1: ये प्रोग्राम भी जैसे अधूरा सा था इस गाने के बगैर। फिल्म है वो कौन थी, लता मंगेशकर की आवाज, पर्दे पर साधना, सुनते हैं ये गाना।

0: और अब चलते चलते हमारे श्रोताओं को सलाह दीजिए डॉक्टर साहब कि ये प्रोस्टेट के बढ़ने के बारे में, प्रोस्टेट और यूरिन की समस्याओं से जूझते लोगों की सजगता के लिए आप चंद शब्दों में क्या कहेंगे?
1: सो कुछ चीजें शरीर में कुदरती बढ़ती है, लाइक प्रोस्टेट ग्लैंड.
0: जी
1: हर पुरुष में प्रोस्टेट की ग्रंथि उम्र के हिसाब से बढ़ती है. इसका मतलब ये नहीं कि हर प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के लिए ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, वैसी बात नहीं है. लेकिन रेगुलर चेकअप करने से, एक्सपर्ट के पास चेकअप कराने से समय में अगर कुछ प्रॉब्लम रहा हो तो ट्रीट कर सकते हैं. कैंसर बड़ा शब्द है, लेकिन मॉडर्न टाइम में काफी ट्रीटमेंट अवेलेबल है. अगर कैंसर को समय में डिटेक्ट किया तो अच्छी तरह से ट्रीट कर सकते हैं. यूरिनरी प्रॉब्लम्स कभी कभी छोटे रहते हैं, तकलीफ ज्यादा देते हैं. लाइफस्टाइल चेंजेस से और प्रॉपर काउंसलिंग और दवाई समय से लेने से काफी टेंशन कम हो सकती है और यूरिन के प्रॉब्लम हम कंट्रोल कर सकते हैं. किडनी स्टोन्स हमारे देश में कॉमन है. अगेन, राइट टाइम में डिटेक्शन होना जरूरी है.
0: जी
1: और सबसे बड़ी बात, गूगल या कोई भी इंफॉर्मेशन पेशेंट के लिए अच्छा है, हमें जानना जरूरी है, लेकिन उस हिसाब से अपने आप ट्रीटमेंट डिसाइड करना, अपने आप टेंशन ले लेना, अपने मित्रों से सलाह लेना, ये सही नहीं है. क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत बातें आती है, वो साइंटिफिकली सही है कि नहीं वो बताने के लिए आपको एक्सपर्ट चाहिए.
0: बिल्कुल
1: सो मेरी सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है कि कभी भी ऐसी प्रश्न आपके मन में आए, आप एक्सपर्ट को पूछिए.
0: जी
1: अगर आपको कुछ सलाह दी गई है, वो ट्रीटमेंट के बारे में है, ऑपरेशन के बारे में है, अवॉइड मत कीजिए. अगर आपको डाउट है, जरूर सेकेंड ओपिनियन लीजिए. लेकिन ये बहुत महत्व की चीज है कि जो डिजीजेस अगर हमने समय में उसको पकड़ लिया, समय में ट्रीटमेंट उनकी आपको सही तरह से मिल गई, तो आगे जाके उसके कॉम्प्लिकेशंस कम हो गए और वो क्योर होने की शक्यता बढ़ जाती है.
0: जी
1: आई थिंक हेल्थ इज वेल्थ, वी ऑल नो.
0: जी
1: और आज के जमाने में जहां इवन आफ्टर एज ऑफ 60, 70, 80 एंड 90 लोगों एक्टिव है, हेल्थ मेंटेन करना बहुत जरूरी है. यह भी मैं जानता हूं कि हेल्थ ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव हो रही है. जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, इट इज कमिंग एट अ कॉस्ट. सो यस, पहले 10 दिन अस्पताल में रहना पड़ता था, अभी 2 दिन में ट्रीटमेंट हो जाती है.
0: जी जी
1: लेकिन इट्स एन एक्सपेंसिव अफेयर.
0: जी
1: सो आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट इज प्रिवेंशन, एंड दैट इज हैविंग अ गुड लाइफस्टाइल चेंजेस, एडिक्वेट वाटर ड्रिंकिंग एंड टाइम टू टाइम रेगुलर चेकअप. आई थिंक दिस विल गिव अ गुड रोड मैप फॉर अ गुड हेल्थ, एंड आई थिंक दैट्स द मोस्ट क्रुशियल थिंग इन मॉडर्न टाइम.
0: जी
1: थैंक यू वेरी मच.
0: डॉक्टर साहब, विविध भारती के स्टूडियो में आप आए और इतनी सारी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को दी। विविध भारती परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार
1: नमस्कार.
0: दोस्तों, सेहतनामा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंबई के जाने माने यूरोलॉजिस्ट उमेश ओझा से रेडियो सखी ममता सिंह की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले

0: छाया गीत आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।
1: अभी हम रिले कर रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम FM बैंड 103.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। अब हम प्रसारित करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं CF अनुभाग सरगुजा।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 58 है। ये खोड़, केसर, छतौली, इंजानी, बरपटिया, पुतकी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर में हाथियों की कुल संख्या 14 है। ये मकनपुर, नवाडी, पोड़िपा, पेंडारी, सिंघरा, भरदा, गौरा, मदन नगर, गणेशपुर, चिटका, बहरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के राजपुर और रामानुजगंज में हाथियों की कुल संख्या 11 है। ये अखोरा, कुंदीकला, जामदोहर, सिधवा, गोपालपुर, मुरका, अतौरी, ठरकी, चिनिया, कनक पुर, डकिया, शिवपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के लुंड्रा, उदयपुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 8 है। ये पड़ौली, अमड़ी, किशुनपुर, मसगाड, सत्तीमुड़ा, लक्ष्मणगढ़, ससकालो, तेंदुटिकरा, मानपुर, बरिमा, कुदारीडीह, केसरा, सरभंजा, ललिया के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के दुलदुला, पत्थलगांव, कांसाबेल और बगीचा में हाथियों की कुल संख्या 32 है। ये धूरी अम्बा, करडेगा, केंदापानी, बकना, खड़ामाचा, पीठा

0: আমা রাজা আমা মহেশপুর সাজাপানি টিটা পাকের সোনাজোরি ঘন্টাডাঁড় পরসাডাঁড় পেটা বিমড়া কে বন ক্ষেত্র মে বিচরণ কর রে হ্যাঁ। ধরমজয়গড় বন মন্ডল কে ছাল ধরমজয়গড় বোরো লেলুঙ্গা আর কাপু মে হাতিও কী কুল সংখ্যা 117 হে। মহারাজগঞ্জ বঙ্গরসুতা কুড়েকেলা বোজিয়া সিংহিছা বনহর লোটান কঞ্চিরা পোটিয়া আমগাঁও ঝগরপুর সাগর পালি কে বন ক্ষেত্রো মে বিচরণ কর রে হ্যাঁ। কোরবা বন মন্ডল কে কুদমুরা মে এক হাতি বিচরণ কর রা হ্যাঁ। ये कटकोना और जिलगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहा है। कटघोरा वन मंडल के केंदई जडगा एतमानगर और पसान में हाथियों की कुल संख्या 51 है। ये मड़ई कोदवारी भोड़ूपानी कठमोरगा बांधापारा लालडी झुनकीडी जुनवानी कुकरी कादर बनिया चोटिया लालपुर सेमरहा बोकरा मुड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये झिंगोल तराईमाल नागदरहा पंडरीपानी भैंसगढ़ी बड़गांव के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये कोठारी तालदादर पकरीत के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये ओड़ अमलोर ताराझर डडई पानी बुडार जिडार सिंहार छिंदौला लूठापारा फरसरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोट।
2: अभी हम प्रसारित कर रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। कार्यक्रम के प्रायोजक थे सीएफ अनुभाग सरगुजा। शाम के 5:05 हुए हैं श्रोताओं, और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

कार्यक्रम का पहला गीत लीजिए सुनिए, चश्मे बद्दूर। इस फिल्म से आवाज़ें दी हैं यशुदास और हेमंती शुक्ला ने। इंदु जैन के बोल हैं, राजकमल का संगीत।

चश्मे बद्दूर फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना, आवाज़ें दी थी यशुदास और हेमंती शुक्ला ने, इंदु जैन के बोल थे राजकमल का संगीत। और अब अगला गीत लीजिए सुनिए, उदित नारायण और अलका याग्निक की युगल आवाज़ों में।

0: शिखर फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना, आवाज़ें उदित नारायण और अलका याग्निक की थी। सुधाकर शर्मा के बोल थे, संगीत मनीष शंकर का।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
0: और अब अगला गीत लीजिए, पेश है जब वी मेट, इस फिल्म से स्वर उस्ताद राशिद खां का, इरशाद कामिल के बोल, संदेश शांडिल्य का, संगीत।

और अब लीजिए सुनिए फिल्म साया का ये गीत, आवाजें दी हैं अलका याग्निक और उदित नारायण ने, आनंद बख्शी की रचना, MM करीम का संगीत।

और अब लीजिए सुनिए फिल्म पाप से ये गीत राहत फतेह अली खां की आवाज़ में। गीतकार हैं अमजद इस्लाम अमजद, संगीत शाही का।

पाप फिल्म का ये गीत अभी श्रोता सुन रहे थे राहत फतेह अली खां की आवाज़ में। और अब इसी के साथ कार्यक्रम चित्रपट संगीत का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। शाम के 5:35 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युवा जगत।

नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव वर्मा आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं कार्यक्रम युवा जगत में। दोस्तों, मानसून ने छत्तीसगढ़ सहित पूरे भारत में दस्तक दे दी है। मानसून के आगमन के शुरुआती रुझानों में ही कई जगह की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। गली मोहल्ले में पानी भर गया है, नदी नाले उफान पर है, कहीं सड़कें धस रही हैं तो कहीं पुल बह रहे हैं, जिससे शहरों और गांवों की कनेक्टिविटी पर खासा प्रभाव पड़ा है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि बारिश कितनी हुई है, बल्कि यह भी कि हमने प्रकृति के साथ कैसा व्यवहार किया। हर बाढ़ या प्राकृतिक आपदा केवल प्रकृति का प्रकोप नहीं होती, बल्कि कई बार इसमें मानवीय लापरवाही भी बड़ी वजह बन जाती है। नदियों के प्राकृतिक मार्गों पर अतिक्रमण, अंधाधुंध पेड़ों की कटाई, जल निकासी के रास्तों को पार देना, अवैध रेत उत्खनन, प्लास्टिक और कचरे से नालियों को जाम कर देना, ये सभी कारण सामान्य सी बारिश को भी गंभीर संकट में बदल सकते हैं। प्रकृति हमें समय समय पर संकेत देती है कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। यदि हम इस संतुलन को बिगाड़ेंगे तो उसका सीधा असर हमें ही भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, हालांकि अच्छी बात यह है कि बदलाव की शुरुआत छोटे छोटे प्रयासों से भी की जा सकती है। हम अपने घर और आसपास स्वच्छता बनाए रखें, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें, वर्षा जल संरक्षण को अपनाएं, अधिक से अधिक पौधे लगाएं और उनकी देखभाल करें, नालियों और जल निकासी के रास्तों में कचरा ना फेंके तथा दूसरों को भी पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करें, क्योंकि प्रकृति है तो बसंत है, प्रकृति नहीं तो बस अंत है। प्रकृति की रक्षा केवल सरकार या किसी एक संस्था की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि यह हम सभी की साझा दायित्व है। जब हर नागरिक अपने स्तर पर छोटा छोटा कदम उठाएगा, तभी आने वाली पीढ़ियों को

0: एक सुरक्षित, स्वच्छ और संतुलित पर्यावरण मिल सकेगा। दोस्तों, बातें तो जारी रहेंगी, आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ के धमतरी, जशपुर, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, कोरबा, महासमुंद, कोंडागांव, रायगढ़, राजनांदगांव, नारायणपुर एवं सूरजपुर जिलों में फसल बीमा योजना खरीफ 2026 मौसम हेतु संचालित की जा रही है। इस योजना में धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, मकई, सोयाबीन, मूंगफली, तुअर, अरहर, मूंग, उड़द, कोदो, कुटकी एवं रागी, मड़वा अधिसूचित फसल का बीमा किया जा रहा है। किसी भी प्रकार की फसल बीमा से संबंधित जानकारी, मार्गदर्शन, सहायता या शिकायत के लिए तुरंत कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन 14447 पर कॉल करें। प्रशिक्षित प्रतिनिधि आपकी सहायता के लिए सदैव उपलब्ध है। 7065514447 पर हमारे फसल बीमा चैटबॉट को केवल नमस्ते या हाय लिखकर संदेश भेजें। चैटबॉट आपको योजना की जानकारी, बीमित फसलों, क्लेम की जानकारी तुरंत उपलब्ध कराएगा। बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। फसल हो या कृषि संपदा, बीमा सुरक्षा हमारा वादा। फसल सुरक्षा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
0: दोस्तों, जैसा कि हमने अभी बात की, प्रकृति रक्षा, समाज के प्रति जिम्मेदारी और सकारात्मक बदलाव केवल नीतियों से नहीं बल्कि जागरूक और संवेदनशील नागरिकों से संभव होता है। ऐसे नागरिक तैयार करने में शिक्षा के साथ साथ स्काउट एवं गाइड जैसे संगठन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो बच्चों और युवाओं में सेवा, अनुशासन और राष्ट्र निर्माण की भावना को विकसित करते हैं। इन्हीं विषयों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे एक ऐसे ही प्रेरणादायी शख्सियत, जिन्होंने शिक्षा और स्काउट गाइड के माध्यम से अनेक बच्चों और युवाओं के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, हमारे साथ हैं श्वेता जायसवाल जी, सहायक शिक्षक एवं जिला संगठन आयुक्त जिला जांजगीर चांपा। चलिए दोस्तों, जानते हैं उनसे ढेर सारी जानकारियां स्काउट एवं गाइड के बारे में।

0: श्वेता जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम युवा जगत में। सबसे पहले आप अपना परिचय हमारे श्रोताओं के साथ साझा करिए, साथ में अपने शुरुआती जीवन, शिक्षा और इस मुकाम तक पहुंचने के सफर को भी।
1: सबसे पहले मैं आकाशवाणी केंद्र बिलासपुर के इस कार्यक्रम युवा जगत क्रम मेरी बारे में मुझे पुनः आमंत्रित करने के लिए वैभव एवं आपकी पूरी टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं श्वेता जायसवाल, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के रूप में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मड़वा में पदस्थ, साथ ही मैं भारत स्काउट्स एवं गाइड्स छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जिला संगठन आयुक्त गाइड जिला जांजगीर चांपा का दायित्व तो भी निभा रही हूँ। और मैं आपको बताना चाहूंगी वैभव जी कि इस सत्र में मुझे मेंबरशिप ग्रोथ प्रोग्राम का डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर भी बनाया गया है। मेरी स्कूलिंग जांजगीर से ही हुई है और अपना ग्रेजुएशन मैंने इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस में दुर्ग से किया है। निश्चित रूप से विद्यार्थी से आज एक शिक्षिका तक का सफर बहुत उतार चढ़ाव और चुनौतीपूर्ण रहा मेरे लिए।
0: श्वेता जी, टीचिंग को आपने एज अ प्रोफेशन चुना, आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? और फिलहाल अभी आप तो विज्ञान प्रयोगशाला में सहायक शिक्षिका के रूप में पदस्थ हैं, तो इस पद पर आपकी भूमिका क्या रहती है ये भी बताइए।
1: जैसे मैंने पहले ही बताया कि मैंने अपने ग्रेजुएशन के लिए इंजीनियरिंग जैसे फील्ड को चूज किया, तो निश्चित रूप से काम तो मुझे तकनीकी क्षेत्र में ही करना, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर रहा होगा शायद, इसलिए मैंने आज एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो प्राइवेट जॉब है छोड़कर सरकारी स्कूल में शिक्षिका का दायित्व निभा रही हूँ। वैसे मेरा जो पद है मूलतः प्रयोगशाला सहायिका का है, जिसमें मुझे प्रायोगिक विषयों से संबंधित प्रैक्टिकल्स बच्चों को सिखाना होता है, और साथ ही एक युवा शिक्षिका होने के नाते मुझे लगता है कि जो शासकीय स्कूल के विद्यार्थी होते हैं उन्हें आज की जरूरत के हिसाब से तैयार करना चाहिए, इसलिए मैं हमारे विद्यालय में बहुत सारी ऐसी गतिविधियों का समावेशन करती हूँ, संचालन करती हूँ, जैसे चित्रकला, भाषण, वाद विवाद, कहानी वाचन। इसके अलावा इम्पोर्टेंट इवेंट्स और इम्पोर्टेंट जो डेट होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम बच्चों का सामान्य ज्ञान का वाचन कराते हैं, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, और इसके अतिरिक्त भारत स्काउट्स एवं गाइड्स छत्तीसगढ़ अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं, उनका आयोजन भी मैं जिले एवं विद्यालय स्तर पर समय समय पर करते ही रहती हूँ। मुझे लगता है कि बच्चों को पूरे समय विद्यालय में जोड़कर रखने के लिए सिर्फ क्लासरूम में बैठा कर पढ़ाना पर्याप्त नहीं होता है, शिक्षा

0: बहुत सारी ऐसी गतिविधियों का हमें समावेशन करना बहुत जरूरी है।
1: आप शिक्षा क्षेत्र में होने के साथ साथ भारत स्काउट एवं गाइड में भी सक्रिय रूप से जुड़ी हुई हैं और वर्तमान में बड़े पद पर रहकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन आप कर रही हैं। आपको इस संगठन से जुड़ाव कैसे हुआ और वर्तमान में आपकी भूमिका क्या है इस संगठन में?
0: सबसे पहले इंद्रजीत सिंह खालसा जी, मुख्य आयुक्त भारत स्काउट्स एवं गाइड्स छत्तीसगढ़, आदरणीय हितेश यादव जी एवं डॉक्टर दीपक कुमार यादव जी एवं पूरी जांजगीर टीम का धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने मुझे इस काबिल समझा और जिले की इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। वैभव जी, मुझे इस क्षेत्र में जुड़े लगभग 2 साल हो रहे हैं। इन 2 सालों में मैंने कुछ कैंप्स अटेंड किए, जैसे पचमढ़ी एडवेंचर कैंप मध्य प्रदेश में, लखनऊ नेशनल जम्बूरी, प्रथम नेशनल रोवर रेंजर जम्बूरी जो की छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में इसका आयोजन किया गया था। इन सभी इवेंट्स में मैंने जिले का प्रतिनिधित्व किया। वैभव जी, जैसे कि आपने पूछा कि जिला संगठन आयुक्त गाइड के क्या दायित्व होते हैं, तो मुख्य रूप से जो अपना दायित्व है जिले के जो गाइड विभाग है उनके समस्त कार्यक्रम, जितने भी कार्यक्रम बच्चियों से जुड़ी हुई होती हैं, उनका आयोजन एवं संचालन करना होता है। जैसे सबसे पहले हमें बच्चों का पंजीयन करना होता है OIMS में, तो वो बच्चों के उस पंजीयन से लेकर उनके राज्यपाल राष्ट्रपति सम्मान तक बहुत सारे कैंप्स आयोजन करना पड़ता है और सतत उनको मार्गदर्शन करते रहना पड़ता है ताकि समय समय पर बच्चे इसके लिए तैयारियां कर सकें। इसके अतिरिक्त विभिन्न विद्यालयों में भ्रमण करके वहाँ स्काउटिंग की जो गतिविधियां हैं सुचारू रूप से आयोजित हो रही है नहीं हो रही है, इस चीज की जांच करना, यदि कोई यूनिट्स या कोई विद्यालय अभी निष्क्रिय है, वहाँ सही तरीके से स्काउटिंग की गतिविधियां अगर नहीं चल रही तो उसका हम निरीक्षण करते हैं और हम उन्हें सहयोग करते हैं कि कैसे वे वापस से स्काउटिंग की जो भी एक्टिविटीज है उसको समय समय पर आयोजित करते रहे और बच्चों को इसका लाभ दे सके। मैं आपसे एक कार्यक्रम, विशेष कार्यक्रम जो इस सत्र हम लोगों ने आयोजन किया था उसका जिक्र करना चाहूंगी। बेसिकली ये जो भारत स्काउट्स एवं गाइड्स एवं यूनिसेफ के संयुक्त तत्वाधान में एक महावारी स्वच्छता प्रबंधन पर आधारित कार्यक्रम था। इसका आयोजन हमने जिला स्तरीय किया था जिसमें महावारी के दौरान जो भी समस्याएं होती हैं किशोरियों को और उससे संबंधित जो भ्रांतियां जो सालों से चलती आ रही है ना, उसे तोड़ने के लिए हम लोगों ने जागरूकता रैली का आयोजन किया। इसके अलावा डॉक्टर्स के विशेष सत्र भी आयोजित किए थे।
1: स्काउट गाइड, NCC या NSS जैसे संगठनों में जुड़ने से बच्चों और युवाओं को क्या-क्या फायदे मिलते हैं और ये एक्टिविटी उनके भविष्य निर्माण में किस तरह सहायक होती है?
0: जो स्काउट गाइड्स है या NCC और NSS, ये सारे जो संगठन है ये युवाओं के लिए केवल एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या स्कूल कॉलेज में जो सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं ये वैसा नहीं है। असल में ये जो संगठन है वो युवाओं को तराशने की भट्टी, जो एक आम छात्र को एक अनुशासित, संवेदनशील और सक्षम नागरिक में बदल देती है। जब कोई बच्चा या कोई युवा इन संगठन से जुड़ता है तो मुझे लगता है कि मुख्य रूप से उनको स्तर पर हम लाभ दे सकते हैं। जो पहला स्तर है उसका एक व्यक्तिगत विकास की बात करता है जिसमें उसके स्वयं का विकास होता है, चारित्रिक विकास होगा, व्यक्तिगत विकास होगा। जैसे NCC होता है उसमें बहुत सी ऐसी गतिविधियां होती है जैसे ड्रिल्स होते हैं, कैंप्स होते हैं, इसमें जो युवा जाते हैं उन्हें समय की कीमत और अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाता है। स्काउट गाइड्स के कैंप्स देखिए, उसमें जो बच्चे होते हैं वो घर दूर टेंट में रहते हैं, खुद से खाना बनाना सीखते हैं, गांठे बांधना सीखेंगे, विपरीत परिस्थिति में जीवन कैसे जीवित रहना है ये सीखे हैं, तो इससे उनकी जो मानसिक और शारीरिक रूप से वो मजबूत होते हैं। इसके अतिरिक्त बच्चे जो पेट्रोल सिस्टम इसमें बेसिकली चलता है स्काउट एंड गाइड्स में, उसमें टीम वर्क के साथ काम करना, कभी टीम का लीडर बनना, कभी टीम के सदस्य बन के सहयोग करना, ऐसे बहुत से सिचुएशन से वो लोग यहाँ पे कैंप्स में जूझते हैं और निश्चित रूप से नेतृत्व क्षमता का उनका विकास होता है। दूसरा जो स्तर है इनके विकास का या जो दूसरे स्तर पे इनको जो लाभ मिलता है वो मुझे लगता है कि सामाजिक रूप से ये लोग संवेदनशील होते हैं और निश्चित रूप से जैसे आप देखिए NSS का मूल मंत्र ही है स्व से ऊपर उठकर सेवा का भाव, ये राष्ट्रीय सेवा योजना का मूल मंत्र है। जैसे स्काउट गाइड्स का अगर आप मूल मंत्र देखें तो बी प्रिपेयर्ड है, हमेशा तैयार रहिए, हर परिस्थिति से लड़ने के लिए आप हमेशा तत्पर रहिए, ये बच्चों को हमेशा एक्टिव अवेयर बनाता है। इसके अलावा इसका और भी मतलब करियर से रिलेटेड भी बेनिफिट बच्चों को मिलता है। जैसे भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के अंतर्गत जो स्काउट्स गाइड्स होते हैं, रोवर रेंजर्स होते हैं, उसका जो अंतिम पड़ाव होता है वो राष्ट्रपति पुरस्कार का होता है। तो ऐसे जो बच्चे हैं राष्ट्रपति पुरस्कार जो प्राप्त कर लेते हैं उन्हें भारतीय रेलवे में सीधे कोटे पर सीधी भर्ती की जाती है। इसके अलावा जैसे NCC है तो उसमें भी एक सी सर्टिफिकेट होता है, तो जो जो कैडेट्स जो होते हैं सी सर्टिफिकेट जो धारक होते हैं उनको सेना में सीधी भर्ती या बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिसमें इंटरव्यू में उसको विशेष छूट मिलता है। इसके अलावा जैसे NSS से संबंधित जो भी सर्टिफिकेट्स होते हैं उसमें भी विश्वविद्यालय में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो उससे बोनस अंक बच्चों को प्राप्त होता है। और मुझे ये लगता है कि कॉरपोरेट जगत की बात करिए या किसी भी सरकारी क्षेत्र की आप बात करिए, आज के डेट पे हर जगह सॉफ्ट स्किल्स रिक्वायर्ड है। लाइक आप सिर्फ पढ़ के चले जाएंगे तो आप मतलब भीड़ में छिप जाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे इन संगठनों से बहुत सी चीजें सीखे

0: जाते हैं, अपने व्यक्तिगत विकास करते हैं, चारित्रिक विकास करते हैं, समाज की सेवा का भाव है उनके अंदर, तो निश्चित रूप से पूरी भीड़ में वो जो युवा है वो अलग से चमकता है। और क्योंकि वह केवल सिर्फ डिग्री लेके नहीं गया है बल्कि विभिन्न परिस्थितियों में अपने आप को संभालने का उसने हुनर सीखा है।
1: मैडम, हमने न्यूज़पेपरों में पढ़ा, समाचारों में देखा कि आपके गाइडेंस में स्काउट गाइड के बच्चों ने कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की, स्कूल का, अपने जिले का, छत्तीसगढ़ का नाम कई मंचों पर रोशन किया। इस उपलब्धिपूर्ण सफल के बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए।
0: भारत स्काउट्स एवं गाइड्स हर सत्र एडवेंचर, ट्रैकिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट एवं पर्सनालिटी डेवलपमेंट जैसे कोर्स कैंप्स पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में आयोजित करते हैं, जिसमें सभी स्टेट्स को बच्चों के लिए कोटा आवंटित किया जाता है और स्टेट्स जो हैं जिलेवार स्काउट गाइड्स के लिए कोटा आवंटित करते हैं। इस सत्र हमारे जिले को 62 का कोटा मिला था, जिसमें 21 की एक दल जो है 19 मार्च को रवाना हुई और लगभग 41 की दल जो है 24 मार्च को रवाना हुई। इसके अतिरिक्त जलकी, सिरपुर, दार्जिलिंग के हाइक सहित हमारी बड़ी उपलब्धियों में प्रथम नेशनल रोवर रेंजर जम्बूरी जो कि बालोद छत्तीसगढ़ में ही आयोजित हुई, इसमें हमारे जिले के लगभग 136 स्काउट गाइड्स, रोवर रेंजर्स एवं लीडर्स ने हिस्सा लिया। इससे पहले भी हमारे जिले से स्काउट गाइड्स ने डायमंड जुबली ग्रैंड फिनाले जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित हुई थी, उसमें लगभग हमारे जिले से 17 स्काउट्स एंड गाइड्स ने हिस्सा लिया और वहां शानदार प्रदर्शन किया। इसके अतिरिक्त हमारे जिले से लगभग 17 स्काउट्स गाइड्स ने राज्यपाल जो कोर्स होता है उसमें एनरोल किया, जिसमें लगभग 13 बच्चे सफल भी रहे। और यही जो राज्य जांच परीक्षा है जो कि जिसमें राज्य भर से लगभग 339 स्काउट गाइड शामिल थे, इसे ऑर्गेनाइज करने का भी मौका जांजगीर चांपा जिले को मिला। वैभव जी, इन सब के अतिरिक्त हमारा प्रयास है कि हम बच्चों को और भी प्रोग्राम्स जैसे यूथ प्रोग्राम्स, एनवायरमेंट से रिलेटेड जुड़े प्रोग्राम्स में राष्ट्रीय स्तर पर सहभागी बना सके, ऐसा पूरा प्रयास कर रहे हैं।
1: आज के युवा में आपकी इन गुणों को सबसे अधिक जरूरी मानते हैं कि आपको लगता है कि ये गुण तो युवा में होना ही चाहिए, खासकर वे युवा जो शिक्षा के साथ साथ समाज सेवा या राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहते हैं, उन्हें आप क्या सलाह देंगी?
0: मुझे लगता है अब जी कि आज का जो युवा वर्ग है उनमें असीम ऊर्जा और कुछ नया कर गुजरने का जो जज्बा है वो असीम है, लेकिन जब बात शिक्षा के साथ साथ समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण की जाए तो सिर्फ उत्साह से काम तो नहीं चल सकता है ना। इसके लिए मुझे लगता है दिल में सेवा का भाव होना और दिमाग में एक स्पष्ट विजन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप समाज सेवा की बात करते हैं या समाज सेवा की शुरुआत करते हैं तो समाज सेवा की शुरुआत आप तब तक नहीं कर सकते हो जब तक आपके मन में दूसरों की जो समस्या है, दूसरों के जो दर्द है उसको महसूस करने की क्षमता ना हो। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो युवा वर्ग है जो समाज सेवा का काम करना चाहता है, जो राष्ट्र निर्माण में सहयोग देना चाहता है, उसको सहानुभूति और संवेदनशील होना चाहिए। इसके अतिरिक्त मुझे लगता है कि जो सामाजिक बदलाव हम चाहते हैं बहुत इंस्टेंट नूडल जैसा नहीं है कि तुरंत उसका परिणाम देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें बहुत लंबे समय से हमको काम करना होता है, उसके बाद ही हम उस पर कोई सकारात्मक परिणाम देखने को मिलता है उसमें। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम जो भी जिस भी क्षेत्र में समाज सेवा का काम करें उसमें हमें धैर्य और निरंतरता के साथ काम करना चाहिए। तो निश्चित रूप से आप इस चीज को समझ पाएंगे कि एक युवा जो समाज सेवा करना चाहता है या राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग देना चाहता है उसमें सहानुभूति, संवेदनशीलता, धैर्य हो, निरंतरता रहे काम में, इसके अलावा सत्यनिष्ठा भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जो बोलते हैं और जो करते हैं उसमें एकरूपता होनी जरूरी है, नहीं तो समाज का जो विश्वास है आपसे उठ जाएगा। तो समाज में बदलाव लाने के लिए तो जरूरी है कि समाज का जो विश्वास है वो आप पकड़ कर रखें, बना कर रखें। इसके लिए जो आप कहते हैं उसको आपको करना ही चाहिए। छोटा कदम बड़ा बदलाव, ये सिद्धांत जो है मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि आप कोई भी सामाजिक बदलाव या किसी भी तरीके का जो परिवर्तन है वो एकाएक नहीं कर सकते। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स लें और फिर छोटे छोटे कदम है जो एक समय पे, एक समय के पश्चात बड़ा बदलाव लाता है जरूर।
1: श्वेता जी, अंत में मेरी बारी के माध्यम से आप उन युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है जो जीवन में कुछ सार्थक करना चाहते हैं लेकिन चुनौतियों या असफलताओं के कारण कभी कभी निराश हो जाते हैं?
0: मुझे लगता है कि जीवन में कुछ सार्थक और बड़ा करने की चाह रखना यही इस बात का सबूत है कि आपके भीतर एक असाधारण ऊर्जा है, लेकिन जब रास्ते में अनेक चुनौतियां आती हैं, असफलताएं मिलती हैं, तो निराश होना भी एक मानवीय गुण ही है। एक जो असफलता है उसको फुल स्टॉप ना मानते हुए हमें कॉमा समझना चाहिए, क्योंकि असफलता का मतलब यह नहीं है कि आपकी कहानी वहां खत्म हो गई। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको अपने प्रयास करने का जो तरीका है वो बदलने की जरूरत है। जैसे दुनिया में बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, बहुत से ऐसे महान लोग हुए जिन्होंने उनकी सफलता की जो इमारत उसकी जो नींव है बहुत सारी असफलताओं से उन्होंने रखी है। मुझे लगता है कि हमें छोटे कदमों की ताकत लागत पहचाननी चाहिए, क्योंकि जब कोई बहुत बड़ा लक्ष्य पहाड़ जैसे

0: लगने लगता है। तो पूरे पहाड़ को देखने के बजाय हमें उस छोटे कदम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हर दिन छोटे छोटे प्रयास करेंगे तो समय के साथ एक बहुत बड़ा बदलाव और निश्चित रूप से जो भी लक्ष्य हम चाहते हैं अपने लिए उसकी हम प्राप्ति कर सकते हैं। और मेरा आप सभी के लिए अंतिम संदेश यही है कि निराशा के उस पल में खुद को थोड़ा समय दें, एक गहरी सांस लें और याद करें कि आपने शुरुआत क्यों की। आपका जन्म सिर्फ सामान्य जीवन जीने के लिए नहीं बल्कि दुनिया में एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ने के लिए हुआ है। गिरना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बड़ी बात गिर कर फिर से खड़े होना और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना। आपकी क्षमताएं असीमित है, खुद पर भरोसा रखिए, आपका भविष्य आपका इंतजार कर रही है। थैंक यू सो मच।
1: दोस्तों अभी हम बातचीत कर रहे थे श्वेता जायसवाल जी से। मुझे उम्मीद है कि आपको इस बातचीत में मज़ा आया होगा और काफ़ी नई चीज़ें जानने को मिली होंगी। अब दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे।

0: आपको इस बातचीत में मजा आया होगा और काफी नई चीजें जानने को मिली होंगी। अब दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे।
1: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
2: देश के युवाओं ने ठाना है भारत को आयुष्मान बनाना है। आज ही पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनवाकर उन्हें दे नए साल का उपहार। 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को मिला 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार का अधिकार। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी अपना आयुष्मान कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें।

ठेला हो या जीप हो अथवा मोटर कार, ठर्रा पीकर छोड़ दो 80 की रफ्तार। 80 की रफ्तार नशे में पुण्य कमाओ, जो आगे आ जाए स्वर्ग उसको पहुंचाओ। पूरा बोतल गटकिए, होए ब्रह्मा का ज्ञान। नाली की बू, इत्र की खुशबू, दोनों एक समान। प्रेम वासना रोग में सुरा रहे अनुकूल, सैंडल चप्पल जूतियां लगती जैसे फूल। दोस्तों, ये पंक्तियां हैं हिंदी के सुप्रसिद्ध हास्य व्यंग कवि काका हाथरसी की। उनकी रचनाओं की सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि वे हंसी हंसी में समाज को आईना दिखा देते थे। ऊपर से ये पंक्तियां आपको मुस्कुराने पर मजबूर करती हैं, लेकिन जरा ठहर कर सोचिए, क्या सचमुच नशा इंसान को उसी स्थिति में नहीं पहुंचा देता जहां उसे सही और गलत, अच्छा और बुरा, जीवन और मृत्यु सब एक समान दिखाई देने लगते हैं। दोस्तों, नशा कभी किसी का दोस्त नहीं होता। यह शुरुआत में साथ देने का भ्रम पैदा करता है, लेकिन धीरे धीरे इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। पहले ये आदत बनता है, फिर जरूरत बनता है, और अंत में इंसान की पहचान बन जाता है। एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति नशा नहीं करता, बल्कि नशा उस व्यक्ति को चलाने लगता है। कई लोग कहते हैं, मैं तो सिर्फ शौक से पीता हूँ, मैं जब चाहूँ छोड़ दूंगा, मुझ पर इसका कोई असर नहीं होता। लेकिन नशे की सबसे बड़ी चाल यही है कि वह इंसान को कभी यह एहसास नहीं होने देती कि वह उसके गिरफ्त में आ चुका है। जब तक सब सच में समझ आता है, तब तक बहुत कुछ हाथ से निकल चुका होता है। नशा केवल शरीर को नहीं, बल्कि सोचने समझने की शक्ति को भी खत्म कर देता है। धीरे धीरे आत्मविश्वास कम होने लगता है, याददाश्त कमजोर पड़ती है, निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है, और व्यक्ति अपने ही जीवन पर से नियंत्रण खोने लगता है। वह अपने परिवार से दूर हो जाता है, समाज से कटने लगता है, और कई बार अवसाद, अपराध और हिंसा जैसी स्थितियों तक पहुंच जाता है। WHO सहित कई अन्य संस्थाएं लगातार चेतावनी देती रहती हैं कि शराब, तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थ कैंसर और असमय मृत्यु का बड़ा कारण बनते हैं। लेकिन इन आंकड़ों से भी अधिक दर्दनाक है वे कहानियाँ जिनमें किसी की बच्चे ने अपने पिता को खो दिया, किसी माँ ने अपने बेटों को खो दिया, या किसी परिवार के ने एक होनहार युवा का भविष्य अपनी आंखों के सामने बिखरते हुए देखा। और सबसे दुखद बात यह है कि नशा कभी अकेले नहीं आता, उसके साथ आता है कर्ज, तनाव, झूठ, बीमारी, दुर्घटनाएं, टूटते रिश्ते और कभी कभी अपराध भी। जो पैसे बच्चों की पढ़ाई, माता पिता की दवा या घर की जरूरतों पर खर्च होने चाहिए, वही पैसे नशे की भेंट चढ़ जाते हैं। दोस्तों, याद रखिए, नशे का अंत केवल एक बोतल या एक सिगरेट पर नहीं होता। उसका अंत कई बार अस्पताल के बिस्तर पर, जेल की सलाखों के पीछे, या फिर शमशान की चिता तक भी पहुंच जाता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि उस रास्ते पर पहला कदम ही न बढ़ाया जाए जहां से लौटना इतना आसान नहीं होता। दोस्तों, लेकिन अच्छी बात यह है कि हर अंधेरी रात के बाद भी सुबह होती है। यदि किसी ने नशे की शुरुआत कर दी है, तो इसका मतलब यह नहीं कि उसके जीवन की कहानी यही समाप्त हो गई है। इच्छा शक्ति, परिवार का साथ, सही मार्गदर्शन और समय पर उपचार से नशे की लत पर विजय पाई जा सकती है। दोस्तों, अब सवाल है कि आखिर नशे से बचा कैसे जाए। इसका सबसे आसान और सबसे प्रभावी उपाय है गलत संगति से दूरी और सही लोगों के साथ। याद रखिए, जो दोस्त आपको नशे की ओर ले जाए, वह आपका हितैषी नहीं हो सकता। अपने जीवन का लक्ष्य तय कीजिए। पढ़ाई, खेल, संगीत, योग या किसी रचनात्मक कार्य में स्वयं को व्यस्त रखिए। जब मन और समय अच्छे कामों में लगते हैं, तब गलत आदतों के लिए जगह अपने आप कम हो जाती है। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति

से नशे की गिरफ्त में है तो उसे ताने देने या उससे दूरी बनाने के बजाय उसका साथ दीजिए। परिवार का सहयोग, सच्चे मित्रों का प्रोत्साहन और आवश्यकता पड़ने पर डॉक्टर या नशा मुक्ति केंद्र की मदद उसे नई जिंदगी दे सकती है। सबसे जरूरी बात है अपनी समस्याओं को स्वीकार करना, क्योंकि सुधार की शुरुआत वहीं से होती है। दोस्तों, जिंदगी बार बार नहीं मिलती, इसे नशे के धुएं में उड़ाने के बजाय अपने सपनों को पूरा करने में लगाइए। आज एक संकल्प ले कि हम स्वयं नशे से दूर रहेंगे और अपने परिवार, दोस्तों तथा समाज को भी इसके दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करेंगे। याद रखिए, असली नशा किसी बोतल या सिगरेट में नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य, अपने सपनों और अपनी सफलता को हासिल करने के जुनून में होता है। यही एक स्वस्थ, जागरूक और जिम्मेदार युवा की पहचान है। दोस्तों, बातें तो जारी रहेंगी, पर उससे पहले आइए लेते हैं एक शानदार से गीत का आनंद।

दोस्तों, ये प्यारा सा गीत हम सुन रहे थे जब हैरी मेट सेजल फिल्म से, जिसके गायक है अरिजीत सिंह, जिसे में संगीत दिया है प्रीतम ने और जिसे लिखा है इरशाद कामिल ने। दोस्तों, अब समय है आपसे विदा लेने का। मुझे यानी वैभव वर्मा को दीजिए इजाजत। और हाँ दोस्तों, सुनना ना भूले सप्ताह के प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को शाम 5:35 पे कार्यक्रम युवा जगत। धन्यवाद।

अभी हम प्रसारित कर रहे थे कार्यक्रम युवा जगत। शाम के 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

से अनुप्रसारित किए जाएंगे सुबह 8:30 पर छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइया। इसमें सुनिएगा साहित्यकार डॉक्टर संतराम देशमुखले महेंद्र साहू के गोठ बात, और आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से ही रिले करेंगे सुबह 10 बजे प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर। प्रातः 6:30 पर कार्यक्रम खेती की बात का विषय होगा हल्दी मां रोग नियंत्रण। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का प्रसारण होगा सुबह 11 बजे।

0: कार्यक्रम भूइयां के बोली का प्रसारण होगा कल शाम 5:05 पर। कार्यक्रम में सुनिएगा कहानी डोरेलाल कैवर्त से और कविता पाठ वासंती वर्मा से। प्रस्तुति होगी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की। शाम 5:35 पर कार्यक्रम महिला सभा हम लेकर आएंगे। कार्यक्रम में सामिक चर्चा का विषय होगा ओवर थिंकिंग से आत्मविश्वास तक का सफर और क्रम। परिसंवाद में सुनिएगा जागरूक ग्राहक सुरक्षित परिवार, इस विषय पर चर्चा। प्रस्तुति होगी मुनाली ठाकरे की। कार्यक्रम ग्राम सभा शाम 7:20 पर होगा। कार्यक्रम में चर्चा करेंगे सामूहिक खेती के महत्व वाला जानो, इस विषय पर। और शाम 7:30 पर कार्यक्रम किसानवाड़ी में लेकर आएंगे स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम किसानवाड़ी गांव में। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण यहीं समाप्त हुआ। श्रोताओं आपको पुनः याद दिला दी कल आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से हम रिले करेंगे 8:30 पर छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइयां। इसमें सुनिएगा साहित्यकार डॉक्टर संतराम देशमुखले महेंद्र साहू के गोठ बात और 10:00 प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर। और शाम 5:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम भुइयां की बोली हमारे केंद्र से। इसमें सुनिएगा कहानी डोरेलाल कैवर्त सी और कविता पाठ वासंती वर्मा से। प्रस्तुति होगी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की। कार्यक्रम विवरण यही समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM 103.2 MHz पर। शाम के 6:10 होने को हैं। छत्तीसगढ़ ही में समाचार अब रिले करेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग स्मिता शर्मा के जय जोहार। अब आप सुनो आज के प्रमुख समाचार। प्रदेश के सबो ग्राम पंचायत मन में आज विशेष ग्राम सभा के आयोजन करेगी। दुर्ग जिला के जामगांव के स्वामी आत्मानंद स्कूल में आज शाला प्रवेश उत्सव के आयोजन करेगी। और मौसम विभाग हा अवैया 24 घंटा के दौरान मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ में कुछ एक जगह में भारी ले अति भारी वर्षा होए के चेतावनी दे है। अब समाचार विस्तार ले। संसद के मानसून सत्र आज ले शुरू हो गए है। ये सत्र अवैया महीना के 13 तारीख तक चलही। संसद के दोनों सदन की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामला मा विपक्ष के हंगामा के सेती सरलग बाधित होइस और दोनों सदन की कार्यवाही मंझनिया कुन 2 बजे चौथा स्थगन के बाद फिर शुरू हुई मा विपक्षीय सदस्य मन के नीट मुद्दा ऊपर हंगामा जारी रहिस। शोर शराबा के बीच दोनों सदन की कार्यवाही मंझनिया कुन 2:30 बजे तक पर स्थगित कर देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाकिहिं कि चाहे मानसून हो या मानसून सत्र सक्रिय होए बर दोनों बहुत उत्पादक साबित होते हैं। संसद के मानसून सत्र ले पहले संवाददाता मन संग गोठ बात मा श्री मोदी हाकिहिं कि सिर्फ 1 महीना मा देश मा कतकुन उपलब्धि हासिल होए है जौनहा हर एक नागरिक ला गौरवान्वित करत है। श्री मोदी हा सबो राजनीतिक दल मन ले सकारात्मक और सार्थक चर्चा के आग्रह करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा भारत के युवा मन के साहस और दृढ़ता के तारीफ करीन है। सोशल मीडिया मा संस्कृत के एक ठन श्लोक साझा करत श्री मोदी हा कहिन कि देश के युवा मन हा अपन साहस आत्मविश्वास और मेहनत के बल मा ऐतिहासिक सफलता पावत हैं और यही

0: सहायता विकासशील भारत के सबले बड़े ताकत हे। प्रदेश के सब्बो ग्राम पंचायत मन मा आज विशेष ग्राम सभा के आयोजन करेगी। ग्राम सभा मा 1 जुलाई ले पूरा प्रदेश मा लागू विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन मा चर्चा हुई। संगे संग पंचायत के जरूरत के अनुसार विकास कामला मंजूरी देगी। हरेक ग्राम पंचायत मा ग्राम सभा पर पीठासीन अधिकारी के नियुक्ति करेगी रहीस। बैठक के बाद विस्तृत रिपोर्ट संबंधित जिला कार्यालय ला भेजेगी। दुर्ग जिला के जामगांव के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल में आज प्रदेश स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव के आयोजन करेगी। ये मौका में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नव भर्ती हुए विद्यार्थी मंडला तिलक लगा के और उंखर मुंह मीठा करा के स्वागत करें। ये दौरान ओमन विद्यार्थी मंडला निःशुल्क ड्रेस पाठ्य पुस्तक और स्कूल बैग बांटिन। संगे संग कक्षा नौवीं के नोनी मंडला साइकिल देगी। कार्यक्रम में सुघर प्रदर्शन करैया प्रतिभाशाली विद्यार्थी मंडला घलो सम्मानित करेगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लइका मन ले आह्वान करें कि ओमन बने ढंग ले पढ़ाई करें और अपन राज्य और अपन देश के नाम रोशन करें। राज्यपाल रमेन डे कहा आज लोक भवन में इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के अंतर्गत जापान के सकुरा साइंस हाई स्कूल प्रोग्राम में शामिल होके लहुटे विद्यार्थी और उनकर शिक्षक मन के सम्मान करें। सम्मानित विद्यार्थी मन में धमतरी बलौदाबाजार जांजगीर चांपा जिला के सुनैना साहू समीक्षा साहू गगन दास मानिकपुरी और सैयद कशफ अली शामिल रहीन। ये विद्यार्थी मन के चयन इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के आने आने चरण में सुघर प्रदर्शन के आधार में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक अध्ययन भ्रमण पर होई रहीस। विद्यार्थी मन जापान प्रवास के दौरान टोक्यो विश्वविद्यालय जैक्सा आने आने शैक्षणिक और वैज्ञानिक संस्थान और सांस्कृतिक स्थल के भ्रमण के अनुभव साझा करें। रामनामी समुदाय के जीवन आस्था और सांस्कृतिक विरासत पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म रामनामीला 72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री के सम्मान मिले हैं। एकर निर्देशन प्रसिद्ध फिल्मकार भरतवाला गणपति हा करें हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय डॉक्यूमेंट्री फिल्म रामनामीला ये सम्मान मिले में अपन खुशी जाहिर करत एला पूरा प्रदेश भर गौरव के विषय बतायें हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा हां कांकेर जिला और सत्र न्यायालय के निरीक्षण करें। ये दौरान उमन आने आने न्यायालय और सेंट्रल प्रोसेस अनुभाग समेत आने आने अनुभाग के निरीक्षण करें। मुख्य न्यायाधीश हां सबो न्यायालय मन के व्यवस्था ला सुघर करे के निर्देश दीन। मुख्य न्यायाधीश श्री सिन्हा हां न्यायालय परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधारोपण घलो करें। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुना था।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपकी वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: आओ अब आगु बढ़वो माचे समाचार कोती। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा हां काली कवर्धा मां राखी गए कार्यक्रम में जिला के 8 ठन स्वास्थ्य संस्थान ला राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान करें। ये मौका मां उमन कहीं की राज्य सरकार के उद्देश्य हर एक नागरिक ला गुणवत्तापूर्ण और सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना है। उमन कहीं की राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन प्रमाणन सिर्फ एक उपलब्धि नहीं है फिर स्वास्थ्य संस्थान के सुघर कार्य प्रणाली और मरीज मन पर संवेदनशील सेवा के प्रमाण हवे। गृह विभाग राज्य पुलिस सेवा संवर्ग के अधिकारी मन के तबादला आदेश जारी करे है। जारी सूची के अनुसार ओपी शर्मा ला पुलिस अधीक्षक मुख्यमंत्री सुरक्षा के पद मा पदस्थ करेगे है। ऐसने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और उप पुलिस अधीक्षक संवर्ग के 92 अधिकारी मन के नवा पद स्थापना करेगे है। बिलासपुर जिला के तोरवा थाना क्षेत्र में सर्पदंश ले मौत के फर्जी रिपोर्ट बना के मुआवजा दिवाए के मामला में पुलिस हा डॉक्टर प्रियंका सोनीला गिरफ्तार करे है। उखर ऊपर 2 ठन आने आने मामला में सांप काटे ले मौत

0: थोइके फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाए के आरोप है। पुलिस के अनुसार तहसील कार्यालय के नायब नाजिर के शिकायत में महमन निवासी निसार खान और लता सूर्यवंशी के संदिग्ध मौत के मामला में केस दर्ज करके जांच शुरू करेगी रिहिस। जांच में पाएगी इसकी दोनों शव के पोस्टमार्टम तत्कालीन सिम्स चिकित्सक डॉक्टर प्रियंका सोनी यहाँ करे रहीन और स्नैक बाइट ले मौत हो के फर्जी रिपोर्ट तैयार करे रहीन। एक बाद फरार डॉक्टर ला गिरफ्तार करके जेल भेज देगी। ये मामला में दोनों मृतक के परिवार वाला और एक जन वकील संग्रह तीन जन आरोपी मनला पहले चले जेल भेज देगी हवे। बलरामपुर जिला के त्रिकुंड थाना क्षेत्र में आज स्कूल जाए बर निकले एक जन प्रधान अध्यापक के हत्या कर देगी। ये मामला में पुलिस ने मृतक के दो जन चचेरा भाई मनला गिरफ्तार करे है। पुलिस ने हत्या के मामला दर्ज करके आरोपी मन के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जावत है कि जमीन विवाद के चलते ये हत्या हुए है। अब पेश है मौसम के हाल। मौसम विभाग हा वैया 24 घंटा के दौरान मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ में कुछ एक जगह में भारी ले अति भारी वर्षा होए के चेतावनी दे है। उन्हें प्रदेश के कतकुन जगह में गरज चमक के संग वर्षा होए के संभावना घलो जता है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरीय तटीय आंध्र प्रदेश और ओखर ले लगे दक्षिण छत्तीसगढ़ के ऊपर एक ठन चक्रवाती घेरा बने हैं, जेकर असर ले प्रदेश में वर्षा के गतिविधि तेज होए है। पाछू 24 घंटा में प्रदेश के कतकुन जगह में वर्षा होए है। यही बीच जशपुर जिला के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल देश देखा में आकाशीय बिजली गिरे ले एक जन युवक के मौत हो गए, फिर तीन जन दूसर मन घायल हो गिन। पुलिस के अनुसार कुनकुरी क्षेत्र के चार जन दोस्त मनहा इतवार के पिकनिक मनाए बर देश देखा गे रहीन। यही दौरान अचानक ही मौसम खराब हुई सो आकाशीय बिजली गिरे ले एक जन युवक गंभीर रूप ले घायल हो गिस। जिला अस्पताल ले जाएगी, वहां डॉक्टर मनहावला मृत घोषित कर दिन। घटना में तीन जन दूसर युवक मन घलो झुलस गए हैं, जिनका इलाज चला थे। श्रावणी मेला के दौरान बाबा धाम जवैया श्रद्धालु मन के सुविधा पर रेलवे हा स्पेशल ट्रेन चलाए के फैसला करे है। रेलवे प्रशासन हा नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी और मधुपुर के बीच श्रावणी मेला साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाए के घोषणा करे है। ये गाड़ी में दोनों डहार पांच पांच ठन फेरा लगा ही ये ट्रेन नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी ले 1 अगस्त ले 29 अगस्त तक हर एक शनिवार के चलही। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फिर। प्रदेश के सबो ग्राम पंचायत मन में आज विशेष ग्राम सभा के आयोजन करेगी। दुर्ग जिला के जामगांव के स्वामी आत्मानंद स्कूल में आज शाला प्रवेश उत्सव के आयोजन करेगी। और मौसम विभाग अवैया 24 घंटा के दौरान मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ में कुछ एक जगह में भारी ले अति भारी वर्षा होए के चेतावनी दे है। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यही सिरावत है। जय जोहार।
1: छत्तीसगढ़ी में समाचार अभी हम अनुप्रसारित कर रहे थे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से FM एंड 103.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:20 हुए हैं और अब लीजिए सुनिए श्रोताओं फरमाइशी कार्यक्रम। ईमेल करें, गीत सुनें।

फरमाइशी कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने सुनने वाले हमारे सभी श्रोता साथी, स्वीकार कीजिए आपके अपने रेडियो साथी खुशबू का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का पहला फरमाइशी गीत लीजिए सुनिए, 1942 अ लव स्टोरी इस फिल्म से कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में। पसंद आई है गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार प्रमोद कुमार और पुष्पेंद्र सिंह की। रायगढ़ से हैं श्रोता नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र जोई यामनी, उमा तिवारी। हांसी से राजू मिगलानी, बब्बू डब्बू, बबीता और सुभाष योगी की पसंद। संबलपुर कांकेर से हैं फागुराम यादव, ज्योति ओजस्वी यादव। मंडी डब्बवाली से हैं राजेंद्र नारंग, अंजू मोहित और तानिया नारंग। और ये श्रोता हैं धुर्रा बांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव नवीन और युवराज साहू। बुलंदशहर से हैं मोहम्मद सैद अब्बासी, निघत परवीन, शहना नवाज, सरफराज, फरदीन और

साथ में हैं सुहान अरजान और अबान अब्बासी। खमरिया से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार का ये मेल हम तक पहुंचा है। मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से पसंद मुकेश कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह की। पानीपत से है श्रोता नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल, नानक चंद मल्होत्रा। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, राबिशेक, शेख रहीमन्ना। जमशेदपुर से है हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल, सोनू, पप्पी भाटिया। राजकोट से पसंद राजेश कृष्णा, स्वाति और ख्याति कुमारी की। बुलढाणा वडशिंगी महाराष्ट्र से मोल मानकर, शोभाताई, दीपाली और श्लोक कुमार। जमशेदपुर से अपूर्व सिंह, अनुपम और राकेश कुमार का मेल आया है। और ये श्रोता लगान पंडरिया से हैं उत्तम कुमार बघेल, रुखमनी साहिल, भारती बघेल। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चिंपा, कपिल और पूजा परिहार ने हमें इसी गीत के लिए मेल भेजा है और ये पसंद। इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चिए, ललिता, गणेश, कार्तिक, परी और साथ में स्वाति, प्रयाग चौधरी, कुमारी देवी चौधरी और मालती चौधरी की आई है। भाटापारा से पसंद करता बचकमल, मोतीलाल यादव, सियाराम, चोराम वर्मा, सूरज बारिकर, नारायण यदु और भुवन कामरी। और रसेड़ा से हैं आप मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश, संध्या कीर्ति, डिकेश, वासु डॉली और पूर्वेश साहू। तो लीजिए सुनिए आप सभी श्रोताओं की पसंद पर ये गीत। जावेद अख्तर की रचना है, स्वर कुमार सानू, कविता कृष्णमूर्ति के, आर डी बर्मन का संगीत।

0: 1942 अ लव स्टोरी फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना, वाजी कुमार शानू और कविता कृष्णमूर्ति की थी, जावेद अख्तर की रचना, आर डी बर्मन का संगीत।
1: भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ के धमतरी, जशपुर, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, कोरबा, महासमुंद, कोंडा गांव, रायगढ़, राजनांदगांव, नारायणपुर एवं सूरजपुर जिलों में फसल बीमा योजना खरीफ 2026 मौसम हेतु संचालित की जा रही है। इस योजना में धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, मकई, सोयाबीन, मूंगफली, तुअर, अरहर, मूंग, उड़द, कोदो, कुटकी एवं रागी, मड़वा अधिसूचित फसल का बीमा किया जा रहा है। किसी भी प्रकार की फसल बीमा से संबंधित जानकारी, मार्गदर्शन, सहायता या शिकायत के लिए तुरंत कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन 14447 पर कॉल करें। प्रशिक्षित प्रतिनिधि आपकी सहायता के लिए सदैव उपलब्ध है। 7065514447 पर हमारे फसल बीमा चैटबॉट को केवल नमस्ते या हाय लिखकर संदेश भेजें। चैटबॉट आपको योजना की जानकारी, बीमित फसलों क्लेम की जानकारी तुरंत उपलब्ध कराएगा। बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। फसल हो या कृषि संपदा, बीमा सुरक्षा हमारा वादा। फसल सुरक्षा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
0: कार्यक्रम में अगला फरमाइशी गीत फिल्म आशा से लता मंगेशकर की आवाज़ है, आनंद बख्शी की रचना, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, पसंद नरवेल महाराष्ट्र से आई है, पीएस नहवाकर, निर्मला विशाल नहवाकर की, गांव हीरा वाली फाजिल का पंजाब से, सुभाष गोदारा, बिमला, इंदु पार्वती और हिमांशु गोदारा की पसंद, रायपुर से है नीलू मेघ, वंदना कुमार, बिट्टू कुमार, और ये श्रोता है पोफाली जिला यवतमाल से, जयराम सिंगड़कर, दिशांत और अर्पिता। ये पसंद आई है नरगोड़ा से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी की, दतरेंगी से है विश्राम यदु, पार्वती प्रतिमा, रीना और लक्ष्मीना यदु। छत्रपति संभाजीनगर से पसंद राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश और साथ में है शीतल राजेश। मोहाली चंडीगढ़ से टीटी मल्होत्रा, ऋतिक प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और अमनदीप का मेल। वीरमगाम राजकोट से रुचि गुप्ता, ट्विंकल और उमा गुप्ता। बिलाईगढ़ से है खीकराम देवांगन, रेणु रजनी, प्रियंका देवांगन। डोंगरगांव से पसंद भेजी है राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका निष्का और तन्मय गजभिये ने। और अब है मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा, मधु सागर बालूजा। सौंगा मगरलोड से फणेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित, देविका रानी, गजेंद्र कुमार, हेयांश कुमार चंदन। और पोड़ी भाटा कलतरा से पसंद दिलीप चंदन, चोरम यदु, निखिल वसुंधरा और प्रांजल चंदन की आई है। मदनपुर से हमें ईमेल भेजा है श्रवण कुमार साहू, योगेश और राहुल साहू ने। कुंभार गली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा प्रतीक्षा चंदन का मेल। जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहनी कल्पित, गर्व हिमाक्ष। पांढरकवड़ा से अनिल बुरांडे, उषा अनुश्री, धनश्री बुरांडे। भटिंडा पंजाब से पसंद आई है इसी गीत की प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप, सीमू, एकम दमन और अभिजोत की। और आप है तिवर्ता डबरीपारा जिला कोरबा से महेंद्र प्रताप मरकाम, जया जागेंद्र, गजेंद्र जयंती, ममता मनीषा, मंजू मानसी, सुरेंद्र, साथ में है मोहन सिंह सहोद्रीबाई, मनमोहन सिंह, गिरजाबाई, चंद्रपाल मरावी और लक्ष्मी थदवानी। और इसी गीत को दिल्ली से पसंद किया है तुलसी मस्कीन, वीना चैतन्य और मेघा मस्कीन ने। और ये पसंद मेल के जरिए देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे की आई है। तो लीजिए सुनिए फिल्म आशा से ये गीत।

लीजिए सुनिए फिल्म सावन का ये गीत, शमशाद बेगम और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें हैं, प्रेम धवन के बोल, हंसराज बहल का संगीत और पसंद आप सभी श्रोताओं ने हमें भेजी है। महसूल सीतामढ़ी बिहार से मुसर्रत जहानाज, तलहत फरहत और साथ में है नुजहत साजिया, शाहीन नाज और नाजिया नूरी नाज, चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव ऋषभ, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद और कालिंद्री लहरे, तेलंगाना बोहनगीर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन मोहम्मद यूसुफुद्दीन, और रघुनाथपुरा श्री गंगानगर राजस्थान से हैं

लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हीना, हर्षित खुशी गोस्वामी। पटियाला से पसंद भेजी है मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता ने। जगराव से सुनील पाठक, कमल, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या सुच्चा सिंह पाठक। मुजफ्फरपुर बिहार से पसंद आर्यन राज, पीयूष कुमार, रोहित राज की। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। मेरठ कैंट से पसंद दिग्दर्शन, कविता कर्ण, शक्ति, रिया जया और दर्शन भाई की आई है। और ये मेल रोहांसी से पहुंचा है डगेसर राम साहू, घनश्याम, नूतन, गौरव, अलका, जानवी साहू का। तखतपुर से पसंद मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा ने की आई। और आप हैं श्रोता हमारे श्रीरामपुर महाराष्ट्र से, नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद, सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़, मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना योगेश, नेवान सौरभ, शाइना और मैंडी शर्मा का ये ईमेल हम तक पहुंचा है। मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से पसंद भेजने वाले मोहम्मद फरमान, सलमान इरफान, इसरार और नरगिस खातून। गुमला झारखंड से नजमुल हौदा, सम जावेद, शगुफ्ता, अंजुम की पसंद हम तक पहुंची है। किशनगंज बिहार से पसंद रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव, भानुप्रिया, माधुरी और किरण की आई है। और आप हैं झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा रजत, मंजू भाटिया और साथ में मयंक भाटिया। चिरमिरी कुरासिया कालरी से पसंद इंद्रभान सिंह, अनुभव ऋषभ, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे और कालिंद्री लहरे की आई। निमनाबाद जिला जिंद हरियाणा से हैं आप, जसबीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत, करमजीत कौर और बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गहवाड़कर, टुक टुक प्रिंस, एकांश, सुमित ध्वनि गहवाड़कर। पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर, मनु। तो लीजिए सुनिए आप सभी की पसंद पर फिल्म सावन का ये गीत।

0: सावन फिल्म का ये गीत अभी श्रोता सुन रहे थे। आवाजें शमशाद बेगम और मोहम्मद रफी की थी। प्रेम धवन के गीत, हंसराज पहल का संगीत, और इस गीत को हमारे और भी श्रोताओं ने पसंद किया। मेल जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डी कैस्ट्रो, रोजी पर्ल और विलिस डी कैस्ट्रो काया, तेलहारा से प्रकाश पोहरकार नर्मदा और सुजाता पोहरकार, कांकेर जिला भानबेड़ा मुंगवाल से भरत राम पटौदी, जयंती हेमंत, उमंग मोक्ष पटौदी, करनाल से पसंद भेजी थी सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, साथ में जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा और इशप्रीत शर्मा ने, कालेगांव जाफराबाद से श्रोता सुधाकर राज जाधव, प्रशांत राज जाधव, संचित वयाल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली सर्वद और सानवी देशमुख का ये मेल, दिल्ली से पसंद आई थी अजीम वकार, माहिर अजीम और नगमा अजीम की, और गंडई टिकरी पारा से जागेश्वर देवांगन, कचरीबाई दीपक, जयश्री देवांगन, ऋषभ और ऋचा देवांगन ने भी इस गीत को पसंद किया। कैदी मुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा ऋषभ सिंह का मेल, गांधीबाग अकोला से थे श्रोता रमेश कटनकर, वैशाली और धनंजय कटनकर, दिल्ली से सोनम सना और अदीबा का ये मेल हम तक पहुंचा था, मलोट से रमेश कुमार जाझोरिया, गीता रानी, गगनदीप, आरजू और गुड्डू जाझोरिया का मेल, दुर्ग से पसंद आरसी कामड़े, करुणा मीना, अश्वनी और विपुल कामड़े की, जालंधर से रोशन जहां, मन्नत इशरत और मक्कार जहां, रामगढ़ कैंट से श्रोता महेंद्र मोदी का मेल आया था। और अब इसी के साथ ईमेल करे गीत सुने का ये अंक यही समाप्त हुआ। शाम 7 बजे श्रोता सुनेंगे इस कार्यक्रम का शेष भाग FM एंड 103.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:45 होने को है। समाचार अब आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से।
1: ज्यादा
2: बेटा
1: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे।
2: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
3: तो अब बैंक जाके या वीडियो KYC से KYC अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो
1: कहाँ
2: एडमिशन कराने?
3: खाता हुआ एक्टिव,
4: RBI कहता है।
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
7: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
6: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
7: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
6: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
7: क्यों?
6: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
8: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
9: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
10: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
9: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ।

0: ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
4: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
3: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में आज विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। दुर्ग जिले के जामगांव स्थित स्वामी आत्मानंद विद्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय शाला प्रवेशोत्सव में शामिल हुए मुख्यमंत्री। और मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। यह सत्र अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हुई। दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे चौथे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का नीट मुद्दे पर हंगामा जारी रहा। शोर शराबे के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मानसून हो या मानसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मानसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती है। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के युवाओं के साहस और दृढ़ता की सराहना की है। सोशल मीडिया पर एक संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा अपने साहस, आत्मविश्वास और अथक परिश्रम के बल पर ऐतिहासिक सफलता प्राप्त कर रहे हैं और यही तेजी से विकासशील भारत की सबसे बड़ी ताकत है। प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में आज विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। ग्राम सभा में 1 जुलाई से पूरे प्रदेश में लागू विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन पर चर्चा हुई। साथ ही पंचायतों की आवश्यकताओं के अनुसार विकास कार्यों को मंजूरी दी गई। प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सभा के लिए पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। बैठक के बाद विस्तृत रिपोर्ट संबंधित जिला कार्यालय को भेजी गई। दुर्ग जिले के जामगांव स्थित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में आज राज्य स्तरीय शाला प्रवेशोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवप्रवेशी विद्यार्थियों को तिलक लगाकर और उनका मुंह मीठा कर स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों को निशुल्क गणवेश, पाठ्यपुस्तकें और स्कूल बैग वितरित किए। साथ ही कक्षा 9वीं की छात्राओं को साइकिल प्रदान की गई। कार्यक्रम में राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा ही विकसित छत्तीसगढ़ का आधार है और सरकार हर बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में प्रदेश के 9000 स्कूलों में स्मार्ट क्लास शुरू किए जाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दुर्ग जिले के लिए 4 बड़ी घोषणाएं की। इनमें शिक्षा विभाग के लिए आधुनिक कंपोजिट कार्यालय भवन, दुर्ग में सर्वसुविधायुक्त ऑडिटोरियम, फुटबॉल मैदान सह एथलेटिक्स ट्रैक और नीट तथा जेई की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए 100-100 सीटर छात्र और छात्रा छात्रावास की स्थापना शामिल है।
6: आने वाले समय में दुर्ग में कंपोजिट बिल्डिंग इसकी मैं घोषणा करता हूं। हमारा जेडी डीओ और बीओ ऑफिस एक साथ बनेगा और दूर में एक सर सुविधा युक्त

0: ऑडिटोरियम बनेगा उसके भी हम घोषणा करते हैं, और दुर्ग क्षेत्र में फुटबॉल मैदान और एथलेटिक्स ट्रैक इसका निर्माण करेंगे इसके भी हम घोषणा करते हैं। जेई की तैयारी करने वालों हमारे बेटा बेटियों के लिए यहाँ पर 100-100 सीट का हॉस्टल उसका भी निर्माण आने वाले समय में हम लोग दुर्ग में करेंगे इसकी भी मैं घोषणा करता हूँ।
1: कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव भी मौजूद थे। राज्यपाल रमन डेका ने आज लोकभवन में इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के अंतर्गत जापान के सकुरा साइंस स्कूल प्रोग्राम में शामिल होकर लौटे विद्यार्थियों और उनके मार्गदर्शक शिक्षकों का सम्मान किया। सम्मानित विद्यार्थियों में धमतरी, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा जिले के सुनैना साहू, समीक्षा साहू, गगन दास मानिकपुरी तथा सैयद कशफ अली शामिल थे। इन विद्यार्थियों का चयन इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के विभिन्न चरणों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक अध्ययन भ्रमण के लिए हुआ था। विद्यार्थियों ने जापान प्रवास के दौरान टोक्यो विश्वविद्यालय, जैक्सा, विभिन्न शैक्षणिक और वैज्ञानिक संस्थानों तथा सांस्कृतिक स्थलों के भ्रमण के अनुभव साझा किए। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने कांकेर जिला और सत्र न्यायालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न न्यायालयों और सेंट्रल प्रोसेस अनुभाग सहित विभिन्न अनुभागों का निरीक्षण किया। मुख्य न्यायाधीश ने सभी न्यायालयों की व्यवस्था को बेहतर करने के निर्देश दिए। मुख्य न्यायाधीश

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। रायपुर जिले में आरंग एसडीएम अभिलाषा पैकरा ने ग्राम पंचायत नगरपुरा नकटा देवदा और राखी के पूर्व सरपंचों के खिलाफ शासकीय राशि वसूली के प्रकरणों के तहत वारंट जारी किया है। जारी वारंट के तहत केंद्रीय जेल अधीक्षक को संबंधित पूर्व सरपंचों को अधिकतम 30 दिनों की अवधि तक या बकाया राशि पूर्ण रूप से जमा किए जाने तक सिविल कारागार में सुपुर्द किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि इन सभी सरपंचों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उनके द्वारा संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किए जाने पर उनके विरुद्ध वारंट जारी किया गया है। वारंट जारी होने के बाद ग्राम पंचायत नकटा के पूर्व सरपंच गोपाल चतुर्वेदी और राखी की पूर्व सरपंच चित्ररेखा साहू ने 22,33,204 रुपये बकाया राशि जमा कर दी है। रामनामी समुदाय के जीवन आस्था और सांस्कृतिक विरासत पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म रामनामी को 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का सम्मान मिला है। इसका निर्देशन प्रसिद्ध फिल्मकार भरत बाला गणपति ने किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डॉक्यूमेंट्री फिल्म रामनामी को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का राष्ट्रीय सम्मान मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे पूरे प्रदेश के लिए गौरव का विषय बताया है। बिलासपुर जिले के तोरा थाना क्षेत्र में सर्पदंश से मौत की फर्जी रिपोर्ट बनाकर मुआवजा दिलाने के मामले में पुलिस ने डॉक्टर प्रियंका सोनी को गिरफ्तार किया है। उन पर दो अलग अलग मामलों में स्नैक बाइट से मौत की फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक तहसील कार्यालय के नायब नाजिर की शिकायत पर महमंद निवासी निसार खान और लता सूर्यवंशी की संदिग्ध मौतों के मामलों में केस दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। जांच में सामने आया कि दोनों शवों का पोस्टमार्टम तत्कालीन सिम्स चिकित्सक डॉक्टर प्रियंका सोनी ने किया था और स्नैक बाइट से मौत होने की फर्जी रिपोर्ट तैयार की गई थी। इसके बाद फरार चल रही डॉक्टर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इस मामले में दोनों मृतकों के परिजन और एक वकील समेत तीन आरोपी पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं। गृह विभाग ने राज्य पुलिस सेवा संवर्ग के अधिकारियों का तबादला आदेश जारी किया है। जारी सूची के अनुसार ओपी शर्मा को पुलिस अधीक्षक मुख्यमंत्री सुरक्षा पद के पद पर पदस्थ किया गया है। इसी तरह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और उप पुलिस अधीक्षक संवर्ग के 92 अधिकारियों की नई पदस्थापना की गई है। बलरामपुर जिले के त्रिकुंड थाना क्षेत्र में आज स्कूल जाने के लिए निकले एक प्रधान अध्यापक की हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने मृतक के दो चचेरे भाइयों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद के चलते प्रधान अध्यापक की हत्या हुई है। श्रावणी मेला के दौरान बाबाधाम जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे ने विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। रेलवे प्रशासन ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी और मधुपुर के बीच श्रावणी मेला साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में 5-5 फेरे लगाएगी। यह ट्रेन नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी से 1 अगस्त से 29 अगस्त तक प्रत्येक शनिवार को चलेगी। वहीं यह ट्रेन मधुपुर से 2 अगस्त से 30 अगस्त तक प्रत्येक रविवार को रवाना होगी। दुर्ग रायपुर और भाटापारा स्टेशनों सहित दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के कई प्रमुख स्टेशनों पर इस ट्रेन का ठहराव रहेगा। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। वहीं प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और उससे लगे दक्षिण छत्तीसगढ़ के ऊपर एक चक्रवाती घेरा बना हुआ है। इसके असर से प्रदेश में बारिश की गतिविधियां तेज हुई हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर बारिश हुई है। इस बीच जशपुर जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल देश देखा में आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई जबकि तीन अन्य घायल हो गए। पुलिस के अनुसार कुनकुरी क्षेत्र के चार दोस्त रविवार को पिकनिक मनाने के लिए देश देखा पहुंचे थे। इसी दौरान अचानक मौसम खराब हुआ और आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे जिला अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना में तीन अन्य युवक भी झुलस गए जिनका इलाज चल रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में आज विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। दुर्ग जिले के जामगांव स्थित स्वामी आत्मानंद विद्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय शाला प्रवेशोत्सव में शामिल हुए मुख्यमंत्री। और मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार

0: बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार हिंदी में अभी हम रिले कर रहे थे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। FM एंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में है।

श्रोताओं, आपको याद दिला दें, कल शाम 5:05 पर आप हमारे केंद्र से सुनेंगे कार्यक्रम भुइयां की बोली। कार्यक्रम में सुनिएगा कहानी डोरेलाल कैवर्त से और कविता पाठ वासंती वर्मा से। प्रस्तुति होगी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की।

FM 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 7 बजे हैं। अब लीजिए सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने का शेष भाग। कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपकी अपनी रेडियो साथी खुशबू। सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का पहला फरमाइशी गीत जहरीला इंसान इस फिल्म से है। किशोर कुमार की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं। आरडी बर्मन का संगीत पसंद कतिया पारा जूना बिलासपुर से आई है। सुशील देवांगन, अखिलेश लोकेश, आशीष रवि, शनि रेयांश, कान्हा आदित्य देवांगन की। बुड़गहन से रामदुलारी प्रजापति, राम शरण, चंद्रेश कुमार चंद्रकला, शशिकांता प्रजापति और यशोदा कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल। जालंधर से पसंद संदीप, ज्योति, मन्नत, भरत और साथ में कमल की आई है। और गंडे पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की विक्की, नानू रविंद्र, रौनक सेन। सहारनपुर से सुरेश नारंग, आशु सोनाली नारंग। बरेली कैंट चनहेटी उत्तर प्रदेश से है श्रोता विनेश कुमार रागनी और मुस्कान। और आप हैं सरगांव से राजेश वर्मा, हीरोमन पल्लवी और राजेश्वरी वर्मा। खोंदला उदयपुर सरगुजा से पसंद भेजी है जीवधन सिंह पैकरा, घुरनी करिश्मा, सोमार साय, कलेश्वर सिंह, सुखराम, हीरामणि और ऐश्वर्या पैकरा ने। आप हैं भिलाई 314 से नौशाद अहमद सिद्दीकी, हमीदून जिशान, शाहनवाज अहमद सिद्दीकी। और बुड़सरा नैला से पसंद प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू की आई है। इसी गीत को पसंद किया है बिलासपुर से छन्नूलाल श्रीवास, अनीता पुष्पा, अंजू योगिता श्रीवास ने। साथ में है रज्जन साहू, हेमंत नामदेव और धर्मदास वाधवानी। भाटापारा से ईमेल भेजा है दान सिंह रावत दानू, पद्मनी, नीरज रावत, शुभम और सौरभ रावत ने। और आप हैं ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण लव्या, आरव, एस के पप्पी। मोताला महाराष्ट्र से पसंद विजय सुरलकर, रतनमाला, ओम कुमार सुरलकर की। छोटी बलिया करजत मुंबई से अहमद भाई फूलवाले, दुखनी सदफ आरजू, जूही इकबाल, इमरान अहमद फूलवाले, आमना नसरीन बागवान, आसमा परी, राबिया मंतशा और ये हैं आशु अहमद फूलवाले। इसी गीत को दिल्ली से सुनना चाहे प्रमिला, हेमा और अंतरा सिंह ने। डुमराव से पसंद वलीउल्लाह अंसारी, सोनम वली और आसमा वली की आई है। तो लीजिए सुनिए आप सभी के पसंद पर जहरीला इंसान इस फिल्म का ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

जहरीला इंसान फिल्म का यह गीत अभी आपने सुना। किशोर कुमार की आवाज़ थी, मजरूह सुल्तानपुरी की रचना, आर डी बर्मन का संगीत। और अब आपको सुनाते हैं अगला फरमाइशी गीत, सीआईडी फिल्म से गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें हैं, जानेसार अख्तर के बोल, ओपी नैयर का संगीत। पसंद महाराष्ट्र से आई है, रुपेश संघई, महेश प्रज्ञेश और प्रीतेश संघई की। यवतमाल से हैं राहुल मनवर, सरला, विशाल चेतन, रोशनी मनवर और प्रियांशी। भाटापारा से प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र, दुष्यंत, राघवेंद्र साहू। यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पना ताई, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल, रक्षता लोखंडे। मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से हैं सोपान ताड़े, वसंतराव भोजने, निवृत्ति आडुकार। और नेपानगर मध्य प्रदेश से पसंद सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर कुशल, नीति सुरभि, अश्विन शाह, मंगला बेन शाह और राजेंद्र शाह की। धरदेई सरगांव से चंदूलाल पटवा, सुनीता हर्ष, विनीत कृष्टि पटवा। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टोमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। और ये श्रोता है अड़ार नांदघाट से माखन वर्मा, चांदनी भूपेश, दीपेश वर्मा। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत कहवाड़कर, सरिता प्रिंस, एकांश कहवाड़कर का मिल। पैठड़ से है सुरेश जाधव, अनिता आरती, पूजा प्रसाद, सोनल, सिया जाधव। कोटवा नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा, अमित कुमार और हैप्पी राय का मेल। और इसी गीत को पसंद किया है दतरंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल वर्मा ने। सनावद से पसंद मोहम्मद शादिक मुश्ताक, मोहम्मद शाकिर और साथ में मोहम्मद अलकमा खत्री, अल्तमश रमेश गौड़ और मोहम्मद सदाब खत्री की। तो आइए अब आपको सुनवाते हैं सीआईडी फिल्म का ये गीत।

सीआईडी फिल्म सी ए फरमाइशी गीत अभी आप सुन रहे थे, और अब बढ़ते हैं अगले गीत की तरफ। सुनवाते हैं आप सभी श्रोताओं को लम्हे फिल्म का गीत, आवाज़ें लता मंगेशकर और ईला अरुण की है। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत से संवारा है शिव हरि ने। पसंद भेजी है पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता ने। पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक चांसुलिया का मेल। लसुड़िया पाता जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से पसंद गोविंद वैष्णव, दिव्य सुमन कोमल परिकृतिका रमेश चंद्र डांगी की आई है। और यवतमाल से है पंजाब रामटेके यशोधरा श्राव्या रामटेके। बठेना पाटन से परमेश्वर साहू, राजबत्ती काजल पूर्वी हेजल राजेश रेशमा साहू का मेल। छोटी बलिया करजत मुंबई से अब्दुल कलाम राइन और अब्दुल सलाम राइन की पसंद। लछनपुर से इसी गीत को पसंद किया है रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निमी शिवम, सतीश मुकेश कुमार साहू ने। और नागर कोहरा जिला राजनांदगांव से फरमाइश लिख भेजी है बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल समीक्षा।

और आराध्या साहू ने। और इसी गीत को भोपालगढ़ राजस्थान से पसंद किया है धर्मेंद्र छिंपा कपिल पूजा परिहार ने। और रिंगनी से पसंद आई है दिनेश वर्मा करुणा वर्मा की। श्रीरामपुर से अशोक दले सविता अनिकेत रोहिणी ऋषिकेश और जीविका दले का ये मेल हम तक पहुंचा है। तो चलिए आप सभी को सुनाते हैं लम्हे फिल्म का ये गीत।

लम्हे फिल्म का ये गीत अभी श्रोता सुन रहे थे। आवाज़ें लता मंगेशकर और इला अरुण की थी, आनंद बख्शी की रचना और शिव हरि का संगीत था। इस गीत को हमारे

0: इन्हें श्रोता ने भी पसंद किया था। लेवई से मेल पहुंचा था गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास और रानी मानिकपुरी का। और अब इसी के साथ फरमाइशी कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने के इस अंग से दीजिए अनुमति आपकी अपनी रेडियो साथी खुशबू को।
1: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
2: देश की सुरीली धड़कन
3: विविध भारती,
1: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
2: कुछ बातें कुछ गीत कायम रहे छाया गीत,
1: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
2: वीर सैनिकों की जय माला
1: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
2: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग
4: सखी सहेली,
2: बॉम्बे टॉकीज
5: और सेल्यूलॉइड के सितारे,
2: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
6: मुझे याद सब है जरा जरा।
1: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
2: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
1: मन का सुकून दिल की आरती
2: सुरीली संदली।
0: FM एंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 7:20 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम सभा।

कार्यक्रम के सुनैया जम्मो संगी संगवारी मल्ला सरवन भैया के जय जोहार अउ राम राम। संगी हो देखो भाई, पानी बादर हा बरसत है ना भाई, अउ अभी एक बेरा हा हमन के खेती किसानी के मुख्य काबर के यही बेरा में हमन खेती किसानी ला करथन। अब कहो गाँव के रद्दा हा बढ़िया बने हैं तो बन जाते, अब कहो रद्दा हा खराब है तो फिर वहाँ जाए में बहुत परेशानी होते, काबर चिखला माटी हो जाते, आए जाए में बने नहीं और इसना में बहुत समस्या हो जाती है ना भाई। देखने पर हमार सरकार हर कई ठीक योजना लाए है और इसने एक ठीक योजना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिन हर भारत सरकार के एक प्रमुख ग्रामीण विकास योजना है। एकर शुरुआत असंगी हो 25 दिसंबर 2000 में करे गई और ये योजना के मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के ऐसनहा गांव बस्ती है जिन मन में हर मौसम में चले योग्य पक्का सड़क ले जोड़ना। जी हाँ, पहली सड़क के जिन उपलब्धता नहीं रही थे, मतलब जिन में पहली सड़क नहीं रही तेन ला पक्का सड़क ले जोड़ना एक हर मुख्य उद्देश्य और ये योजना की आवश्यकता काबर पड़ी संगी हो। तब भारत के कई ठीक गाँव पहली कच्चा सड़क मन में रही है ना, या फिर बिना सड़क के रही तो का होए, बरसात के बेरा में जब पानी गिरा है तो हम चिखला माटी हो जाए और पूरा भर जाए, रड़ता है खराब हो जाए तो लेकिन मन ला स्कूल जाए म, कॉलेज जाए म, है ना, मन के मन ला अस्पताल जाए म कि बाजार जाए म और जिन सरकारी कार्यालय तक पहुँचे में बहुत कठिनाई हो, बहुत समस्या के सामना करना पड़े। तो यही सब समस्या ला दूर करे बर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुरू करे गई है ना भाई। अब एक मुख्य उद्देश्य कि जतका भी ग्रामीण बस्ती का पक्का सड़क ले जोड़ना और जिन किसान मन अपन उपज ला आसानी जेखर से किसान मन अपन उपज ला आसानी ले बाजार तक पहुँचाए के सुविधा हो जाए है ना भाई। अब विद्यार्थी जिन मन ला तेन मन ला स्कूल जाए के कॉलेज जाए पर सुरक्षित पहुँच मार्ग हो जाए ताकि मतलब कोनो परेशानी मत हो, बढ़िया सुघर रद्दा में मर गए अब अपन स्कूल है कॉलेज है तो यहाँ तक जा सके। और कहो कोनो मरीज है कोनो बीमार है जिन मतलब अस्पताल जाना है तो अस्पताल तक जल्दी पहुँचे में सहायक रहेगी, काबर चिखला माटी में तो जा नहीं सकी भाई मरीज ला धर के है ना, परेशानी होते तो जब सड़क रहेगी तो बढ़िया मरीज मन अस्पताल ला आसानी से पहुँच सकी और जिन ग्रामीण क्षेत्र मन में जतका भी व्यापार हो सकी।

0: रोजगार अब जिन उद्योग ला बढ़ावा मिल सकी काबर सड़क रही था है ना, और ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बीच में बेहतर संपर्क स्थापित हो सकी। ये सब के कारण ला एक मुख्य उद्देश्य ग्राम सड़क योजना बनाए के फिर संगी हो गोट बात तो करबो फिर आवाज सुन ले थने संदेश ला।
1: भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ के धमतरी, जशपुर, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, कोरबा, महासमुंद, कोंडागांव, रायगढ़, राजनांदगांव, नारायणपुर एवं सूरजपुर जिलों में फसल बीमा योजना खरीफ 2026 मौसम हेतु संचालित की जा रही है। इस योजना में धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, मकई, सोयाबीन, मूंगफली, तुअर, अरहर, मूंग, उड़द, कोदो, कुटकी एवं रागी मड़वा अधिसूचित फसल का बीमा किया जा रहा है। किसी भी प्रकार की फसल बीमा से संबंधित जानकारी, मार्गदर्शन, सहायता या शिकायत के लिए तुरंत कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन 1-4447 पर कॉल करें। प्रशिक्षित प्रतिनिधि आपकी सहायता के लिए सदैव उपलब्ध है। 7-0-6-5-5-1-4-4-4-7 पर हमारे फसल बीमा चैटबॉट को केवल नमस्ते या हाय लिखकर संदेश भेजें। चैटबॉट आपको योजना की जानकारी, बीमित फसलों क्लेम की जानकारी तुरंत उपलब्ध कराएगा। बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। फसल हो या कृषि संपदा, बीमा सुरक्षा हमारा वादा। फसल सुरक्षा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
2: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
3: ओह लवली, वेल डन।
2: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
3: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
4: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
3: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
4: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
3: आप कौन?
5: आरबीआई कहता है
6: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
0: तो संगी हो अमन बात करत रहे हैं ग्राम सड़क योजना के। तो एकर मुख्य जैन विशेषता है तेन का है, तो जैसे कि हर मौसम में उपयोग योग्य सड़क के निर्माण करना है ना, और जिन बढ़िया अच्छा गुणवत्ता के साथ सड़क के निर्माण हुआ है, और आवश्यकता के अनुसार जिन पुलिया है जिनमें भाई पानी है, बोहात है, नहर है तो वहाँ पुल रहे, नदिया उदिया है, नाला है तो वहाँ पुलिया रहे, और जल निकासी के बढ़िया व्यवस्था रहे, और सड़क मार्ग के नियमित रख रखाव हुआ है, और जैसे कि निर्माण कार्य के तकनीकी और गुणवत्ता संबंधी निगरानी हुआ कि बढ़िया बढ़िया वहाँ सुघर चीज लडार के बनाए गए है कि नहीं, बढ़िया वह चल ही कि नहीं है ना भाई, ए ढंग ले ओकर निगरानी करे। और योजना ले होए वाले लाभ बहुत अकन है, काबर की ये योजना हा लाभे पहुंचाए बर ये योजना बनाए गए हैं। तो जैसे कि का लाभ होते, तो सबले पहली तो किसान मन ला लाभ है ना भाई, तो कौन ढंग ले तो जिन कृषि उत्पाद है तेन हा जल्दी और कम लागत में मंडी तक हमन पहुंचा सकथन, काबर भाई जैसे ही हमन की जिन फसल हा हो इस तहाँ फटाफट जोरेन तहाँ ले गए तो बढ़िया सड़क रही तो फिर राटा हमारे लजात बनी जल्दी पहुंच जाबो, और जिन परिवहन के खर्चा है तेन कम होते। अब एकदम चिखला माटी भरे है तो लेगे में भी परेशानी हो ही, कई जगह में बारी बारी करके ले गेल पड़ी, टाइम लगी, बेरा लगी और वहाँ खर्चा घला हो ही तेन खर्चा बांट जाते है ना। और जैसे कि फल है, सब्जी है, दूध है, ये सब जल्दी जिन खराब हो जाते तेन मन हा सही बेरा में बेचा जाते, काबर सड़क की खराबी नहीं रहे तो अपन फटाक ले सड़क में जाके, और आजकल तो मोटर गाड़ी में चलते हैं तो अपन गैन फटाफट गैन वाले बेच लिए तो बढ़िया बेचा जाते भाई है ना। और जेन पढ़िया लड़का मन है, विद्यार्थी है, तेन मन ला बहुत लाभ है, काबर की कोनो भी स्कूल है, कॉलेज है, तेन तक पहुँचना बहुत आसान रहते, सड़क में पानी उनी नहीं भरे है तो बढ़िया जा सकते, और वर्षा ऋतु रहे कि ग्रीष्म ऋतु रहे तो कोनो भी प्रभाव नहीं पड़े, ना ही चिखला माटी हुआ है, ना पानी भर के डबरा हो जाए, तो ऐसा हम जात नहीं बने ना नन लैकन है कि ड्रेस पहने हैं अपन स्कूल ड्रेस ला पहने हैं, कुर्ता ला है ना, जूता मोजा पहने हैं तो सब चिखला में गंदा हो जाए, तो ऐसा हम कहाँ ले स्कूल जा सकी, तो स्कूल के पढ़ाई है प्रभावित हुआ है,

0: तेन सब ह नहीं होवय, काबर बढ़िया भाई रोड हे तो हमें बढ़िया सुविधा ढंग ले ओमन जा सकथे। और जेन स्वास्थ्य सेवा के लाभ है तेन ह हो सकथे, तो जैसे जेन मरीज है तेन मन ल समय में हमन अस्पताल पहुँचाए जा सकथे, है ना भाई। और मरीज मन ल लेहे बर जेन एम्बुलेंस है तेन ह गाँव तक पहुँच सकथे, काबर सड़क ह खराब नहीं है, तो कहूँ हमन फोन करथन एम्बुलेंस ल तो हा के गाँव तक भी आ सकथे, घर तक दूरा में आ सकथे भाई, सड़क ह सही रही तो एम्बुलेंस की सेवा ह गाँव तक पहुँच पाथे। और संगी हो रोजगार में भी लाभ होते, तो सड़क निर्माण के दौरान जिन स्थानीय मनखे मन है तेन मन ल काम मिलते, और सड़क बने के बाद व्यापार परिवहन और जेन जेन छोट छोट छोट मोट उद्योग है तेन घलो ल बढ़ावा मिलते, है ना भाई। और एमा सामाजिक लाभ भी है, तो कौन ढंग ले तो ग्रामीण क्षेत्र के विकास तेज होते भाई, जल्दी जल्दी तेजी से उसका विकास होते, सरकारी योजना मन के लाभ लोग मन ला आसानी तक पहुँचाई जा सकते पहुँचाते, और पर्यटन और जिन स्थानीय व्यवसाय तेन घलो ल बढ़ावा मिलते, कोनो घूमे उमे आ सकते, है ना भाई। और जिन स्थानीय व्यवसाय करते तेनों ल बढ़ावा मिलते, जब सड़क ह बने रही तो कोई आ ही जाही वहाँ वहाँ के मन आन जगह अंत के मन वहाँ, तो पर्यटन घलो ल बढ़ावा मिलते। और ये योजना के कार्यान्वयन कौन ढंग ले होते, तो योजना ला संचालन कौन करते, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एला करे जाते, और राज्य सरकार और संबंधित एजेंसी मन सड़क निर्माण के कार्य ला करते, और गुणवत्ता के जांच ला विभिन्न प्रकार ले करे जाते, विभिन्न प्रकार के जिन विभिन्न स्तर में करे जाते कि बने हैं कि नहीं है, यानी कि कुल मिला के संगी हो जिन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है केवल सड़क बनाए की योजना नो है, बल्कि यह ग्रामीण विकास आर्थिक प्रगति और मनखे मन के जीवन में के स्तर में सुधार के एक महत्वपूर्ण पहल है, जेखर ले बेहतर सड़क संपर्क ले गांव में शिक्षा स्वास्थ्य कृषि व्यापार और रोजगार के अवसर है बढ़ते और बढ़िया मिलते, जेखर ले ग्रामीण भारत के जिन सर्वांगीण विकास है संभव हो सकते, यानी कि ये योजना है बहुत बढ़िया है और हमन के पूरा कहे जाए हमन के विकास बर ही है बने हैं, देखे बड़े है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है बने हैं। और संगी हो भाई देखो हमन आप मन ला बेरा बखत में नवा नवा विषय में जानकारी ला देत रहन, है ना भाई, कि कौन बेरा में कौन प्रकार के फसल लगाना है, और जैसे जिन फसल लगे है तो माँ कौन कौन प्रकार के बीमारी कौन बेखत हो जाते, और जैसे कि अभी हमन बुआई करथन, है ना भाई, तो जब फसल ला हमन लगाथन तो माँ कौन ढंग ले हमन ला खातू माटी के जरूरत पड़ी, है ना भाई, कैसना आवश्यकता है, कौन ढंग ले डालना है, कतका डालना है, और जैसे कि हमन यूरिया है डीएपी है तेखर हमन अभी के बेरा में कौन प्रकार ले महत्वपूर्ण है, और जैव उर्वरक के कौन प्रकार ले हमन ला कतका कैसना कैसना करना चाहिए, ये सब के जानकारी यही विषय में नैनो यूरिया नैनो डीएपी के वर्तमान समय के महत्व और जैव उर्वरक के महत्व यही विषय में जानकारी ला देवत हैं। और आज के विशेषज्ञ हेम क्रांति बंजारे जिनमें विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर के हैं, अमंतिर भेंट करते हमारे जित्तू भैया है, तो आवा सुनत हने भेंट वार्तालाप।
1: किसान भाई हो राम राम जय जोहार। अभी के समय जब खेती किसानी में किसान भाई मन हमर जुट गए हैं, मुख्य रूप से धान के फसल हमारे क्षेत्र में लिए जाते, छत्तीसगढ़ ला धान के कटोरा कहे जाते, आनी बानी किस्म के धान किसान भाई मन लगाते, ए दरी के समय है बड़ दुविधा में है किसान भाई मन के, उमन ला थोकन कम मात्रा में खातू माटी के व्यवस्था हो पाते, ऐसन में किसान भाई मन असमंजस की स्थिति में है, तो आज उखर बर हमन अतका बढ़िया सुघर विषय लेके आए हैं नैनो यूरिया डीएपी मन के लाभ। आज के विषय है नैनो यूरिया नैनो डीएपी के वर्तमान समय में महत्व और संग में जैव उर्वरक मन के महत्व, ये सुघर विषय में जानकारी दिए बर आज हमारे स्टूडियो में श्रीमती हेमकांति बंजारे जी मनाए हैं, ई मने विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर ले। सबले पहली हमर अतिथि मन के हमर पहुना मन के स्वागत कर लेथन। हेमकांति जी आपके हमर कार्यक्रम में स्वागत है, आप मन ला राम राम।
2: राम राम जीतू जी और साथ ही सारे किसान भाइयों को मेरे तरफ से नमस्कार जय जोहार।
1: बहुत बढ़िया, सबले पहली हम बात करें कि नैनो यूरिया नैनो डीएपी का होते, तो एकरे बारे में जानबो, हमन ले बता हेमकांति जी कि नैनो यूरिया का होते।
2: जित्तू जी, मैं सबसे पहले तो किसान भाइयों को ये बताना चाहूँ

0: होगी कि जो हम पौधों के लिए जो खाद डालते हैं उसका महत्व क्या होता है।
1: जी
0: जैसे कि सबको पता है कि जो हम यूरिया डालते हैं खेत में उसका उपयोग होता है पौधों के बढ़वार करना,
1: ठीक
0: मतलब जमीन के ऊपर जो पत्तियों की बढ़वार होती है, पौधों की बढ़वार होती है, उसके लिए उपयोग करते हैं। फिर हम उपयोग करते हैं डीएपी, जिसको हम लोग फास्फोरस होता है, उसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं, जो पौधों के नीचे जड़ें होती है उसको मजबूत बनाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। फिर आता है पोटास का उपयोग। पोटास का काम क्या होता है, वो सीधा काम ना करके वो दोनों को मेंटेन करता है, मेंटेन मतलब संतुलित बनाए रखता है। जैसे कि हमारे एक उदाहरण के लिए बताऊंगी, ट्रैफिक आप लोग देखे होंगे, ट्रैफिक में क्या होता है, वो सिग्नल दिखाता है कि किसको जाना है और किसको नहीं जाना है। वैसे ही हमारा जो ये खाद है जिसको हम डालते हैं पोटास, वो सारे चीज़ों को संतुलित करता है कि पौधों को कितनी मात्रा में यूरिया लेना चाहिए, मतलब नत्रजन लेना चाहिए, और कितनी मात्रा में डीएपी मतलब फास्फोरस लेना चाहिए। साथ ही हमारे जो जमीन के अंदर सूक्ष्म तत्व होते हैं उसको भी कितनी मात्रा में लेना चाहिए, ये कार्य होता है इन सारे फर्टिलाइजर का,
1: जी
0: उर्वरकों का। तो उसी में से है एक नैनो यूरिया। चूंकि अभी सभी किसान भाइयों को ये पता है कि अभी खाद की बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, सभी किसानों को जितना खाद चाहिए एकड़ पीछे वो नहीं मिल पा रहा है, उस स्थिति में हमको उत्पादन लेना ही है लेकिन हमारे पास खाद की व्यवस्था नहीं है। तो जब खाद की व्यवस्था नहीं है तो जो हमको मिला है हम उसमें कैसे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों से अनुरोध है कि जैसे कि आप लोगों को मिला है, नैनो यूरिया मिल रहा है सोसाइटी से, तो उसका सही उपयोग करके हम अपनी उत्पादन को बढ़ा सकें।
1: बहुत सुघर आप मन हमर नैनो जिनिस मन के बारे में बताया हा कि भाई कौन ढंग ले एनपीके हा काम करते। हम चाहे नत्रजन के बात करी, स्फूर के बात करी, चाहे पोटास के बात करी, हमर क्षेत्र में देखे जाते हेमकांति जी कि पोटास ला ना किसान भाई मन डारबे नहीं करे, केवल डीएपी छींच दिन और दू पैतमा यूरियल छींच दिन। तो ये बतावा ये सब जिन नैनो जिनिस है तेखर कृषि में महत्व का है और कौन कौन सा फसल में उपयोग हो सकते हैं, खासकर नैनो यूरिया के।
0: नैनो यूरिया का जो उपयोग है हम सभी फसलों में कर सकते हैं, चाहे वो आपका धान हो, चाहे वो आपका चना हो, चाहे वो आपका गेहूं हो, और भी उसको छोड़ के आप लोग चाहें तो सब्जी में भी आप उसका उपयोग कर सकते हैं। अब किसान भाइयों से मैं ये कहना चाहूंगी कि जो नैनो यूरिया का है उपयोग कैसे करना है और कब करना है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमको नैनो यूरिया कब उपयोग करना है, सुबह के समय, क्योंकि उस समय क्या होता है पौधों में जो छिद्र होते हैं वो खुला रहता है, तो जब हम सुबह स्प्रे करते हैं तो वो जो नैनो यूरिया के पार्टिकल हैं वो क्या होते हैं, पत्तियों के अंदर जाते हैं और पौधों का इससे बढ़वार बहुत अच्छा होता है। यदि आप उसका उपयोग दोपहर में करेंगे तो उस समय क्या होता है छिद्र बंद हो गए रहते हैं, ऊपर से गर्मी रहती है तो एक तो जल्दी सूख जाता है और दूसरा वो छिद्र बंद होने के कारण वो आपके पत्तियों से बह के चले जाता है। इसलिए कोशिश आप कीजिए कि सुबह करें या फिर शाम के समय करें। शाम को क्या रहता है, धूप भी कम रहती है और उस समय भी स्टोमेटा जो है आपके खुलते हैं।
1: ये तो बहुत बढ़िया ढंग से आप मन नैनो यूरिया के छिड़काव के विधि उस समय बताया है जिन हम दानेदार यूरिया लेथन और नैनो यूरिया जेकर आप बात बता था जिन बोतल मात है लिक्विड के रूप में, दोनों के कार्य अलग अलग है कि एक होते, का हम नैनो यूरिया ला भुया में उपयोग कर सकथन?
0: ये बहुत अच्छा आप मन सवाल पूछे हैं जीतू जी। जो नैनो यूरिया होता है सबसे अच्छी चीज है कि हम उसको आसानी से खेत तक ले जा सकते हैं, क्योंकि दानेदार क्या होता है वजन होता है, और ये क्या होता है छोटा सा बॉटल में या किसी भी चीजों में आप लोग चाहें तो उसको ले जा सकते। अब रही बात कार्य की, तो दोनों का कार्य बहुत ही सेम है, एक जैसे कार्य है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ इतना है कि ये जो हम नैनो पार्टिकल उपयोग करते हैं उसमें 4% नत्रजन रहता है, और उसमें जो होता है दानेदार में उसमें 46% रहता है।
1: अच्छा
0: हाँ, अब रही बात जैसे कि जीतू जी ने मुझे एक प्रश्न किया है कि इसको हम जमीन में कर सकते हैं कि नहीं, तो किसान भाइयों को मैं बताना चाहूंगी इसको जमीन में कोशिश करें कि ना डालें, क्योंकि इसमें बहुत सूक्ष्म पार्टिकल होते हैं जो जमीन में जाएंगे तो वहीं जाके वो या तो पानी में घुल जाएंगे या तो ऊपर, यदि धूप रहा तो ऊपर चले जाएंगे, और या फिर हो सकता है वो जमीन के जो पार्टिकल हैं मतलब छोटे छोटे कण है उसमें चिपक जाएं। अब ये नैनो पार्टिकल होने के कारण जमीन में उतना अच्छा इफेक्ट नहीं होगा, इसका कारक नहीं है, तो कोशिश करें इसको स्प्रे करने का ही, क्योंकि ये सीधे पत्तियों में जाए और पत्तियों के थ्रू पूरे पौधे में चले जाए।
1: बड़ा सुघर ढंग से बताया है। अब बता है नैनो यूरिया से पौधा ला लाभ का होते?
0: यूरिया से जो लाभ पौधों को होता है वही लाभ इससे होता है,
1: ठीक।
0: दोनों में अंतर

0: बस इतना है कि हम जब दानेदार डालते हैं तो जमीन में डालते हैं, तो उससे क्या होता है, बहुत सारे जो नत्रजन है वो जमीन में पानी में बह के चले जाते हैं या फिर इधर उधर फैल जाते हैं। लेकिन जब हम नैनो यूरिया का उपयोग करते हैं तो उसमें क्या होता है, जब हम पत्ती में डालते हैं तो वो पूरी मात्रा को पत्तियों के थ्रू ले लेता है, और इससे क्या होता है, पौधों की जो बढ़वार है वो बहुत अच्छी होती है। साथ ही हमारा जो पॉल्यूशन होता है ग्रेनुलर, हम जब दानेदार को डालते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा जो खेत है वो पॉल्यूटेड होता है क्योंकि हम ज्यादा डाल देते हैं। तो जब हम इसको डालते हैं नैनो यूरिया को, तो उससे हमारा जो पॉल्यूशन है, प्रदूषण है, वो बहुत कम होता है, और इससे हमारे पौधों को और हमारे इन्वायरमेंट को बहुत फायदा होता है।
1: अब आप नैनो यूरिया के बात करे हैं तो एक ठी मूर्ति प्रश्न है, इधर ही किसान भाई मन ला का है, पहली तो उत्तर धुरा डारे, अभी भी खरीद के डारे ही चे, ऐसा नहीं कहूं मैं। 1 एकड़ कोनो तीर खेत हावे, ओ हा धान की रोपाई कर दिस या करत हो ही या कर दिए हो ही, अब वो शुरू में DAP डारिस, 20 दिन बाद पहला यूरिया 20-25 दिन में डारथे, और 20-25 दिन बाद फिर दूसरा यूरिया डाली, पहली तोला ज्यादा मिल जाए यूरिया, इधर ही आधार OTP के चक्कर में फंसे है ना,
0: हाँ
1: या
0: जी
1: लदान के
0: बिल्कुल,
1: चक्कर में फंसे
0: जी
1: है,
0: जी जी
1: तो अब नैनो यूरिया के उपयोग कर ही तो वो दानेदार यूरिया की जगह कैसे डारे, कतका कन डारे, ला बढ़िया बताओ फोरी आके समझा के।
0: ये वाकई में बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका जीतू जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। किसान भाइयों को इसके बारे में मैं ये बताना चाहूंगी कि जो हमको एक बोरी यूरिया मिल रहा है प्रति एकड़ के हिसाब से, जो कि दानेदार है, उसको आप लोग जो है जमीन में सीधा डालेंगे जब बुआई करते हैं उस समय।
1: ठीक।
0: और ये जो नैनो यूरिया है, जब हम हमारा जो फसल है, एक तो धान की बात करें तो शाखा निकलने के समय होता है, और यदि हम सब्जियों की बात करें या दलहनी फसलों की बात करें तो उसको भी शाखा निकलते हैं, लेकिन हम धान में कंसे बोलते हैं उसको,
1: टिलरिंग
0: शाखा के
1: फेस में।
0: टिलरिंग
1: हाँ।
0: पेस्ट बोलते हैं या कंसे बोलते हैं, तो उस समय हमको उपयोग करना है नैनो यूरिया का।
1: ठीक।
0: उसके फिर बाद जो तीसरा हम लोग डालते थे यूरिया, जब हमारी 25 से 30 दिन बाद फिर से जो डालते थे, उस समय हमको इस नैनो यूरिया का उपयोग करना है। मतलब ये है कि जो हमको दानेदार मिला है उसको हम जमीन में उपयोग करेंगे, और ये जो नैनो यूरिया है इसको हम 2 बार पत्तियों में उपयोग करेंगे छिड़काव के रूप में।
1: ठीक। और मात्रा अभी बता देवा, कतका टंकी कतका स्प्रेयर में बढ़िया
0: हाँ
1: ढंग से
0: बिल्कुल
1: डाली।
0: बिल्कुल, नैनो यूरिया के वैसे मात्रा जो बना है वो 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से बना है। यदि किसान भाइयों को जैसे डालते नहीं बन रहा है या स्प्रे करते नहीं बन रहा है, तो संतुलित मात्रा डालने के लिए आप एक काम कीजिएगा, 1 लीटर पानी में 4 ml जो है आप उसमें घोलिए। वैसे यदि हम टंकी की बात करें, यदि आपकी 15 लीटर की टंकी है तो सीधा सीधा 15 × 60 होता है, यदि 16 लीटर की है 64 ml आप उसमें घोल सकते हैं। तो इस तरीके से आप प्रति स्प्रेयर कोशिश कीजिएगा कि 1 एकड़ में 125 लीटर पानी का उपयोग करें और 500 ml जो है नैनो यूरिया का उपयोग करें।
1: ठीक। तो ये 500 के छिड़काव एक पैत में करना है, फिर दूसरा छिड़काव फिर 500 ml करना है ना।
0: हाँ, 2 बार, पहली बार में आपको पूरे 500 का उपयोग करना है, फिर जैसे दूसरा आपको डालना है डोज, तो उसमें फिर आपको 500 का करना है।
1: ये तो बड़ सुघर ढंग से आप मन यूरिया के बात ल बताया है, और सही में यूरिया ज्यादा डारे से हम ही मन ला नुकसान होते, चाहे हमन जल के नुकसानी करी, चाहे वातावरण में जाए या लीचिंग के माध्यम से नीचे चले जाते, तो नैनो यूरिया एक प्रकार से बहुत बढ़िया विकल्प है किसान मन पर, जब इस समय खाद के किल्लत होते तब। अब हम नैनो DAP की बात करबो, नैनो DAP ऐसा है बताहा हेमकांति जी के, उखर का महत्वे का काम करते और कौन कौन सा फसल में खर कब उपयोग कर सकते, बढ़िया फुरियाक बतावा।
0: नैनो जो DAP है वो नैनो यूरिया जैसे ही है। आप लोग नैनो DAP का उपयोग चाहे तो बीज उपचारित में भी कर सकते हैं और चाहे तो छिड़काव करके भी कर सकते हैं। नैनो DAP में हम सबसे पहले यदि चाहेंगे तो, जैसे हम लोग क्या करते हैं, मताई के समय DAP डालते हैं। यदि आपको DAP मिल रहा है तो आप मताई के समय डाल दीजिए, और यदि नहीं मिल रहा है
1: ठीक।
0: तो आप क्या करेंगे, जो हम रोपाई के लिए जो हमारे पास नर्सरी होता है जिसको आप लोग थरहा बोलते हैं,
1: थरहा
0: उसको आप लोग उपचारित कीजिए। उपचारित कैसे करेंगे, 1 लीटर पानी में आप जो है 5 ml मतलब 5 ml नैनो DAP को लीजिएगा, उस 1 लीटर पानी में अच्छे से घोलिए। फिर आप क्या करेंगे, जो थरहा आपको लगाना है उस थरहा को उसमें डुबा दीजिए।
1: ठीक।
0: उसके बाद क्या है, थोड़ा देर ऐसा रुकिएगा कि वो पूरा अच्छे से मतलब लगे, कि ज्यादा ज्यादा 10-15 मिनट जरूर रुकिएगा। फिर उसके बाद क्या कीजिएगा, यदि आपके पास समय है तो आप कोशिश कीजिएगा कि उसको आधा घंटा डुबा के रखने का।
1: ठीक।
0: फिर उसके बाद आप उसको जो है रोपाई कीजिए। अब बारी आती है कि इसको स्प्रे करने की, स्प्रे छिड़का

0: और इसका जो है हम उसी समय में करते हैं। जैसे धान में यदि करना है तो भी आप कोशिश कीजिएगा कि जब कंसे आते हैं उस समय करें, और दूसरा जो है फूल आने के ठीक पहले आपको स्प्रे करना है।
1: अच्छा,
0: हाँ, फूल आने के बाद नहीं करना है, फूल आने के पहले करेंगे, ताकि इसमें जो है फूल और आपका जो बीज की मात्रा है वो ज़्यादा आ सके।
1: अच्छा,
0: अब रही इसकी मात्रा कितना लेना चाहिए, तो ये इसका मात्रा 1 एकड़ के लिए 500 ml ही आता है इसका भी।
1: अच्छा,
0: जिसको आपको स्प्रे करना है इसको भी आप 2 बार स्प्रे कर सकते हैं, एक तो आपका जब कंसे आए तो, और दूसरा फूल आने से पहले।
1: जी, मतलब 2 स्प्रे एकरो हो ही।
0: जी जी जी,
1: ये दोनों के आपन बहुत बढ़िया ढंग से जानकारी दिए हैं। नैनो DAP और नैनो यूरिया के उपयोग करत हन तो हम लग का मुख्य सावधानी रखना है, किसान भाई मन लेला बतावा।
0: मुख्य सावधानी में जैसे कि सबसे पहले मैं आप लोग को बोली थी कि आप इसको दोपहर में नहीं स्प्रे करेंगे, मतलब एकदम कड़ी धूप में आपको नहीं स्प्रे करना है।
1: ठीक।
0: फिर है क्या होता है जब हम डालते हैं तो हमको डालने से पहले ये ध्यान देना है कि बारिश तो नहीं होने वाली है, ये ध्यान देना है। यदि बारिश होने वाली होगी तो आप उसको स्प्रे करना बंद कर दीजिए, क्योंकि हम स्प्रे करेंगे और बारिश हो गई तो पूरा धूल के चले जाएगा। फिर आता है यदि मान लो जब बारिश हो गई है तो हम कैसे स्प्रे करें, तो यदि बारिश हो गई है तो कोशिश कीजिएगा कि 8 घंटे बाद आप जो है स्प्रे करें।
1: अब हम आगे बढ़बो जैव उर्वरक के जानकारी पर। जैव उर्वरक कौन कौन सा मुख्य रूप से धान के फसल या अन्य फसल लेथन तो कौन सा बढ़िया कारगर है, या किसान भाई मन अगर कहूँ अभी उमन रोपाई नहीं करे हैं धान ला, कौन सा चीज के जिनिस के उपयोग कर सकते हैं इला बतावा।
0: जैव उर्वरक के बारे में आप लोगों को मैं बहुत ही संक्षिप्त में जानकारी देना चाहूंगी, और सभी किसान भाइयों से आग्रह करूंगी कि आप लोग जो है जैव उर्वरक का उपयोग जरूर कीजिए। जैव उर्वरक का उपयोग इसलिए करने बोल रही हूँ कि आप लोग भी अभी के स्थिति में देख रहे होंगे कि पहले हमारा जो खेत है वो हम बैलों से जुताई कर ले सकते थे, लेकिन आज की स्थिति में हमको ट्रैक्टर से जुताई करना पड़ रहा है। हमारी जमीन इतनी कड़ी हो चुकी है कि हम आने वाले हमारे जो भविष्य के बच्चे हैं या हमारी जो आने वाली पीढ़ी है हम उसके लिए कुछ भी नहीं छोड़ पाएंगे, ये स्थिति बनते जा रही है। तो चूंकि हमारे बच्चे किसानी से, जिनके यहाँ किसानी पे आधारित हैं, तो उनके लिए कुछ अच्छा करने के लिए हम कोशिश करें कि जैव उर्वरकों का उपयोग करें। जैव उर्वरकों में जैसे कि हम धान की ही बात करते हैं तो हम कोशिश करें धान में जो PSB होता है और जो एजेक्टोबैक्टर होता है, एजेक्टोबैक्टर का उपयोग क्या होता है, वो जो आसमान में नत्रजन होता है, जैसे कि हम यूरिया उपयोग करते हैं उसके जगह पे जो आसमान में नत्रजन होता है उसको वो क्या करता है, पौधों को दिलाता है। वैसे ही PSB क्या होता है कि हमारे जमीन के अंदर जो फास्फोरस होता है, जो हम DAP डालते हैं, वैसा ही एक रूप हमारे जमीन के अंदर पाया जाता है, वो उसको पौधों को दिलवाता है। तो हम कोशिश करें कि जब हम बीज की बुवाई करते हैं तो ये जो दोनों जैव उर्वरक है, एजेक्टोबैक्टर और ये जो PSB है, ये सारे जो हमारे अनाज वाली फसलें हैं उसके लिए होते हैं, तो हम इससे उसका उपचारित करें। और जो किसान भाई दलहनी फसल लगा रहे हैं उन लोग क्या कीजिएगा, उसके लिए भी एक कल्चर आता है राइजोबियम करके, तो आप जो है नत्रजन के लिए राइजोबियम कल्चर से उपचारित कीजिए, और जो फास्फोरस होता है जमीन के अंदर उसके लिए PSB से।
1: ये तो हो गए जिससे आप मन बीज के उपचार बताए हैं। अब कतको किसान भाई मन, कतको का 90% किसान भाई मन बीज लग बो दिए हैं, अब वो मन लग करना है थरहा उपचार, और पट्ठल हो गए खेत DAP मारे है ना, तब PSB के उपचारित करना है, तो कौन ढंग ले थरहा उपचारित करे एहूल बतावा।
0: थरहा उपचारित करने के लिए PSB का भी वही तरीका है, जैसे कि हम 1 लीटर पानी में 10 ml लिए, फिर उसको घोल दिए, और फिर हमारा जो थरहा है उसको हम जो है उसमें डुबा के रखेंगे कम से कम आधा घंटा या फिर 20 मिनट तो आपको डुबाना ही है, फिर डुबाने के बाद जो है आप रोपाई कर सकते हैं।
1: ठीक, बहुत बढ़िया ढंग से आज के जिन विषय रही से नैनो यूरिया नैनो DAP के वर्तमान समय में महत्व और संग में जैव उर्वरक मन के महत्व ए सुघर विषय ऊपर आप बहुत बढ़िया ढंग से जानकारी दिए है। आप हो श्रीमती हेमकांति बंजारे जी विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर ले, आप मनत का सुघर जानकारी दिए, हमारे कार्यक्रम ले जुड़े है, हमारे किसान भाई मन से जुड़े है, हमारे केंद्र में आए हैं, आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद जीतू जी, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।
2: संगी हो अभी आप मन नैनो यूरिया नैनो DAP के वर्तमान समय में महत्व और जैव उर्वरक के महत्व ल विषय में जानकारी ल सुने हो, और विशेषज्ञ रहने श्रीमती हेम क्रांति बंजारे जैन मन विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर के, और मंत्री भेंट करत रही से हमार जीतू भैया। अब संगी हो देखो भाई अतका कन आप मन गोट बात सुन लिए हो, अब आप मन कहा तो हो, आप मन के मन हो तो ही

बर बिहाव के बेरा है तो रिसाई जाते और ससुराल में आबे करते रिसाए बर है ना भाई। तो आप मन तो ईसनहा दमाद नहीं है ना। खैर तब को जी रही थे ना चाह के भी बढ़िया रिसा जाते फिर मतलब मनाओ घलव लेते। तो अभी आप मन ये गीत ला सुने हो जिला फिरन लाल और संगवारी मन गात रही हैं। और संगी हो अब बेरा हो गए है आज के मौसम की जानकारी के। तो भाई आज के मौसम में अधिकतम तापमान रही से 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान रही से 26 डिग्री। और देखो भाई बादल कहो दिखत है तो कहो पानी भी गिरे कस हो जाते। और देखो भाई संगी हो जिन संगवारी मन हमन के धान के कहो बुआई ला करे हो और सीधा बुआई और कतार बोनी में करे हो तो ओमन ला ध्यान रखना चाहिए। जब धान में सकरा और चौड़ा पत्ती वाले जिन खरपतवार नियंत्रण पर धान के बुआई के 20 ले 25 दिन के अंदर हमन ला

बुआई ल करे ह और सीधा बुआई और कतार बोनी में करे ह तो ओमन ला ध्यान रखना चाहिए। जब धान में सकरा और चौड़ा पत्ती वाले जन खरपतवार नियंत्रण पर धान के बुआई के 20 ले 25 दिन के अंदर हमन ला 15 लीटर क्षमता वाले स्प्रेयर में 25 स्प्रेयर उपयोग करना चाहिए और आवश्यकता अनुसार खरपतवार नाशी जैसे कि 20 पायरीबेक सोडियम ला 200 ले 250 ग्राम हेक्टेयर पाछो छिड़काव करना चाहिए, है ना भाई। और जैसे कि हमन रोपण करे हन तो धान में जब थरहा डाले या बुआई के पहली हमन ला स्वयं उपचारित बीज ला 17% नमक के घोल में उपचारित करके डालना चाहिए। और जैसे कि प्रमाणिक या आधार श्रेणी के बीज है बीजा है तेन मन ला इजो स्पाइरिलम तथा PSB कल्चर ला 5 ले 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर ले हमला उपचारित करके बुआई ला करना चाहिए। और धान के रोपाई ला पंक्ति ले पंक्ति के दूरी 20 सेंटीमीटर और पौधा ले पौधा के दूरी 10 सेंटीमीटर हमला रखना चाहिए। और रोपड़ी के दिन जिन हमार थरहा के आयु है 20 ले 21 दिन के रहे तब हमला वाला थरहा ला दे देना चाहिए, है ना भाई। और ओ ढंग ले करना चाहिए और न तेखर ले हमन ना बढ़िया गहराई में 3-3-4-4 ठी पेड़ ला लगा के थरहा दे पेड़ ला लगा देना चाहिए, रोपाई कर देना चाहिए। और नत्रजन के छिड़काव ला हमन ला कुछ अनुसंसात मात्रा में आधा करके हमन ला करना चाहिए। और आधा मात्रा जैसे 60 किलोग्राम ला हेक्टेयर पाछू रोपा के 8 ले 10 दिन बाद यूरिया के रूप में छिड़काव करके डालना चाहिए। तेखर बाद हमन ला पानी लगभग 24 घंटा तक वहाँ नहीं डालना चाहिए, है ना। ए ढंग ले कहूँ हमन धान ला बोथन तो हम बढ़िया हमन ला अच्छा फायदा है मिलते। और जिन संगवारी मन राहेर लगाए है तभी जे सीधा बुआई कर रहे या कतार ले कतार में डाल रहे थे, है ना भाई, बोनी अवस्था कर रहे थे तो उमन माँ बीजा के दर कतका लगते तो माँ बीज दर है हमन ला उमा लगते बीजा है 15 ले 20 किलोग्राम हेक्टेयर पाछू। अब शीघ्र पके वाले जिन किस्म में कतार ले कतार के दूरी है 60 सेंटीमीटर और पौधा ले पौधा के दूरी है 15 सेंटीमीटर हमन ला रखना चाहिए। और तेखा बाद मध्यम अवधि वाले जिन फसल है तेन 90 और 20 सेंटीमीटर की दूरी में लगाए जाते। और बीजोपचार हमन ला राइजोबियम कल्चर में 5 ग्राम और PSB में 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर ले उपचार करके बुआई ला करना चाहिए। और जिन उर्वरक के मात्रा है तेन ला 20 ले 25 किलोग्राम नत्रजन 45 ले 50 किलोग्राम स्फूर और 15 ले 20 किलोग्राम हेक्टेयर पाछू पोटास के हमन ला आवश्यकता पड़ते। और जिन सकरा और चौड़ा पत्ता वाले खरपतवार नियंत्रण पर बुआई के 18 ले 20 दिन तक हमन ला जतका जरूरत पड़त है तेन हिसाब से खरपतवार नाशी जैसे कि इमेजा थापायर ला 10% SL 750 मिलीलीटर हेक्टेयर पाछू हमन ला छिड़काव करना चाहिए। तो ए ढंग ले कहूँ हमन अपन राहेर के बुआई करे हन ओमा ऐसन हिसाब से हमन खातू माटी डालथन तो बढ़िया सुंदर सुघर ढंग ले होते तो ऐसे हिसाब से हमन ला ओमा करना चाहिए। और जेन संगवारी मन हमन के सब साग भाजी बोए हैं तो वर्षाकालीन सब्जी वाले फसल जैसे कि भिंडी है भाटा है मिर्चा खीरा मखना लौकी मुर्राई फूलगोभी ये सब जिन फसल है तेकर खेती पर हमन ला खेत की तैयारी कर लेना चाहिए और बीजा की व्यवस्था ला बढ़िया कर लेवा। लौकी मखना तेन सब ला पॉली बैग में हमन ला तैयार कर लेना चाहिए तेकर बाद फिर हमन ला खेत में लगाना चाहिए, है ना भाई। और करेला बरबट्टी ये सब ला हमन ला मेड़ में नाली पद्धति में लगाना चाहिए एखर ले बढ़िया हमन ला सुंदर ढंग ले पानी है मिलते और बढ़िया फसल है होते। और जेन संगवारी मन भाई पशुपालन करत है तो हमन ला गलघोटू और लंगड़ा बुखार बीमारी ले बचाए बर टीका ला जरूर लगवा लो अभी के बेरा में। और पशु मन ला गीला और पानी भरे वाले स्थान मन में झन रखो, है ना भाई, ये ढंग ले करना चाहिए। और जेन जेन भी गैया बछरू मन जब जन्म थे तो ओमन ला 2 घंटा के अंदर ही ओखर जेन नानक लैका है तेन मन ला ओखर जेन प्यूस रही थे पहला दूध है जेन पीला गाढ़ा रही थे तेन ला जरूर पियाना चाहिए काबर वह बहुत पोषण रही थे ओमा पोषित रही थे तो ये ढंग ले हमन ला करना चाहिए। और संगी हो देखो गोट बात करत करत पीड़ा हो गए है घर जाके तो भाई अंतस्मया दया मया ला राख के आज्ञा दे अपन सरवन भैया ला घर जाके जय जोहार राम राम।

कार्यक्रम ग्राम सभा का प्रसारण अभी किया जा रहा था। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8 बजने को है। संसद समीक्षा अब हम रिले करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से।

ये आकाशवाणी है। अब आप कनकलता से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा। लेखक हैं यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद। लोकसभा में नीट पेपर लीक समेत अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के भारी हंगामे के कारण आज दिनभर सदन में कामकाज बाधित रहा और कार्यवाही को दिनभर के लिए स्थगित कर दिया गया। मॉनसून सत्र के पहले दिन लोकसभा में विपक्ष के सदस्यों ने पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तथा राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष ने प्रश्नकाल में हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सुबह जैसे ही प्रश्नकाल शुरू किया, विपक्षी सदस्य तख्तियां हाथ में लेकर सदन के बीचों बीच आकर नारेबाजी और हंगामा करने लगे। अध्यक्ष ने सदस्यों को शांत रहकर और अपनी सीटों पर लौटकर प्रश्नकाल चलते रहने का देने का आग्रह किया, लेकिन सदस्यों ने उनकी बात नहीं सुनी और हंगामा करते रहे। हंगामे के बीच ही ओम बिरला ने प्रश्नकाल जारी रखने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी दलों के सदस्यों का हंगामा और तेज हो गया। अध्यक्ष ने सदस्यों से कहा कि लोकसभा सर्वोच्च संस्था है और यहां चुनकर भेजे गए सांसदों से लोगों की अपेक्षाएं हैं, जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने सदन में तख्तियां लहराने और नारेबाजी को संसद की मर्यादा का उल्लंघन बताया और कहा कि सत्र के पहले दिन सदन नहीं चलने की परंपरा टूटनी चाहिए। प्रश्नकाल में नारेबाजी करना, तख्तियां लहराना उचित नहीं है। अध्यक्ष ने इस दौरान सदस्यों से बार बार व्यवस्था बनाए रखने का आग्रह किया, लेकिन इसका विपक्ष पर कोई असर नहीं हुआ और सदस्यों का हंगामा और तेज हो गया। हंगामा बढ़ता देख श्री बिरला ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजे भी सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा कर रहे सदस्यों को शांत रहने की अपील करते हुए पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने कहा कि विपक्षी सदस्यों का व्यवहार ठीक नहीं है। असम अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ आई है, लोग परेशान हैं, देश में और भी कई समस्याएं हैं, आप उन पर चर्चा कीजिए, आपको नियमानुसार समय दिया जाएगा, सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। श्री सैकिया की अपील का विपक्षी सदस्यों पर कोई असर नहीं हुआ और वे हंगामा करते रहे। इस पर श्री सैकिया ने कार्यवाही दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 1 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। विपक्षी सदस्य शोरगुल करते हुए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। श्री सैकिया ने नारेबाजी न करने और सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने देने की अपील की, लेकिन सदस्यों पर इसका कोई असर नहीं हुआ, जिसके कारण सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा में भोजनावकाश के बाद भी कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी। सदन की कार्यवाही भोजनावकाश के बाद 2:30 बजे जैसे ही शुरू हुई, पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल ने सदस्यों को नियम 377 के तहत अपने मामले उठाने के लिए कहा, लेकिन विपक्षी सदस्य तख्तियां लेकर सदन के बीचों बीच आ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। श्री पाल ने कहा कि जनता ने सांसदों को अपने उम्मीदों के साथ लोकसभा में भेजा है, सदन में तख्तियां और बैनर लेकर आना तथा नारेबाजी करना उचित नहीं है और इसकी अनुमति नहीं है। कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने कोरम का मुद्दा उठाया, जिस पर पीठासीन अधिकारी ने कहा कि सदन में कोरम पूरा है। कुछ सदस्यों ने आरोप लगाया कि सांसदों को सदन में आने से रोका जा रहा है, लेकिन श्री पाल ने इस आरोप को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ऐसा होने का प्रश्न ही नहीं उठता। पीठासीन अधिकारी ने विपक्षी सदस्यों से हंगामा बंद कर अपनी अपनी सीटों पर लौटने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही फिर से हंगामा और शोरगुल होने लगा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुकांत मजुमदार ने लोकसभा में आज एक सवाल के लिखे जवाब में कहा कि सरकार ने वर्ष 2025-26 से वर्ष 2029-30 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए 500 करोड़ रुपए के कुल बजटीय व्यय के साथ मेक

इंडिया एआई वर्क फॉर इंडिया की परिकल्पना के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में एआई उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की घोषणा की। शिक्षा मंत्रालय ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में शिक्षा हेतु एआई उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है। ये केंद्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप देश भर में शिक्षार्थियों को एआई सक्षम उपकरण उपलब्ध कराने के लिए स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रौद्योगिकी का समावेशन करना है। उन्होंने कहा कि बजट 2025-26 में घोषित कौशल हेतु 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों को उन्नत आईटीआई पीएमएसईटीयू योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार के एक भाग के रूप में अनुमोदित किया गया है। इस योजना के तहत भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर और लुधियाना स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों में 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाने की परिकल्पना की गई है। श्री मजुमदार ने कहा कि शिक्षकों को प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग में सक्षम बनाने के उद्देश्य से एनसीईआरटी द्वारा एआई विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिनमें 96,000 से अधिक प्रतिभागी लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार सीबीएसई भी शिक्षकों को शिक्षण अधिगम तथा मूल्यांकन में एआई उपकरणों के उपयोग और शैक्षिक प्रबंधन तथा प्रशासन में उनकी उपयोगिता के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करता है। पिछले 3 वर्ष में 1,234 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें सीबीएसई से संबद्ध विद्यालयों के 64,775 शिक्षक लाभान्वित हुए हैं। केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि राष्ट्रीय करियर सेवा एनसीएस पोर्टल देश भर के सभी हितधारकों के निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि करियर से संबंधित सेवाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदान करने के लिए एक वन स्टॉप समाधान है। उन्होंने कहा कि एनसीएस परियोजना में अन्य बातों के साथ साथ राज्यों, संस्थाओं के सहयोग से करियर संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए आदर्श करियर केंद्र एमसीसी स्थापित करने की भी परिकल्पना की गई है। अब तक सरकार ने पूरे देश में 407 आदर्श करियर केंद्रों को मंजूरी दी है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक लिखित जवाब में कहा कि ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की सुलभता सुनिश्चित करने के लिए सरकार का प्रयास देश से सभी बसे हुए गांवों के 5 किलोमीटर के दायरे में एक बैंकिंग आउटलेट उपलब्ध कराना है। बैंकिंग आउटलेट उपलब्धता की निगरानी एक भौगोलिक सूचना प्रणाली जीआईएस आधारित एप्लीकेशन जनधन दर्शक जेडीडी ऐप द्वारा की जाती है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्व अनुमति के बिना वाणिज्यिक बैंकों, स्मॉल फाइनेंस बैंकों, पेमेंट्स बैंकों, स्थानीय क्षेत्रों के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भारत में कहीं भी बैंक शाखाएं खोलने की अनुमति दी है, बशर्ते कुल शाखाओं का 25% हिस्सा बैंकिंग सुविधाओं वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खोला जाए। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज मॉनसून सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा। विपक्षी सदस्यों ने परीक्षाओं में कथित अनियमितता, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर हंगामा किया, जिसके कारण राज्यसभा की बैठक 5 बार के स्थगन के बाद दोपहर करीब 2:30 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सत्र के प्रारंभ में अपने संक्षिप्त टिप्पणी में सदस्यों से उच्च सदन की गरिमा, अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने का आह्वान करते हुए आग्रह किया कि वे कामकाज के समय से निपटारे पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि हर व्यवधान से देश और लोगों से जुड़े मामलों पर चर्चा में देरी होती है। किंतु उनके इस अपील का विपक्षी सदस्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और सदन में हंगामा जारी रहा। हंगामे के कारण उच्च सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सके और कोई विधायी कामकाज भी नहीं हो सका। इससे पहले दिन में 11 बजे मॉनसून सत्र के पहले दिन राष्ट्रगान के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई। सभापति ने नवनिर्वाचित 9 सदस्यों को सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई। गुजरात से भाजपा के मुकेश भाई जे राठवा, कर्नाटक से कांग्रेस के पवन खेड़ा, मध्य प्रदेश से भाजपा के महेश केवच, मेघालय से एनपीपी के जेम्स पगसा कोंकल संगमा, मिजोरम से खिंग्यांगटे लातलू आंगकीमा, राजस्थान से भाजपा के डॉ सतीश पूनिया, पश्चिम बंगाल से भाजपा के प्रकाश चेक बड़ाइक, सुष्मिता देव और सुखेंदु शेखर राय ने राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली। खेड़ा ने अंग्रेजी में मुकेश भाई जे राठवा, महेश केवट, जेम्स पगसा कोंकल संगमा, डॉ सतीश पूनिया और प्रकाश गवड़ाइक ने हिंदी में तथा सुष्मिता देव और सुखेंदु शेखर रॉय ने बांग्ला में शपथ ली। बजट सत्र संपन्न होने और मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले निर्वाचित हुए कुछ अन्य सदस्य अंतर सत्र अवधि के दौरान सभापति के कक्ष में शपथ ले चुके हैं। सभापति ने नए

का सदन में स्वागत किया। इसके बाद सदन में चार दिवंगत पूर्व सदस्यों बलबीर पुंज, स्वप्न साधन बोस, रंगासाई रामकृष्ण और एच हनुमंथप्पा के साथ ही कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी को श्रद्धांजलि दी गई। सदन में आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखे जाने के बाद विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट यूजी 2026 प्रश्न पत्र लीक के मुद्दे को उठाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा मामला है। खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार इस मुद्दे को दबाने की कोशिश कर रही है। श्री खड़गे जब अपनी बात रख रहे थे तभी विपक्षी सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर नारे लगाने लगे। हंगामे के बीच सभापति राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर सदन में वही नजारा था। सभापति ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा रुकता न देख सभापति ने बैठक 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12:30 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर विपक्षी सदस्य जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन और उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी करने लगे। वे अयोध्या स्थित राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे को लेकर भी नारे लगा रहे थे। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के सदस्यों ने तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच जल बंटवारे का मुद्दा उठाने की कोशिश की तथा सदन के बीच में आने का प्रयास किया, हालांकि सभापति राधाकृष्णन ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे के बीच सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12:50 तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक के दोपहर 12:50 पर फिर शुरू होने पर सदन में वही नजारा देखने को मिला। हंगामे के कारण सभापति ने बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सभापति ने बैठक स्थगित करने से पहले कहा कि वो गतिरोध को लेकर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में चर्चा करेंगे। दोपहर 2 बजे बैठक शुरू हुई तो उपसभापति हरवंश ने सदन में चर्चा एवं पारित किए जाने वाले विधेयकों के लिए तय किए गए समय के बारे में सदन को बताया। उनकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी और विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। उपसभापति ने सदस्यों से शांत रहने की अपील करते हुए कहा कि संसद चर्चा करने के लिए है और यहाँ चर्चा एवं संवाद होना चाहिए। अपनी बात का असर न होते देख उन्होंने बैठक को 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। सदन की कार्यवाही जब दोपहर 2:30 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्षी दलों के सदस्यों ने फिर से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्रों के प्रदर्शन और उन पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हंगामा करने लगे। उपसभापति हरवंश ने सदस्यों से शांत रहने की अपील करते हुए कहा कि सुबह से अब तक कोई कामकाज नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि सदन की गरिमा बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। ये उच्च सदन है और इस तरह का व्यवधान उचित नहीं है। हंगामा थमते न देख उन्होंने बैठक शुरू होने के 1 मिनट के भीतर ही कार्यवाही को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले सभापति ने सत्र के प्रारंभ में अपने संबोधन में सदस्यों से उच्च सदन की गरिमा, अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने का आह्वान करते हुए आग्रह किया कि वे कामकाज के समय से निपटारे पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि हर व्यवधान से देश और लोगों से जुड़े मामलों पर चर्चा में देरी होती है। सभापति ने कहा, मैं सदन के सभी पक्षों के सदस्यों से अपील करता हूं कि वे इस प्रतिष्ठित संस्था की गरिमा, अनुशासन और मर्यादा को बनाए रखें। हालांकि संसदीय लोकतंत्र में विचारों का मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें इस तरह से व्यक्त किया जाना चाहिए कि सदन की पवित्रता बनी रहे। व्यवधानों को इसके कामकाज को बाधित नहीं करने देना चाहिए। उन्होंने सत्र के उत्पादक, रचनात्मक और उद्देश्यपूर्ण रहने की कामना की और कहा, मैं राज्यसभा के 271वें सत्र की शुरुआत पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस सदन की सार्थक चर्चाओं की गौरवशाली परंपरा रही है और मुझे विश्वास है कि इस सत्र उस विरासत को आगे बढ़ाएगा। हमारे सामने 19 बैठकें हैं और यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम इस बहुमूल्य समय का उपयोग राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर बहस करने और उन पर निर्णय लेने में करें। सभापति ने कहा, इस सत्र का एक महत्वपूर्ण विधायी और विचार विमर्श संबंधी एजेंडा है। मैं सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वे कामकाज के समय पर निपटारे पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि हर व्यवधान देश और उन लोगों से जुड़े मामलों पर चर्चा में देरी करता है जिनका हम प्रतिनिधित्व करते हैं। सभापति ने सदस्यों को सूचित किया कि सत्र से उच्च सदन के सचिवालय ने सदस्यों की सीटों पर लगे मल्टीमीडिया उपकरणों के माध्यम से 9 भाषाओं में कार्यवाही का कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित अनुवाद शुरू किया है।
उन्होंने कहा कि धीरे धीरे इस सुविधा का सभी 22 अनुसूचित भाषाओं तक विस्तार

0: किया जाएगा और इस व्यवस्था में सुधार के लिए सदस्यों से अपनी प्रतिक्रिया देने को भी कहा। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: आकाशवाणी दिल्ली से अभी हम रिले कर रहे थे संसद समीक्षा FM एंड 103.2 मेगाहर्ट्स पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8:15 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है श्रोताओं कार्यक्रम रजनीगंधा।

श्रोताओं, हिंदी सिनेमा का इतिहास जितना विविध है उतने ही विविध रहे इसके कलाकार। कोई अपनी लोकप्रियता से अमर हुआ तो किसी ने अभिनय की नई परिभाषा गढ़ी। और हिंदी सिने जगत की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि हर दौर ने हमें ऐसे कलाकार दिए जिन्होंने अपने अपने अंदाज से अभिनय को नई ऊंचाइयां दी। एक और थे रोमांस संवेदनाओं और पारिवारिक मूल्यों के प्रतीक राजेंद्र कुमार, तो दूसरी ओर सहज यथार्थवादी और गहन अभिनय के पर्याय नसरुद्दीन शाह। श्रोताओं, दोनों की अभिनय शैली अलग थी लेकिन दोनों ने अपने हुनर से भारतीय सिनेमा को समृद्ध किया। साथियों, अभिनेता राजेंद्र कुमार का जन्म 20 जुलाई आज ही के दिन हुआ साल 1929 को, और विभाजन के बाद उनका परिवार भारत आ गया। माया नगरी मुंबई पहुंचने पर उन्होंने फिल्म जगत में अपनी पहचान बनाने के लिए एक लंबा संघर्ष किया। शुरुआती दिनों में वे सहायक निर्देशक भी रहे और छोटी छोटी भूमिकाएं भी निभाई कई फिल्मों में, और फिर उनका ये धैर्य रंग लाया और वर्ष 1959 में आई फिल्म गूंज उठी शहनाई ने राजेंद्र कुमार को रातों रात एक चमकता सितारा बना दिया।

श्रोताओं, इसके बाद सफलता ने राजेंद्र कुमार का हाथ थाम लिया। साल 1957 में प्रदर्शित महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया में अभिनेता राजेंद्र कुमार ने जो अभिनय किया, उसे देख आज भी लोग प्रफुल्लित उठते हैं। मदर इंडिया के बाद फिल्म आई ससुराल, घराना, दिल एक मंदिर, मेरे महबूब, आरजू, संगम, सूरज, झुक गया आसमान, तलाश जैसी फिल्मों ने उन्हें उस दौर का सबसे लोकप्रिय अभिनेता बना दिया। लगातार सफल फिल्मों के कारण फिल्म उद्योग ने उन्हें जुबली कुमार की उपाधि दे दी, और ये सम्मान केवल राजेंद्र कुमार की लोकप्रियता का नहीं बल्कि दर्शकों के अटूट विश्वास का प्रतीक था। और अब आपको सुनाते हैं सूरज फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, राजेंद्र कुमार की फिल्मों की एक और बड़ी ताकत उनका संगीत था। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, शंकर जयकिशन, नौशाद, रवि और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे संगीतकारों की धुनें और पर्दे पर राजेंद्र कुमार की भावपूर्ण अभिनय, इस संगम ने अनगिनत अमर गीत दिए हमें और यही वजह है कि आज भी उनके गीत रेडियो पर सुनाई देते हैं तो श्रोता अनायास ही पुराने दिनों में खो जाते हैं।

और अब बात करते हैं उस कलाकार की जिसने अभिनय को दिखावे से नहीं बल्कि सच्चाई से परिभाषित किया। 20 जुलाई साल 1950 को जन्मे नसीरुद्दीन शाह ने अभिनय की शिक्षा लेकर अपने सफर की शुरुआत की। श्रोताओं, रंगमंच से मिले अनुभव ने उनके अभिनय को गहराई दी। शुरुआती दौर में उन्होंने छोटे छोटे किरदार निभाए, लेकिन श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी और अन्य संवेदनशील निर्देशकों के साथ काम करते हुए वे समानांतर सिनेमा के सबसे महत्वपूर्ण अभिनेताओं में शामिल हो गए। श्रोताओं, निशांत, मंथन, भूमिका, स्पर्श, आक्रोश, अर्ध सत्य, मासूम, जाने भी दो यारो, इजाजत जैसी फिल्मों ने नसीरुद्दीन शाह की गंभीरता को स्थापित किया और बाद के वर्षों में उन्होंने मुख्य धारा की फिल्मों में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई। सरफरोश, इश्किया, द डर्टी पिक्चर, जिंदगी न मिलेगी दोबारा, अ वेडनेसडे

फिल्मों में नसीरुद्दीन शाह ने ये साबित किया कि सशक्त अभिनय किसी एक शैली का मोहताज नहीं होता। और अब आपको सुनवाते हैं फिल्म मासूम का ये मासूम सा गीत।

श्रोताओं, नसीरुद्दीन शाह ने फिल्मों के साथ साथ रंगमंच और टेलीविज़न पर भी अपना उल्लेखनीय योगदान दिया। उनकी संवाद अदायगी, चेहरे के सूक्ष्म भाव और किरदार में पूरी तरह उतर जाने की कला उन्हें अपने समकालीन अभिनेताओं से अलग पहचान देती है। अभिनेता नसीरुद्दीन शाह को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से नवाजा गया और साल 1987 में पद्मश्री और साल 2003 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। श्रोताओं, एक रोचक बात यह भी है कि संघर्ष के दिनों में नसीरुद्दीन शाह को राजेंद्र कुमार अभिनीत फिल्म अमन में एक छोटी सी बिना श्रेय वाली भूमिका निभाने का अवसर मिला था। उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि

ये ही युवा कलाकार आगे चलकर भारतीय सिनेमा के सबसे सम्मानित अभिनेताओं में गिना जाएगा। श्रोताओं, राजेंद्र कुमार ने अपने मुस्कुराते चेहरे, रोमांटिक अंदाज और मधुर गीतों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई, तो नसीरुद्दीन शाह ने अभिनय की गहराई और संवेदनशीलता और सादगी से सिनेमा को नई दिशा दी। दोनों कलाकारों ने अलग अलग रास्ते चुने, लेकिन मंजिल एक ही रही, दर्शकों का स्नेह और सम्मान।

और अब श्रोताओं, समय है उस स्वर सामग्री को याद करने का जिनकी आवाज़ में भावनाओं का ऐसा जादू था कि हर गीत सीधे दिल तक पहुंच जाता था। आज 20 जुलाई का दिन हिंदी फिल्म संगीत की एक ऐसी मधुर आवाज़ की याद भी दिलाता है श्रोताओं, जो आज भी हमारे दिलों में उतनी ही जीवंत है। आज ही के दिन साल 1972 में महान पार्श्व गायिका गीता दत्त ने इस दुनिया को अलविदा कहा था। 23 नवंबर साल 1930 को तत्कालीन पूर्वी बंगाल के फरीदपुर जिले में जन्मी गीता दत्त का बचपन संगीत के माहौल में बीता। देश के विभाजन से पहले उनका परिवार मुंबई आकर बस गया और यहीं से उनकी संगीत यात्रा ने एक नई दिशा ली। बहुत ही कम उम्र में संगीतकार हनुमान प्रसाद की नज़र गीता दत्त की प्रतिभा पर पड़ी और उन्हें फिल्मों में गाने का पहला अवसर मिला और इसके बाद उनकी आवाज़ ने ऐसा जादू बिखेरा कि वे देखते ही देखते हिंदी सिनेमा की सबसे लोकप्रिय पार्श्व गायिकाओं में शामिल हो गई। साथियों, साल 1940 के दशक के अंतिम वर्षों और 1950 का दशक गीता दत्त के करियर का स्वर्णिम काल रहा।

उन्होंने उस दौर के लगभग सभी प्रमुख संगीतकारों सचिन देवबर्मन, ओपी नैयर, हेमंत कुमार, मदन मोहन, सी रामचंद्र और कल्याण जी आनंद जी के लिए यादगार गीत गाए। उनकी आवाज़ में एक अलग ही मिठास और अपनापन था। वे चुलबुले गीत भी उतनी ही सहजता से गाती थी जितनी गहराई से दर्द भरे नगमे या भजन। उनकी यादगार गीतों की बात करें तो लिस्ट तो बहुत लंबी है। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, बाबूजी धीरे चलना जैसे गीत आज भी संगीत प्रेमियों की पहली पसंद है। और इन गीतों को सुनते ही ये महसूस होता है कि गीता दत्त केवल शब्द नहीं गाती थी बल्कि हर भाव को अपनी आवाज़ में जी लेती थी।

श्रोताओं, गीता दत्त की गायकी की सबसे बड़ी विशेषता उनकी सहजता थी। 20 जुलाई साल 1972 को आज ही के दिन मात्र 41 वर्ष की आयु में ये मधुर स्वर हमेशा के लिए मौन हो गया, लेकिन उनकी आवाज़ कभी खामोश नहीं हुई। वक्त ने ये क्या हंसी सितम किया। रेडियो की

0: तरंगों पर संगीत प्रेमियों की यादों में और हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम इतिहास में गीता दत्त आज भी उसी आत्मीयता के साथ जीवित है। और अब इन्हीं बातों के साथ दीजिए कार्यक्रम रजनीगंधा को समाप्त करने की अनुमति आपकी अपनी रेडियो साथी खुशबू को। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM 103.2 MHz पर। रात्रि के 8:45 होने को हैं। समाचार अब आकाशवाणी दिल्ली से रिले होंगे।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों को लेकर बार बार बाधित। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोल्दोवा के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग तथा तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में सहयोग का आह्वान किया। जम्मू संभाग में मूसलाधार वर्षा से 4 और लोगों की मौत, पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या 16 हुई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कई जिलों में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कल तेज बारिश का रेड अलर्ट। और ब्रिटेन में लेबर पार्टी के एंटी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। अब समाचार विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही बार बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 निर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज 1 महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
4: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले 1 महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है। चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
2: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों, गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने और न ही उन्हें फैलाने की सलाह दी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं,

0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज किशिनोव में स्टेफान सेल मारिसिस फेंट स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उनके साथ भारत और मोल्दोवा के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। ये समारोह मोल्दोवा के राष्ट्रीय नायक को सम्मान देने के लिए आयोजित किया गया। ये दोनों देशों के बीच दोस्ती, साहस और एक दूसरे की आजादी का सम्मान करने की भावना को भी दर्शाता है। राष्ट्रपति ने आज भारत और मोल्दोवा के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर बल देते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में साथ काम करने की बड़ी संभावनाएं हैं। मोल्दोवा की राजधानी किशिनोव में भारत मोल्दोवा बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा की पहली राजकीय यात्रा है।
1: मोल्दोवा की पहली राजकीय यात्रा है। ये हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और हमारे दोनों देशों के बीच बढ़ती मित्रता और आपसी विश्वास को दर्शाती है। भारत और मोल्दोवा तीन दशकों से मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करते आ रहे हैं। भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद शांति, विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति हमारे साझा प्रतिबद्धता के अनुरूप हमारी साझेदारी निरंतर बढ़ती रही है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू और मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांडू ने आज व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवाचार सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि पनामा के विदेश मंत्री हाइवेर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच हाल में हुए उच्च स्तरीय आदान प्रदान की गति को और आगे बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की सरकारें और उनके नेता भारत पनामा साझेदारी को गहरा और व्यापक बनाने के लिए उत्सुक हैं। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में संयुक्त अरब अमीरात के अर्थव्यवस्था और पर्यटन मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मर्री और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। श्री गोयल ने बताया कि बैठक में व्यापार, निवेश, पर्यटन और आवाजाही के क्षेत्र में द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने आज उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन की जांच के लिए विशेष जांच दल एसआईटी गठित करने की संभावना के बारे में जानकारी देने को कहा। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को इस बारे में निर्देश देने को कहा कि क्या प्राथमिकी दर्ज होने से पहले पूरे मामले की जांच करने वाली एसआईटी को स्थानीय पुलिस के बजाय इस मामले की जांच का जिम्मा सौंपा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका पर 27 जुलाई को फिर सुनवाई करेगा, जब उत्तर प्रदेश सरकार मामले में एसआईटी जांच के बारे में जानकारी देगी। विधि और न्याय मंत्रालय ने अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2026 का मसौदा हितधारकों और आम जनता के परामर्श के लिए जारी कर दिया है। ये मसौदा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के परामर्श से तैयार किया गया है। इसे टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित करने के लिए बार काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नवनिर्वाचित नेता एंडी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। किंग चार्ल्स द्वितीय ने ग्रेटर मैनचेस्टर के 56 वर्षीय पूर्व मेयर को किर स्टार्मर के इस्तीफे के बाद नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। श्री एंडी बर्नहम ने कहा कि हम ब्रिटेन के लिए बड़े बदलाव लाएंगे।
2: हम ब्रिटेन के लिए पिछले 40 सालों में सबसे बड़े बदलाव लाएंगे, एक नया राजनीतिक और आर्थिक मॉडल बनाएंगे। 1980 के दशक में ब्रिटेन ने कुछ गलत कदम उठाए थे, देश के बड़े हिस्सों में उद्योग खत्म हो गए और वे अब तक उससे उबर नहीं पाए हैं, इसीलिए हम राजनीति को बदलेंगे।
0: इससे पहले किर स्टार्मर ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में 10 डाउनिंग स्ट्रीट से अपना अंतिम भाषण दिया और फिर औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा देने के लिए किंग चार्ल्स से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वे एंडी बर्नहम को सत्ता सौंप रहे हैं और वे उन्हें पूरा समर्थन देंगे। जम्मू कश्मीर में बारिश से जुड़ी घटनाओं में

0: आज जम्मू संभाग में 4 और लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: तेज बारिश के कारण पुंछ और रजौरी जिले में बचाव और राहत कार्य आज प्रभावित हुआ। कल आए विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में 12 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य अब भी लापता हैं। प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के दल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात हैं तथा संवेदनशील इलाकों में हाई अलर्ट पर हैं। पुंछ, रजौरी, रियासी और उधमपुर के प्रमुख मार्गों को यातायात के लिए खोल दिया गया है। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक राज्य में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
0: केंद्र शासित प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश, अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राजौरी

0: रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: केंद्र शासित प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश, अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राजौरी और पुंछ जिलों में बारिश से हुई मौतों पर मृतकों के परिजनों को 6-6 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उत्तराखंड में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। पहाड़ी इलाकों में बारिश और भूस्खलन के कारण कई राष्ट्रीय राजमार्गों, प्रमुख सड़कों और ग्रामीण संपर्क मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है।
2: तेज बारिश के चलते देहरादून मसूरी मुख्य मार्ग पानी वाले बैंड के पास क्षतिग्रस्त हो गया है। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने इस मार्ग पर आवाजाही अगले आदेश तक पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी है। आमजन से मार्ग के खुलने तक मसूरी आने जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग करने का अनुरोध किया गया है। वहीं गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने चारधाम यात्रा मार्गों के बंद होने की स्थिति में तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराने और मार्ग पूरी तरह सुरक्षित होने के बाद ही यात्रा शुरू करने के संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तीर्थयात्रियों से अफवाह पर ध्यान न देने और प्रशासन की आधिकारिक सलाह मानने के लिए अपील की गई है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में मौसम विभाग द्वारा जारी रेड अलर्ट के मद्देनजर कल सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में अगले दो दिन में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी अगले दो से तीन दिन तक ऐसा ही मौसम रहेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कमजोर और वंचित वर्गों के सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास के लिए स्माइल योजना लागू कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को सम्मानजनक जीवन जीने और स्थायी आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जून तक लगभग 55 करोड़ 49 लाख उपयोगकर्ता यूपीआई से जुड़ चुके हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में 24,162 करोड़ यूपीआई लेनदेन में 314 लाख करोड़ रुपए का आदान प्रदान हुआ। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार देश भर में स्कूलों में नामांकन बढ़कर लगभग 25 करोड़ हो गया है। लोकसभा में लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्राथमिक, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक स्तर की शिक्षा में वर्ष 2025-26 में नामांकन अनुपात वर्ष 2024-25 की तुलना में बेहतर हुआ है। उन्होंने कहा कि सभी स्तरों पर स्त्री पुरुष समानता सूचकांक 1 या उससे अधिक है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज आयकर रिटर्न भरना, जागरूकता, सुविधा और समय से अनुपालन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सनदी लेखाकार और कर विशेषज्ञ शरद कोहली तथा बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। पीवी सिंधु कल से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुड्डा शामिल हैं। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और एच एस प्रणॉय टीम का हिस्सा हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों को लेकर बार बार बाधित। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोल्दोवा के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग तथा तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में सहयोग का आह्वान किया। जम्मू संभाग में मूसलाधार वर्षा से 4 और लोगों की मौत, पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या 16 हुई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कई जिलों में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कल तेज बारिश का रेड अलर्ट और ब्रिटेन में लेबर पार्टी के एंटी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

और ये है कार्यक्रम की अंतिम पेशकश, फिल्म है दूसरा आदमी। स्वर दे रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार, और साथ दे रहे हैं मोहम्मद रफी भी। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा है और संगीत से सजाया है राजेश रोशन ने।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपके लिए। आज का सफर आपने तय किया प्रीति मिश्रा के साथ। ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है गब्बर मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। कोई मेरे दिल से पूछे कि तेरे तीरे नीम कश को ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। ये शेर सुनते ही आपको चचा गालिब याद आए होंगे और आप सोच रहे होंगे आज के फनकार हैं मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब के किरदार को छोटे पर्दे पर जिन्होंने बखूबी निभाया था वो हैं आज के फनकार।
1: बस के हूँ गालिब असीरी में भी आतिश जेर पा, मुए आतिश दीदा है हल्का मेरी जंजीर का।
0: रोबीला चेहरा, दमदार एक्टिंग, हर किरदार में खूब फबने वाले अदाकार हैं आज के फनकार। जी हाँ, आज के फनकार हैं अभिनेता नसीरुद्दीन शाह।

नसीरुद्दीन शाह का जन्म 20 जुलाई 1950 को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में हुआ था। नसीरुद्दीन शाह ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी की और फिर उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला लिया। अभिनय के इस प्रतिष्ठित संस्थान से अभिनय का विधिवत प्रशिक्षण लेने के बाद वे रंगमंच और हिंदी फिल्मों में सक्रिय हो गए। नसीरुद्दीन शाह की फिल्मों की सूची में समानांतर और मुख्य धारा की फिल्मों का अनूठा सम्मिलन देखने को मिलता है।

मेन स्ट्रीम सिनेमा में नसीरुद्दीन शाह के सफर की शुरुआत हुई 1980 में आई फिल्म हम पांच से। फिल्म भले ही कमर्शियल थी, लेकिन इसमें नसीर के अभिनय की गहराई पैरेलल सिनेमा वाली फिल्मों से कम नहीं थी। गुलामी को अपनी तकदीर मान चुके एक गांव में विद्रोह की आवाज बुलंद करते नौजवान के किरदार में नसीर ने जान फूंक दी। फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती और राज बब्बर भी थे, लेकिन नसीर के दमदार अभिनय ने उन्हें सबसे अलग खड़ा कर दिया।

1987 में गुलजार की इजाजत नसीर के लिए कामयाबी का एक और जरिया बनकर आई। एक जज्बाती कहानी, बेहतरीन निर्देशन, शानदार अभिनय और यादगार संगीत। इजाजत ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कामयाबी हासिल की और बतौर कमर्शियल एक्टर नसीर का रुतबा और बढ़ गया। खतरा

बॉलीवुड की मेन स्ट्रीम फिल्मों में नसीर अपनी कामयाबी की कहानी आगे बढ़ाते जा रहे थे तो उनकी अदाकारी के चर्चे सात समंदर पार तक पहुंच गए। सन 2003 में आई हॉलीवुड फिल्म द लीग ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जेंटलमैन में नसीरुद्दीन ने कैप्टन नीमो का किरदार निभाया, तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी फिल्म खुदा के लिए में भी उन्होंने शानदार काम किया। देश से लेकर परदेश तक नसीरुद्दीन शाह ने अपनी अदाकारी का लोहा सारी दुनिया में मनवाया है।

लेकिन नसीर अपनी काबिलियत को खुशकिस्मती का नाम देते हैं। वो कहते हैं, मैं खुद को खुशकिस्मत मानता हूँ कि मुझे इतने मौके मिले, लेकिन मैं कमर्शियल फिल्मों से अभी सेटिस्फाई नहीं हूँ। सन 2008 में आई अ वेडनेसडे ने नसीर की कमाल की अदाकारी का एक और नजराना पेश किया, तो इश्किया, राजनीति, सात खून माफ और डर्टी पिक्चर जैसी फिल्मों के जरिए नसीरुद्दीन शाह ने बार बार ये साबित किया कि एक सच्चे कलाकार को उम्र बांध नहीं सकती।

0: हाल ही में रिलीज हुई फिल्म मैक्सिमम में भी नसीर की जोरदार एक्टिंग ने पब्लिक को खूब एंटरटेन किया है। वाकई नसीरुद्दीन शाह जैसे एक्टर्स को ना तो देश की सरहदें बांध सकती हैं, ना उम्र की जंजीरें थाम सकती हैं। दोस्तों आपको याद होगा छोटे पर्दे पर मिर्जा गालिब नाम से एक धारावाहिक आता था जिसने किताबों में बंद मिर्जा गालिब को जिंदा कर दिया था। उस धारावाहिक ने छोटे पर्दे पर गालिब की ऐसी तस्वीर उभारी जो सिनेमाई कम हकीकत ज्यादा लगी थी और ये सब मुमकिन हुआ था उस चेहरे के बलबूते पर जिसका नाम है नसीरुद्दीन शाह।
1: ये दुनिया मुझे छोटी लगती है बेगम, ये दुनिया बाजीचाए अतफाल है, दुनिया मेरे आगे
2: बाजीचाए अतफाल है।

0: तमाशा मेरे आगे।
1: दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि गालिब बनने की नसीर की तमन्ना उनके दिल में एक अधूरे ख्वाब की तरह अटकी हुई थी। सन 1988 में धारावाहिक बनाने से पहले गुलजार साहब गालिब पर एक फिल्म बनाना चाहते थे और उस फिल्म में बतौर गालिब उनकी दिली इच्छा थी संजीव कुमार को लेने की। नसीर साहब ने इस बारे में बताते हुए कहा, मैंने गुलजार भाई को चिट्ठी लिखी और अपने फोटोग्राफ्स भेजे। मैंने लिखा कि आप ये क्या कर रहे हैं, इस फिल्म में तो आपको मुझे लेना चाहिए था। उन्हीं दिनों की बात है, अभिनेता संजीव कुमार को दिल का दौरा पड़ गया था और सेहत उनका साथ नहीं दे रही थी। फिर उसके बाद गुलजार साहब के दिल में उस रोल के लिए अमिताभ के नाम का ख्याल आया, लेकिन वहाँ भी बात नहीं बनी और आखिरकार गालिब पर फिल्म बनाने का प्लान ही ठंडे बस्ते में पड़ गया। शायद उस वक्त गुलजार को भी नहीं मालूम होगा कि इस किरदार पर तो तकदीर ने किसी और

पर का ही नाम लिख दिया है। कई साल बाद गुलजार साहब ने एक दिन नसीर को फोन लगाया। नसीर ने बताया, एक दिन मुझे गुलजार भाई का फोन आया कि सीरियल में काम करोगे। मैंने पूछा कौन सा सीरियल, तो उन्होंने बताया गालिब पर है। मैंने बिना कुछ सोचे फौरन हाँ कर दिया। ये नसीर की पहली ख्वाहिश थी जो देर से ही सही लेकिन पूरी जरूर हुई, और उन्होंने गालिब के किरदार को यादगार बना दिया।

नसीर साहब की एक और दिली ख्वाहिश थी, वो ख्वाहिश थी गांधी के रोल को करने की। कहते हैं जब रिचर्ड एटनबरो गांधी फिल्म बना रहे थे तो वो उसके लिए ऑडिशन भी देने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें सिलेक्ट नहीं किया गया और रोल मिला बेन किंग्सले को। नसीर की तमन्ना अधूरी ही रह गई। सन 1982 में गांधी के रिलीज होने के 18 साल बाद कमल हासन ने बनाई थी फिल्म हे राम, जिसने नसीर साहब की दूसरी अधूरी तमन्ना को पूरा कर दिया। इस फिल्म में उन्हें गांधी का किरदार निभाने का मौका मिला। सधी हुई अदाकारी और बेजोड़ अंदाज से उन्होंने न केवल गांधी के किरदार में जान डाल दी, बल्कि एक बार फिर साबित कर दिया कि आखिर उनके टक्कर का कोई दूसरा एक्टर बॉलीवुड में नहीं है। अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म निशांत से की थी, जिसमें उनके साथ थी स्मिता पाटिल। निशांत एक आर्ट फिल्म थी। ये फिल्म कमाई के हिसाब से तो पीछे रही, पर फिल्म में नसीरुद्दीन शाह के अभिनय की सबने खूब सराहना की। इसके बाद नसीरुद्दीन शाह ने आक्रोश, स्पर्श, मिर्च मसाला, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, मंडी, मोहन जोशी हाजिर हूँ, अर्धसत्य, कथा वगैरह वगैरह कई आर्ट फिल्में की। आइए सुनते हैं अभिनेता नसीरुद्दीन शाह की फिल्मों के कुछ गाने। ये फिल्म है इजाजत।

अभिनेता नसीरुद्दीन शाह को सन 1987 में पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। अभिनेता नसीरुद्दीन शाह को सन 2003 में पद्म भूषण से नवाजा गया। सन 1969

अभिनेता नसीरुद्दीन शाह को सन 2003 में पद्म भूषण से नवाजा गया। सन 1969 में फिल्म स्पर्श, सन 1984 फिल्म पार, सन 2006 फिल्म इकबाल के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला नसीरुद्दीन शाह को। कुछ

अभिनेता नसीरुद्दीन शाह को फिल्मफेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। सन 1981 में आई फिल्म आक्रोश के लिए फिल्मफेयर मिला नसीरुद्दीन शाह को। सन 1982 फिल्म चक्र, सन 1984 में फिल्म मासूम के लिए मिला फिल्मफेयर पुरस्कार। अभिनेता नसीरुद्दीन शाह को सन 2000 में संगीत नाटक अकादमी सम्मान से भी नवाजा गया।

दोस्तों आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जाने माने अभिनेता नसीरुद्दीन शाह पर। प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का, स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का, आलेख और प्रस्तुति शकील बख्शी। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। आज के फनकार।

0: हम रिले कर रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के एक कार्यक्रम FM एंड 103.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 10 बजने को है। अब से थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले करेंगे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही के संपादित अंश।
1: आकाशवाणी है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। अब आप आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनेंगे। दिस इज द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी। प्लीज स्टैंड बाय फॉर आवर नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट। यू विल नाउ लिसन टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन लोकसभा टुडे।
2: माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी,
3: माननीय सदस्यगण, अत्यंत दुख के साथ मुझे सभा को

को अपने छह पूर्व साथियों एवं कतर के पूर्व अमीर फादर अमीर महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन के बारे में सूचित करना है। श्री नादेन दला भास्कर राव अविभाजित आंध्र प्रदेश के खम्मम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से जो अभी तेलंगाना में है 12वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य भी रहे। श्री राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और उन्होंने आंध्र प्रदेश के सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री नादेंदला भास्कर राव का निधन 90 वर्ष की आयु में 22 अप्रैल 2026 को हैदराबाद तेलंगाना में हुआ। श्रीमती ओमवती देवी उत्तर प्रदेश के बिजनौर संसदीय क्षेत्र से 12वीं लोकसभा की सदस्य थी। वे श्रम कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति की सदस्य रही। इससे पूर्व वे 4 कार्यकालों के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य भी रही। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी। श्रीमती ओमवती देवी का निधन 77 वर्ष की आयु में 8 मई 2026 को बिजनौर उत्तर प्रदेश में हुआ। श्री सुधांशु सील पश्चिम बंगाल के कोलकाता उत्तर पश्चिम संसदीय क्षेत्र से 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। वह शहरी विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य थे। इससे पूर्व पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री सुधांशु सील जी का निधन 81 वर्ष की आयु में 14 मई 2026 को कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ। मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी उत्तराखंड के गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 10वीं 12वीं 13वीं 14वीं और 16वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे रक्षा संबंधी संसदीय समिति तथा वित्तीय संबंधी संसदीय समिति के सभापति भी रहे। वह अन्य कई संसदीय समितियों में भी अपनी सेवाएं दी। उन्हें सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री तथा शहरी विकास गरीबी उपशमन मंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। श्री खंडूरी जी 2 बार उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे। मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जी का निधन 91 वर्ष की आयु में 19 मई 2026 को देहरादून उत्तराखंड में हुआ। श्री केपी धन पालन केरल के चाला कुंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे वाणिज्य संबंधी संसदीय समिति के सदस्य तथा कंप्यूटर के प्रावधान संबंधी संसदीय समिति के सदस्य भी रहे। श्री केपी धन पालन का निधन 76 वर्ष की आयु में 30 मई 2026 को एर्नाकुलम केरल में हुआ। श्री प्यारेलाल संगवार उत्तर प्रदेश के घाटमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 13वीं लोकसभा के सदस्य थे। इससे पूर्व 2 कार्यकालों के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री प्यारेलाल संगवार का निधन 71 वर्ष की आयु में 8 जुलाई 2026 को दिल्ली में हुआ। सभा अपने 6 पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करती है। माननीय सदस्यगण, मुझे अत्यंत दुख के साथ सभा को कतर के फादर अमीर महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन के बारे में भी सूचित करना है। महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल थानी ने जून 1995 से जून 2013 तक 18 वर्षों तक कतर के अमीर के रूप में कार्य किया। उन्होंने आधुनिक कतर की नींव रखी और उसे विकास और समृद्धि की महान ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने भारत कतर संबंधों के संवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महामहिम शेख
अहमद बिन खलीफा

0: अल थानी का निधन 74 वर्ष की आयु में 12 जुलाई 2026 को निधन हो गया है। सभा महामहिम अमीर शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर कतर के लोगों और शाही परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है। अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में मौन रहेगी। ओम शांति। प्रश्न माननीय सदस्यगण प्लीज, आप निधन संबंधी उल्लेख के समय सदन की मर्यादाओं को बने रहिए। नहीं, सदन के अंदर ये अपेक्षा है कि कुछ मर्यादाएं सदन की हमेशा रही है, उन मर्यादाओं परंपराओं को पालन करना सबकी जिम्मेदारी है। मैं यही आपसे अपेक्षा करता हूं। नो, मेरी सदन में हमेशा ये अपेक्षा रहेगी सदन की परंपरा और प्रतिष्ठा को बनाए रखें। मैं सबको उचित समय देता हूं, सार्थक चर्चा हो, संवाद हो, तर्क हो, इसके लिए संसद है। आप तर्क से चर्चा करें, नारेबाजी से संसद की मर्यादा नहीं बनती है। प्लीज, प्रश्नकाल प्रश्न नंबर वन, धवन लक्ष्मण भाई पटेल।
1: प्रश्न नंबर एक,
2: प्रश्न संख्या एक, क्या संस्कृति मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क भारत की धरोहर पांडुलिपियों को सुरक्षित रखने के लिए शुरू की गई ज्ञान भारतम पहल के उद्देश्य और प्रमुख घटक क्या हैं? ख, क्या भारत की पांडुलिपि और ज्ञान की विरासत के संरक्षण के लिए उक्त पहल में दक्षिण गुजरात के वलसाड निर्वाचन क्षेत्र के ढोडिया, कोकना और वर्ली समुदायों सहित जनजातीय समुदायों की मौखिक और पांडुलिपि परंपराओं का प्रलेखन शामिल है? ग, उक्त पहल के अंतर्गत ऐसी जनजातीय ज्ञान परंपराओं सहित प्राचीन पांडुलिपियों और ज्ञान की परंपरा के डिजिटीकरण, परिरक्षण और प्रसार में कितनी प्रगति हुई है? घ, ये पहल भारत की सभ्यता और ज्ञान की विरासत को सुदृढ़ करने के लिए किए जाने वाले व्यापक प्रयासों के साथ किस प्रकार जुड़ती है? और अंग, क्या सरकार के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के उपयोग सहित इन डिजिटीकृत संसाधनों के साथ विद्वान जन के व्यापक जुड़ाव, सहयोग और लोगों के लिए इनकी सुलभता हेतु कोई रूपरेखा है?
1: मेरा प्रश्न मंत्री जी से यह है कि भारत की पांडुलिपि विरासत के संरक्षण हेतु प्रारंभ की गई ज्ञान भारत का पहला उद्देश्य और उसके प्रमुख घटक क्या है, तथा दक्षिण गुजरात के वलसाड संसदीय क्षेत्र के डोडिया, कोकड़ा और वार्ली जैसे जनजाति के मौखिक और पांडुलिपि परंपराओं के दस्तावेजीकरण किया जा रहा है और इसमें AI का उपयोग किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, विरासत हमें दिशा भी देता है, विरासत हमें दर्शन भी देता है, और इसलिए मोदी जी ने विकसित भारत को जब कल्पना करी तब रेड फोर्ट से अपने उद्बोधन में कहा था कि हमें विकसित भारत बनाना है, तो विकसित भारत बनाने के लिए हम प्रेरणा कहाँ से लेंगे? मोदी जी ने फ्रांस स्वयं लेलवाते हुए देश को कहा था कि हम विकसित भारत बनाने के लिए संकल्प करेंगे विकसित भारत बनाने के। दूसरा प्रण लेलवाते हुए गुलामी की मानसिकता को छोड़ने की बात कही थी, और तीसरा प्रण लेलवाते हुए मोदी जी ने कहा था कि विरासत से प्रेरणा लेकर हम विकसित भारत बनाएंगे। हमारे मेनू हमारी विरासत है, और आज मंदिर के रूप में, शोक संस्थान के रूप में, महाविद्यालयों में, मठों में, जैन भंडारों में और निजी संग्रहालयों में हमारी मेनू स्क्रिप्ट है। ये मेनू स्क्रिप्ट को हम ज्ञान भारत मिशन के द्वारा उसको आरक्षित करने के लिए, डिजिटलीकृत करने के लिए, रिसर्च जीवन बनाने के लिए, जन सुलभी बनाने के लिए मोदी जी ने ज्ञान भारत मिशन का लॉन्च करा, और ये ज्ञान भारत मिशन के द्वारा देश में आज 1 करोड़ से अधिक मैन्युस्क्रिप्ट का सर्वे करा गया। उसमें से ये मैन्युस्क्रिप्ट में से 8 करोड़ अब डिजिटलाइज हो चुकी है, और उसमें से 3

0: चुके हैं और उसमें मैंने सुरक्षा ने कहा है कि आपको लोकल लैंग्वेज भी कोई जो मैनुस्क्रिप्ट होगी उसको भी एक कार्य में शामिल करके उसको भी उसके प्रति संशोधन करा जाएगा और डिजिटलाइज करा जाएगा।
1: माननीय सदस्यगण, संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च संस्था है, मेरा आपसे आग्रह है आप सदन के अंदर साथ चर्चा करें, संवाद करें, लोगों की जन आकांक्षाओं अपेक्षाओं को रखें। मैं सभी माननीय सदस्यों को उचित नियमों के तहत पर्याप्त समय पर्याप्त मौका दूंगा। मेरा आपसे आग्रह है कि तख्तियां और नारेबाजी से सदन की मर्यादा नहीं बनती है। मेरा आग्रह है कि सदन का प्रथम दिन है और इस परंपरा को तोड़ना चाहिए कि प्रथम दिन सदन नहीं चलेगा। मैं हमेशा आपसे आग्रह कहता हूं कि आपको पर्याप्त अवसर पर्याप्त समय मिलेगा, नियमों के तहत नोटिस दीजिए, सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है, मैं आपको प्रयास में दूंगा। अभी प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल के अंदर नारेबाजी करना तख्तियां लेराना उचित नहीं है। आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं, प्लीज आपसे आग्रह है कि अपनी सीट पर बैठें, सदन चलाने में सहयोग करें। सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, चर्चा नहीं करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
2: अभी आप आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। यू आर लिसनिंग टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन लोकसभा टुडे। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।

कहानी तेरी मेरी इन रातों में रंगीन हुई जाती है। पूछो तो जरा दिल से कि ये मोहब्बत क्यों इतनी संगीन हुई जाती है।

ये कैसा तिलिस्म है प्यार का कि हम हो गए हैं तेरे बस में, भूल कर जमाने की रवायतें और दुनियादारी की रस्में।

0: अभी हम रिले कर रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम FM बैंड 103.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं समाचार, अब आकाशवाणी दिल्ली से होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। आज विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही बार बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 निर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध हो सकते हैं।

0: संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
1: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों तथा गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने की सलाह दी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों के बीच हाल में हुए उच्च स्तरीय आदान प्रदान की गति को और आगे बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की सरकारें और उनके नेता भारत पनामा साझेदारी को गहरा और व्यापक बनाने के लिए उत्सुक। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह 2 सप्ताह के भीतर एक समिति का गठन करे जो देश भर के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद दी जाने वाली सुविधाओं के लिए एक समान दिशा निर्देश तैयार करेगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्देश दिया कि समिति के गठन के 3 महीने के भीतर केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय दोनों को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करें। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को इस वर्ष के लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार लोकमान्य तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 1 अगस्त को पुणे में प्रदान किया जाएगा। लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉ. रोहित तिलक ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी अगले 2 से 3 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहेगा। और खेलों में पीवी सिंधु कल से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुडा भी शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Monsoon session of Parliament began on a stormy note today. Both houses of Parliament witnessed multiple adjournments following uproar by opposition parties over various issues, including the neat paper leak case. The Lok Sabha and the Rajya Sabha were later adjourned for the day. The Lok Sabha began with obituary references to 6 former members who passed away recently. The House also paid tributes to Father Amir of Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. However, question hour could not be taken up due to protests by opposition members from the Congress and the Samajwadi Party over the NEET issue. Our correspondent has the details.
3: The proceedings of both the Houses of Parliament were disrupted due to the repeated adjournments following opposition sloganeering on the NEET paper leak case and other issues. The Lok Sabha witnessed 7 adjournments, while the Rajya Sabha was adjourned 6 times due to the opposition protest. Due to the disruptions, question hour in both the Houses were also not taken up. Amid opposition uproar in the lower house, Union Minister for Law and Justice Arjun Ram Meghwal introduced the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026. The bill aims to further amend the Supreme Court Number of Judges Act 1956 for